सुप्रभात। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर।

आज रविवार है। शकशंबत 1948 के बैसाख माह की तिथि 27, तदनुसार 17 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:49 होने ही वाले हैं। अब आरंभ होती है आज की हमारी ये प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। सुबह के 5:50 हुए हैं, समय हो चला है कुछ अच्छी और सच्ची बातों को सुनने का। जी हाँ, चिंतन।
1: स्वामी विवेकानंदक प्रसिद्धि आख्याति सँ हुनक किछु समसामयिक ईर्ष्या सँ जरि उठला। ओ लोकन देखथि जे स्वामी जी के विश्वक विभिन्न देश सँ आमंत्रण भेटै छनि, देश विदेशक हजारो युवक युवती हुनक शिष्य बनल छथिन, हुनका सर्वत्र प्रचुर सम्मान भेट रहल छनि। ई सब देखि ईर्ष्यालु लोकनि ईर्ष्याग्निमे जरय लगलाह। कोना स्वामी जी के हानि पहुँचायल जानि, कोना ओ निंदित हेता, यह कुचक्र रचय लगलाह। ईर्ष्यालु लोकक स्वभावे होइ छै, ओ स्वयं सम्मान प्राप्त करक चेष्टा नहीं करत, किंतु अनका लांछित अपमानित करबाक उपाय सोचबा में लागल रहत। तो स्वामी जी के आलोचक अनेक प्रकारक मनगढ़ंत आरोप आ मिथ्या लांछन हुनका पर लगबा लगला। कतेक पर्चाबाजी भेल, अखबारबाजी भेल, स्वामी जी मौन बनल रहला। कतबो लोग कहन जे आक्षेपक प्रतिवाद प्रकाशित करौल जाए, किंतु स्वामी विवेकानंद खड्यंत्रकारी के कुचक्र सँ सर्वथा अविचलित रहला। जे आरोपक खंडन कलन आने ए विषय कोनो सार्वजनिक वक्तव्य दिलन, अंततः कुचक्री लोकनिक कुचक्र धैले रह गेल। आ स्वामी जी के यश शुक्ल पक्षक चंद्रमा जका दिनानुदिन बढ़ते गेल। अहू सँ कठिन परीक्षा ईसा मसीहक भेल रहन, हुनका सँ शासक वर्ग कुपित रहन। शिष्य लोकन बारम्बार ईसा मसीह सँ निवेदन कयल करथिन, प्रभु एहिठामक लोक अहाँक शत्रु बनल जाय अछि, संभव अछि ओ अहाँक प्राणो लऽ ले, यरूशलम छोड़ि देल जाय, कतौ अन्यत्र चलल जाय। किंतु प्रत्येक बेर ईसा मसीहक एकेटा उत्तर होइन, सत्यकें ने तऽ डरेबाक चाही आ ने पलायन करक चाही। आलोचना सँ सत्य आर प्रखर होइ छै, आ जँ सत्यक लेल बलिदान देल जाय तखन तऽ ओ अमर भऽ जाइ छै। सब केओ जनै छी जे सत्यक लेल ईसा मसीह अपन बलिदान दऽ अमर भऽ गेलाह। अभिप्राय ई जे कोनो स्थितिमे मिथ्या आरोप, लांछन आ दुष्टतापूर्ण आलोचना सँ भयभीत नहि हेबाक चाही। सब युगमे सब ठाम किछु दुर्जन रहबे करै छथि, हुनक काजे रहै छनि जे साफ सुथरा अछि तकरा पर कादो आ मैल फेंक दी, जे निष्कलंक अछि ओकरा कलंकित करबाक प्रयास करी। किंतु एतेक निश्चित जे एहन कुचक्र अधिक समय धरि नहि चलै छैक। सत्य सत्य होइ छै, जेना सूर्य पर धूरा फेंक कऽ ओकरा झाँपबाक प्रयास केनिहार मूर्खक मुँह पर ओकर अपने फेंकल धूरा पड़ै छै, तहिना सत्यके झाँपबाक प्रयास केनिहार कालांतर में स्वयं उपहासक पात्र बनि जाइ छै।

0: सूर्य कतौ झापल जाय आ सत्य कतौ नुकाओल जाय। क्यों मूर्ख जरैत दीप के बाकस में बंद कऽ देलक। परिणाम की भले, बाकस त जरिए गेलै, दीपक प्रकाश सहस्र गुण अधिक भ गेलै।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है।

0: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR इस ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। अब समय हो चला है किसान भाइयों के लिए कुछ जरूरी बातों का। जी हां, कृषि चर्चा।
1: आजुक कृषि चर्चा संग उपस्थित छी हम अनिल कुमार कर्ण। एहि कार्यक्रम में अपने सब गोटे के स्वागत, संगे सब गोटे के नमस्कार। आइ कृषि चर्चा में हम सब गप करब फसिल में समेकित पोषक तत्व सभक प्रबंधन कोना करी। उर्वरक के अभाव आ बहुमल हेबा के कारण एकर व्यवहार जैविक खादक संग मिला कऽ करब उचित अछि, जाहि सँ एकर उपयोग फसिल के गाछ से बेसी कऽ सकय। रासायनिक उर्वरक के जैविक खाद आ जीवाणु खाद के संग मिला कऽ व्यवहार कयला सँ उर्वरक के उपयोगिता फसिल के लेल बड्ड बेसी बढ़ जाइत अछि। एहि सँ खेत के माटिक उर्वरा शक्ति आ उपज क्षमता में बेस वृद्धि होइत अछि। खाली एसगर जैविक खाद के व्यवहार नहीं कयल जा सकैए, कियाकि एहि में पोषक तत्व सभक मात्रा कम होइत अछि, संगे फसिल के गाछ सबके शनै शनै कम मात्रा में पोषक तत्व सभक प्राप्ति होइत अछि। खाली रासायनिक खाद के व्यवहार सँ फसिल के मात्र एकटा वा दूटा पोषक तत्व के प्राप्ति होइत अछि, मुदा किसान भाई लोकनि एहि गप के ध्यान में राखल जाय। समेकित पोषक तत्व के प्रबंधन सँ फसिल के गाछ सबके संतुलित मात्रा में पोषक तत्व सभक प्राप्ति होइत अछि। रासायनिक उर्वरक के 10 टन प्रति हेक्टेयर के दर सँ जैविक खाद आ नील हरित शैवाल के संग मिला कऽ धान के फसिल में अनुशंसित उर्वरक के मात्रा के 1/4 भाग के बचत कयल जा सकैए, संगे फास्फेट के बचत जैविक खाद के प्रयोग सँ सेहो अपने कऽ सकै छी। 5 टन बायोगैस सलरी कंपोस्ट वा जलकुंभी कंपोस्ट के व्यवहार सँ धान आ गहूँम के फसिल में 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर सँ फास्फेट के बचत अपने कऽ सकै छी। जैविक खाद के संग फास्फोरस के घुलनशील बनब वाला फास्फो बैक्टीरिया जीवाणु संग मिला कऽ व्यवहार कयला सँ चूनायुक्त आ अम्लीय माटि में फास्फोरस के मात्रा में बेस वृद्धि होइत अछि। किसान भाई लोकनि संगे एकटा गप आरो ध्यान राखी, जे 5 टन केलाक थम सँ बनल कंपोस्ट के व्यवहार सँ 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर सँ अपने उर्वरक के बचत कऽ सकै छी। किसान भाई लोकनि उर्वरक के ई मात्रा के बचत धान आ गहूँम दुनू के फसिल में अपने कऽ सकै छी। प्रयोग सँ ई गप सिद्ध भऽ चुकल अछि जे 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर सँ जो मूंग के फसिल के अवशेष के खेतक माटि में गाड़ि देल जाए तो धान के फसिल में अनुशंसित उर्वरक के मात्रा के 1/4 भाग अर्थात 25% के अपने बचत कऽ सकै छी, संगे एकर लाभ अपने के गहूँम के फसिल में सेहो भेट सकैत अछि। 10 टन जैविक खादक संग धान आ गहूँम के अवशेष के यूरिया खाद के घोल में डुबा कऽ 3 वर्ष धरि लगातार व्यवहार कयला सँ प्रत्येक वर्ष धान आ गहूँम के फसिल में अनुशंसित उर्वरक के मात्रा सँ अपने 50% धरि के बचत कऽ सकै छी। एकर संगे दोसर लाभ ई होइत अछि जे खेत के माटि के उर्वरा शक्ति में बेस वृद्धि होइत अछि आ फसिल में सूक्ष्म पोषक तत्व सभक कमी सेहो पूरा भऽ जाइत अछि। धानक फसिल में अजोला के व्यवहार सँ 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर सँ नाइट्रोजन के आपूर्ति भऽ जाइत अछि। मूल रूप सँ ई कहल जा सकैत अछि जे अतबे मात्रा अपने रासायनिक नाइट्रोजन के उर्वरक के सेहो बचत कऽ सकै छी। किसान भाई लोकनि एहि गप के ध्यान में राखल जाए जे अजोला के उपयोग धानक रोपनी के बाद लगभग 1 सप्ताह के बाद करक चाही, जखन खेत में 5-10 सेंटीमीटर खेत में पानि लागल रहे तो 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर सँ अजोलाक व्यवहार करक चाही। अजोला के छोट छोट गाछ सब उगि कऽ हरियर रंग के मोट परत संपूर्ण खेत में जमि

0: जाइत अछि। बहुत कम समय में गलि कऽ माटि में घुलि जाइत अछि आ माटि के उर्वरा शक्ति में बेस वृद्धि करैत अछि। ओजोला के एक परत 10 टन हरियर खाद प्रति हेक्टेयर के दर से दैत अछि। किसान भाई लोकनि ओजोला कल्चर अपने कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क को प्राप्त कऽ सकै छी। किसान भाई लोकनि एहि संग आब आजुक कृषि चर्चाक समय सम्पन्न भऽ रहल अछि। अनिल कुमार कर्ण के चलबाक आज्ञा देल जाय। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: And also infrastructure development that has happened.
2: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
5: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल

0: और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा।
2: आज की स्वास्थ्य चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे दुर्घटना के बाद जख्मी होने की हालत में क्या किया जा सकता है। इस विषय पर हमारे साथ हैं न्यूरोसर्जन डॉक्टर मनीष कुमार धीरज। कहते हैं कि दुर्घटनाएं कह कर नहीं आती है, थोड़ी सी भी अगर असावधानी हुई तो दुर्घटना का शिकार हम हो जाते हैं। कभी कभी दूसरों की गलतियों की वजह से भी हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। बड़ा ही अहम समय होता है जिस समय दुर्घटना हो जाती है, उस समय से लेकर और हॉस्पिटल तक पहुँचने तक का जो समय है, ये क्या करें दुर्घटना होने के बाद?
3: सर्वप्रथम दुर्घटना होने के बाद यदि आप अकेले हैं, आजकल मोबाइल फोन सबके पास रहता है, अपने निकटतम संबंधियों को सूचित करें, मदद के लिए गुहार लगाएं और पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं तो अवश्य फ़ोन करें ताकि आप तक मदद पहुंच सके और आप यथाशीघ्र हॉस्पिटल पहुंचने का यथासंभव प्रयास करें।
2: कई तरह की चोटें होती हैं, शरीर पर चोट हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड पर चोट हो सकती है, लेकिन सबसे जो गंभीर और सांघातक है वो है मस्तिष्क पर लगने वाली चोट। अगर इस तरह की चोट आ जाए तो क्या करना चाहिए?
3: बहुत अच्छा सवाल है। वर्तमान परिस्थिति में जब टू व्हीलर पर हेलमेट पहन करके बैठने की स्थिति देखने में नहीं आती है, मस्तिष्क में यदि चोट है तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको चोट लगने के बाद बेहोशी आई हो, यदि चोट लगने की बाद तुरंत बाद की घटनाओं का स्मरण नहीं रहा हो, यदि आपको बार बार उल्टी आ रही हो अथवा नाक या कान से खून बहा हो, मिर्गी का दौरा आ गया हो, तो उस स्थिति में सीटी स्कैन मस्तिष्क का कराना अनिवार्य है और सीटी स्कैन में जो भी निकलता है उसके अनुसार चिकित्सा होनी चाहिए।
2: कई बार जब मस्तिष्क की बात होती है और डॉक्टर जब सुझाव देते हैं कि भाई तत्काल ऑपरेशन किया जाना जरूरी है तो लोग घबरा जाते हैं, और आज भी ये मान्यता है कि मस्तिष्क बड़ा ही जटिल तंत्र है और उसमें ऑपरेशन पता नहीं।
3: नहीं, आज की चिकित्सा जगत में, आज की चिकित्सा शास्त्र में यह अवधारणा बहुत ही गलत है और हम लोगों ने इतनी दक्षता प्राप्त कर ली है कि मस्तिष्क पर यदि समय रहते हम यदि ऑपरेशन की ज़रूरत है, आम तौर पर यदि ब्रेन में हेमरेज है और उसके थक्के की मोटाई 1 सेंटीमीटर से अधिक है या मस्तिष्क में जो खिसकाव है अपनी जगह से 5 मिलीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर से अधिक है, तो मरीज किसी भी स्थिति में हो, होश में हो या बेहोश हो या सिर्फ सिर में दर्द की ही शिकायत कर रहा हो, उसे ऑपरेशन करा लेना चाहिए, अन्यथा उसकी स्थिति काफ़ी तेज़ी से बिगड़ सकती है। और ऐसे में ऑपरेशन से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि ऑपरेशन यथाशीघ्र करने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और भविष्य की बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकता है।
2: कई बार दुर्घटना घटने के बाद रीढ़ की हड्डी में या फिर गर्दन में बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती है, कई बार गर्दन की हड्डी टूट तक जाती है। ऐसी स्थिति में स्वभावतः जो मरीज होगा वो बेहोश होगा। आम जन जो आसपास इकट्ठा होते हैं उन्हें ये जानकारी नहीं होती है कि उसे कैसे हैंडल करना है।
3: सबसे पहले ट्रॉमा विक्टिम को, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को इस तरह से हैंडल करना चाहिए कि उसके स्पाइनल कॉर्ड में इंजुरी है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, यह मान के चलना चाहिए। और गर्दन और कंधा और कमर ये एक सीध में रखने का प्रयास करना चाहिए। हम मरीज को चाहे कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या स्थानांतरित कर रहे हैं, चाहे एम्बुलेंस में उठा रहे हैं अथवा एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं, सिर, गर्दन, कंधे और कमर ये सब एक साथ एक सीध में होने चाहिए, यह अनिवार्य है। तब तक जब तक यह प्रूव नहीं हो जाए कि मरीज को रीढ़ की हड्डी में कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है।
2: जैसा कि आपने कहा, नाक और कान से कई बार खून निकलने लगता है, उस कंडीशन में कभी कभी मुंह से भी खून आता है, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए?
3: उस कंडीशन में सबसे पहले तो मरीज को करवट कर देना चाहिए और गर्दन और कंधा सीध में रहे तो एक तकिया उसके सिर

0: नीचे रख देना चाहिए ताकि वो जो खून है वो बाहर गिरे, वो सांस की नली में कहीं ना चला जाए और यथाशीघ्र हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल में कई बार हम लोग नेजल ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं जो एक दो बूंद नाक में डालने से रक्त स्नाव बंद हो जाता है।
1: जी, दुर्घटना के बाद जख्मी होने की हालत में क्या किया जा सकता है, इस विषय पर डॉक्टर मनीष कुमार धीराज, आपसे बड़ी अच्छी बातचीत हुई, बहुत सारी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोता सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, आज विषय था दुर्घटना में घायल होने पर क्या करें। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मनीष कुमार धीराज। इस समय सुबह के 6:10 हुए हैं, समय हो चला है भक्ति संगीत के हमारे इस कार्यक्रम वंदना का। आइए इस कार्यक्रम का आरंभ समूह स्वर में गाए इस देश वंदना से।

देश है महान। समूह स्वर में आप सुन रहे थे ये देश वंदना। भक्ति संगीत का हमारे ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं वंदना।

कहते हैं माया से वशीभूत हमारा ये चंचल मन माया को ही जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। ये धन, ये दौलत, मोह, लोभ, इसी में ये चंचल मन उलझा रहता है। इसे ही अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेता है। लेकिन जब ये मन विचलित होता है, धन होते हुए भी मन में चैन नहीं होता, रातों की नींद उड़ जाती है, तब यही चंचल मन शांत होने पर स्वयं महसूस करता है कि ये सब तो व्यर्थ है, एक प्रभु का नाम ही है जो सच्ची शांति और सच्चा सुख दे सकता है। राम नाम का धन ही तो है जो हमें इस भवसागर से पार लगाता है।

कभी कभी हम ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, हमारे माँ बाप, हमारे गुरु, यही तो वो ईश्वर हैं जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। अगर हम इनका आदर सम्मान नहीं करते तो फिर ईश्वर हमारी आराधना कैसे स्वीकार कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु का आदर करें। उनका आदर ही ईश्वर की सच्ची पूजा है, ईश्वर की सच्ची भक्ति है।

0: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम वंदना। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन एक साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा। श्रोताओं, आकाशवाणी दरभंगा से अब समय हो चला है रामचरित मानस कांड का।
1: थ्री सेवन नाइन।

काग भुशुंडी से श्री राम अवतार की कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ के मन का संशय मिट गया। नागपाश में एक साधारण मनुष्य की भांति बंध जाने के कारण गरुड़ को यह संदेह हुआ कि जो परम ब्रह्म परमेश्वर है वो मायापाश में किस प्रकार बंध सकता है। लेकिन इस संदेह रूपी मोह के कारण ही गरुड़ को काग भुशुंडी का सत्संग प्राप्त हुआ। गरुड़ के उद्गार सुनकर काग भुशुंडी ने कहा, हे पक्षीराज, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं। प्रभु ने आपको यहां भेजकर मेरा मान बढ़ाया है, मुझे बड़ाई दी है। आपने मोह होने की बात कही, सो हे नाथ, जब नारद स्वयं शंभु और ब्रह्मा भी इससे नहीं बच सके तो सामान्य प्राणी की क्या बिसात। त्रिभुवन में ऐसा कौन है जिसे काम क्रोध मोह ने नहीं नचाया? परम ज्ञानी योद्धा कवि विद्वान कोई भी तो इससे नहीं बच सका है।

अभी आप सुन रहे थे ए हरिहरन के स्वर में रामचरित मानस गान, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। जानकारी प्राप्त कीजिए, आज हमारी सभा में प्रसारित होने वाले कुछ शेष मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। आज की हमारी सभा में अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। सुबह 10 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा और आज सुबह 10:30 पर नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए हमारा कार्यक्रम सुनिएगा फुलबाड़ी। दिन में 11 आज आप सुनेंगे हमारा फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी। कार्यक्रम में आज विषय होगा उच्च रक्तचाप, लक्षण एवं सावधानियां। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ए.के. गुप्ता। विषय से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारा मोबाइल नंबर होगा 9430029353 और हमारा बेस फोन नंबर होगा 0627222481। हेलो जिंदगी, इस कार्यक्रम का प्रसारण समय याद रखें आज ही दिन में 11 से।

दोपहर 12 बजे महिलाओं के लिए मैथिली में हमारा कार्यक्रम सुनिएगा सखी बहिन। और दोपहर 12:30 पर आज आप सुनेंगे मैथिली नाटक नवीना। अपनी ही चिट्ठियों पर आधारित पसंदीदा फिल्मी गीतों का हमारा कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1:15 पर आपके अनुरोध पर।

अपराह्न 3 बजे आज हम आपको सुनवाएंगे महाकवि की कुछ रचनाएं। सुनिएगा विद्यापति गीत। आज की हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा तरुण कुसुम। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा गांव घर अपने निर्धारित समय शाम 6:30 पर खेती गृहस्थी। ये कार्यक्रम किसान भाइयों के लिए होगा शाम 7 बजे।

0: आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और रात 10 बजे आज आप सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। इसे भी हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। इस समय सुबह के 6:55 होने ही वाले हैं। अब संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानंद झा। पञ्चदेशानां यात्रायाः द्वितीये दिने ह्यः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नीदरलैंड्स देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह अनेकेषु कार्यक्रमेषु सहभागम् अकरोत्। अत्र

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच हेग के व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से बढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। विभाग के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए, जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो ज़ीफेई और नूरुज़्ज़ीन को हराया था। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा ये कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला। नमस्कार मिथिला के आजुक अंक में हम छे मणिकांत झा
1: और साथ में मैं हूँ कल्याण कुमार झा। मणिकांत जी आपको भी मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार कल्याण जी, कार्यक्रमक शुभारंभ हम सब करै छी सुविचार सा।
1: जी, आज का सुविचार हमने लिया है कबीर दास के दोहे से, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं, सब अंधियारा मिट गया जो दीपक देख्या माहीं। अर्थात यहाँ पर मैं का तात्पर्य अहंकार से है। जब अपने अंदर मैं की भावना रहती है कि मैं कुछ हूँ, तब तक हम ईश्वर से एकाकार नहीं हो पाते हैं, और जब ईश्वर से एकाकार हो जाता है तो फिर मैं की भावना हट जाती है, यानी तब अहंकार का नाश हो जाता है। अर्थात अहंकार के नाश होने के बाद ही हम ईश्वर से एकाकार हो सकते हैं, क्योंकि अहंकार को तम यानी अंधकार का रूप दिया गया है, और जब एकाकार हो जाता है तो वहाँ पर उजाला ही उजाला हो जाता है, यानी यहाँ पर ईश्वर को दीपक के रूप में स्थापित किया गया है। तो अहंकार रूपी अंधेरा तब मिट जाता है जब दीपक ईश्वर रूपी दीपक के समक्ष हम एकाकार हो जाते हैं।
0: मतलब भले जे अपना के आत्मसमर्पण कह दी, जे दृश्य शक्ति छथि ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में जे छथि, हुनका लग में समर्पण करी और अपन अहंग जे छे
1: उसका त्याग
0: दी। कार्यक्रम में आगा बढ़े छी और उनटबे छी इतिहासक पन्ना। इतिहासक पन्ना में 17 मई किया विशेष रूप से जानल जाइए, ते पर एक नजर घुमा लीजिए।
1: 1769 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के मुनकरों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, और 1975 की बात करें तो जापानी महिला श्रीमती जुनको तैबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी। 1987 में सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। 2010 की बात करें तो भारतीय बॉक्सरों ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सभी 6 स्वर्ण पदक जीते। 2010 में ही भारतीय सेना ने उड़ीसा के व्हीलर्स द्वीप स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अग्नि 2 का प्रक्षेपास्त्र सफल परीक्षण किया। जन्म की बात करें तो 1951 में पंकज उधास, जो प्रसिद्ध गजल और पार्श्व गायक,
0: उनका जन्म हुआ था आज के दिन भेल छल
1: बिल्कुल। और 1953 में प्रीति गांगुली, जो हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री थी, उनका जन्म। 1897 में धीरेन्द्र वर्मा, जो हिंदी और ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे, उनका जन्म हुआ था। 1749 में एडवर्ड जेनर, ये चेचक के टीके के आविष्कारक थे, इनका जन्म हुआ था। एक नज़र आज के दिन कुछ महानस्तियों के निधन पर, तो 1972 में रघुनाथ कृष्ण फड़के, ये पद्मश्री से सम्मानित भारतीय मूर्तिकार थे, इनका निधन हुआ था। आज विश्व दूर संचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जा रहा है।
0: तो आप जहन आजुक इतिहास और उसका प्रमुख जे बात से बुझ लेलो, तो तहन फिर कार्यक्रम में आगा बढ़े छी। इतिहास के बाद वर्तमान में आबी छी, और वर्तमान में काल ही एखन जे छै से बरसात पावन बीतल है, और एखन जेठ मास है, तो जेठ के दुपहरिया से सब दिन से नामी रहली है। काल ओकर एक रति झलक हल्का भेटे छलै है कनी मने, लेकिन आवा वाला दिन में जना मौसम पूर्वानुमान सब कह रहा है, ते में लगे छे जे तपिस बढ़ते और गर्मी बढ़त, गर्मी जहन बढ़त तहन ओकर प्रतिकूल असर अपना सब पर पड़त।
1: बिल्कुल,
0: त तकरा लेल पहले से सचेत रही, और गर्मी के मास में कखनो घर से बाहर जाए तो भरि छाक पानि पीब कऽ तकरा बाद

0: लिए कोशिश करी जे बेसी रौद पर नहीं जाए पड़े। अगर गेनाई जरूरी है तो माथ पर या तो गमछा रख लिया, टोपी पहन लिया कि छत्ता लो लिया, मतलब रौद के डायरेक्ट
1: असर नहीं होना
0: असर यहाँ पर नहीं हुआ ते पर मैं जरूर चैंक बनाकर राखी। ये सब चीज पर ध्यान दे तो अपना स्वास्थ्य के प्रति सब गोटा सतर्क रही, क्या तो स्वास्थ्य सबसे नम्हर धन हो और स्वास्थ्य अगर ठीक है तो अहाँ सब काज में आगा बढ़ कर रह सके। नहीं स्वास्थ्य गड़बड़ा गेले तो फिर सब चीज में गड़बड़ी अहाँ के नजर अबित रहत। गप सब अपना सब करबे करब। आई तो नमस्कार मिथिला कार्यक्रम में दूटा चर्चा हमरा सब के करवा के
1: और लेकिन बाद गतिविधियां गत सप्ताह की भी है।
0: हाँ वही सबसे पहले मैथिली सुगम संगीत में चली और भगवती सुंदर सनक की वंदना सुनी कुंज बिहारी मिश्र के स्वर में।

0: तारा तारिणी दुख निवारिणी। कुंज बिहारी मिश्र के स्वर में ये मैथिली सुगम संगीत के अंतर्गत ये भजन हमने सुना। और श्रोताओं, अब समय हो चला है सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित हालचाल का। हालचाल लेकर उपस्थित हैं मणिकांत झा।
1: नमस्कार। आगामी 20 मई का विशेष अभियान चलाकर किसान के फॉर्मर रजिस्ट्री आईडी निर्माण सुनिश्चित कैल जाएत। दरभंगा के जिलाधिकारी कहलन है जो परिमार्जन से संबंधित आवेदन के समयबद्ध निष्पादन अत्यंत आवश्यक है ताकि किसान के कोनो प्रकारक परेशानी के सामना नहीं करो पड़े। हुनक पंजीकरण के समय हुनका कोनो दिक्कत नहीं हुए, ये बात पर ध्यान रखब सबसे जरूरी है। पिछला दिन आयोजित एकटा बैसार में 20 मई के हुआ वाला महाअभियान के सफल बनेबाक हेतु प्रत्येक पंचायत से अधिकाधिक किसान के फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनेबाक लक्ष्य निर्धारित कयल गेल। संगे जिलाधिकारी प्रत्येक दिन प्रत्येक पंचायत में कम से कम 25 फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनेबाक लेल कैटा महत्वपूर्ण निर्देश देलन है। जिलाधिकारी सब अंचलाधिकारी एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी के महाअभियान से पूर्व 50 किसान के सूची तैयार करबाक निर्देश देलन। ओ कहलन जे पंचायत स्तर से कर्मचारी एवं किसान सलाहकार अभियानक पूर्ण तैयारी सुनिश्चित करी आ राजस्व कर्मचारी युद्ध स्तर पर परिमार्जन आवेदन के निष्पादन करें। ओ सब संबंधित अधिकारी के निर्देश देलन कि किसान हित के सर्वोच्च प्राथमिकता दैत समन्वित प्रयास जिला के अधिकाधिक किसान के फार्मर रजिस्ट्री आईडी निर्माण सुनिश्चित कैल जाए। उम्हर जिलाधिकारी के दरभंगा अध्यक्षता में पंचायत में समस्या के समाधान हेतु सहयोग शिविर के आयोजन के लोक समीक्षा बैसार सेहो कैल गेल। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक मासक प्रथम आ तेसर मंगल के सहयोग शिविर चयनित पंचायत में आयोजित कयल जाइत अछि। प्रथम सहयोग शिविर 19 में आ 26 के चयनित 24 पंचायत में आयोजित हैत। चयनित पंचायत सरकार भवन में आवेदन लेल जा रहल है। प्राप्त आवेदन के यथाशीघ्र समाधान कयल जाएत। बैसार में जिलाधिकारी सब प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्राप्त आवेदन के डिजिटाइजेशन करबाक निर्देश देलन। बैसार में जिलाधिकारी निर्देश देलन जे 19 मई 2026 के जिलाक सब प्रखंड में 24 चयनित पंचायत में सहयोग शिविर के आयोजन कयल जेबाक। सिंहवाड़ा प्रखंड के सिमरी पंचायत में जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्त अध्यक्षता में सहयोग शिविर आयोजित कयल जाएत। दरभंगा जिला में LPG गैसक उपलब्धता और वितरण व्यवस्थित एवं सुचारू ढंग से जारी है। बुकिंग के अनुरूप 75 गैस एजेंसी के द्वारा तेजी से गैस आपूर्ति कयल जा रहा है। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा स्पष्ट निर्देश देल गेल है जे LPG गैस बुकिंग प्राप्त भेलाक बाद संबंधित एजेंसी उपभोक्ता के होम डिलीवरी के माध्यम से निर्धारित दर पर गैस सिलेंडर हुनका घर तक पहुँचेनाई सुनिश्चित करैत। जिलाधिकारी जिलावासी से जिला प्रशासन के दिस से अपील कलन है जे अपन नंबर एवाक इंतजार अवश्य करी, अफवाह पर ध्यान नहीं दी। नियमानुसार सब ग्राहक के सौ समय गैस सिलेंडर उपलब्ध करल जा रहा है।

दरभंगा जिला में काल्हि 75 गैस एजेंसी के माध्यम सँ 8,267 LPG गैस सिलेंडर उपभोक्ता के बीच वितरण कयल गेल, जाहि मे दरभंगा सदर अनुमंडल में 6,489 आ बेनीपुर अनुमंडल में 819 एवं बिरौल में 959 गैस सिलेंडर शामिल है। एकरा लेल एकटा जिला नियंत्रण कक्ष के स्थापना सेहो कयल गेल, जकर नंबर अछि 0627224555। कोनो समस्या भेला पर एहि नंबर पर संपर्क कयल जा सकैए। हालचाल अपने आकाशवाणी दरभंगा सँ सुनि रहल छी। आइ संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आयोजन कयल गेल, जकरा लऽ कऽ सुरक्षा के कड़गर आयोजन संपूर्ण शहर में कयल गेल। पिछला दिन दरभंगा जिला अतिथि गृह में मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार मदन सहनी विभाग से संबंधित राजस्व प्राप्ति भूमि निबंधन आ अन्य बिंदु पर समीक्षात्मक बैसार के आयोजन कयलन। बैसार के प्रारंभ में जिलाधिकारी कौशल कुमार जिला पदाधिकारी द्वारा मिथिला विधि सँ साल आ पाग चादर दऽ कऽ मंत्री के सम्मानित कयल गेलन। बैसार में जनाओल गेल जे जिला में भूमि के मुख्य रूप से शहरी पेरिफेरल एवं ग्रामीण क्षेत्र में विभाजित कयल गेल। एहि क्षेत्र में भूमि के विभिन्न श्रेणी जना कि व्यावसायिक आवासीय विकासशील कृषि एवं दुफसला भूमि आदि निर्धारित कयल गेल। मंत्री MBR रिवीजन के प्रगति के समीक्षा करैत भूमि विवाद के कम करबाक लेल आवश्यक बिंदु पर विस्तार से चर्चा कयलन। ओ भूमि निबंधन प्रक्रिया के बेसी से बेसी पारदर्शी एवं सरल बनेबा पर जोर देलन। दरभंगा प्रमंडलक आयुक्त हिमांशु कुमार राय, जिलाधिकारी कौशल कुमार काल्हि दरभंगा जिला स्थित DMCH अस्पताल के औचक निरीक्षण कयलन। अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा, चिकित्सीय व्यवस्था एवं संसाधन सभक विस्तृत समीक्षा हुनका लोकनिक द्वारा कयल गेल। निरीक्षण के उपरांत अस्पताल प्रशासन, चिकित्सक एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के संग समीक्षा बैसार आयोजित कऽ कऽ जाहि में मरीज के नीक से नीक स्वास्थ्य सेवा कोना उपलब्ध करायल जाए ताहि संबंध में दिशा निर्देश जारी कयलन। सहायक निदेशक नियोजन अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा द्वारा जनाओल गेल जे बिहार सरकार युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बिहार राज्य समुद्र पार नियोजन ब्यूरो पटना के तत्वावधान में इजरायल देश में कारीगरक पद पर रिक्ति प्राप्त भेल। जाहिमे जनाओल गेल जे अभ्यर्थी के आयु 25 से 45 वर्ष के बीच निर्धारित कयल गेल। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण चाही आ अभ्यर्थी के अंग्रेजी भाषा मध्यवर्ती स्तर के ज्ञान होयब आवश्यक थिक। पद के लेल भारतीय प्रशिक्षण संस्थान सँ नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, नर्स सहायक या दाई प्रशिक्षण के डिप्लोमा रहब आवश्यक अछि। संगे GDA, ANM, GNM, BSc, नर्सिंग आदि योग्यता रखबला अभ्यर्थी के आवेदन सेहो करबाक सुविधा प्राप्त हेतन। आइ जिला मुख्यालय दरभंगा के 21 केंद्र पर परीक्षा आयोजित भ रहल है। इमे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा लेल जायत। बिहारक उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव डिग्री महाविद्यालय त्रिवेणीगंज के काल्हि फीता काटिकऽ उद्घाटन कयलनि। एहि मध्य सुपौल सांसद दिलेश्वर कामत, त्रिवेणीगंज के विधायक सोनव रानी, सरदार BNMU के कुलपति विमलेंदु शेखर झा एवं अन्य गणमान्य लोक उपस्थित छलाह। एहि अवसर पर उप मुख्यमंत्री अपन संबोधन में कहलनि कि वर्ष 2011-12 के मध्य पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाहि शैक्षणिक विकास योजना घोषणा कयने छलाह

0: ओकर सपना आब साकार हो लागल है। कोनो समाजक विकास ज्ञान विज्ञान और शिक्षा से संभव है। शिक्षा के सम्मान और आत्मनिर्भरता शिक्षा से सम्मान और आत्मनिर्भरता भेटत है। डिप्टी CM बेटी के जिक्र करत कहलन जे आब उच्च शिक्षा प्राप्त करे के लेल हुनका अनुमंडल से दूर नहीं जाय पड़तन। काल्हि सुहागिन लोकनिक पावन बरसात धूमधाम और हर्षोल्लासपूर्वक मनायल गेल। विभिन्न गाम शहर चौक चौराहा में अवस्थित बड़क गास्तर में सुहागिन लोकनिक भीड़ लागल रहल और श्रद्धापूर्वक ओ लोकन ई पावन करैत देखल गेली। बिहारक कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा कृषि अवसंरचना कोष योजना के प्रगति के सराहना करैत कहलन है जे ई योजना राज्य के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आन रहल है। कृषि अवसंरचना कोष एक केंद्रीय क्षेत्र के योजना है जकर मुख्य उद्देश्य देशक राज्य में कृषि अवसंरचना में सुधार के लेल मध्यम सँ दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण सुविधा जुटायब थिक। एहि योजना के माध्यम सँ फसल के कटाई के बाद ओकर बेहतर प्रबंधन आ सामुदायिक कृषि परिसंपत्ति के निर्माण के लेल निवेश के बढ़ावा देल जा रहल है। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से सुपौल जिला के 3 प्रखंड के 4 चयनित जनजाति बहुल गांव में 1825 मई तक जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहिने चलाओल जायत। अभियानक शुभारंभ जिलाधिकारी सुपौल के द्वारा दिनांक 18 मई के जिला समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में कैल जायत। एहि अभियान के अंतर्गत किशनपुर त्रिवेणीगंज एवं बसंतपुर प्रखंड के चयनित 4 अनुसूचित जनजाति बहुल गांव के में दिनांक 19/5 से लकर 25/5 तक शिविर के आयोजन कैल जायत। एमे विभिन्न सेवा के लेल आवेदन प्राप्त कऽ ओकर निष्पादन करैत सेवा संबंधी प्रमाण पत्र के वितरण सेहो कैल जेबाक संभावना अछि। एक संग आजुक हालचाल संपन्न भेल।
1: श्रोताओ अभी आप अवगत हो रहे थे सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित हालचाल से। हालचाल लेकर उपस्थित थे मणिकांत झा। और कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले कार्यक्रम संबंधी एक सूचना है। श्रोताओ उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। उच्च रक्तचाप लक्षण एवं सावधानियां, हाँ यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के आज के अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर AK गुप्ता। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जोड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 9430029353। हमारा दूसरा फोन नंबर होगा 06-272-22-2481। समय याद रखें आज दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई।
0: कल्याण जी, हाँ जहाँ अहाँ चर्चा कहे देलहुँ और सूचना उच्च रक्तचाप से संबंधित देलहुँ जे आई विशेष कार्यक्रम हमरा सब ओतऽ सब प्रसारित हैत, तो आय दिवस से होय पूरा देश दुनिया में आजका दिन एहि दिवस के मनाओल जा रहा है। और उच्च रक्तचाप से बहुत रास लोग जे छै से प्रभावित भ गेल छथि। ओकर मूल कारण छै टेंशन और चिंता में रहनाय, विभिन्न प्रकारक जे छै से सोच दिमाग में घुरियेनाय, ई मूल कारण में जे छै से माने हाई ब्लड प्रेशर के जे छै से कारण छै।
1: बिल्कुल, हमारे खान पान रहन सहन और संयमित दिनचर्या तथा चिंता और तनाव जैसा कि आपने कहा भी है उसके कारण हम उच्च रक्तचाप अर्थात हाई ब्लड प्रेशर या इसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं इसका शिकार हो जाते हैं, जो प्रायः मृत्यु का कारण बन जाता है।

0: इसी तथ्य के मद्देनजर आज के दिन यानी 17 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है।
1: कोनो दिवस के मनवा के पाछा कारण ई रहै छै जे ओई जै संबंधित विषय पर दिवस मनबै छी हमसब, ओकरा संबंध में लोग के जानकारी भेटे जे ओ की है और जागरूकता आवे, त उच्च रक्तचाप दिवस के मनेबा के यह मूल कारण छे जे रक्तचाप भेला से, उच्च रक्तचाप भेला से की अहाँ के शरीर पर ओकर प्रतिकूल असर छे, तकर जानकारी अहाँ के हेबाक चाहिए और ओहिसँ कोना बचब अहू से अहाँ के जरूर अवगत रहबाक चाहिए। और से अगर रहै छी, अगर चैंक से अहाँ रहै छी, तऽ ओहि सबसँ बीमारी तऽ कोनो जे छै से खराबे छै, बीमारी तऽ नामे भेलै, जखने बीमारी तऽ बीमारी भऽ गेलै, खराबी भऽ गेलै। लेकिन बीमारी नहि हुए आओर बीमारी भऽ जाए तऽ ओहिसँ कोना बची, एहि सबके जानकारी निश्चित हेबाक चाही और चैंक रहक चाही। तऽ अजुका जे दिवस अइ ताहिमे उच्च रक्तचाप एकटा बहुत बड़ा बीमारी के जड़ो अइ, एकरा भेला के बाद जे छै से और बीमारी सब होइ छै और एकर मूल जड़ तनाव छै।
0: तनाव है,
1: तनाव में अहाँ रहब तऽ ई सब चीज होइत रहत। तैं सबसे पहले चिंता मुक्त रहू।
0: बिल्कुल,
1: हाँ, चिंता मुक्त रहू
0: है, सुख से उसका उपयोग करें, भोजन शांति से करें, निश्चिंत भाव से करें, किसी भी मामले को उतना ज्यादा उस पर सोच विचार ना करें कि अब कोई बात हो गई तो उसी को लेकर के दिन भर उसी में रमे हुए हैं और एकदम तनाव से ग्रस्त हो गए। आजकल तनाव को लोग टेंशन कहते हैं, तो टेंशन से दूर रहें। टेंशन से दूर रहने पर ही हम उच्च रक्तचाप से वंचित रह सकते हैं।
1: तनाव मुक्त रह के एक टा मूल मंत्र छे, जे प्राप्त है वो पर्याप्त है।
0: बिल्कुल, हाँ, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।
1: ये अगर बुझ जेबे और आई के मन आई खाली बुझला से नहीं है तो इस सिद्धांत पर चल पड़त, अगर से चल लागब तहन अहाँ तनाव मुक्त रह सकै छी। नै तो हरदम जीवन में जे छै से किछ ने किछ अहाँ के तनाव अबैत रहत सोझा में और अहाँ ओ तनाव के चक्कर में ई ब्लड प्रेशर के शिकार भ जाए, हाई ब्लड प्रेशर के। और
0: हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। साइलेंट किलर का मतलब कि यह चुपचाप मृत्यु को आमंत्रित करता है, आपको समझने भी नहीं देगा और बस
1: चुपा चोर। हाँ, तो चुपा चोर सब बच कर रही और यहाँ के शरीर पर हानि नहीं पहुँचाबे, तकरा लेल हरदम प्रयासरत रही और हंसी खुशी से जीवन जी।
0: बिल्कुल, जो ही है आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। वास्तव में यह भावना और इस बात को अगर हम अपने जीवन में अमल में ले आते हैं तो हम सदा सुखी रहते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं। और जब तनाव मुक्त रहते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। बीमारियां तभी घर करती है जब हम तनाव के कारण अपने शरीर को खोखला बना लेते हैं और खोखले शरीर में तमाम बीमारियां अपना घर बना लेती हैं।
1: तो आजका दिवस पर यह आग्रह सब गोटा सा जे चिंता मुक्त रहू, तनाव मुक्त रहू, आनंद मंगल से रहू और जे अइ अहाँ लग ओकरा पर्याप्त मानू और जे भेट रहल है ओ बहुत है। ई बात के मानित अगर अहाँ खुश छी तो अहाँ लग में बीमारी सब जे छै से नहीं आयत और तनाव मुक्त करे के साधन हमरो सब लग में एकटा आए, ओ साधन के उपयोग हम सब करते रही छी, फेर अखन करी छी और सुंदर सनक फिल्म संगीत सुनै छी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ता एखन हमरा लोकन बहुत सुंदर फिल्म संगीत के आनंद लेल और अब आई रोए हुए रवि दिन का नमस्कार मिथिला कार्यक्रम में हमरा लोकन पिछला सप्ताह के जो गतिविधि रही है तकरो सुनी तो हम आग्रह करी छियनि कल्याण जी से जे गत सप्ताह के गतिविधि लक उपस्थित हुए थे।
2: धन्यवाद मणिकांत जी। श्रोताओं नमस्कार। गतिविधियां गत सप्ताह की के साथ मैं कल्याण कुमार झा। श्रोताओं गत सप्ताह राजनैतिक गतिविधियों से खास रहा क्योंकि देश के विभिन्न राज्यों में संपन्न विधानसभा चुनावों के बाद गत सप्ताह सभी दलों व गठबंधन द्वारा अपने बहुमत वाले राज्यों में सरकार बनाने की एक होड़ सी लगी रही। वैसे फिलहाल हम आरंभ करते हैं सप्ताह आरंभ से कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों से। वाइस एडमिरल संजय वात्सायन मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान के अगले फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त हुए। सी जोसेफ विजय ने 9 मंत्रियों के साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पीएम मोदी ने तेलंगाना में करीब 9,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में भी शामिल हुए। नवनिर्वाचित तमिलनाडु विधानसभा का पहला सत्र आरंभ हुआ। आकाशवाणी विजयवाड़ा ने भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वरा संध्या के साथ आकाशवाणी की 90वीं वर्षगांठ मनाई। असम में हेमंता विश्व शर्मा ने दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। तमिलनाडु में जेसीडी प्रभाकर निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। तमिलनाडु सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों पूजा स्थलों और बस स्टैंडों के पास शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया। महान सिख योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का सिरहिंद फतेह दिवस मनाया गया। नर्सिंग कर्मियों को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरस्कार से नर्सिंग कर्मियों को सम्मानित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 परीक्षा रद्द करते हुए अगली तिथि 21 जून घोषित की। भारत ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास और मेलख ग्रामीण नगरपालिका ने श्री वासुकी माध्यमिक विद्यालय की आधारशिला रखी। CBSE ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। झारखंड के भाव्य रंजन ने CBSE 12वीं में 499 अंक प्राप्त कर इतिहास रचा। एन रंगासामी ने पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम बंगाल में आलू प्याज समेत अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटे। हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत हुई। नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। सरकार ने चीनी खांड और परिष्कृत चीनी के निर्यात पर सितंबर 2026 तक रोक लगाई। CPIM के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुधांशु सिल का निधन हो गया। सरकार ने सोने के आयात पर

100 किलोग्राम की सीमा तय की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई। यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने ईंधन बचत के विशेष उपायों की घोषणा की। पूरे मिथिला सहित देश के अन्य भागों में वट सावित्री व्रत तथा पूजा अर्चना समस्त सुहागनों द्वारा व श्रद्धा व भक्तिपूर्वक की गई। अब कुछ प्रमुख खेल गतिविधियां गत सप्ताह की। तीरंदाजी कप में भारत ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में, जिसमें अंडर 15 से 6 और अंडर 17 से 3। गुजरात के गांधीनगर में आरंभ हुआ एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026। फुटबॉल की बात करें तो एफसी बार्सिलोना ने 2025-26 का ला लीगा खिताब जीता। 11वें सांडा विश्व कप में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हराया। गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को

0: दिन पहुंचा देलिए देखू कल्याण जी देश जे चल रहा है आगा बढ़ रहा है ओमे सरकारी संगठन के जतबे महत्वपूर्ण योगदान छे ओइसे कनिको कमजोर योगदान निजी संगठन सबक नी छे।
1: बिल्कुल
0: निजी भागीदारी जे छे सेहो देश के प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान राख रहा है। बहुत रास एहन निजी कंपनी सब है जे व्यापक पैमाना पर लोग के रोजगार उपलब्ध करा रही है और उत्पादन के क्षेत्र में एक कीर्ति स्थापित कर रहा है। तो ऐसा इनकार नहीं किया जा सके जे देश के जे अपन आय छे या ओकर जे
1: चाहे वो विदेशी मुद्रा आय हो
0: हाँ।
1: या घरेलू जीडीपी हो
0: समृद्धि जे देश हाँ। में भ रहा है ओमें जहिना सरकारी कंपनी सबक सरकार के योगदान छे तहिना निजी कंपनी के सेहो भागीदारी छे बहुत हाँ। तो ओइसे इनकार नहीं किया जा सके और वो दिनानुदिन ओमे वृद्धि भ रही है। चर्चा तो पर हमरा मन छले जे खूब बेहतर करतों विस्तृत करतों लेकिन मन होइए मलपुआ खैतों आटा रहे तो गुड़ पैचो लेबतों मुदा घिये नहीं वाला स्थिति रहै छै बनल। तो बहुत बेसी चर्चा नहीं कऽ कऽ ई बात के स्वीकार करी हमरा लोकन जे निजी सहभागिता जे छै सेहो देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन कऽ रहल है। और ई चर्चा के संग सुंदर सनक एक फिल्म संगीत के आनंद लेत कार्यक्रम दिस अपना श्रोता सब सो विदा से हो लेबन लेकिन तैसा पहिने सुनी सुंदर सनक की फिल्म संगीत।

0: गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, बहुत दर्शन से भरल गीत संगीत हमरा लोग अखन सुनलों। और वास्तव में जीवन के तो यह रंग है, यह लीला है, गाड़ी पर कखनो चढ़े लोग कखनो प्रस्थान कर जाइए तो ओकर याद जे छे, ओकर कीर्ति जे छे से जीवित रह जाए छे। तो कार्यक्रम के आप समय संपन्न भ रहा है, तो नमस्कार मिथिला कार्यक्रम से मणिकांत के
1: और कल्याण कुमार झा को दीजिए अनुमति। नमस्कार मिथिला।

श्रोता सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। उच्च रक्तचाप, लक्षण एवं सावधानियां, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के आज के अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ए के गुप्ता। कार्यक्रम से जोड़ने के लिए विशेष

रक्तचाप, लक्षण एवं सावधानियां, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के आज के अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ए के गुप्ता। कार्यक्रम से जोड़ने के लिए, विषय से जुड़ी बातों को जानने के लिए या अपने जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हमारे ये मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 9430029353 और हमारा बेस फोन नंबर है 06272222481। हेलो जिंदगी, इस कार्यक्रम का प्रसारण समय याद रखें आज ही दिन में 11 बजे से। कार्यक्रम संबंधी ये सूचना समाप्त हुई। कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: भोर होते उठ जाओ किएक त इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल्हि लेल।
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
6: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
5: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
7: तुम नाचो रस बरसी,
5: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग। बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
3: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज के हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम सूचना शिक्षा और मनोरंजन एक साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा। इस समय सुबह के 8 होने ही वाले हैं। अब समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
4: लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले

0: के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।

0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक है। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी

0: से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 480 चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart, Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a 2-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart, Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted

0: उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत करेंगे। महकमा आसार कदीमा ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदुओं को भोजशाला मंदिर में बिला रुकावट दाखिले की इजाजत दे दी है। हुकूमत ने चांदी की दरामद में कटौती करते हुए इसे पाबंदी वाली अशिया के जुमरे में डाल दिया है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में हवाई जहाजों के ईंधन पर वैल्यू एडिड टैक्स में कटौती करते हुए इसे 25% से घटाकर 7% कर दिया है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के फाइनल में आज सत्वी साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के वजीर आजम रॉब जेटन के दरमियान हेग में वसी तर मुजाकरात के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने अपने बाहमी ताल्लुकात को एक कलीदी शराकतदारी की सतह पर ले जाने से इत्तेफाक किया है। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, दिफा, टेक्नोलॉजी, पानी के बंदोबस्त, साफ तवानाई, हिफ्जान सेहत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन का जायजा लिया।
1: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
0: तरजीही शोबों में वसी इश्तराक के लिए कई समझौतों पर भी दस्तखत किए गए। बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी तक ले जाने का ऐलान करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि पिछली एक दहाई में भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान ताल्लुकात में खातिरख्वाह पेशरफ्त हुई है और उन्होंने नीदरलैंड को भारत का एक कलीदी यूरोपी शराकतदार करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मुश्तरका जमहूरी अकदार, मजबूत माशी तआवुन और अवाम से अवाम के दरमियान गहरे रिश्तों पर मबनी है।
1: हम नीदरलैंड को भारत के सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर में से मानते हैं। नीदरलैंड भारत के टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से एक है। हमारे हिस्टोरिकल, कल्चर और पीपल टू पीपल टाइज भी बहुत गहरे हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मार्केट इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ये हमारी साझी सोच का हिस्सा है। हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए।
0: नीदरलैंड के वजीर आजम रॉब जेटन ने भारत के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात की अहमियत पर भी जोर दिया और माशी और कलीदी शोबों में मजबूत तआवुन की हिमायत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वीडन के दो रोजा दौरे पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये दौरा भारत और स्वीडन के दरमियान वसत पा रहे इश्तराक के लिए एक तारीखी संग मील साबित होगा। जनाब मोदी बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेने की खातिर स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत करेंगे और बाहमी बातचीत को तिजारत को बढ़ाने के साथ साथ मस्नूई जहानत, AI, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप्स, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, दिफा, खला, आबो हवा से मुतालिक कार्रवाई और अवाम के दरमियान रिश्तों और कार्रवाई माहौल दोस्त बदलाव की जानिब मुंतकली को बढ़ाने के लिए तआवुन के नए मौके तलाश किए जाएंगे। दोनों मुल्कों के वज़ीरे आज़म सनद के लिए यूरोपियन गोलमेज कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे, जो यूरोपियन कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डर लायन के साथ एक सरकर्दा पैन यूरोपियन सरबराहों का फोरम है। ये बातचीत वजीर आजम के वसी यूरोपी दौरे के तीसरे मरहले का एक हिस्सा है और जनवरी 2026 में हुए भारत यूरोपियन आज़ाद तिजारती मुआहदे FTA के बाद से खित्ते का ये पहला दौरा है। ये दौरा बाहमी ताल्लुकात का जायजा लेने की गरज से तैयार किया गया है और इसका मकसद तेजी से बढ़ती हुई तब्दीलियों और पेचीदा जोग्राफियाई चैलेंजों के दौर में तआवुन का पता लगाना है। ये दौरा इक्तिसादी सरगर्मियों में तेजी के रुझान के बाद हो रहा है, जहां दो तरफा तिजारत साल 2025 में रिकॉर्ड 7.75 अमरीकी डॉलर हो गई और साल 2000 से 2025 के दरमियान भारत में स्वीडन के रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का हजम 2.825 अरब डॉलर्स रहा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: स्वीडन जो दुनिया की सबसे ज्यादा इख्तराई मईशतों में से एक है, भारत के डिजिटल पूल के साथ कुदरती हम आहंगी तलाश कर रहा है। फिलहाल 280 से ज्यादा

0: ज्यादा स्वीडिश कंपनियां भारत में काम कर रही हैं जबकि 75 भारतीय फर्म स्वीडन में कायम हो चुकी हैं। इस दौरे की एक खास बात वज़ीरे आज़म की यूरोपीय कमीशन की सदर के साथ यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस बराए सनत से मुश्तरका तौर पर खिताब है। दिफाई और सिक्योरिटी टाउन सनती इंजमाम की तरफ बढ़ते हुए एक मरकजी सुतून में तब्दील हुआ है। इन ताल्लुकात की जड़ें 2009 के दिफाई टाउन के माहिरे और 2019 के जनरल सिक्योरिटी माहिरे में पेवस्त हैं। मसनू जहानत एआई और उबरती हुई टेक्नोलॉजीज में टाउन इस शराकतदारी की बुनियाद फराहम करता है। इसके अलावा दोनों ममालिक खलाई तहकीक में भी टाउन कर रहे हैं। स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स इसरो के वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए आलात फराहम कर रहा है। आखिर में वजीर आजम का गोटेनबर्ग का दौरा तारीखी एतमाद को मुस्तकबिल के लिए तैयार अहदाफ से जोड़ता है। गोटेनबर्ग स्वीडन से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: भारत और स्वीडन के दरमियान तिजारत और अवाम से अवाम के दरमियान राब्तों की विरासत है जो एक सदी से ज्यादा अरसे पर मुहित है और इसकी जड़ें बाहमी एहतराम पुरअमन बका और अहिंसा के नज़रिए में पेवस्त हैं। इस गहरे ताल्लुक की निशानदेही नोबेल इनाम याफ्ता रविंद्रनाथ टैगोर के साल 1926 के स्वीडन दौरे के 100 साल मुकम्मल होने से होती है। आज ये ताल्लुकात सकाफती बुनियादों से आगे बढ़कर जामे सनती इक्तिसादी शराकतदारी में बदल रहे हैं। कीमती धातुओं पर इजाफी कस्टम ड्यूटीज आयद करने के कुछ ही दिनों बाद हुकूमत ने अब चांदी की दरामद में कटौती की है। गैर मुल्की तिजारत के डायरेक्टोरेट जनरल DGFT ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि चांदी पर सोने का पानी चढ़ी चांदी और प्लेटिनम समेत चांदी पर दरामदी पॉलिसी को फौरी तौर से आज़ाद से पाबंदी शुदा के जुमरे में तब्दील किया गया है। हुकूमत ने बुध के रोज कीमती धातुओं पर दरामदी ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी थी। पाबंदियां आयद किए गए जुमरे की अशिया की दरामद के लिए हुकूमत की लाइसेंस की जरूरत होती है। दिल्ली हुकूमत ने एक अहम कदम उठाते हुए कौमी दारुल हुकूमत में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैल्यू एडिड टैक्स को 25% से घटाकर 7% करने का फैसला किया है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि ये फैसला वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से कनेक्टिविटी और माशी सरगर्मियों को मजबूत बनाने पर जोर देने से मुताबकत रखता है जिसका मकसद शहरी हवाबाजी के शोबे को राहत फराहम करना सियाहत और लॉजिस्टिक्स से मुतालिक सरगर्मियों को फरोग देना है। वजीर आला ने बताया कि ये रियायती शरह आइंदा 6 माह तक नाफिज रहेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। महकमा आसार कदीमा ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में वाक़ भोजशाला कॉम्प्लेक्स इमारत में हिंदुओं को पूजा पाठ और दीगर मकासद के लिए बिला रुकावट रसाई की इजाज़त दे दी है। महकमा आसार कदीमा का ये फैसला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले के एक दिन बाद आया है जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार जिले में भोजशाला को सरस्वती देवी का मंदिर करार दिया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: महकमा आसार कदीमा के हुक्मनामे का हवाला देते हुए एक अफसर ने बताया कि भोजशाला मंदिर के अलावा संस्कृत जबान कवायद और अदब सीखने सिखाने और तहकीक का मरकज भी रही। अफसर ने मजीद बताया कि हिंदू बिरादरी के सरस्वती देवी की पूजा और सीखने सिखाने के कदीम तरीक़ेकार से ताल्लुक़ की बिना पर उन्हें कॉम्प्लेक्स में बिला रुकावट रसाई की इजाज़त होगी। इससे पहले जुमे के रोज़ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार जिले के भोजशाला कॉम्प्लेक्स को सरस्वती देवी का मंदिर करार दिया था और कहा था कि मरकज और ASI इसके इंतजाम व इंसराम तय कर सकते हैं। हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने 7 अप्रैल 2023 के महकमा आसार कदीमा के उस हुक्मनामे को भी कलअदम करार दिया जिसमें मुसलमानों को हर जुमा को भोजशाला कॉम्प्लेक्स में जुमे की नमाज अदा करने की इजाज़त थी। दलाइल की समाअत कर रही बेंच ने यह भी कहा कि मुसलमान बिरादरी जो ASI के तहफ़ वाली 11वीं सदी की इमारत को कमाल मौला मस्जिद मानती है वो ज़िले में मस्जिद की तामीर के लिए अलहदा ज़मीन अलाटमेंट की खातिर रियासती हुकूमत से रुजू कर सकती है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए ज़मीर रज़वी।
1: CBI ने नीट पेपर लीक केस के सिलसिले में पुणे से एक और अहम मुलजिमा को गिरफ्तार किया है। मुलजिम प्रोफेसर मनीषा मंधारे पुणे में एक कॉलेज में बॉटनी के उस्ताद हैं। CBI के मुताबिक कौमी जाँच एजेंसी ने इम्तहान के अमल में एक एक्सपर्ट के तौर पर उनका तकर्रुर किया था। इससे पहले 14 मई को एक और मुलजिमा मनीषा वाघमारे को भी पुणे से गिरफ्तार किया गया था। दोनों मुलजिमान को पुणे की एक अदालत में

0: पेश किया गया था और बाद में मजीद तफ्तीश के लिए उन्हें दिल्ली लाया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस शंपा सरकार और जस्टिस तीर्थांकर घोष की एक डिवीजन बेंच की जानिब से आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्मतदरी और कत्ल केस की समाअत की जाएगी। इससे पहले इस हफ्ते जस्टिस राजा शेखर मांथा और जस्टिस राय चट्टोपाध्याय ने ज्यादा मसरूफियत का हवाला देते हुए खुद को इस केस से अलग कर लिया था। इस केस में संजय राय जनवरी 2025 में उम्र कैद की सजा पाने वाले वाहिद मुजरिम हैं। मुतवफ़ी डॉक्टर की वालिदैन ने कोलकाता की सियालदा अदालत में एक केस दायर किया था जिसमें उन्होंने टीएमसी के साबिक एमएलए निर्मल घोष, संजीव मुखोपाध्याय और घोला पुलिस स्टेशन के उस वक्त के इंचार्ज की गिरफ्तारी की अपील की थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 के निफाज के जरिए भारत के चीफ जस्टिस को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 33 से 37 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कानून और इंसाफ की वजारत की तरफ से शाया करदा एक गेजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक इस ऑर्डिनेंस में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक एक्ट 1956 में तरमीम की गई है। एक मुल्क एक चुनाव बिल से मुतालिक मुश्तका पार्लियामानी कमेटी ने कल सियासी पार्टियों, कानूनी बिरादरी और सिविल सोसाइटी के साथ बेंगलुरु में वसी तर तबादले ख्याल किया। बाद में अखबार नवीसों को जानकारी देते हुए कमेटी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने बताया कि मुख्तलिफ रियासतों के अपने दौरे के दौरान मुश्तका पार्लियामानी कमेटी की तरफ से एतराजात और सिफारिशात जमा की जा रही हैं। बैडमिंटन में बैंकॉक में जारी थाईलैंड ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में आज सत्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रॉली कॉर्नेंडो और डेनियल मार्टिन से जोड़ी से होगा। इससे पहले कल सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी मलेशिया के गो ज़ीफी और नूर इजुद्दीन को हराकर फाइनल में पहुंची है। टेनिस में आलमी नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर इटालियन ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में रोम के कैंपो सेंट्रेल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। आज फाइनल में सिनर का मुकाबला कैस्पर रूट से होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया तौर पर जगह दी है। रोजनामा इंकलाब ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे की खबर को सफ़े अव्वल की शह सुर्खी बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म कल एम्स्टर्डम पहुंचे जहां भारतीय बिरादरी ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मशरक़ वस्ती में जंग और बढ़ती आलमी गैर यकीनी कई दहाइयों की तरक्की को उलट सकती है और बड़ी आबादी को दोबारा गुरबत में ढकेल सकती है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने तमिलनाडु में वुज़रा में कलमदानों की तकसीम से मुतालिक खबर को नुमाया तौर पर जगह दी है। अखबार के मुताबिक वजीर आला जोसेफ विजय ने दाखला और आम इंतजामिया जैसे अहम महकमे अपने पास रखे हैं। रोजनामा प्रताप ने दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता के उस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बेटियों की तालीम सिर्फ खानदान ही नहीं बल्कि समाज और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद होती है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के उनके हम मनसब रॉब जेटन के दरमियान बातचीत के बाद दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदल दिया है। वजीर आजम मोदी स्वीडन के अपने दो रोजा दौरे पर आज गोटेनबर्ग पहुंचेंगे। इस दौरान वजीर आजम स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत करेंगे। महकमा आसार कदीमा ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदुओं को भोजशाला मंदिर में बिला रुकावट दाखिले की इजाजत दे दी है। हुकूमत ने चांदी की दरामद में कटौती करते हुए इसे पाबंदी वाली अशिया के जुमरे में डाल दिया है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में हवाई जहाजों के ईंधन पर वैल्यू एडिड टैक्स में कटौती करते हुए इसे 25% से घटाकर 7% कर दिया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर।

0: नया भारत नया आकाशवाणी।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कहां चलती है, इधर तो आओ।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
6: शुभ

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नालंदा के राजगीर में मलमास मेले का करेंगे उद्घाटन। और मौसम विभाग ने कहा, अगले 2 दिनों के दौरान पटना सहित प्रदेश के 20 जिलों में बनी रहेगी उमस भरी गर्मी की स्थिति। अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। इससे पहले सरकार ने कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। गौरतलब है कि प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। CBSE ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। नालंदा के राजगीर में आज से 1 माह तक चलने वाला मलमास मेला शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस राजकीय मेले का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। पर्यटन विभाग के विशेष सचिव सह निदेशक उदयन मिश्रा ने बताया कि आज ध्वजारोहण, देवी देवताओं के आवाहन और पूजन के साथ मेले का शुभारंभ होगा।

0: ने बताया कि 27 मई को प्रथम शाही स्नान, 31 मई को द्वितीय जबकि 11 जून को तृतीय शाही स्नान का आयोजन किया जाएगा। मेले की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अध्यात्म, आस्था और संस्कृति के अद्भुत संगम का प्रतीक ऐतिहासिक राजकीय मलमास मेला के लिए राजगीर पूरी तरह सज धज कर तैयार हो चुका है। जिला प्रशासन की ओर से कल्पवासियों और तीर्थयात्रियों के लिए आवासन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता और भीड़ नियंत्रण की व्यापक व्यवस्था की गई है। राजगीर के गर्म जल के कुंडों, विशेषकर ब्रह्मकुंड, सप्तधारा और पवित्र नदियों में स्नान के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। मान्यता है कि मास के दौरान यहां स्नान करने से पापों का क्षय होता है, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर 3 वर्ष पर आयोजित होने वाला यह पौराणिक मेला सदियों से आस्था का केंद्र रहा है। मेले में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के लिए 500 CCTV और AI आधारित कैमरे लगाए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए नालंदा से निरंजन कुमार।
0: कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य में कृषि अवसंरचना कोष के तहत सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। पटना में विभागीय समीक्षात्मक बैठक में श्री सिन्हा ने कहा कि योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के सभी ऋणों पर प्रतिवर्ष 3% की दर से ब्याज में छूट दी जाएगी। यह सुविधा अधिकतम 7 वर्षों के लिए होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 2045 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री राजू रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मुंगेर के पोलो मैदान में अत्याधुनिक फुटबॉल टर्फ मैदान का उद्घाटन किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने जिले में लगभग 38 लाख रुपए की लागत से जिला परिषद भवन के सौंदर्यीकरण कार्य का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक भवनों का सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण न केवल कार्य संस्कृति को बेहतर बनाता है बल्कि आमजन के बीच भी सकारात्मक संदेश देता है। पटना उच्च न्यायालय ने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान संचालित होने वाली वैकेशनल बेंच की सुनवाई पूरी तरह वर्चुअल मोड में करने का निर्णय लिया है। न्यायालय प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार कल से 4 जून तक कार्य दिवसों में वैकेशन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध सभी मामलों की सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक कोर्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के मद्देनजर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने कल से सचिवालय कर्मियों के लिए विशेष इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। परिवहन सचिव राजकुमार ने बताया कि इस पहल से बड़ी संख्या में सरकारी कर्मियों को सुलभ और समयबद्ध आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ ही निजी वाहनों पर निर्भरता कम होने से ईंधन की बचत को बढ़ावा मिलेगा। इधर परिवहन विभाग अब दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए भी विशेष बस सेवा शुरू करेगा। पहले चरण में इन बसों का परिचालन पटना जिले में किया जाएगा। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक व्यवस्था में नई जिम्मेदारी दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अनुसार अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव स्तर के 34 अधिकारियों को अलग अलग जिलों का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार को पटना जिला और संतोष कुमार मल्ल को भोजपुर जिले का प्रभारी सचिव बनाया गया है। जारी अधिसूचना के अनुसार गया जिले के लिए रॉबर्ट एल चौंगतू, सारण के लिए पंकज कुमार और मधुबनी के लिए नर्मदेश्वर लाल को प्रभारी सचिव बनाया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने सोशल मीडिया पर जारी उस वीडियो को खारिज कर दिया है जिसमें गया जी में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और पेट्रोल पंप खाली होने का दावा किया गया है। HPCL ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि यह वीडियो भ्रामक, निराधार और वास्तविकता से परे है। कंपनी ने कहा है कि वीडियो में किया गया दावा पूरी तरह गलत है और पेट्रोल पंपों पर वास्तविक स्थिति से पूरी तरह विपरीत है। HPCL ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित गुमराह करने वाली ऐसी खबरों पर विश्वास न करें। कंपनी ने लोगों से आधिकारिक सूचना माध्यमों पर भरोसा करने का आग्रह किया है। प्रदेश के जनजातीय बहुल गांवों में कल से 25 मई तक जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की इस योजना में इन गांवों में शिविर लगाकर विभिन्न कल्याणकारी

0: योजनाओं के लाभार्थियों से आवेदन लिया जाएगा और उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि जिले के किशनगंज, त्रिवेणीगंज और वसंतपुर प्रखंड के चयनित गांवों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। राजधानी पटना सहित प्रदेश के 20 जिलों में उमस भरी गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों के दौरान पटना, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, अरवल, जहानाबाद, गया और औरंगाबाद सहित कई जिलों में दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अररिया और किशनगंज जिले के कुछ स्थानों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। इधर इस दिवस पर कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बिहार इकाई की ओर से पटना में जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि इन शिविरों में लोगों को उच्च रक्तचाप से निपटने की सलाह दी जाएगी। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना।
2: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के कंधरापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक कंटेनर और एक चारपहिया वाहन की टक्कर में एक ही परिवार के 4 समेत 5 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक सीवान जिले के सिसवन प्रखंड के गयासपुर के रहने वाले थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कार सवार लोग सीवान जिले से हरियाणा के फरीदाबाद जा रहे थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जमुई जिला स्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय में 11वीं कक्षा में नामांकन की तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 21 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 14 मई निर्धारित थी। लखीसराय जिला प्रशासन ने बाईपास स्थित रेल ओवर ब्रिज के स्पैन में आए दरार को देखते हुए लखीसराय बाईपास पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा है कि वैकल्पिक मार्ग तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस आरओबी की निर्माण एजेंसी को काली सूची में डाला गया है। सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के इंग्लिश गांव में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से एक पिस्टल, 25 कारतूस और 4 मोटरसाइकिल समेत एक चारपहिया वाहन जब्त किया गया है। अररिया जिले के रानीगंज, पलासी सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष छापामारी अभियान के तहत आधा दर्जन गैर जमानती वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड में फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र मामले में 6 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त शिक्षकों से वेतन और अन्य मद में दी गई राशि की वसूली करने का भी निर्णय लिया गया है। भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया टोल प्लाजा के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने लगभग 500 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। धर्मशाला में दोपहर 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला

0: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा, वहीं एक अन्य मैच में दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। इधर कल खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रनों से हरा दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा देश का तीसरा निफ्टेन हाजीपुर में खुलेगा। अखबार लिखता है 100 एकड़ जमीन सरकार ने दी, केंद्र से मिली मंजूरी। दैनिक जागरण लिखता है आय से अधिक संपत्ति मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता के घर ईओयू का छापा, लाखों की नकदी और सोना चांदी भी बरामद। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है तय समय 2027 तक जमीन सर्वे पूरा करने के लिए सरकार की रणनीति, बंटवारा नहीं तो जिनके नाम जमीन है उन्हीं का नाम होगा सर्वे में। प्रभात खबर ने नीट पेपर लीक से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है एनटीए ने जिस बॉटनी टीचर को बनाया था एक्सपर्ट उसी ने लीक किए प्रश्न। आज अखबार का शीर्षक है बिहार के 4 स्मार्ट शहरों में यातायात पुलिस की बड़ी बहाली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नालंदा के राजगीर में मलमास मेले का करेंगे उद्घाटन। और मौसम विभाग ने कहा अगले 2 दिनों के दौरान पटना सहित प्रदेश के 20 जिलों में बनी रहेगी उमस भरी गर्मी की स्थिति, अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: उपभोक्ता आयोगों में शिकायतों की ई फाइलिंग करना हुआ और भी आसान।
2: घर बैठे ही ई जागृति पोर्टल www.e-jagriti.gov.in पर कहीं से भी खुद से रजिस्टर कर अपना केस दर्ज कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक के मामलों पर कोई शुल्क नहीं।
1: ई जागृति पोर्टल उपभोक्ताओं का अपना डिजिटल मंच, शिकायत दर्ज करें और त्वरित समाधान पाएं।
3: जागो ग्राहक जागो।
2: खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: इधर आइए, इधर।
8: इधर?
7: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
9: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
8: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
9: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
8: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
10: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
9: शुभ वाणी।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
2: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
1: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
3: तुम नाचो रस बरसी,
1: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग, बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: भोर होते उठ जाओ कि एक इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल ले
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन
3: आ मनुख लेल त बुझो अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है त खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है त हमरा लोकन खाब की
4: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा। कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं आज की हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: सामईन, अभी आप पंकज उदास की आवाज में सुन रहे थे ये प्यारी सी गजल। आइए अब करते हैं आज की बात। आज है हाई ब्लड प्रेशर डे, कुछ जगहों पर इसे हाइपरटेंशन का आलमी दिन भी कहा जाता है, और दरअसल ये एक साइलेंट किलर भी है। यानी ये ब्लड फशार खून का आलमी दिन है जो हर साल 17 मई को मनाया जाता है, जिसका मकसद आम लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की अलामत, इससे बचाव और इसके इलाज, जो इसके इलाज हों उसके हवाले से आगाही पैदा करना होता है। हाइपरटेंशन को खामोश यानी कातिल, जिसे साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि इस अक्सर मरीजों को इसकी अलामत जैसे सर दर्द, घबराहट वगैरह जो होते हैं, इसका इल्म तब होता है जब हार्ट अटैक आता है या पैरालाइज्ड हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ें जब हो जाती हैं तब उन्हें समझ में आता है कि ये कितना ख़तरनाक है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, और इसकी ख़ास वजह जो है वो होती है खाने पीने में बदएहतियाती। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं तो वो भी इसकी वजह होती है, मोटापा, वर्जिश नहीं करना, और मुख्तलिफ ज़हनी दबाव वगैरह से भी हाइपरटेंशन होते हैं या हाई ब्लड प्रेशर हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हमेशा ब्लड प्रेशर पर तवज्जो देना चाहिए। इसके लिए जो भी वर्जिश हो सकता है वो करें, नमक का इस्तेमाल कम करें, और ताज़ा सब्ज़ियों और फलों का इस्तेमाल अपने खुराक में शामिल करने चाहिए। और अगर आपको इस आपके आसपास में जो शहर में जो भी क्लिनिक हो, अगर मुमकिन हो तो उसमें जाकर के अक्सर इसके जो है ब्लड प्रेशर की जांच भी कराना चाहिए। आपको बता दें कि तकरीबन दुनिया भर में तकरीबन 1.13 मिलियन अफराद हाई ब्लड प्रेशर की तशखीस हुई है। ये सबसे आम है, जो खौफजदा भी है, जिससे आपके जिस्म और दिमाग पर तवील मुद्दती असरात होते हैं। अगर किसी मरीज़ को दिल और यानी या की दी तकलीफ है या मुस्तकिल दबाव का सामना करना पड़ता है तो इससे कई दिगर मसाइल पैदा हो सकते हैं। 17 मई को इसकी शुरुआत जो है 2005 में ही की गई थी, ताकि इसके तहत जो भी मुख्तलिफ तंजीमें हैं, सेहती तंजीमें, वो बेदारी फैलाने का काम करती हैं, और अपने अपने तरीक़े से ये बेदारी फैलाने का काम तो करती भी हैं। और इसके पीछे वाहिद ख्याल लोगों को हाई ब्लड प्रेशर के खतरात से आगाह करना ही है। तो चलिए, ये थी आज की बात। अब करते हैं अपने प्रोग्राम, अगले प्रोग्राम की जानिब चलते हैं और सुनते हैं आज का सेहतनामा। आज के सेहतनामा का मौजू है जिल्द के मुख्तलिफ अमराज और हिफाजती तदबीर, और इस मौजू पर बात हो रही है डॉक्टर महताब आलम से, शगुफ्ता परवीन की।
1: सामिन, जैसा कि आपको पता है, हमारी जिल्द यानी स्किन जिस्म का एक अहम हिस्सा है। ये हम इंसानों के बैरूनी सतह को तो ढांकती ही रहती है, साथ ही साथ ये हमारे जिस्म को कई तरह की बीमारियों से भी बचाती है। लेकिन हमारी जिल्द यानी स्किन कई तरह की बीमारियों से दो चार भी होती रहती है, तो आज हम स्किन की मुख्तलिफ अमराज यानी कि बीमारियों पर बात करने जा रहे हैं। एक सेहतमंद जिल्द यानी स्किन को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।

0: इस पर तफसील से बात करने के लिए हमने स्टूडियो में जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि स्किन के माहिर डॉक्टर महताब आलम को मधु किया है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है।
1: बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मुझे यहाँ बुलाया।
0: डॉक्टर साहब, बातों के सिलसिले को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो हमारी स्किन है, ये हमारे जिस्म के लिए कैसे और क्यों अहम है?
1: देखिए, स्किन तो बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है और इसकी अहमियत आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि बॉडी के हर दूसरे ऑर्गन को ये प्रोटेक्ट करती है। और प्रोटेक्शन के अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी इसका बहुत रोल है। आज के दौर के हिसाब से अगर जिसकी स्किन बहुत अच्छी है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। तो स्किन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी।
0: चेहरे से ही बिल्कुल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। इससे एक सवाल और निकल करके आता है जो हमारे खास करके नौजवान बच्चे बच्चों के लिए है कि डॉक्टर साहब, ये जो बलागत की जो उम्र होती है जिसको हम टीनेज कहते हैं, तो इस टीनेजर की उम्र में कई तरह की जो तब्दीली होती है बच्चों के जिस्म के अंदर, उसमें अक्सर हम ये देखते हैं कि जो बच्चे हैं बहुत सारे कील मुहासे उनके चेहरे पर आना शुरू होते हैं, तो इससे बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? और उस वक्त जब वो नाखून लगा देते हैं या इस तरह की कुछ चीज़ें करते हैं तो किस तरीके से वो अपनी स्किन को अच्छा कर सकते हैं और उस मुहासे वाले जो उम्र का जो दौर है उससे वो बासानी खूबसूरत रहते हुए सब कुछ बहुत अच्छे से वो दौर उनका निकल जाए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: देखिए, कील मुहासे जो होता है वो हार्मोनल होता है मेनली। तो जिन लोगों के अंदर यह है कि थोड़ा हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है एक एज के दौरान टीनेज आने पर, तो कील मुहासे निकलना बहुत आम बात है, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन हाँ, आप देखते होंगे कुछ लोगों में नहीं ही निकलता है, कुछ लोगों में थोड़े बहुत निकलते हैं, उसका बहुत ज़्यादा असर उनके चेहरे पर बाद में नहीं दिखता है। कुछ लोगों में देखिए कि बहुत ज़्यादा सीवियर होती है चीज़, कि उनके चेहरे में पूरे गड्ढे वगैरह पड़ जाते हैं। तो इसीलिए अगर किसी को ज़्यादा अमाउंट में निकल रहा है, ये चीज़ें दाने वगैरह निकल रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले। इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इसके लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि अगर 4-5 महीने थोड़े लंबे टाइम तक खा लें तो आगे कील मुहासे निकलने के चांसेस 95% तक कम हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसका फूड से कोई रिलेशन नहीं होता है। हाँ, अगर किसी को ज़्यादा कील मुहासे हो रहे हैं तो थोड़ा डेयरी प्रोडक्ट्स वो अवॉइड कर सकते हैं, ये एक हेल्दी हैबिट है। और बाकी अगर ज़्यादा कुछ भी दिक्कत हो तो उनको तुरंत ही डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए ताकि उनको फ्यूचर के किसी तरह के स्किन पे जो स्कार्स वगैरह रहते हैं, जो दाग रहते हैं, जो लाइफ लॉन्ग बदर करते हैं लोगों को, उससे वो बच सकें।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं कि हम खूबसूरत दिखने के लिए थोड़ा दाना हो गया, दाग धब्बा हो गया, तो हम जाते हैं मेडिकल कॉर्नर पे और जाकर के वहाँ से कोई ना कोई ऐसी क्रीम लेकर के लगाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की जो क्रीम हम लगाते हैं इसका क्या असर पड़ता है हमारे जिल्द के ऊपर, हमारी स्किन?
1: आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। अभी का जो टाइम मैं देख रहा हूँ पेशेंट्स रोज इतने देखने के बाद मेरे को ये फील हो रहा है कि आजकल जो मेडिकल पर ओवर द काउंटर जो मेडिकेशंस मिल रही हैं, जो कुछ लोग गोरे होने के नाम पर या कुछ लोग दाग धब्बे मिटाने के नाम पर ख़रीद रहे हैं, ज़्यादातर दवाइयों में स्टेरॉइड्स हैं। और स्टेरॉइड्स क्या है, जब आदमी लगाता है तो उस टाइम उसको बहुत फील गुड होता है कि चेहरा साफ़ हो रहा है, चमक रहा है, ग्लो आ रहा है, पर आखिर में आप देखेंगी तो चेहरा स्किन पतला होता जाता है, धीरे धीरे उसके साइड इफेक्ट समझ में आने लग जाते हैं। धूप में जाने पे स्किन रेडनेस आने लग जाती है, स्किन लाल होने लग जाता है, जलने लग जाता है। औरतें जो होती हैं किचन में जाती हैं तो उनका स्किन जलने लग जाता है। कुछ टाइम बाद जब आप उसको छोड़ेंगे क्रीम को लगाना तो आपका स्किन जैसा पहले था उससे भी ज़्यादा बुरा हो जाता है, स्किन पे कालापन आने लग जाता है, फिर से दाने वगैरह निकलने लग जाते हैं, कोई क्रीम लगाने पे सूट नहीं करता है, कोई मेकअप सूट नहीं करता है, और मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। तो स्टेरॉइड जो आजकल ओवर द काउंटर बहुत ईजिली अवेलेबल है मार्केट में मुख्तलिफ नामों से है, तो जो बहुत ज़्यादा फेमस नाम है लोग यूज़ करते हैं, तो मेरे हिसाब से किसी भी सूरत में बगैर एक्सपर्ट ओपिनियन लिए हुए, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की शक्ल में ले, किसी डॉक्टर की शक्ल में ले, इनको यूज़ करना कहीं से भी जायज़ नहीं है।
0: कुछ लोग स्किन के ऊपर बहुत सारे जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम कुछ मेकअप ऐसा करेंगे, जैसे खास के फीमेल की बात की जाए, जैसे अभी आपने मेकअप के बारे में कहा, तो वो बहुत सारा मेकअप करती हैं, तो ये जो मेकअप का जो असर होता है इसका भी असर स्किन के ऊपर कुछ मनफी पड़ता है?
1: देखिए, कोई भी चीज़ एक्सेस में तो हार्मफुल होता ही है, चाहे वो मेकअप हो या कुछ भी हो। लेकिन अब ये है कि अगर हेल्दी तरीके से मेकअप कर रहे हैं, एक लाइट मेकअप कर रहे हैं, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कोई स्टेरॉइड्स नहीं मिला हुआ है, तो उसको कुछ टाइम बिंग के लिए कर सकते हैं। हर किसी का खूबसूरत दिखना हर किसी का हक है, दिख सकते हैं, मेकअप करें, कोई दिक्कत नहीं है, बट ओवर यूज़ किसी भी चीज़ का हम रिकमेंड नहीं करेंगे।
0: सर के बाल के ऊपर बात करती हूँ, एक तो बाल झड़ना अलग बात होती है, लेकिन उन बालों के बीच में जो रूसियाँ हो जाती हैं ना, ये कई बार बहुत तकलीफदेह होती है लोगों के लिए, तो क्या इन रूसियों का भी कनेक्शन है हमारे चेहरे के जो जल्द है उसके जो स्किन है उसके ऊपर आने वाली मुहासे या फिर कुछ और तरह के जो इशूज़ होते हैं, रेडनेस वगैरह, तो रूसी कहाँ तक इसका रोल प्ले करता है इसमें?

0: देखिए, दाने मुहासे में रूसी का रोल तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पर यह है कि रूसी स्कैल्प का अपना प्रॉपर्टी है। किसी का स्कैल्प है कि वो रूसी वाला है तो उसमें डैंड्रफ आएगा, किसी का नहीं डैंड्रफ वाला है तो नहीं आएगा, किसी का ऑयली स्कैल्प है। तो जो डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है वो ज़्यादातर ठंड में होता है लोगों को। अक्सर लोगों को देखेंगे आपके ठंड में उनके बालों में डैंड्रफ हो रखा है, तो उससे जो स्किन पे मेनली जो फ़र्क किया आता है कि वाइट वाइट से स्केल्स जो सर से गिरते हैं वो नाक के रूट्स में, रूट ऑफ नोज़ पे थोड़े रेडनेस और स्केलिंग कॉज करते हैं, या आँख के रूट पे करते हैं, या पलकों पे आपको दिखेंगे थोड़ी सी ड्राइनेस आने लग जाएगी स्किन पे, हल्के लाइट लाइट हाइपोपिगमेंटेड मतलब हल्के उजले से दाग बनने लग जाते हैं स्किन पे। तो ये सब हो सकता है रूसी की वजह से स्किन पे दिक्कत। लेकिन जैसे ही रूसी का ट्रीटमेंट लेंगे, जैसे ही उसके लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू वगैरह आती हैं, तो वो सब यूज़ करने के बाद से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो जिसका बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो बॉडी के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उससे डिस्कम्फर्ट होता है लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ नहीं है, वो वक्त के साथ ठीक भी हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर किसी को है उस तरह के डैंड्रफ तो उसका सॉल्यूशन के लिए उनको डैंड्रफ के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू वगैरह करना
1: डैंड्रफ
0: चाहिए।
1: से एक सवाल और आता है कि क्या डैंड्रफ की भी दो तीन शक्लें होती हैं क्या? कुछ लोग कहते हैं कि दानेदार जैसा भी डैंड्रफ होता है और वो थोड़ा गीला जैसा होता है कुछ इस टाइप का, उसकी वजह कर भी कुछ स्कैल्प में दिक्कत आती है,
0: जी
1: सर के
0: बिल्कुल,
1: स्कैल्प
0: बहुत
1: में?
0: लोगों को होता है कि बहुत ऑयली स्कैल्प होता है तो उनका डैंड्रफ में बहुत उनको ऑयल जैसा निकलता है। जब भी सर के ऊपर नाखून लगाते हैं या हाथ लगाते हैं तो उनके नाखून में कुछ फंस कर मटेरियल जैसा आता है। तो ये जब ज़्यादा सीवियर क्वालिटी का डैंड्रफ होता है तो उसमें ये चीज़ होती है। और वैसे तो बहुत टाइप की होती है डैंड्रफ के भी प्रॉब्लम, अब यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाना
1: जी जी
0: पॉसिबल नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन हाँ, जैसे अगर कोई ज़्यादा दिक्कत हो तो मेरी राय यही है कि तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
1: कुछ ऐसा प्रिकॉशंस वो करें जिससे कि इस तरह की चीज़ों में वो उसमें उनको जो है वो डैंड्रफ का प्रॉब्लम इस तरह का ना हो, जो आगे चल के स्किन में कुछ
0: देखिए, अगर किन्हीं
1: चेंजेस
0: को
1: लाए।
0: बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो उनको बहुत ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए स्कैल्प में। उसके अलावा जो है वो रेगुलर बेसिस पे शैम्पू करते रहें, बहुत दिन गैप नहीं करें, हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू कर लेना चाहिए, एक हेल्दी प्रैक्टिस है। तो ये सब कर सकते हैं जिससे कि आप कंफर्ट में रहेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम इन तमाम चीज़ों को अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं बच पाएंगे। इसके साथ साथ हमारे सामीन को एक चीज़ और बताइए, अक्सर हमने सुना है एक्जिमा हो गया, किसी को एक्जिमा हो गया, कहीं इससे एक फोबिया जैसा भी होता है कि ये फैलने वाली बीमारी है, कहीं फैल जाएगी, तो इसके बारे में थोड़ा तफसील बताएंगे, ये क्या है, इसके पीछे वजह जो होती है और इसके जो इलाज है, जो ट्रीटमेंट है, किस हद तक मुमकिन है इसका सही होना?
0: देखिए, एक्जिमा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसा कि अभी आपने पूछा, तो अगर उस पर पूरे तफसीर से जाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मोटे मोटे बात मैं यही बता सकता हूँ कि
1: जी
0: एक्जिमा, अगर कोई भी लंबे टाइम से किसी को इचिंग हो रहा है तो वो उनका एक्जिमा होने के चांसेस हैं। हालांकि इचिंग और भी बीमारियों में होती है जो उनमें एक्जिमा नहीं होता है, लेकिन एक्जिमा का सबसे मेन पहचान है कि लंबे टाइम से इचिंग होगी बॉडी में। एक्जिमा बहुत सारे बाहर के रीज़न से भी होते हैं, किसी को डस्ट से एलर्जी है तो वो भी एक एक्जिमा का टाइप ही है, किसी को कुछ खाने से फूड एलर्जी है तो उनको भी अगर स्किन पे इचिंग हो रही है तो एक एक्जिमा का टाइप है, किसी को स्किन के अंदर कुछ लिपिड्स वगैरह बनते नहीं है ठीक से तो उनको बचपन से स्किन ड्राई रहेगी, इचिंग रहेगी, वो भी एक्जिमा का एक टाइप है। ये कुछ एक्जिमा जो होते हैं बाहर के कॉज की वजह से होते हैं, किसी को खाने से, किसी को कुछ पहनने से, और बहुत लोगों को एक्जिमा जो मोस्टली होता है वो बगैर किसी रीज़न के होता है, अंदरूनी होता है। जहाँ तक फैलने की आप बात कह रही हैं तो एक्जिमा एक इंसान से दूसरे इंसान को छूने से नहीं फैलता है।
1: जी
0: हाँ, लेकिन अगर किसी को एक जगह पे एक्जिमा है, लग मान लीजिए कि हाथ पे है, तो उसको पीठ पे भी हो सकता है, उसको पेट पे हो सकता है, उसको पैर पे भी हो सकता है। एक इंसान में एक से दूसरी जगह तो होता ही रहेगा वो, और लेकिन एक से दूसरे को छूने से नहीं फैलता है, इस बात को एकदम क्लियर कर सकते
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: और ट्रीटमेंट के लिए यह है कि उसका ट्रीटमेंट है कि अगर आप उसको एक्जिमा किसी पेशेंट को तो ट्रीट करते हैं, बहुत लोगों को 10 दिन में ठीक हो जाता है, फिर कभी नहीं होता है, बहुत लोगों को लंबा 2 साल 3 साल भी ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी का तुरंत ठीक हो जाता है, किसी का बहुत लंबा भी
1: तो
0: ट्रीटमेंट चलता
1: एक्जिमा
0: है।
1: के पेशेंट को कुछ खाने पीने में भी कुछ परहेज करना पड़ता है क्या सर?
0: अगर पेशेंट में कोई नॉन एलर्जी है कि ये जब भी सपोज कोई अंडा खा रहा है, कोई मछली खा रहा है, तो उसके खाने के तुरंत बाद मेरी इचिंग बढ़ जा रही है या जो स्किन पे दिक्कत है वो बढ़ जा रही है, तो फिर उसको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। अदरवाइज कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये एक्जिमा के पेशेंट को नहीं ही खाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
1: तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइए कि कई लोगों के जो चेहरे हैं, हाथ हैं, पांव हैं, इन पे हमने एक सफ़ेद सफ़ेद सा धब्बा देखते हैं, उसे कहते हैं विटिलिगो। तो ये जो विटिलिगो जो बीमारी है, ये किस हद तक लोगों को परेशान करती है और किस हद तक ये फैल सकता है, थोड़ा इसके बारे में भी बताएं।
0: देखिए, हर सफ़ेद धब्बा विटिलिगो नहीं होता है, पहली
1: ओके
0: चीज़, ठीक।
1: जी
0: तो उसमें यह है कि हाँ, पर विटिलिगो एक ऐसा सफ़ेद दाग होता है जो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन लगता है दिखने में, लोग इजीली नोटिस कर लेते हैं, और ये एक सोशल स्टिग्मा बन गया है, बीमारी से ज़्यादा अभी विटिलिगो एक सोशल स्टिग्मा बन चुका है। उसमें पेशेंट को किसी तरह की तकलीफ नहीं होती, ऐसा नहीं कि उसको चलने

0: में दिक्कत है, उसको खाने में दिक्कत है, उसको बोलने में दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस हम लोग क्या, जो पेशेंट आते हैं उनके दिमाग में यही रहता है कि लोग क्या कहेंगे सफ़ेद दाग देख के। तो सबसे पहले मैं अपने सामईन हजरात को ये बताना चाहता हूँ कि विटिलिगो किसी तरह की एक तो फैलने वाली बीमारी नहीं है, एक से दूसरे को छूने से नहीं हो सकता है, प्लस इसको एक सोशल स्टिग्मा नहीं बना है। किसी की स्किन गोरी है, किसी को की स्किन काली है, वैसे किसी की स्किन पे कलर नहीं है, ठीक। तो
1: बिल्कुल
0: ये एक नॉर्मल हो जाना चाहिए सोसाइटी के अंदर। लोग जिस तरीके से आते हैं मेरे पास, पेशेंट कई आते हैं विटिलिगो के, तो अगर किसी को बहुत सीरियस सीरियस बीमारी हो जाती है जिसमें वो खा नहीं पाते हैं, सो नहीं पाते हैं, तब मैं उनके चेहरे पे इतनी परेशानी नहीं देखता हूँ जितनी कि एक सफ़ेद दाग हो गया हाथ में तो उसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, बीमारी है, उसका इलाज होगा, वो ठीक होगा इंशाल्लाह, लेकिन इस तरह की जो परेशानी है वो सोसाइटी के स्टिग्मा होने की वजह से है। तो ये चीज़ कम होना चाहिए, इसके लिए अवेयरनेस डेफिनेटली होना चाहिए। अब विटिलिगो पे बात करते हैं।
1: इसके होने की वजह क्या होती है?
0: देखिए, विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब होता है कि बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम जो है, वो जो रंग बनाने वाले सेल्स होते हैं जिनको मेलानोसाइट बोलते हैं हम लोग साइंटिफिकली, उनको वो डैमेज कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो पिगमेंट बनना चाहिए, जो स्किन कलर बनना चाहिए, वो बन नहीं पाता है। तो किसी को किसी भी बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर सफ़ेद सा पैच बनना स्टार्ट हो जाता है, ग्रेजुअली वो पैच बड़ा होने लग जाता है, नए जगह भी बॉडी पर निकल सकता है। विटिलिगो बहुत तरह का होता है, इसमें जो सबसे मुश्किल विटिलिगो होता है वो होता है जो हाथ में हो, पैर में हो, उंगलियों में आप देखती होंगी,
1: जी,
0: या होंठ में होता है। ये इनको लिप टिप विटिलिगो बोलते हैं, लिप्स पे और टिप यानी हैंड और फिंगर के टिप पे होता है। तो लिप टिप विटिलिगो सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट से रेजिस्टेंट होता है, सबसे मुश्किल होता है इसका ट्रीटमेंट। अगर बॉडी के किसी हिस्से में विटिलिगो है तो ईजिली ठीक होता है वो। विटिलिगो का ट्रीटमेंट भी किसी का 2 महीने में भी ठीक होता है, किसी का 2-3 साल भी ट्रीटमेंट चलता है। जैसे ही विटिलिगो हो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, या किसी तरह का आप व्हाइट पैच देखें बॉडी के ऊपर तो आप कंसल्ट करें अपने डॉक्टर को, क्योंकि विटिलिगो को फैलने से रोकना सबसे इम्पॉर्टेंट है। उस पर रंग तो धीरे धीरे आएगा, अगर जैसे ही दवा चलती है वो रुक जाता है, और रुक गया तो आपकी 50% प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, रुक गया वो,
1: जी
0: अब उसमें कलर लाने का एक बस रह जाता है। उसके लिए बहुत तरह की दवाइयाँ होती हैं, उसको खाने की भी लगाने की भी लगाते हैं लोग, बाग ठीक हो जाते हैं।
1: कुछ एहतियात भी बरतने की जरूरत होती है अपने तरफ से पेशेंट को।
0: देखिए, उसमें एहतियात तो कुछ खास नहीं होता है, और खाने पीने से भी कोई बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा जो खट्टा फूड होता है उसको खाने से थोड़ा पिगमेंटेशन बनना कम होता है, इसलिए उसको मना करने को बोलते हैं। हालांकि एक चीज़ मैं देखता हूँ कि सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनको हो जाता है वो ये नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते हैं, बहुत तमाम चीज़ें बंद कर देते हैं खानी। तो ऐसा कुछ साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि सब चीज़ खा सकते हैं, जो है उसका ट्रीटमेंट कराएं, इसको सोसाइटल स्टिग्मा ना बनाएं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहें, क्योंकि अगेन स्ट्रेस से वो बढ़ता है विटिलिगो, और विटिलिगो ठीक होता है। मेरे यहाँ भी कितने पेशेंट आते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होके जाते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है ये।
1: विटिलिगो ठीक होता है, हमारे सामने भी ना घबराए, है ना। और इसके साथ एक और मर्ज है, जल्दी मर्ज जिसको कहते हैं, वो हर्पिस है। ये कौन सा मर्ज है, थोड़ा इसके बारे में भी
0: देखिए,
1: बताएंगे हमारे
0: हर्पीस
1: सामने
0: जो
1: को।
0: होता है वायरल इन्फेक्शन है, हर्पीस वायरल इन्फेक्शन होता है। तो हर्पीस बहुत तरह का होता है अगेन, तो जैसे बहुत लोगों को देखती होंगी जब भी फीवर वगैरह आया तो होंठ के ऊपर एक छोटे 4-5 दाने निकल जाते हैं, वो भी हर्पीस का एक माइनर फॉर्म है जो बार बार हो जाता है, वो 4-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। बहुत लोगों को दाग रहता है, बहुत लोगों को नहीं भी रहता है, ये तो एक तरह का हर्पीस। इसके लिए भी हालांकि मेडिकेशंस आती हैं, किसी को अगर ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा लहर जलन होता है होने से पहले, ज़्यादा सुरसुराहट वगैरह हो रही है, तो उसके लिए भी 4-5 दिन की मेडिकेशंस होती हैं, वो ले सकते हैं। हालांकि इसकी ज़रूरत ज़्यादातर लोगों को नहीं पड़ती है। अगले हर्पीस का फॉर्म ये होता है जो चिकन पॉक्स होता है, जो बच्चों में आप देखते होंगे तमाम पानी भरे हुए दाने बन जाते हैं,
1: जी
0: उसका दाग रहता है, फुल बॉडी होता है, ठीक है ना। ये भी एक वही सेम वायरस से वेरिसेल्ला होता है जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं। जब यही जब बड़े लोगों में ये हर्पीस होता है तो जॉस्टर का फॉर्म लेता है, हर्पीस जॉस्टर, जो आप देखते होंगे बॉडी के आधे हिस्से में एक तरफ से दूसरी तरफ तक, पेट से लेके पीठ तक, या हाथ पर या सर के आधे हिस्से में पूरा पानी वाले छाले बन जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है लोगों को। ये होने से पहले ही लोगों में दर्द या फीवर स्टार्ट हो जाता है, उनको समझ में आ जाता है कि कुछ होने वाला है। फिर उसके बाद दाने पानी वाले निकलेंगे, उसका धीरे धीरे वो 3-4 दिन तक बढ़ते हैं, और उसको नज़रअंदाज किया तो फिर उसमें पेन काफ़ी दिन तक परसिस्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए जैसे ही इस तरह के दाने हों या ऐसे कोई सेंसेशन हो तो तुरंत वैसे केस में आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, हर्पीस का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, वो चीज़ रुक जाता है। हाँ, दर्द किसी किसी पेशेंट में, किसी के पेशेंट में 5 दिन भी दर्द रहता है, किसी में 3-4 महीनों तक भी दर्द रह जाता है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट भी बहुत है, किसी को सिर्फ दवा खाने से भी ठीक हो जाता है, किसी को इंजेक्शन तक लगाने पड़ते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, अल्टीमेटली ठीक हो जाता
1: कोई भी मर्ज़
0: है,
1: है वो ठीक हो सकता है अगर हम सही ट्रीटमेंट लें तो,
0: बिल्कुल,
1: यही बात
0: बस
1: है।
0: टाइमली उसको इंटरवीन करना है।
1: जी
0: हर्पीस खासकर उन लोगों में ज़्यादा होता है जो जिनके अंदर कोई इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी है, जैसे हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स काफ़ी हैं, उन लोगों को हर्पीस होने का चांस ज़्यादा रहता है, या कोई किन्हीं का कैंसर, कीमोथेरेपी वगैरह चल रहा है, उन लोगों को हर्पीस

0: ज़्यादा होता है। अब तो मार्केट में हर्पीस की वैक्सीन भी आ गई है, तो जिनको बार बार हर्पीस हो रहा है तो वो लगवा सकते हैं बिल्कुल भी।
1: वैक्सीन लगा करके हम बच सकते हैं। इसके साथ एक और बीमारी है जो अक्सर लोगों के अंदर देखी जाती है, कमोबेश सुनने को मिलता है क्या भाई, तो सिरोसिस हो गया। ये जो बीमारी है ये किस तरह की बीमारी है और इसमें किस हद तक जो है वो इलाज काम करता है और लोग किस हद तक सेहतमंद हो पाते हैं?
0: देखिए, सोरायसिस भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जैसे विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, वैसे ही सोरायसिस भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि स्किन का जो टर्नओवर रेट होता है, स्किन बहुत तेज़ी से ग्रो करने लग जाती है, इसलिए स्किन उठने लग जाती है, वहाँ के रेडनेस होने लग जाता है, स्केल निकलने लग जाता है स्किन से, तो सोरायसिस होता है। ठीक है, इसको थोड़ा लोग जो आम लोग हैं वो एक्जिमा और सोरायसिस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। सोरायसिस का भी ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि वो जड़ से चला ही जाए, उसमें बहुत तरह के सोरेसिस होती हैं। सोरेसिस इनफैक्ट स्किन से लेके जॉइंट तक को इन्वॉल्व करती है, नेल को भी इन्वॉल्व कर लेती है। तो जैसे ही सोरेसिस स्टार्ट होता है, जिसका ज़्यादा लोकेशन कॉमन है, सोरेसिस सर में ज़्यादा होता है, या कोहनियों के पीछे, या घुटनों के आगे, या पीठ के हिस्से में, इनमें सोरेसिस ज़्यादा, लाल रंग के बड़े बड़े पैच जिस पे पपड़ी जैसे उधरते रहते हैं, ठंड में ज़्यादा तंग करते हैं सोरेसिस, ठंड में बढ़ जाती है, गर्मी में थोड़ी कम हो जाती है, मतलब स्किन ड्राइनेस, ठंड में स्किन ड्राई होती है, सोरेसिस बढ़ जाएगी। इसलिए सोरेसिस के मरीज़ हमेशा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, और सोरेसिस का भी ट्रीटमेंट है, प्रॉपर कंट्रोल रहता है सोरेसिस, बहुत तरह के ट्रीटमेंट है, बेसिक हफ्ते वाली दवा भी है, लगाने वाली दवा से बहुत लोग ठीक हो जाता है, किसी को हफ्ते वाली दवा भी चलानी पड़ती है, उससे नहीं होता, किसी को रोज़ की दवाई देनी पड़ती है, उससे भी नहीं होता है, इंजेक्शंस तक आते हैं जो कि काफ़ी महंगे महंगे इंजेक्शंस भी होते हैं, लेकिन सारी ट्रीटमेंट्स उसको कंट्रोल करके रखती हैं। हाँ, कुछ समय में किसी किसी का ठीक हो गया सोरायसिस, तो किसी को 5 दिन बाद भी हो सकता है, किसी को 5 साल बाद भी हो सकता है, किसी को नहीं भी हो सकता
1: नहीं
0: है
1: भी हो
0: दोबारा।
1: सकता है। ये जो सोरायसिस की जो बीमारी है तो ये इसके लिए भी कोई ऐसा कोई स्पेशल है कि भाई इस एज में ही हो सकती है,
0: नहीं,
1: कुछ
0: ऐसा
1: ऐसा भी
0: कुछ नहीं
1: है?
0: है, ये बच्चों में भी सोरायसिस होती है,
1: अच्छा,
0: और 70 साल 80 साल की एज में भी सोरायसिस स्टार्ट होती है, यंग
1: कभी
0: एज में,
1: भी।
0: लेकिन ज़्यादा जो कॉमन एज है सोरेसिस स्टार्ट होने का वो है 30 to 40 ईयर्स के बीच में।
1: आपने जो कहा कि उनको लगाना चाहिए मॉइस्चराइजर, बॉडी को मॉइस्चराइज रखें, डिहाइड्रेट ना होने दें, तो उसके लिए क्या है कि वो गर्मी में भी मॉइस्चराइजर लगाएंगे?
0: देखिए, गर्मी में भी उनको सोरेसिस की दिक्कत आ रही है तो मॉइस्चराइजर लगाएं, वो बिल्कुल
1: अच्छा।
0: लगाएं।
1: अक्सर डॉक्टर साहब हम एक चीज़ और देखते हैं लोगों के जिस्म के ऊपर, जनरली तो लोग को क्या बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा आपके चेहरे पे तिल है, आपके हाथों पे तिल है, लेकिन ये तिल की जो क्वांटिटी बढ़ने लगती है जिस्म के ऊपर और कई बार उसकी शक्ल बदलती है, नॉर्मली काला या भूरा होता है लेकिन कई बार वो रेड शक्ल में जो बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो ये होना अच्छी चीज़ है या फिर ये सेहत के एतबार से कहीं कुछ मनफी इसके असरा बताए जा सकते हैं?
0: देखिए, तिल जो रेड वाली आप बता रही हैं तिल, वो बहुत लोगों को एज के साथ 30-40 साल की उम्र के बाद देखिएगा, पेट वगैरह पे लाल लाल मस्से जैसे होने लग जाते हैं, उनको चेरी एंजियोमा बोलते हैं हम लोग अपने साइंटिफिक टर्म में, तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, अगर किसी को ऐसा दिखने में कॉस्मेटिकली ख़राब लग रहा है, चेहरे पे हो गया कुछ इसको, तो उसको भी लेज़र के ज़रिए से या मशीन से या एक्सरसाइज करके हटाने का ऑप्शन हमेशा रहता है, लेकिन अगेन ये चीज़ है कि अगर थोड़ा बहुत है तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी को अचानक से बहुत ज़्यादा निकलने लग गया तो फिर उसको प्रॉपर इवेल्युएशन का ज़रूरत है, क्योंकि कई दफ़ा ये भी होता है कि बॉडी के अंदर कोई सीरियस डिजीज़ होती है तो स्किन पे बहुत ज़्यादा तिल या मस्से अचानक से निकलने लग जाते हैं, उस टाइम आपको केयरफुल हो जाना है और अपने डॉक्टर से मिलना है और फर्दर इसको इवेल्युएट कराना है।
1: इन तमाम चीज़ों के साथ तो ये समझ में आया कि सारी बीमारियां जो है वो ठीक हो सकती हैं, शर्त ये है कि हम पेशेंस रखें और डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें, मिलते रहें। तो हमारे सामीन को बताइए कि जो जिल्द है, हमारी जो स्किन है, उसको सेहतमंद रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या खाएं क्या ना खाएं?
0: खाना तो हमेशा हेल्दी फूड लेना अच्छा ही होता है हर चीज़ के लिए, चाहे स्किन हो, चाहे कोई भी ऑर्गन हो, स्किन के लिए भी ज़्यादा आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, प्रॉपर वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें, और जो है फ्रूट्स वगैरह लें, और नॉन वेज भी खा सकते हैं, वेज भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये खाने से स्किन ख़राब होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छा खाना खाएं, टाइम पे खाना खाएं, प्रॉपर वाटर इनटेक लें, सन प्रोटेक्शन लें, जब भी बाहर निकलें छाता लगा के निकलें, सनस्क्रीन का प्रॉपर इस्तेमाल करें, और सन प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है खासकर स्किन के केयर के हिसाब से, सनलाइट से स्किन काली भी होती है, टैनिंग भी होती है, जो तिल वाली प्रॉब्लम बता रही हूँ वो सब भी आती है, बस यही सब, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस कर करके, स्ट्रेस ना लें, सुबह उठें, योगा करें, एक्सरसाइज करें।
1: फल में कुछ ऐसा भी कोई स्पेशल फल है जो स्पेशली स्किन के लिए ही है कि
0: हाँ,
1: भाई
0: देखिए
1: आपके
0: साइट्रस
1: ऊपर
0: फ्रूट जो
1: बहुत?
0: होता है, थोड़ा विटामिन सी वगैरह जिसमें ज़्यादा होता है, तो विटामिन सी का स्किन में एक अच्छा रोल होता है, थोड़ा मतलब स्किन हेल्दी ग्लोइंग रहती है, तो ये आप एक तरीके से कह सकते हैं, हालांकि हर चीज़ बेनिफिशियल है, कोई ऐसा है किसी एक को सेपरेट करके कहना कि ये एक ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा
1: जिसकी
0: दूसरे के साथ
1: जिसकी
0: बेमानी हो
1: स्किन को,
0: जाएगी।
1: जिसकी बॉडी को जो सूट कर रहा है, कई बार ऐसा भी होता है। तो इसके साथ साथ क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, वहाँ मौसम हमेशा बदलते रहते हैं, तो इस बदलते हुए मौसम में कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बरसात, इस बदलते हुए मौसम में आप हमारे सामीन को क्या कहेंगे, वो अपने जिल्द का, अपने स्किन का किस तरीके से ख्याल रख सकें?
0: देखिए, स्किन का ख्याल तो हर मौसम में रखना ज़रूरी है, क्योंकि स्किन की नीड हर मौसम के हिसाब से बदलती जाती है।

0: जैसे अगर गर्मी का मौसम है तो जैसे मैंने बताया धूप में निकले तो सनस्क्रीन लगा के निकलें, और अगर सर्दियों का मौसम है स्किन आपकी ड्राई है तो प्रॉपर मॉइस्चराइज़र लगाएं। वैसे गर्मी का मौसम है तो स्किन में बहुत ज़्यादा पसीने वगैरह की वजह से एलर्जी होता है, घमौरियाँ निकलती हैं, आजकल तो घमौरियाँ ज़ख़म के शक्ल में हो रही हैं, तो अगर वैसा थोड़ा भी दिखे तो डॉक्टर से मिले, अपने स्किन स्पेशलिस्ट से मिले, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, अदरवाइज़ वो बढ़ जाएंगे तो आपको बाद में ज़्यादा परेशानी होने लग जाएगी। वैसे बरसात वगैरह में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कीड़े काटने की बीमारी आने लग जाती है स्किन पर, हम लोग जो है काफ़ी मतलब तो मान लीजिए कि 5 to 10% पेशेंट सिर्फ इंसेक्ट बाइट के देखने लग जाते हैं जैसे बरसात होती है। तो घर को प्रॉपर तरीके से नेट वगैरह लगा के रखें, खासकर जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनको मॉस्किटो नेट में लगा के अंदर ही रखें और ध्यान रखें। तो स्किन का केयर हर तरह से करना बेहतर रहेगा, मॉइस्चराइजर लगाएं, पूरे कपड़े पहने, ये सब चीज़ें तो हैं जो स्किन जिससे बेहतर हो सकती है।
1: डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत सारी बातें बताई और बहुत बहुत कुछ निकल करके आया। बस इसमें एक चीज़ समझ में आई कि हमें सब्र रखना है और हमारे डॉक्टर के ऊपर जो है वो भरोसा रखें। जितनी भी बीमारियां वो ठीक हो सकती हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना बहुत कीमती वक्त दिया, आपका बहुत सारा शुक्रिया हम अदा करते हैं।
0: मुझे लगता है शुक्रिया के मुस्तहिक आप लोग हैं क्योंकि आपने मुझे यहाँ बुलाया और हमारे सामईन हजरात को इतना कुछ जानने का मौका मिला मेरे ज़रिए से, मेरे लिए बड़ी बात है, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सामईन, अभी आप सुन रहे थे सेहतनामा। मौजूद था हाई जिल्द के मुख्तलिफ अमराज और हिफाजती तदाबीर। इस मौजू पर डॉक्टर महताब आलम से शगुफ्ता परवीन की गुफ्तगू हो रही थी। आइए अब प्रोग्राम के आखिर में चलते चलते चंद गजलों का लुत्फ उठाते हैं।
3: अभी अलविदा मत कहो।

अभी आप हसरत मोहाने की लिखी ये गजल सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में अगली गजल।

अभी आप सुन रहे थे सभी अब्बास की लिखी ये गज़ल आशा भोसले की आवाज़ में। इसी के साथ उर्दू प्रोग्राम अंजुमन का वक्त अब यहीं ख़त्म होता है। ज़र्रीन फातिमा को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। सुबह के 10 बजे हैं, समय हो चला है फिल्म संगीत का।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में बनी ये फिल्म थी आशा। गीत रचना आनंद बख्शी की थी और गायक कलाकार थे मोहम्मद रफी। सच में ये दिल की जो धड़कन है ना, इसकी जो धक धक है, यही तो जिंदगी को परिभाषित करती है। ये धड़कन, ये धक धक, यही तो जिंदगी है। और बात जब गीत संगीत की होती है ना, तो दिल की ये धड़कन एक लय पे आ जाती है। सब कुछ अच्छा लगने लगता है। संगीत का ये जादू है जो हर गम हर दुख को भुला देता है। आइए ना प्यार भरे फिल्मी गीतों के इस सुहाने सफर में एक बार फिर शामिल हो जाइए हमारे साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा।

भाई सपनों की तो बात ही जुदा है, न जाने सपने कब आ जाए, किसके आ जाए। कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू को आप सुन रहे थे, फिल्म थी खूबसूरत। फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम जारी है श्रोताओं, मगर उससे पहले कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। उच्च रक्तचाप, लक्षण एवं सावधानियां, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के आज के अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ए.के. गुप्ता। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, विषय से जुड़ी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 9430023353, और हमारा बेस फोन नंबर होगा 0627222241। हेलो जिंदगी, इस कार्यक्रम के प्रसारण का समय याद रखें आज ही दिन में 11 बजे। विषय याद रखें उच्च रक्तचाप, लक्षण एवं सावधानियां। इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार पुनः स्वागत है आप सभी सुनने वालों का। आइए ना, ये प्यारा सा फिल्म संगीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म मैंने प्यार किया।

मैंने प्यार किया। जी हाँ, इस फिल्म में आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम को। श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं इंदिवर का लिखा हुआ। संगीत विजू सा का है, फिल्म का नाम मोहरा, गायक कलाकार पंकज उधास।

आप सुनने वालों को याद दिला दें, आपकी चिट्ठियों पर आधारित पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। जी हाँ, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज ही दोपहर 1:15 से। सूचना, शिक्षा, मनोरंजन एक साथ सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

सच में मोहब्बत के दम से ही ये दुनिया खरी है। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में बनी ये फिल्म थी साथी। गीत रचना समीर की थी, गायक कलाकार थे कुमार सानू और देवाशीष दास गुप्ता। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। सुबह के 10:30 हुए हैं। आज है रविवार। अब समय हो चला है नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए हमारे इस कार्यक्रम फुलवारी का।

कैसे हैं आप? अपना ख्याल रखते हैं ना? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना ख्याल रखते होइएगा। गर्मी में अपना ख्याल अवश्य रखना चाहिए। फूलों जैसी मुस्कान लिए ज्ञान और मस्ती की रंग बिरंगी दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है बच्चों। आप सुन रहे हैं आपका अपना ये कार्यक्रम फुलवारी और मैं हूँ आपकी रजनी दीदी। बच्चों, हर बार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं ढेर सारी मजेदार बातें, प्यारी सी समान ज्ञान और आपके पसंदीदा गीत। तो चलिए शुरू करते हैं हंसी खुशी और सीख से भरी आज की फुलवारी। बच्चे, मन के सच्चे अंक में आप छोटे छोटे प्यारे बच्चों की प्रस्तुति भी सुन

सुनिएगा तो बस कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए मेरे साथ इस रेडियो सफर में और शांति से सुनिए अपना प्यारा कार्यक्रम फुलवारी। प्यारे बच्चों, आज हम एक खास विषय के बारे में जानेंगे जिसे हर साल 17 मई यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। इस दिवस का नाम है विश्व दूर संचार दिवस। बच्चों, क्या आपने सोचा है कि हम दूर बैठे अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से मोबाइल पर इतनी आसानी से कैसे बात कर लेते हैं? वीडियो कॉल, इंटरनेट, टीवी, रेडियो और मोबाइल, ये सब दूर संचार के साधन हैं। बच्चों, दूर संचार का मतलब होता है दूर बैठे लोगों तक संदेश या जानकारी पहुंचाना। पहले के समय में लोगों को चिट्ठियां भेजना पड़ता था। पहले के समय में लोगों को चिट्ठियां भेजनी पड़ती थी और उसका जवाब आने तक कई दिन लग जाते थे, लेकिन आज मोबाइल और इंटरनेट की मदद से हम कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी कोने में बात कर सकते हैं। बच्चों, दूरसंचार ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। आज ऑनलाइन पढ़ाई, मौसम की जानकारी, समाचार, डॉक्टर से सलाह और ज़रूरी सूचनाएं बहुत जल्दी मिल जाती है। कोरोना के समय में आपने देखा होगा कि आप लोग यानी बच्चे घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, है ना? यह भी दूरसंचार तकनीकी के वजह से ही संभव हो पाया। हम और आप जो एक दूसरे से जुड़े हैं, संवाद कर पा रहे हैं, यह भी दूरसंचार का ही कमाल है। लेकिन बच्चों, हर चीज़ का सही उपयोग बहुत ज़रूरी होता है। मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग केवल अच्छे कामों और पढ़ाई के लिए ही नहीं करना चाहिए। ज़्यादा देर तक मोबाइल चलाना हमारे आँखों और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्या आपने सोचा है? प्यारे बच्चों, इंटरनेट के उपयोग करते समय हमें सावधान भी रहना चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति से अपनी निजी जानकारी कतई नहीं साझा करनी चाहिए। थोड़ी समझदारी से काम लीजिए। बच्चों, दूर संचार के क्षेत्र में भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज गांवों तक मोबाइल और इंटरनेट की सुविधाएं पहुंच चुकी है। इससे शिक्षा, व्यापार और जानकारी का आदान प्रदान करना आसान हो गया है। तो बच्चों, याद रखिए, तकनीकी का सही उपयोग करिए, ज्ञान बढ़ाइए और आगे बढ़िए। और फिर से एक छोटी सी बात बच्चों, मोबाइल और इंटरनेट हमारे अच्छे मित्र तभी बन सकते हैं जब हम उनका उपयोग समझदारी से करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जाना कि विश्व दूर संचार दिवस क्यों मनाया जाता है और यह हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। आगे भी हम जानकारी की बातें करेंगे, उससे पहले आइए मनोरंजन करवाएं आप लोगों का। तो सुनते हैं एक प्यारा सा गाना।

बच्चों अच्छा लगा ना ये गाना। आइए अब कथा कहानी की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों अब सुनिए एक छोटी सी प्यारी सी कहानी, चींटी का मेहनत। एक बार की बात है, एक आलसी टिड्डा दिन भर खेलता रहता था। वहीं पास में एक छोटी सी चींटी लगातार मेहनत करती रहती थी। वह अपने लिए खाने का सामान इकट्ठा कर रही थी। टिड्डा चींटी को देखकर हंसता और कहता, इतना मेहनत क्यों करती हो, आओ खेलो और मजे करो, और उसे हमेशा चिढ़ाता रहता था। लेकिन चींटी चुपचाप अपना काम करती रहती थी। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ गया और बच्चों तेज बारिश होने लगी। टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा।

वह भूखा और परेशान हो गया। वहीं चींटी अपने घर में आराम से थी, क्योंकि उसने पहले से ही मेहनत करके खाना जमा कर लिया था। टिड्डे को अपनी गलती समझ आ गई। उसने चींटी से कहा, अब मैं भी मेहनत करूंगा और समय का सही उपयोग करूंगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत करने वाले लोग हमेशा खुश और सफल रहते हैं। तो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मेहनत का फल मीठा होता है ना बच्चों? और हमें मेहनत से ही सफलता मिलती है। ये थी छोटी लेकिन सीख देने वाली कहानी। और बच्चों, उम्मीद है आप सभी को ये कहानी समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी, है ना? अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं बच्चे मन के सच्चे

0: आज मैं आई हूँ राजकीय श्यामा पाठशाला मिर्जापुर में, और यहाँ पर छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों से इनकी प्रस्तुति सुनते हैं। नमस्ते बच्चों।
1: नमस्ते दीदी।
0: कैसे हो आप लोग?
1: अच्छे हैं।
0: पढ़ाई लिखाई चल रही है?
1: हाँ।
0: गर्मी तो बहुत है, गर्मी से बचने के लिए क्या क्या करते हो आप
1: लोग? पानी पीते हैं।
0: हाँ हाँ।
1: इसमें पानी वाले फ्रूट खाते हैं।
0: हाँ हाँ।
1: खीरा।
0: हाँ खीरा, तरबूज,
1: खरबूज।
0: हाँ। और दोपहर में घूमने नहीं ना निकलते हो?
1: नहीं दीदी,
0: क्योंकि दोपहर में धूप अधिक रहती है और लू लगने की संभावना रहती है ना, और इसीलिए तो मॉर्निंग स्कूल है आप लोगों की। दोपहर में क्या करते हो?
1: घर में रहते हैं।
0: घर में रहते हो और आराम करते हो, है ना? फिर शाम को खेलते हो कि नहीं?
1: हाँ।
0: खेलना चाहिए बच्चों को, आउटडोर गेम क्यों खेलना चाहिए? हाँ तंदुरुस्त। और खेल में भी बहुत स्कोप है ना?
1: हाँ।
0: तो खेलो कूदो, पढ़ाई करो और बड़ों का
1: आदर करो।
0: हाँ, तो आपको सुनाना चाहती हैं?
1: हाँ।
0: सबसे पहले अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम सुष्मिता ठाकुर है।
0: हाँ हाँ।
2: मेरे का नाम राजकीय श्यामा।
0: अच्छा, क्या सुनाना चाहती हैं?
2: कविता।
0: हाँ सुनाइए।
2: हवा का जोर बरसा की झड़ी, जारों का गिर पड़ना, कहीं गर्जन का जाकर दूर, सिर के पास फिर पड़ना, उमड़ती नदी की का खेतों की छाती तक लहर उठना, ध्वजा की तरह बिजली का दिशाओं में फिर फहर उठना, ये वर्षा के अनोखे दृश्य जिसको प्राण से प्यारे,

0: कर अलग कर अधिक आता है कालिदास से मन में, तो मुझको क्षमा कर देना।
1: वाह बहुत अच्छी कविता। आप किस वर्ग में पढ़ते हैं?
0: कक्षा 8।
1: वाह बहुत अच्छी प्रस्तुति थी आपकी। और आप भी कुछ सुनाना चाहते हो? क्या सुनाना चाहते हो? पहले अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम आनंद राज है।
1: हाँ हाँ।
2: और स्कूल का नाम राजकीय सेवा मध्य विद्यालय है।
1: और कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप?
2: कक्षा 7 में पढ़ते हैं।
1: तो क्या सुनाना चाहते हो आप?
2: कविता सुनाना चाहते।
1: सुनाइए।
0: हम दीवानों की हस्ती, क्या आज यहाँ कल वहाँ, चली मस्ती का आलम साथ चला, धूप उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर वहाँ चले, अभी सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले।
1: हाँ हाँ।
0: किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जब से उसका कुछ लिए चले, जब को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख को घूटों को हम एक भाव से पिए चले।
1: हाँ, हाँ,
0: हम मंगो की दुनिया में स्वच्छ स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, एक निशानी सी उड़ उड़ पर।

0: असफलता की भार चले, अब अपना और पराया क्या, अब बाद रुकने वादे, हम स्वयं बने थे और स्वयं कहे हम अपने बन तोड़े चले।
1: वाह, बहुत अच्छी कविता। किसने लिखी है ये कविता?
0: भगवती चरण वर्मा।
1: हाँ वाह, बहुत अच्छी प्रस्तुति। आपका क्या नाम है?
2: अक्षराज।
1: क्या कुछ आप भी सुनाना चाहते हो?
2: जी, मैं कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ।
1: हाँ हाँ, सुनाइए।
2: सिरसे में कविता का कदम रख सुना।
1: हाँ हाँ।
2: बाधाएं आती है आए,
1: हाँ,
2: घिरे पड़ने की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे अधी ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगा कर जलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा, हाथ सुदन में तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उड़ा सेना, पीराओं में पलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा, गुजियारा में अंधकार में, कल कछार में बीच धार में, घोर घृणा में फूट प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के सचक आकर्षण अरमानों को गलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चितरंजन कैसा इति सुस्मित, हर्षित कैसा श्रमसत, असफल असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, उस कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुमन, परहित अर्पित को सुचित आहुति, चलना होगा, चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
1: वाह, बहुत अच्छी कविता, ये हौसला को बढ़ाने वाली है, और जीवन पथ पर हमें कोई भी डर और किसी से समझौता नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है। और ये कविता किनकी है?
2: अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के
1: पूर्व प्रधानमंत्री थे। हाँ, बहुत अच्छी कविता। वाह, और आप भी कुछ सुनाना चाहती हैं? तो सबसे पहले अपना नाम बताइए, विद्यालय का नाम बताइए।
3: मेरा नाम पलक कुमारी है और मैं विद्यालय राजकीय सेवा मध्य विद्यालय में पढ़ती हूँ। और मैं गीत,
1: कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं?
3: कक्षा 8।
1: क्या सुनाना चाहती हैं?
3: गीत।
1: वाह, सुनाइए।
3: तेरे

0: प्यारी आवाज है आपकी, और आप भी कुछ सुनाना चाहती हैं? अपने विद्यालय का नाम बताइए और अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम राखी कुमारी है, मैं राजकीय शाह मध्य विद्यालय में पढ़ती हूँ और मैं एक गीत सुना सकती हूँ।
0: अच्छा, पहले सुनाने से पहले अपनी कक्षा का नाम बताइए, कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं आप?
1: कक्षा 8 में पढ़ती
0: हूँ। वाह, कक्षा 8 की छात्रा है आप, तो सुनाइए क्या सुनाना चाहती हैं।

0: अच्छी आवाज है आपकी। और कोई बच्चा जो सुनाना चाहता हो कुछ भी?
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम प्रिया है।
0: कौन से वर्ग में पढ़ते हैं आप?
1: मैं चौथी वर्ग में पढ़ती हूँ।
0: कुछ सुनाना चाहती हैं?
1: जी दीदी।
0: तो सुनाइए।
1: मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ, आ रही ससी की सवारी। आ रही ससी की सवारी, चांदनी का रथ सजा है, तारों से नंभ सजा है, बादलों से अनुचारों ने रथ के पोशाक धारी। आ रही ससी की सवारी, काम से थक कर विघ जा विघ

भजन लिए में छिपने लगे हैं, नींद में छिपने लगे हैं, भूल कर बैठे हैं सब राह की थकान सारी।

0: छनछनाहट भंग करती शांति साड़ी आ रही शशि की सवारी।
1: क्या सुनाना चाहते हैं आप?
2: कविता सुनाना चाहता हूँ।
1: सुनाइए।
2: कविता का नाम है दो चिड़िया। घर की चिड़िया थी पिंजरे में, वन की चिड़िया वन में मिली अचानक एक दीवार। वह था कुछ विधि के मन में, वन की चिड़िया बोली तब यो, सुन रही पिंजरे वाली उड़चल को मेरे संग तू, कर दे पिंजरा खाली। बोली पिंजरे की चिड़िया तू, तब सुन रही चिड़िया वन की तू भी आ बस में जा पिंजरे में, बात करे दो मन की। मैं क्यों फंसू भला बंधन में, वन की चिड़िया बोली हो उदास पिंजरे की चिड़िया मन ही मन रो दी। छोड़ चलू सोने का घर, भटकू जंगल जंगल जाकर।
1: हाँ हाँ।
2: भटकू जंगल जाकर, घर की चिड़िया थी पिंजरे में, वन की चिड़िया वन में। धन्यवाद।
1: वाह, बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई।
3: बच्चों, जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आप लोग बताइएगा। बताइए।
4: अमृत के समान है।
3: हाँ हाँ।
4: और जल का सदुपयोग करना चाहिए।
3: हाँ।
4: और नदी और तालाबों में कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उससे बैक्टीरिया और बहुत सारे ऐसी चीज उत्पन्न होती है जिससे हमारे जीवन के लिए खतरा होता है, और जो जानवर उस जल को पीते हैं वो भी बीमार पड़ सकते हैं।
3: बिल्कुल सही बात कही आपने,
5: क्योंकि जल है तो कल है, जल बचाएंगे तो कल भी बचा रहेगा।
3: हाँ, और आप?
6: क्योंकि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, इसका भंडार सीमित है, तो हमें इसका ऐसे उपयोगितापूर्वक उपयोग करना होगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जल का उपयोग कर सके, पी सके और अपने जीवन जी सके।
3: वाह, बहुत अच्छा।
6: जल हमें सीमित तरह के टाइम में ज्यादातर जल का उपयोग होता है, इसलिए हमें जल ज्यादा से कम जल को बचाना है, कि हमारे हम लोग जब भी मछलियों को भी दिक्कत होती है जल के चक्कर।
3: जल को कैसे कैसे बचा सकते हो आप, एक दो उपाय बताओगे?
4: हम अपने घर के नल के टैप को खुला ना रख सकते हैं।
3: हाँ।
4: हम जो
3: पानी लीकेज ना हो। हाँ।
4: और हम सावर से नहाने के बदले बाल्टी में नहा सकते।
3: हाँ हाँ,
4: जिससे जल कम उपयोग होगा। और हाँ। बर्तन धोने के लिए हम कम से कम जल का उपयोग करेंगे तो हम जल बचा सकते हैं।
3: और हमारे घर में जो वाटर प्यूरिफायर लगे रहते हैं तो उससे भी गंदा पानी निकलता रहता है ना, तो उसको भी यूज में हम लोग ला सकते हैं, है ना। हाँ, कपड़े धो सकते हैं, प्लांट में दे सकते हैं, है ना। इस तरह से बहुत सारा जल हमारा बच जाएगा।
6: अगर जल हुआ तो पौधे भी अपना।
3: हाँ।
6: जिससे दोबारा वो जल चक्र बन के वर्षा होगी।
3: हाँ हाँ हाँ। वाह, बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कही। जय।

छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की प्रस्तुति पर आधारित ये कार्यक्रम अभी आपने सुना, बच्चे मन के सच्चे। कार्यक्रम में समय आ गया है सामान्य ज्ञान का। आज सामान्य ज्ञान में हम जानेंगे भारत के राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय फूल के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय पशु की। बच्चों, भारत के राष्ट्रीय पशु है बाघ। बच्चों, बाघ बहुत शक्तिशाली होता है, तेज और समझदार सुंदर होता है। इसके शरीर पर काली धारियां होती है जो बाकी जानवरों से अलग बनाती है। आपको पता है बाघ घने जंगल में रहता है और हमारे देश की शान माना जाता है। लेकिन बच्चों, पहले बाघों की संख्या बहुत कम हो गई थी तो इसे संरक्षित जानवरों की श्रेणी में रखा गया। अब धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ रही है, बाघों की संख्या बढ़ रही है, ये बहुत खुशी की बात है। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय पक्षी की। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। बच्चों, मोर बहुत सुंदर होता है ना बच्चों? सिनेमा में, टीवी में या वैसे भी देखा है कहीं?

बहुत अच्छा होता है। इसके रंग बिरंगी पंख सभी को आकर्षित करते हैं। जब बारिश का मौसम आता है तो मोर अपने पंख फैलाकर नाचता है और यह दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। बच्चों, मोर हमारी संस्कृति और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। हमें पक्षियों से प्यार करना चाहिए, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब जानते हैं भारत के राष्ट्रीय फूल के बारे में। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। कमल एक सुंदर फूल है जो पानी में खिलता है। इसकी खास बात यह है कि यह कीचड़ में रहने के बावजूद भी यह हमेशा साफ और सुंदर दिखाई देता है। बच्चों, कमल हमें यह सीख देता है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें हमेशा अच्छा और सकारात्मक बने रहना चाहिए, है ना बच्चों? हमें अच्छाई ग्रहण करना चाहिए, बुराई तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, है ना बच्चों? हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हमारे देश की पहचान है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनके बारे में

0: अब जानते हैं भारत के राष्ट्रीय फूल के बारे में। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। कमल एक सुंदर फूल है जो पानी में खिलता है। इसकी खास बात यह है कि यह कीचड़ में रहने के बावजूद भी यह हमेशा साफ और सुंदर दिखाई देता है। बच्चों, कमल हमें यह सीख देता है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें हमेशा अच्छा और सकारात्मक बने रहना चाहिए, है ना बच्चों? हमें अच्छाई ग्रहण करना चाहिए, बुराई तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, है ना? बच्चों, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हमारे देश की पहचान है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। तो बच्चों याद रखिए, देश की शान बढ़ाएंगे, राष्ट्रीय प्रतीकों का मान बढ़ाएंगे। तो बच्चों, आज के फुलवारी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में नई कहानियाँ, नई जानकारियों और ढेर सारी खुशियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति प्रस्तुतकर्ता असद दाऊद के साथ अपनी रजनी दीदी को। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा अच्छे काम करते रहिए, बड़ों का सम्मान करिए। जय हिंद।
1: नन्हे मुन्ने बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम फुलवारी। सूत्रधार थी रजनी कुमारी और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे असद दाऊद। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं आज की हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम हेलो जिंदगी आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर बाद।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। सभा को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो जिंदगी।

0: दोजख भी है जन्नत भी है। 4 दिन की जिंदगी दोजख भी है जन्नत भी है, दर्द भी है गम भी है राहत भी है इशरत भी है। दर्द साहब आप किस गम से परेशान हो गए हैं? जिंदगी में गम भी है हसरत भी है आफत भी है।
1: इसमें कोई दो मत नहीं कि ज़िंदगी में मुश्किलों का दौर चलता ही रहता है और हम इन मुश्किलों से उबरने के प्रयास भी करते ही रहते हैं, लेकिन कुछ मुश्किलें ऐसी भी होती हैं जो अमूमन दबे पांव आती हैं और ख़बर होने तक इस कदर अपने पांव फैला लेती हैं कि ता उम्र हमारी ज़िंदगी को बेहाल और बेदम कर जाती हैं। हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी ही बीमारी है जिसे साइलेंट किलर तक कहा जाता है, खामोश मौत देने वाली एक ऐसी खतरनाक बीमारी जिस पर ध्यान

0: न दिया जाए तो ये हार्ट अटैक और लकवा समेत अन्य कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन जाती हैं। श्रोताओं, आज 17 मई है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, हाई बीपी को लेकर जागरूकता को समर्पित खास दिन। हाई ब्लड प्रेशर है क्या? क्या हैं इसके लक्षण? क्या हैं इसके खतरे? क्या हैं इसके उपचार की विधियां? और क्या हैं वो सावधानियां जिनको अपनाने से हमारी जिंदगी सुरक्षित रह सकती है? कुछ इन्हीं बेहद महत्वपूर्ण तथ्यों पर केंद्रित है आज का हमारा ये कार्यक्रम, जिसका नाम है हेलो जिंदगी। श्रोताओ नमस्कार, संजय की तरफ से। उच्च रक्तचाप, लक्षण और सावधानियां, यही है आज की हेलो जिंदगी का विषय। और इस बेहद महत्वपूर्ण, बेहद जरूरी विषय पर आप श्रोताओं को जागरूक करने के लिए, उचित जानकारी और परामर्श देने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं जाने माने हृदय रोग और जीवन शैली रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. गुप्ता, डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता। श्रोताओ, हाई ब्लड प्रेशर को लेकर, उच्च रक्तचाप को लेकर आप किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा आज इस कार्यक्रम में व्यक्त कर सकते हैं, जरूरी जानकारी और परामर्श ले सकते हैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता साहब से। संपर्क के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 9430029353, 9430029353। दूसरा नंबर है 0627222481, 0627222481। ये दोनों नंबर हैं, आप कॉल लगाइएगा, लेकिन थोड़ा ठहर कर, क्योंकि डॉक्टर साहब से मिलने के बाद, परिचय के बाद, और हाइपोटेंशन को लेकर के वो क्या ज़रूरी और ख़ास बातें शुरू में रख देना चाहते हैं, उन सब बातों को पहले हम सुन लेंगे। एक तरह से कार्यक्रम की रूपरेखा तय हो जाएगी, उसके बाद आप हमें कॉल कीजिएगा इन नंबरों पर जो नंबर अभी हमने आपको बताए हैं। डॉक्टर ए.के. गुप्ता साहब, बहुत बहुत नमस्कार, कैसे हैं सर? बढ़िया,
1: काफ़ी बढ़िया, काफ़ी ठीक हूँ मैं।
0: बहुत सारी बातें हाइपरटेंशन को लेकर होती हैं, तो आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे इन्हीं विषयों पर। सहसी जिज्ञासा होगी उन लोगों को जो पहली बार आपको सुन रहे होंगे, तो डॉक्टर साहब कहाँ से आते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और जहाँ तक आप पहुँचे हैं ये सफ़र कैसा रहा, संक्षेप में बता दें जी। हाइपरटेंशन को लेकर जो जरूरी बातें
1: जी, सबसे पहले मैं सभी अपने सुनने वालों को हमारी ओर से नमस्कार। मैं स्थानीय इसी शहर का रहने वाला हूँ, मेरी समूची जिंदगी इसी शहर में बीती है, मेरा पठन पाठन अध्यापन इसी शहर में हुआ, और इसी शहर में मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन डिपार्टमेंट और ये आप कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड रहा, और लगभग 10 साल पहले मैंने वहाँ से रिटायरमेंट ली, और आजकल मैं अपने प्रैक्टिस करता हूँ। तो अभी आपने अपना जिक्र किया हाई अपना बीपी के बारे में, और आपने हमसे अनुरोध किया कि उसके बारे में कुछ मैं दर्शकों को सामान्य भाषा में बताऊं। तो मैं सबसे पहले बताऊं कि हाइपरटेंशन या हाई बीपी की समस्या क्या है। समस्या ये है कि हमारे देश में लगभग 19 से 20 करोड़ लोग हाई बीपी से के शिकार हैं, और परेशानी ये है, उसकी सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि मुश्किल से 10% लोगों को, उसमें से 20 करोड़ लोगों में से, उनको मालूम है कि हमें बीपी है। ज़्यादातर लोग इस समस्या के प्रति अनजान हैं, इसलिए अनजान है कि कभी उन्होंने इसकी जांच नहीं करवाई, नाप नहीं कराई। अक्सर लोगों में भ्रांति है कि जब कोई तकलीफ़ होगी, माथे में चक्कर आएगा, माथे में भारीपन होगा, तब हम उसकी जाँच कराएँगे, तो उसमें। और दूसरी समस्या है कि जिस 10% लोगों को मालूम है कि उनको बीपी की समस्या है, दवाई भी खाते हैं, लेकिन उसमें से 10% लोगों का बीपी कंट्रोल में रहता है, नियंत्रण में, 90% लोगों का बीपी नियंत्रण में नहीं रहता है। दूसरी चीज़ जो अपने जानने योग्य है, लोग जानना चाहते हैं कि

0: मैंने किसको बीपी हाई कहते हैं, पहले लोग 140/90 कहते थे, लेकिन मैं शॉर्ट में अमेरिकन हाइपरटेंशन सोसाइटी के अनुसार जिस आंकड़े को सारी दुनिया मानती है वो है कि अगर आपका बीपी 130 ऊपर में और नीचे में 80 से ज़्यादा है तो आपको हाई बीपी है, आपको उसका डॉक्टर से मिलकर उपचार करना चाहिए
1: जी।
0: अगर आपका बीपी 120 और 129 के बीच में ऊपर में और नीचे में 80 है तो आप प्री हाइपरटेंसिव है, जिसको आजकल एलिवेटेड हाई बीपी कहते हैं, और अगर 120/80 है तो इसका मतलब आप सामान्य बीपी हैं, आपको कोई अंग्रेजी दवा खाने की आवश्यकता नहीं है
1: जी।
0: तो
1: दवाओं के लिए क्या ज़रूरत होती है, मतलब कब समझें कि हमें दवाओं की ज़रूरत है, लक्षणों को लेकर के भी पूरी चर्चा करेंगे आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब।
0: दवाओं की मैंने कही कि जब आपका बीपी 130/80 से ऊपर हो, आपको कोई लक्षण हो या नहीं हो, ज़्यादातर लोगों को कोई लक्षण नहीं होता है। अब इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल उठता है
1: जी,
0: कि कब जाँच कराए हैं बीपी, वो लोगों को जानना मैं समझता हूँ आज का काफ़ी बड़ा उद्देश्य है, कि जिनकी उम्र 18 साल है और जिनके परिवार में जिनके माता पिता भाई बहन को किन्हीं को बीपी की शिकायत है तो उनको 18 साल की उम्र से केयरफुल होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, साल में एक बार अपना बीपी की जांच कराएं, कोई भी दिन को निश्चित कर लें, अपना बर्थडे या मैरिज डे पर बीपी देखवाएं कि 130/80 से नीचे उनका बीपी है कि नहीं, अगर उससे अधिक होता है तो अपने डॉक्टर से मिलकर उसका इंतज़ाम बात करें
1: जी।
0: इंतज़ाम का मतलब ये नहीं होता है कि डे वन से आप कोई अंग्रेजी दवा स्टार्ट कर दें, अगर 134/84 किसी का बीपी है तो हम लोग कहते हैं कि अभी आपको दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइफ स्टाइल में सकारात्मक परिवर्तन करें, जैसे अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट को कंट्रोल करें, डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, भोजन में अगर आप बहुत घी तेल सॉल्ट खाते हैं उसको कंट्रोल करें, स्मोकिंग अगर करते हैं तंबाकू लेते हैं तो उसको कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल है तो उसको कंट्रोल करें, और सबसे बड़ी चीज़ सक्रिय जीवन शैली को अपनाएं। सारा दिन कुर्सी पर बैठ के मोबाइल भर दिन देखते रहने से सक्रिय जीवन शैली को निष्क्रिय इस मोबाइल ने बना दिया, हर एक घंटे के बाद 5-10 मिनट सक्रिय रहना बहुत ज़रूरी है बीपी को कंट्रोल करने के लिए।
1: तो मोटा मोटी डॉक्टर साहब आपने बीपी के बारे में जो गूढ़ बातें थी वो आपने रख दी कार्यक्रम में, और हमारे श्रोता भी अब जुड़ने लगे हैं और वो अपनी जिज्ञासा अपनी समस्या को लेकर इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हमारे आज के पहले श्रोता जुड़ चुके हैं जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: कच्चे नमस्कार सर
1: जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं और जिज्ञासा व्यक्त करें जी।
2: मैं मोहन पासवान बोल रहा हूँ, गांव बसतपुर से सर
1: जी। क्या जिज्ञासा है, क्या कोई समस्या है या किसी तरह की कोई जानकारी आप चाहते हैं मोहन पासवान जी, बताइए।
2: पर उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप दोनों स्थिति जानलेवा और अंग को अपाइज करने वाला है सर, दोनों स्थिति का लक्षण और सावधानियां जानना चाहता हूं सर।
1: अच्छा।
2: जिसे बता जाए सर। दूसरा स्थिति दूसरा है सर कि कोई भी व्यक्ति खुद और अपने परिवार को उच्च या निम्न रक्तचाप से बचना और बचाना चाहते हैं तो शुरू
1: जी। हेलो,
2: और भी कई प्रश्न है सर, ज्यादा नहीं रखना चाहता हूँ, ऐसे कई बातें रखते हैं।
1: अच्छा, मोटा मोटी आपने जो बातें रखी हैं वो बातें ये हैं कि आप लक्षण के बारे में जानना चाहते हैं और आपने कहा है कि उच्च और निम्न दोनों ही तरह की जो समस्या है वो जानलेवा हो सकती है, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं। मोहन पासवान जी सुनिएगा, लक्षणों के बारे में बहुत ही ज़रूरी बातें हैं ये, लोग बहुत इंतज़ार करते रह जाते हैं कि लक्षण जब प्रकट आएगा होगा तब देखेंगे, कोई समस्या होगी तो डॉक्टर के पास जाएंगे। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि हाई बीपी को लेकर या बीपी की किसी भी तरह की कोई समस्या को लेकर लोगों को जांच कराने की ज़रूरत कब होती है, कब होनी चाहिए, और लक्षण अगर नहीं आ रहे हैं तब भी और

0: आ रहे हैं तब भी। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन पासवान जी, सुनिएगा पूरे कार्यक्रम को। जी बहुत बहुत
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।
1: और प्रणाम सर।
0: जी प्रणाम। डॉक्टर साहब, मोहन पासवान जी पूछ रहे हैं कि लक्षण की बात, उन्होंने पूछा है, पहला सवाल जो है वो ये है कि उच्च और निम्न रक्तचाप को लेकर, कि निम्न रक्तचाप भी क्या खतरनाक है और ज़्यादा खतरनाक, हमें लगता है कि उनके सवाल में ये है कि ज़्यादा खतरनाक कौन सी बात है, लेकिन आज का कार्यक्रम उच्च रक्तचाप को लेकर है, लेकिन बता दीजिए कि क्या निम्न रक्तचाप भी खतरनाक है, पहली बात। दूसरी बात कि हाई बीपी को लेकर लक्षण क्या है। जी डॉक्टर साहब।
2: ये मैं आपको बताऊं कि आप सामान्य व्यक्ति, आप कोई भी व्यक्ति ये जानने की कोशिश करें कि मेरा बीपी कितना है। जब वो डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर पहले से उनको बीपी नहीं है तो 18 साल की उम्र में अगर उनके फैमिली में किसी को बीपी है तो जांच अवश्य कराएं साल में एक बार। और अगर उनकी उम्र 30 इयर्स है, 30 साल है,
0: जी हाँ,
2: तो लक्षण नहीं भी कोई हो तो रूटीन चेकअप में कम से कम साल में एक बार या दो बार अपना बीपी दिखलवाएं कि 130/80 से ऊपर उनका बीपी जा रहा है। 120/80 है तो ठीक है,
0: जी हाँ,
2: 130/80 या उससे ऊपर है तो उनको हाई बीपी है। उसके बाद आपको डॉक्टर बतलाएंगे कि आपको दवा खाने की दरकार है या लाइफ स्टाइल में कोई आपकी कमी है तो उसके बारे में बताएंगे, जैसे वेट को घटाना, खाने पीने में नियंत्रण करना, सिगरेट नहीं पीना और सक्रिय जिंदगी बिताना। कभी कभी जिनको हाई अपना बीपी होता है उनको भी निम्न रक्तचाप हो जाता है, तो ये उस समय लगेगा पता है जबकि रेगुलर उनका बीपी चेकअप हो।
0: जी
2: अगर
0: जी
2: कोई बीपी का पेशेंट या कोई ऐसा पेशेंट जिसको चक्कर आता हो या बहुत कमजोरी होता हो या वो होश में नहीं हो, जैसे हार्ट अटैक के बाद किसी के हाथ पांव ठंडे हो गए, अगर उसकी बीपी की जांच आपने की जाए तो कभी कभी बीपी रिकॉर्ड ही नहीं होता, जिसको शॉक बोलते हैं,
0: अच्छा
2: बीपी अपना 0/0 आता है, ये बहुत खतरनाक स्थिति है, जान खतरे में है। और बीपी 90/70 से कम हो जाए उसको हम लोग हाइपोटेंशन कहते हैं, कम बीपी। लेकिन यहाँ पर एक सावधानी है कि हर 90/70 बीपी खतरनाक नहीं होता है। अगर उस समय पेशेंट को कोई तकलीफ है, चक्कर की, कमजोरी की या होश में नहीं है, तब तो वो खतरे वाली बात है। जैसे किसी को डायरिया वॉमिटिंग होने के बाद भी बीपी काफ़ी हो जाता है कम, धूप में जाने के बाद अगर सॉल्ट का पानी का बहुत नुकसान हो जाते बीपी कम हो जाता है, हार्ट अटैक होने के बाद बीपी अपना कम होता है, लेकिन उसका इलाज करना है कि नहीं करना है ये डॉक्टरों की बुद्धि विवेक पर है। अगर वो समझते हैं कि खतरनाक है तो उसका इलाज करते हैं। ज़्यादातर महिलाओं में ये शिकायत होती है कि हमारी बीपी कम है, लेकिन उनमें कुछ भी तकलीफ होना चाहिए, वो लोग 100/70 भी आए तो हल्ला करना शुरू कर देते हैं बीपी कम है। तो कभी कभी हमने देखा है अपने प्रैक्टिस में कुछ मरीज को जिनका 80/60 बीपी है, लेकिन मरीज को कोई तकलीफ नहीं है, तो मैं कहता हूँ इसके बारे में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मंथ में एक बार बीपी का अपना चेक कराएंगे और कभी कोई तकलीफ हो तो हमारे पास आएंगे, उसका उपाय करेंगे।
0: एक श्रोता बने हुए हैं ऑनलाइन पर। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। जी प्रणाम, अपना नाम बताएं। सुनीता देवी जी। जी
3: कहने का मतलब है जिसको अगर बीपी हो जाता है उसको क्या हाथ का भी शिकायत होने का डर रहता है?
2: हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने
0: जी।
2: और ये आपने जो सवाल पूछा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि यही कारण है कि बीपी का इलाज करना चाहिए। अगर आपको आज बीपी है, कोई भी तकलीफ भी नहीं है, तो भी डॉक्टरों से मिलके उसका उपचार करें, लाइफ स्टाइल या दवा लेकर के, क्यों कि भविष्य में आपको हार्ट अटैक, लकवा, किडनी की बीमारी, भूलने की बीमारी होने की संभावना है। अगर आप दवा लेके परहेज से जीवन शैली में परिवर्तन करके बीपी को कंट्रोल में रखते हैं 120/80, तो समझिए कि लगभग 90-95% आपको हार्ट अटैक, लकवा से रक्षा हो जाएगी। इसके अलावा कुछ अन्य भी बातें आपको, जिसको परहेज बोलते हैं, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू से अपना बचना होगा, और अगर आपका वेट है ज़्यादा तो वेट को घटाना पड़ेगा, खाने पीने में सॉल्ट को अपना कम करना पड़ेगा और सक्रिय जीवन शैली, रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। और भी कोई समस्या, और भी कोई जिज्ञासा बताएं।
3: नहीं, यही है।
0: अच्छा

0: चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: डॉक्टर साहब, आपने ये बातें जो रखी कि अगर 120/80 ये है तो सामान्य है, अगर इससे बढ़े है ना तो थोड़ा सचेत हो जाने
2: उससे
1: की
2: बढ़े नहीं, उससे अगर किसी व्यक्ति का बीपी 130/80 से ज़्यादा है
1: जी,
2: तो वो लाल रेड मतलब खतरे के जोन में आ गए, उनको बीपी है, वो परहेज दवाई लेना है। अच्छा। लेकिन अगर उनका बीपी 120/129 ऊपर में हाँ। और नीचे में 80 है हाँ। तो इसको कहते हैं एलिवेटेड बीपी, माने बीपी सामान्य से ज़्यादा है, लेकिन आप उसके पेशेंट नहीं हुए हैं। ये पहले इसको बोलते थे प्री हाइपरटेंशन, मतलब बीपी होने के पहले वाली कड़ी,
0: पूर्व संकेत,
2: इसका पूर्व संकेत। ये कहता है कि थोड़ी सी सावधानी अगर बरतेंगे, आपका वेट है ज़्यादा उसको कंट्रोल कीजिए, मानसिक स्ट्रेस है उसको कंट्रोल कीजिए, सॉल्ट को घटाइए और आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को कंट्रोल कीजिए, तो आप सामान्य बीपी हो सकता है, आपको भविष्य में दवा खाने की कोई आवश्यकता नहीं।
1: बीपी को लेकर के जो लक्षण हैं, लोग कहते हैं कि जब चक्कर आएगा तब देखेंगे, माथा भारी लगेगा तब देखेंगे, अगर घबराहट बेचैनी पसीना आएगा तो तब समझेंगे, क्या बिना लक्षण के, यानी साइलेंटली, जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, इसीलिए बिना किसी लक्षण के भी बीपी में बढ़त हो सकती है?
2: बहुत बक्सर, मैं ये कहूँ कि ज़्यादातर पेशेंट जिसमें हम लोग पाते हैं कि बीपी काफ़ी हाई है, कभी कभी 180/110 है, और जब मैंने उनसे पूछा कि आपको कभी बीपी तो ना, हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो हमने पूछा कैसे जानकारी नहीं है, तो कभी आप जांचे नहीं कराए। अब उनकी उम्र 65 साल है और 65 साल की उम्र तक कभी उनके दिल में नहीं ख्याल आया कि हम अपना बीपी भी जाने। यहाँ पर मैं दर्शकों से एक अनुरोध करूँगा कि अपनी उम्र को याद रखिए कि मेरा उम्र इतना है, और उसी तरह से आप अपना ये जानिए कि आपका बीपी कितना है, आपका वेट कितना है, इस सब को, आपका आपका शुगर कितना है, कुछ डाटा हमेशा 30 साल के बाद जानने की कोशिश कीजिए, आपका वेट कितना है, आपकी उम्र कितनी है, आपका ब्लड शुगर कितना है, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपका बीपी कितना।
1: डॉक्टर साहब,
2: बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे आप।
1: आपने कहा कि 30 साल के बाद, आजकल तो देखा जा रहा है 14 साल के 16 साल के लड़के लड़कियों में बीपी की समस्या आ रही है, चलिए इस विषय पर भी जाएंगे कि आजकल टेंडर एज में, कम एज में, टीन एज में भी बीपी की समस्या देखी जा रही है। लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि हमारे फोन लाइन पर एक हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: जी मैं अशोक बोल रहा हूं सर, स्टेशन रोड दरभंगा से।
1: जी अशोक जी नमस्कार।
3: नमस्कार सर, से ये डॉक्टर साहब से एक सवाल था, ऐसा है कि जो आइडियल पैरामीटर है वो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं पिछले 30 साल से,
1: जी
3: मुझे कभी कोई समस्या नहीं आई है, वेट भी नहीं है।
1: अच्छा अच्छा।
3: और मेरा बीपी हमेशा नॉर्मल ही 120/80 रहा करता था।
1: जी।
3: विगत 1-2 साल से वो हमेशा एक पैरामीटर 119, 118, 80 से 77 हो रहा है।
1: अच्छा।
3: सर से ये सवाल पूछना था, और अब मैं अगले साल रिटायर हो जाऊंगा, मैं 60 साल पहुंच चुका हूँ।
1: जी।
3: तो रिटायरमेंट के बाद ये
2: कितना फिगर
3: बताएगा या कैसा रहेगा, एक सवाल। दूसरा सवाल कि ये पहले तो हम लोग ये मरकरी वाले से जांच करवा लेते थे, अभी घर में ही हम ये ऑर्पेक का एक रखे हैं, वो कितना सही है और हम लोग को उस पर कितना विश्वास करना है, ये चीज मैं सर से पूछना चाह रहा हूँ।
1: ठीक है अशोक जी, आपके दोनों सवाल आ गए हैं। पहला सवाल तो ये, जो आपने कहा कि एक बार पैरामीटर डॉक्टर साहब को बता दीजिए कितना रहता है आपका बीपी, आजकल कितना रहता है अभी करेंट, अभी
3: 180/120 रहा करता था विगत 2-3 साल से, हर
1: जी,
3: साल
1: हाँ।
3: एक पैरामीटर एक घट जाता है, 118, 119 इधर 78, 79 रहा कर रहा है, ये मरकरी का मैं बता रहा हूँ।
1: जी हाँ जी हाँ
3: जी। और घर में और पेट है तो उसमें कभी 2 पॉइंट आगे 2 पॉइंट कम हो जाता
2: तो ठीक है, नॉर्मल।
3: और डिस्पेंसरी में नापने के बाद की मैं बात बता रहा हूँ।
1: तो डॉक्टर साहब इनका जो है 118। अच्छा एक बात और बता दीजिए अशोक जी, क्या आप बीपी की, बीपी की दवा ले रहे हैं तब ये फिगर है?
3: नहीं नहीं कभी नहीं, नेवर इन द लाइफ।
2: आपको बीपी
3: आपको बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल ये सब कभी प्रॉब्लम नहीं है।
1: सुन लीजिए डॉक्टर साहब,

0: अगर ये बीपी आपका एक्यूरेट, ये नाप अपने डॉक्टर से कराए, खुद आपने नाप किया है?
1: नहीं, ये मरकरी थर्मामीटर की मैं बात कर रहा हूँ,
0: थर्मामीटर नहीं, मरकरी, इस स्पिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। खैर ये ठीक है, आपको बीपी की शिकायत नहीं है, अगर इतना फिगर जा रहा था भाग्यशाली है, आपको अभी तक बीपी नहीं हुआ है।
2: और दूसरा सवाल इनका ये है सर कि जो एक ऑपरेटर्स,
1: हाँ,
2: डिजिटल, डिजिटल से, और मतलब एक कंपनी का नाम बता रहे हैं कि डिजिटल से वो आप अभी अब चेक कर रहे हैं, तो कभी एक दो पॉइंट आगे पीछे हो रहा है?
0: वो होगा डिजिटल, हाँ, में थोड़ा एक दो पॉइंट आता है कम, तो मान के चलिए कि ठीक है। आजकल 90% जगह वही इस्तेमाल होता है डिजिटल, स्पिग्मो मैनोमीटर की संख्या कम है, 2-4 mm आप जिस रेंज में हैं, अगर आपका बीपी 120-124 भी जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, आप मान के चलें कि आपका बीपी नॉर्मल है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, कार्यक्रम सुनने के लिए, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। डॉक्टर साहब एक बात और भी है कि ये जो पैमाना है, कहा जाता है कि जो बुजुर्ग हैं या जिनकी उम्र 40-50-60 इस तरह से है, और उन एक मतलब सामान्य जो मिथ है या जो भी हो, जो भ्रांति आप कह सकें या जो कुछ भी कर सकें, हमने सुना है अक्सर लोगों को ये कहते हुए, अच्छा 150/90 है, 95 है, कितना एज है, तो 55 है, 50 साल है, 60 साल है, हाँ तो एज के हिसाब से ठीक है। डॉक्टर साहब एज के हिसाब से क्या होता है?
0: ये बातें आज से लगभग 30 साल पहले इसकी मान्यता प्राप्त थी, 100 में उम्र को जोड़िए और नीचे में 90 तक है तो अगर 50-60 साल की उम्र में ठीक है, मगर इधर जो शोध हुए हैं उन लोगों ने पाया है कि 150/90 चाहे 20 साल के लड़के को हो चाहे 80 साल के आदमी को हो, ये खतरनाक है। जो 80 साल के हैं उनको भी कंट्रोल करके 130-120 के अंदर में सेफ रेंज में रखना है, और जो बच्चे हैं उनको भी रखना है। इसकी मान्यता कि एज में उम्र, अच्छी 100 में उम्र को जोड़िए कि उस पर कोई खतरे वाली बात नहीं है, ये बातें ख़त्म हो गई है। अगर इसको हम लोग मानेंगे तो ऊपर में 150 और नीचे में 80 होना, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, और ऐसे लोगों को स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा होता है, लकवा का खतरा ज़्यादा होता है। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि अपना बीपी डॉक्टरों से जांच करा के कम से कम 120 और 130 के बीच में ऊपर में रखें, नीचे में 70-80 के बीच में, तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे।
2: यानी एज को लेकर के,
0: अच्छा, एज वाली मान्यता खत्म हो चुकी है।
2: एक बार फिर से अपने सुनने वालों को बता दें कि आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो जिंदगी। हेलो जिंदगी में आज का विषय है उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी, लक्षण और सावधानियां। बतौर विशेषज्ञ आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं, उपस्थित हैं जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ, जीवन शैली रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. गुप्ता, डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता। डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता विभागाध्यक्ष थे औषधि विभाग DMCH दरभंगा में, सेवानिवृत्त हैं और अभी भी अपनी सेवा दे रहे हैं। श्रोताओं, अगर हाई बीपी को लेकर किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपको है, आपके परिजन को है, या हाई बीपी को लेकर, उच्च रक्तचाप को लेकर आप किसी भी तरह का कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, कोई भी जिज्ञासा रखते हैं, तो आज हेलो जिंदगी का हिस्सा बनिए, हमें फ़ोन लगाइए। बेसलाइन सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारे दूसरे नंबर 9430029353 इस नंबर पे हमें फ़ोन लगाइए, 9430029353 9430029353। 12 बजे तक समय है इस कार्यक्रम का, हाई बीपी को लेकर ये खास तौर से कार्यक्रम आज इसलिए भी है क्योंकि आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, उच्च रक्तचाप दिवस। और डॉक्टर साहब आज के कार्यक्रम को लेकर के, और आज जो खास दिन है ना उसको लेकर के जो थीम है कार्यक्रम में, वो है कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर, चेक योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली, डिफीट द साइलेंट किलर। क्या कहेंगे आप
0: इसमें? ये इस साल का WHO ने थीम दिया है, और इसका एक थीम बहुत ही आकर्षक है कि डिफीट दी साइलेंट किलर, हाई बीपी।

0: को डिफीट आप कैसे किया जाए उसी का टेक्निक उसमें भी दिया हुआ है कि जब तक आप अपने बीपी को रेगुलरली जांच नहीं करा लें, और सब कंट्रीज़ में यूरोपियन कंट्री में 40 साल के बाद लोग जांच कराते हैं, क्योंकि हम लोग साउथ ईस्ट एशिया के रहने वाले हैं, हम लोगों में बीपी और डायबिटीज़ की ज़्यादा पेशेंट हैं, कम ही उम्र में हो जाता है। तो हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है कि 30 साल की उम्र से आप जागरूक हो जाएं कि आप पर डायबिटीज़, मोटापा, ब्लड प्रेशर इस तरह के रोग हावी ना हो, और जिनके परिवार में किन्हीं को बीपी की या हार्ट की बीमारी है उनको 18 साल से चौकन्ना होना चाहिए। तब जो आजकल के कम ही उम्र में जवानों को जो हार्ट अटैक है, ऐसे जवान लोगों की रक्षा हम लोग अपना कर सकेंगे। जिनके परिवार में या उनके पूर्वजों में ये शिकायत थी उनको कम ही उम्र से सावधानी और चौकन्ना होना चाहिए। दूसरा है टेक्निक कि आपका बीपी सही ढंग का रिकॉर्ड होना चाहिए। बीपी इंस्ट्रूमेंट अगर आप आपके फैमिली में किसी एक जन को या दो जन को है तो बेहतर होगा कि एक अच्छे कंपनी का बीपी इंस्ट्रूमेंट खरीद के अपने घर में रख लें। किसी भी डॉक्टर से 5 मिनट लगता है सीखने में, सीख लिए कैसे बीपी नापते हैं। घर में रहेगा तो हर संडे के संडे इस सप्ताह में एक बार बीपी अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स का नापिए, छोटा मोहल्ला है तो अपने सारे
1: अड़ोसी
0: मोहल्ले वालों
1: पड़ोसी
0: को
1: को भी।
0: नापिए। इस काम के लिए अपने डॉक्टरों के पास जाने की हमेशा आवश्यकता नहीं है बीपी नापने के लिए, और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ भी बीपी जांच कराने की सुविधा। फ़र्क है कि आप जागरूक हों और ये जाने कि नॉर्मल क्या है, अब नॉर्मल क्या है। मैंने बताया कि अगर आपका 130/80 है या उससे ज़्यादा बीपी है, आप जागरूक हो जाएं, आपको बीपी हो चुका है, आप अपने डॉक्टरों से राय लें। उसके पहले डॉक्टरों से मिलने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी सावधानी अपना करने की ज़रूरत है। नंबर 2, अगर आपको दवा लिखी जाती है तो दवा का डोज कम करना, दवा को बंद करना, ये इसका अधिकार आपके डॉक्टर को है, ये अधिकार उनको दे दें, अपने मन से नहीं करें। इसमें गलतियां क्या होती है कि एक बार किसी आदमी का बीपी नियंत्रण में हो गया 120/80, तो उसमें से
1: जी
0: काफ़ी लोग दवा खाना छोड़ देते हैं। ये उम्मीद होती है कि हमारा बीपी ठीक हो गया। मैं यहाँ पर बता दूं कि आज तक बीपी न किसी का ठीक हुआ, आगे की बात मुझको नहीं मालूम है।
1: एक
0: कुछ
1: श्रोता जुड़ गए
0: नए
1: हैं, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। हेलो हेलो जी नमस्कार जी, रेडियो की आवाज़ बंद कर दें। जी बताया जाए, कौन जी कौन बोल रहे हैं? जी प्रणाम, कौन बोल रहे हैं आप? हेलो
2: रघुनंदन
1: हाँ, रघुनंदन सिंह जी बताइए, क्या जिज्ञासा है?
2: सिंह, जिज्ञासा यही है कि पहले बहुत लो रहता था, 60/90, लेकिन इधर 2-4 महीना से इतना भाग जाता है जो 100/200 हो
1: अच्छा।
2: जाता है, माने बीपी बढ़ जाता है, मन घूमता रहता है, बड़ा बेचैन हो जाता है। कौन सा खान पियन या रहन सहन में क्या करे जो ये अपने आप थोड़ा जगह पकड़ ले, जो चाहिए।
1: जी आपकी उम्र डॉक्टर साहब को बता दीजिए।
2: हमारा उम्र है 78 बरस 3 महीना 7 दिन।
0: देखिए, ये आपका बीपी की मात्रा बहुत अधिक है, 200/100 है, ये बहुत ही खतरनाक, इसको कहते हैं बीपी। इसमें पहला काम होना चाहिए कि अपने अपने डॉक्टर से आजकल में अवश्य मिले, और इसके लिए कुछ जांच करने के बाद आपको मेडिसिन लिखेंगे। मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद तब आपको इसमें क्या क्या खाने पीने में परहेज होना चाहिए ये बताएंगे। ऐसे मैंने पहले भी मैं आप कह चुका हूँ, अभी बता दूँ, इसमें जो परहेज है कि आपकी जो उम्र है, जितना बीपी है, आप कोई भारी काम नहीं करेंगे, हल्का फुल्का काम अपना करेंगे जब तक बीपी आपका नियंत्रण में नहीं होता है। और खाने पीने में नमकीन चीज़ या ज़्यादा नमक वाली चीज़ जैसे पापड़, अचार, चाट, चटनी, या मार्केट में जो अपने भुजिया पैकेट में मिलती है, प्रोसेस्ड फूड पैकेट वाली, उस सब चीज़ को नहीं खाना है। घर का अपना बना हुआ शाकाहारी भोजन।

0: इसमें नमक तेल घी कम पड़ा हो वो आपके लिए हेल्दी फूड है। अपने भोजन में थोड़ा फल को जरूर शामिल करें, जो देहाती फल है जो गांव में होता है, ताजे फल, हरी साग सब्जियां, और अगर किसी किस्म का मानसिक अपना तनाव है उसको कम करें, और सक्रिय जीवन शैली घर के अंदर या घर के आसपास में थोड़ा बहुत टहलने की अपना कोशिश करें। तंबाकू की आदत हो, खैनी, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा को तो उसको छोड़ दें। रेगुलर दवाई खाएं और रेगुलर अपना चेकअप करा के बीपी को 130 120 बटा 80 के आसपास में रखें। जब तक आप जीवित हैं तब तक अपना दवाई खाते रहें, परहेज करते रहें, तो आपको शायद लकवा, हार्ट अटैक से आपकी रक्षा हो जाएगी।
1: डॉक्टर साहब ने इतनी सारी बातें बताई हैं, शशि भूषण जी ध्यान दिए होंगे आप, एक बार जरूर मिलिएगा डॉक्टर से, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्र दराज लोग हैं और 200 बटा 100 बटा 200 बता रहे थे,
0: उल्टा बोल रहे थे,
1: समझ गया था। हाँ, ज़्यादा है और ये ख़तरनाक स्थिति होती है, 78 साल की उम्र है तब
0: उसको अंदाज़ा नहीं कर रहे हैं।
1: जी नमस्कार, हेलो,
2: नमस्कार सर
1: जी, नाम बताएं अपना।
2: हम पंचोम से सर बोल रहे हैं
1: जी, नाम बता दें अपना।
2: ये अनिल चौधरी नाम है। तो हमको सर 25-30 साल से डायबिटीज हुई है, हमारा उम्र 66-67 वर्ष सर उम्र है। हमारा बीपी सर रहता है 130/60/65/60 शुगर हम नियंत्रण में रखते हैं सर।
0: अच्छा ठीक है सर, आपका अगर शुगर नियंत्रण में आप जो बता रहे हैं बीपी, नहीं ठीक है, बीपी भी ठीक है, तो आप इसी दोनों को नियंत्रण रखें, सक्रिय जीवन शैली अपनाएं, सब कुछ ठीक रहेगा।
1: इन्हें लगता होगा कि
2: हम दवा नहीं बीपी का सर खाते हैं,
0: नहीं नहीं बीपी का जो बीपी आप बताए हैं उसमें दवा खाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो डायबिटीज की परहेज करते हैं उसी को परहेज करते रहिए, बीपी की जांच हर 15 दिन पर अपने डॉक्टर से कराते रहे। जब बीपी आपका 130/80 से ऊपर जाएगा तब दवा खाने की ज़रूरत है, अभी आपको दवा खाने की ज़रूरत नहीं है।
1: लेकिन ये हमें लगता है कि इन्हें लगता है कि 80 होना चाहिए, नीचे वाला 60-65 रह रहा है।
0: ना ना, तो वो ओल्ड एज में जैसे जैसे हम लोग की उम्र बढ़ती है, 40 साल के बाद बीपी का ऊपर वाला फिगर ऊपर जाता है और नीचे में जो डायस्टोलिक 80 होता है वो घटना शुरू हो जाता है। कभी कभी ज़्यादा उम्र होने पर डायस्टोलिक बीपी जो नीचे वाला है 60-50, 60-70 ऐसा हो जाता है। तो उसके अपना कम होने से आपको कोई खतरे की बात नहीं है, उसको एज रिलेटेड चेंजेज है, उम्र के कारण है, उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, कार्यक्रम सुनने के लिए। जी एक बार फिर से अपने सुनने वालों को बता दें कि आकाशवाणी दरभंगा से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो जिंदगी। हेलो जिंदगी में आज का विषय है उच्च रक्तचाप, लक्षण और सावधानियां। बतौर विशेषज्ञ डॉक्टर ए के गुप्ता आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं, आमंत्रित हैं। श्रोताओं, उच्च रक्तचाप को लेकर, हाई बीपी को लेकर किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा हो तो 9430029353 इस नंबर पर हमें फ़ोन लगाएं, डॉक्टर ए के गुप्ता आपको उचित सलाह देंगे। इस समय हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: हम ग्राम धमसन से राजेंद्र ठाकुर बोल रहा हूँ सर।
1: जी नमस्कार। जी नमस्कार राजेंद्र ठाकुर जी, बताइए क्या जिज्ञासा है। जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, बताया जाए।
3: प्रणाम सर।
0: प्रणाम प्रणाम
1: जी, बताइए
3: सर। हम जो है सो बीपी का दवा रोज खाते हैं, थोड़ा कब्ज रहता है सर, कब्ज के चलते परेशान रहते हैं हमेशा, गैस बन जाता है।
0: बीपी की दवा खाने से आपने जांच से आपने करा के देखा आपका आपने बीपी कितना रहता है?
3: बीपी कभी 130/85, कभी 130/90, कभी 126/89 ऐसे करके रहता है।
0: जो अपना कब्जियत है तो थोड़ी सी बीपी की दवा खाने के बाद भी होती है।
3: पहले सर हम जतलाए थे जहाँ से इलाज करवाते हैं डॉक्टर साहब से,
0: ठीक है,
3: तो अभी 136/80
0: ठीक है। जहाँ तक
3: उसके बाद उस रोज जो जांच किए हुए तो 110 70 पर आ गया।
0: ठीक है, अभी तो वो भी ठीक है।

0: कल जो जचाए थे, कल जचाए थे सर, तो 126/89 है।
1: ठीक है, ये भी ठीक है। आपको दूसरी समस्या है अपना कब्जियत की, उसके लिए पानी 3-4 लीटर डेली पिए, हरी साग सब्जियों की मात्रा को कुछ ज़्यादा कर दें, सलाद कुछ ज़्यादा खाएं, फल को कुछ ज़्यादा खाना है, और सबगोल की भूसी 2 चम्मच सवेरे 2 चम्मच शाम खाइए, और सवेरे शाम टहलिए, आपका अपना कब्जियत ठीक हो जाएगा। ठीक है
0: बहुत सर, बहुत दवा किए हैं,
1: हमने दवा का नाम नहीं लिया, हमने जो हमने बताया उतना करके देखिए।
2: राजेंद्र ठाकुर जी, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो दवा नहीं बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए जिससे कब्जियत की जो समस्या है ना वो आपको परेशानी पैदा ना करे, है ना। तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है वैसा करके देखिए, ज़रूर लाभ होगा आपको, है ना। और ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा खान पान पर ध्यान रखेंगे, फाइबर फूड जैसा बता रहे हैं डॉक्टर साहब उस तरह से खाइएगा
0: तो सही है। कौन डॉक्टर से आया आज?
2: देखिए अब ऐसा पूछकर तो हमें शर्मिंदा कर देंगे, अब डॉक्टर ए के गुप्ता आज हमारे कार्यक्रम में है, सुनना चाहिए। जी जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार। देर से रेडियो खुलने वाले, अभी हमने बताया जी
0: रेडियो में थोड़ा गड़बड़ी है, आवाज
2: अच्छा अच्छा ओ उस वजह से, अच्छा ठीक है, उसे ठीक करा ले, या फिर अपने स्मार्टफोन पर सुने न्यूज ऑन AIR, इस ऐप पर भी आप हमारे कार्यक्रमों को बिल्कुल जीवंत सुन सकते हैं, और क्वालिटी उसकी अच्छी होती है, आप सुन सकते हैं। जिन श्रोताओं ने इस ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, हम उनसे भी कहेंगे कि डाउनलोड कर लें और जुड़ जाएं। आकाशवाणी के केंद्र जितने भी केंद्र हैं सब अवेलेबल हैं, सब उस पर हैं, और आकाशवाणी दरभंगा तो है ही। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये जो रक्तचाप है ना, वो शरीर की जो स्थिति है उसके मुताबिक रक्तचाप का तो होना बहुत निहायत ज़रूरी है, लेकिन उसमें जो परिवर्तन आ जाता है, जो सामान्य जो स्थिति है दबाव की, अगर वो नहीं है तब जाके दिक्कत पेश आती है। हमें ये जानना है कि क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिसमें, या कुछ ऐसी दवाएं हैं जिसके प्रयोग के समय तात्कालिक रूप से BP हाई हो जाता हो या लो हो जाता हो, ऐसा कुछ है? गर्भावस्था के दौरान भी सुना जाता है कि कुछ दिक्कतें पेश आती हैं जो बाद में स्वतः ठीक हो जाती हैं, ये जानेंगे आपसे। एक श्रोता और जुड़ गए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
0: हेलो
2: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
0: जी सर, हमारे नाम पासवान झंझारपुर लंगड़ा चौक से सर बोल रहे हैं।
2: हरे राम पासवान जी, प्रणाम आपको भी। रेडियो की आवाज़ बंद कर दें और जिज्ञासा व्यक्त करें, क्या पूछना है डॉक्टर साहब से?
0: जिज्ञासा सर यही, हमको तो BP है, हम तो सर दो दिन से BP में शिकायती है।
2: अच्छा,
0: लगभग 5 साल से है, तो हम एम्बुलेंस एक ही सर खा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब से यही हम जानना चाह रहे हैं, उससे भी बराबर हमको गैस सर बन जाता है।
2: अच्छा अच्छा, ये जो आप दवा खा रहे हैं हरे राम पासवान जी, क्या उससे आपकी जो BP है वो नियंत्रित है, वो नॉर्मल है?
0: जी सर, एकदम नियंत्रित रहता है।
2: अच्छा, नियंत्रित है, लेकिन गैस की समस्या हो जाती है।
1: गैस की समस्या को जानने के लिए आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे, तो अल्ट्रासाउंड की जांच कराएंगे, एंडोस्कोपी कराएंगे, और गैस किस कारण से बनता है जब तक उसका वो कारण नहीं समझेंगे तब तक उसका दवा बोलना बड़ा मुश्किल है। ऐसे आप एंजाइम की कुछ टिकिया यूनियन एंजाइम टाइप की दवा खा कर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जब तक जांच नहीं होगा एंडोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड, तब तक गैस की क्या सही वजह है ये पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है।
2: अच्छा, जब हाइपर टेंशन की बात चल रही है डॉक्टर साहब, और वहाँ अभी हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ हाइपर एसिडिटी की भी बात हो गई, तो क्या हाइपर एसिडिटी की वजह से भी हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है?
1: नहीं, हाइपर एसिडिटी, लेकिन हाइपर एसिडिटी के कारण नहीं, उसमें ऐसे हम लोग इसको कह सकते हैं कि हाइपर एसिडिटी और हाइपरटेंशन के रूट कॉज में कुछ लोगों को एक ही होता है कारण, दैट इज स्ट्रेस, मानसिक तनाव। अगर आप मानसिक तनाव, खास करके एक्यूट स्ट्रेस, अचानक आपको कोई स्ट्रेस का लोड काफ़ी ज़्यादा हो जाए, तो उसमें हाइपर एसिडिटी भी हो सकता है और BP भी हाई हो सकती है कुछ क्षणों के लिए। अच्छा। और जब स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा तो आप स्वतः हो जाएगा कम, इसीलिए वो स्ट्रेस से अपने आप को बचाना, स्ट्रेस को कंट्रोल करना,

0: बहुत आवश्यक है। स्ट्रेस के बारे में मैं एक दो शब्द बता दूं कि स्ट्रेस से जो लोग इच्छुक हैं कि स्ट्रेस कम हो, वो अपनी जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन करें, डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल, समय पर सोना, समय पर जगना, समय पर खाना, मार्केट की चीज़ नहीं खाना, रेस्टोरेंट की चीज़ नहीं खाना, सॉल्ट रिच खाना नहीं खाएं, और इसके अलावा वो अपने सांसों पर नियंत्रण रखें। एक योग में सिखलाया जाता है प्राणायाम, गहरी लंबी सांस लेना छोड़ना, अगर इसकी आदत डालते हैं खास करके स्ट्रेस के टाइम में, तो सांस को धीरे धीरे करके लेंगे तो सांसों को धीरे करने से स्ट्रेस भी कंट्रोल होता है। तो इस तरह से, और आपके जीवन में कुछ भक्ति की कमी है तो भक्ति से जुड़े तो उससे भी स्ट्रेस की
1: एक और श्रोता जुड़ गए हैं। एक और श्रोता जुड़ गए जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। रेडियो की आवाज़ कम कर दें, अपना नाम बताएं।
2: हेलो
1: जी, अपना नाम बताएं, नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: हम ज्ञानेश्वर साहब बोल रहे हैं, सिमरिया भिंडी।
1: कौन बोल रहे हैं?
2: हेलो, राजेश्वर साह,
1: राजेश्वर भिंडी जी, राजेश्वर साह जी, बताइए क्या जिज्ञासा है, क्या समस्या है, बताइए।
2: बीपी तो बीपी हमारा 130 70 80 रहता है।
1: अच्छा जी,
2: और कुछ चलते हैं तो लड़खड़ाता है जैसे।
1: अच्छा, उम्र कितनी है आपकी?
2: उम्र हमारा 76 वर्ष है।
1: अच्छा, ये समस्या कब से है?
2: इस समस्या लड़खड़ाना तो रखिए एक साल से।
1: अच्छा, कितना बताया आप बीपी, एक बार फिर से बताइए। तो
2: बीपी ठीक है, 70।
1: हाँ, ये तो
0: इनका बीपी ठीक है, बीपी से जो चलने में दिक्कत हो रही है उसको कोई संबंध नहीं। अगर चलने में इनका लड़खड़ा जाते हैं तो हम समझते हैं कि एक फिजिशियन से मिलना चाहिए, उसकी अलग जांच होती है कि मांसपेशी की कमजोरी है, जॉइंट में है आप गड़बड़ी, या नर्व की कमजोरी है। जब तक इसको नहीं आदमी जानेगा, और वो जानने के बाद उसकी कुछ अपना दवाई होती है, कुछ एक्सरसाइज होता है, तब जाके वो जाते ठीक हो। जब तक वो चीज़ का जांच नहीं होता है तब तक मैं इनको एक राय दूंगा कि चलते समय, खास करके घर से बाहर चलते समय, एक छड़ी का इस्तेमाल करें तो उससे इनको अपना बैलेंस काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा।
1: जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है वैसा करें, और एक बार अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से मिलें, है ना। हो सकता है कहीं कोई अलग समस्या हो तो उसके बारे में पड़ताल हो जाएगी, और आप ये सोचते रह जाइएगा कि बीपी तो नॉर्मल है, तो अगर लड़खड़ाहट है तो है,
0: बीपी से कोई संबंध नहीं है इसका।
1: तो जिस तरह की स्थिति है, डॉक्टर साहब ने जैसा बताया है वैसा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी प्रणाम। डॉक्टर साहब, ये बात हो रही थी कि क्या गर्भावस्था के दौरान या कुछ दवाओं के सेवन के दौरान बीपी अनियमित रूप से हो सकती है, बढ़ी हुई या घटी हुई?
0: हाँ,
1: ऐसा कुछ है।
0: होता है कि हम लोगों में दो शरीर के अंदर दो टाइप की नर्वस सिस्टम की ब्रांचेज है। एक को बोलते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम, दूसरे का नाम है पारा सिंपैथेटिक सिस्टम। तो जब किसी स्थिति में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा, तो हमारी नाड़ियों में संकुचन होने लगती है, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में वेसो कंस्ट्रिक्शन। जब हमारी नाड़ियाँ संकुचित हो जाएंगी और उससे जब खून बहने की अपना कोशिश करेगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर। तो जो महिलाएं गर्भावस्था की ओर से गुजरती हैं, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती जाती हैं थर्ड ट्राइमेस्टर, तो उनका शरीर में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होता है।
1: अच्छा,
0: उसका विपरीत असर उस पर होता है, बीपी का बढ़ना, पैर का फूल जाना, चेहरे का फूल जाना। लेकिन उसको तब ऐसी स्थिति में दवाओं से कंट्रोल उनको अपना करना पड़ता है। और कुछ ऐसी दवाएं हैं जो पहले मानसिक रोग में इस्तेमाल होती थी, जिसको बोलते थे माओ इनहिबिटर्स, उस अपना ग्रुप की दवा खाने से बीपी बहुत भागता, तो वो आजकल दवाई इस्तेमाल नहीं होती है। तो लेकिन जो आजकल कॉमन दवाई है, इसमें कोई ऐसी दवा नहीं है जिसको खाने से बीपी बढ़े, फिर भी हम लोग अपना केयरफुल रहते हैं उसके बारे में।
1: एक और श्रोता जुड़े हैं जी, नमस्कार, हेलो,

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: नमस्कार सर, मैं किशन कुमार मंडल मुंबई से बोल रहा हूँ।
0: जी किशन कुमार मंडल जी, बताइए क्या जिज्ञासा है।
1: जिज्ञासा है, डायबिटीज वाला आदमी अगर थोड़ा बहुत बड़ा जो रहता है, शरीर सुस्ता रहता है, कितना भी खाता पीता, फ्रूट भी खाता है, कितना शरीर में घुस पाते
0: क्या बोले, डायबिटिक वाले?
1: डायबिटिक
0: हाँ, लोगों का शरीर सूखता क्यों जाता है? मतलब कितना भी खाते पीते हैं तो शरीर में लगता है जैसे लग नहीं रहा
1: उसका
0: है।
1: मैं
0: एक
1: आपको आपको बताऊं कि जो भी व्यक्ति अपन डायबिटीज के पेशेंट हैं और उपचार उनका हो रहा है, उसके बाद भी अगर शरीर सूखता जा रहा है, इसका मतलब है कि वो जो दवा ले रहे हैं वो असर उन पर नहीं कर रहा है। और यही वक्त है जबकि एक ही दवा से उनकी वो सूखी हुई शरीर वापस आ सकती है। उस दवाई का नाम है इंसुलिन। अपने डॉक्टर
0: जी
1: से मिलके जांच कराएं और इंसुलिन से अपने डायबिटीज को कंट्रोल
0: कंट्रोल
1: करें,
0: करें।
1: अवश्य आपकी खोई हुई मांसपेशियां, कमजोरी सब लौट के आ जाएंगी, उसी में ताकत है। अक्सर लोग इंसुलिन लेने से घबराते हैं,
0: बहुत घबराते
1: इसी
0: हैं
1: कारण से
0: जी।
1: घबराहट को, अगर आपको स्वस्थ जीवन शैली, जवानी वापस चाहिए तो इंसुलिन पर आइए, ठीक हो जाएगा आपका।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद किशन कुमार मंडल जी। जी एक बार जांच करा लें और अगर लगे कि इंसुलिन की ज़रूरत है तो आप उसमें कोताही मत बरतिएगा, डॉक्टर साहब बता रहे हैं। लेकिन जांच कराते रहे और डॉक्टर से मिलते रहे, हो सकता है कि कोई ऐसी वजह हो, है ना। एक बार जांच करा लें और मिल लें डॉक्टर साहब से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब देखिए, उच्च रक्तचाप को बहुत ही खतरनाक माना गया है। अगर किसी का जो हाई बीपी है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है
1: खतरनाक के बारे में मैं कहूँ इतना ज़्यादा कि
0: जी।
1: अभी 15 रोज के अंदर में मेरे दो लोग काफ़ी थे अपने परिचित,
0: जी हाँ।
1: उनकी वाइफ को बीपी की शिकायत थी, वो किसी कारण से बीपी की दवा अपना
0: छोड़ दिए
1: बंद कर दी।
0: जी।
1: एक को लकवा हो गया अपना, ब्रेन हैमरेज जो हॉस्पिटल में एडमिट है, दूसरे को हार्ट अटैक हो गया जो दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती है।
0: जी
1: छान बातचीत अपन करने पर पता चला बीपी के मरीज थे और उनको लगा कि मेरा बीपी ठीक हो गया या लापरवाही के कारण छोड़ दिया, जिसके कारण। तो ये ऐसे जानलेवा खतरे इन लोगों में होने की औकात है बीपी को, इसीलिए इसको किसी तरह से कंट्रोल में, नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी है,
0: अच्छा,
1: तब इन
0: वो
1: खतरों से
0: कौन-कौन से
1: बचेंगे।
0: अंग हैं जिन पर हाई बीपी का प्रभाव बहुत ही खराब ढंग से पड़ता है?
1: वो बीपी को हमारे जितने नाजुक अंग से उसको बहुत लगाव है। पहला है हार्ट, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ये
0: अच्छा
1: ज़्यादातर लोग जिनको हाई हाई या अपने बीपी होता है उसमें 90 से 95% लोगों की मौत हार्ट अटैक के कारण या हार्ट फेलियर के कारण होती है। उसके बाद जो अगला अंग है जो क्षति करता है वो हमारा ब्रेन, ब्रेन में थक्का जमने से या हैमरेज होने से लकवा होने की डर रहती है। नंबर तीन अंग है जो आजकल लोग सुन के घबराते हैं कि आपने गुर्दे की बीमारी, अगर
0: किडनी।
1: आपको बीपी या डायबिटीज़ या दोनों है और दोनों को नियंत्रण में नहीं रखते हैं तो 100% केस में आपकी किडनी डैमेज होगी और डायलिसिस की आवश्यकता हो सकती है। चौथा अंग है हमारी आँख, रेटिना, रेटिना को डैमेज करने के औकात रखता है, जैसे हमारे आंखों की रोशनी जा सकती है। और ब्रेन में एक चीज़ जो इसके कारण काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी।
0: अच्छा
1: आजकल 50 साल, 40 साल की उम्र से आप किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे तो इस बात को अपना कबूल करता है कि हमको भूलने की अपना बीमारी होती जा रही है। तो ये सब चीज़ इसके खतरे हैं। इन खतरों से लोगों को बचाने के लिए रेगुलर दवाई खाना, रेगुलर चेकअप करना और अपने जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन करना, वेट को घटाना, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू से बचना। तंबाकू के बारे में कहूँ कि लोग मिथिलांचल में खैनी को तंबाकू नहीं मानते।
0: अच्छा
1: जर्दा खाना, खैनी खाना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, चारों के अंदर तंबाकू है और चारों उतना ही खतरनाक है। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि ये सब चीज़ की परेशानी नहीं हो तो आज ही से संकल्प लें कि तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा हम नहीं लेंगे। तंबाकू किसी भी रूप में हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है।
0: दो चीज़ें हैं अभी जो

0: मद्यपान तो निषिद्ध है बिहार प्रदेश में, उसके बावजूद जो नशा की जो दूसरी चीज़ें हैं नशा के लिए, कुछ सूंघने वाली चीज़ें, वाइटनर नए बच्चों में,
1: हमारे स्कूल के बच्चों में काफ़ी अपना पॉपुलर हो गया, वो ज़्यादा खतरनाक है, वो तो आदमी को किसी के लायक के नहीं छोड़ता है, इतने ज़्यादा ब्रेन को करता है डैमेज कि जिसको देहाती भाषा में बोलते हैं बउक, वो अपना बउक हो जाएगा, माने कुछ भी ना उसको समझ में आएगा, ना लिख पाएगा, ना पढ़ पाएगा।
0: ये स्थिति है भंग का सेवन जो
1: भंग हमारे मिथिलांचल में काफ़ी पॉपुलर है,
0: और उससे भी जो मना स्थिति है
1: यहाँ पता नहीं, जागरूक होने के बजाय लोग क्यों दवा खा करके या भांग पीकर सोना चाहते हैं, ये मेरे समझ के बाहर, जागने की जगह जो जागरूक होने के बजाय वो हमेशा कुछ दवाओं का या इनका सेवन करके सोना चाहते हैं, अल्कोहल हो या भांग हो या गांजा हो, ये हमारी समझ के पार है।
0: नशा किसी भी शक्ल में हो खतरनाक है, ये एक लाइन की बात है, एक वाक्य की बात है जो लोग बहुत देर से समझते हैं, जब बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं जिंदगी।
1: उस पर एक राइटर ने कहा था कि तुम्हें खो दिया तुमको पाने के बाद, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, जब सब कुछ डैमेज हो जाता है तब उसकी याद आती है कि गलती हुई हमसे,
0: मिट गया जब मिटने वाला उनका पयाम आया तो
1: चलता रहता है,
0: दिल की बर्बादी के बाद उनका
1: याद आता रहता है,
0: ये सारी चीज़ें हैं। एक श्रोता जुड़ गए हैं, जी नमस्कार, हेलो,
2: हेलो
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: जी मैं रामनगर से बोल रहा हूँ।
0: जी अपना नाम बताएं।
2: मेरी उम्र जो है 75 साल है
0: जी,
2: मेरी बीपी भी है लेकिन नॉर्मल है, लेकिन अभी गैस और वो मुंह का सूखना बहुत ज्यादा होता है, रात में सूखे उठते हैं तो वो गैस जो है तो बनता ही है, मुंह बहुत सूखा हुआ रहता है, जब तक पानी नहीं पीते।
1: आप ये बताएं, रात में सोते हैं तो नाक आपकी आवाज करती है, माने
2: नहीं आवाज नहीं करती है,
0: खराटा
1: लेने की आदत है?
2: नहीं, खराटे की,
1: अगर खराटा लेने की आदत नहीं है तो मुंह सूखने का कारण गैस का कुछ ऐसी दवाएं भी होती हैं, जिन डॉक्टर से आप दिखला रहे हैं उनसे कहिए कि ये दवा खाने के बाद से हमको ये
2: तो खा रहे हैं सर।
1: नहीं, ये आजकल आप कौन सी दवा खा रहे हैं? आप याद नहीं तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आप अपने डॉक्टर से मिलिए कि वो दवा जो लिखे हैं कि दवा खा रहे हैं मेरे ये समस्या उस समस्या के उपाय करेंगे, ऐसे अंदाज से कुछ
2: बोल
1: ना, ऐसे मुंह सूखने की आप कोई दवा नहीं होती है, वो ड्रग के कारण इंड्यूस होगा, उस ड्रग को चेंज करना पड़ेगा,
0: देखिए
1: दवाई को बदलना पड़ेगा।
0: जी डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि एक बार अपने डॉक्टर से मिलिए, अगर आप दवा का नाम अभी नहीं बता पा रहे हैं, कभी कभी किसी दवा की वजह से किसी खास व्यक्ति को परेशानी हो सकती है जिसके बारे में डॉक्टर साहब का इशारा है, और जब तक दवा का नाम वो नहीं जानेंगे तो आपको सलाह कैसे दे पाएंगे, ये बात है पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने पूछा कि खर्राटा की समस्या है या नहीं है, तो वो समस्या जब नहीं है तो एक बार अपने डॉक्टर से मिल लेंगे ना, तो सहूलियत हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। खान पान के बारे में पूछ रहे हैं ये, जी डॉक्टर साहब
1: बीपी के बारे में जैसे मैंने बताया है कि शाकाहारी भोजन करें, नमक खाने में कम होना चाहिए।
0: अच्छा, गैस की दवा,
1: गैस की कोई दवा नहीं, गैस का अल्ट्रासाउंड अगर नहीं ठीक हो रहा है गैस, तो एंडोस्कोपी की जांच कराएं, पेट की अल्ट्रासाउंड कराएं, कारण जब हो जाएगा पता तब जाके गैस ठीक होगा, उसकी गैस की ऐसी कोई दवा नहीं होती,
0: ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी, बता दिया जाए सर जिसे।
1: अच्छा, मैंने शुरू से बताया,
0: शाकाहारी भोजन करें, नमक की मात्रा कम हो,
1: बाजार की बनी हुई चीज नहीं खाएं, इतनी बात को याद
0: रखें, और तेल की मात्रा कम कर दें, छना हुआ चीज, तला हुआ चीज कम खाएंगे, तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं बार बार कि ऐसा करने से जो एसिडिटी की समस्या है वो कुछ हद तक या बहुत हद तक सही हो सकती है। कार्यक्रम सुनने के लिए और फोन लगाने के लिए आपका धन्यवाद जी,
2: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब एक बात और भी है कि जब लोग डॉक्टर से मिलते हैं, बीपी की दवा शुरू होती है, लोग सालों साल वो दवा खाते रह जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है कि ये दवा कंटिन्यू करनी है नहीं करनी है, जब कोई समस्या आएगी तब सोचेंगे, एक सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि एक बार बीपी, हाई बीपी की समस्या आ गई, ड्रग डिपेंडेंसी हो गई, दवाओं पर अगर ज़िंदगी आरोप

0: फूड हो गई तो लोग सोचते हैं, ऊब जाते हैं कि कितने दिन खाएंगे दवा, छोड़ देते हैं। कभी कभी लगता है कि सामान्य स्थिति है तो दवाओं का प्रयोग वो छोड़ देते हैं बगैर डॉक्टर से मिले हुए। तो बीपी की समस्या से जो ग्रसित लोग हैं उनके लिए डॉक्टर की ज़रूरत कब है, कैसे है, और दवा बदलने की जो बात है, खुद से बदल लेते हैं कभी कभी दवा, खुद से दवा की डोज बढ़ा देते हैं, पोटेंसी बढ़ा देते हैं, ये सवाल है। एक श्रोता जुड़ गए हैं, समय बहुत ही कम है। जी नमस्कार, हेलो,
1: नमस्कार श्रीमान, मैं राम कुमार।

0: महत्वपूर्ण विषय पर डॉक्टर साहब और आपके बीच जो वार्तालाप हुई उसे मैंने सुना और लाभान्वित भी हो रहा हूँ। और ऐसा है कि इसी तरह की जो है समस्या दूसरे दूसरे
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: फिर करेंगे
1: जी। बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब हम कॉल नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये जो सवाल हमने आपसे पूछा है कि दवाओं को लेकर के लोग जागरूक क्यों नहीं है और खुद से दवाएं मतलब बदल लेना, खुद से दवाओं की डोज बढ़ा लेना, ये कहाँ तक उचित है?
2: जब किसी फ्रेश पेशेंट को जिनका बीपी हाई है हम लोग जब दवा स्टार्ट करते हैं तो एक दो चीज़ इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो ये कि आज तक कोई ऐसी दवा सारी दुनिया में नहीं निकली है जो कहे कि 10 दिन 20 दिन या 5 साल दवा खाने से बीपी ठीक हो जाएगी। आपको जब तक आप जीवित हैं तब तक बीपी की दवा खानी है, बीपी को कंट्रोल करना है। इसलिए कंट्रोल करना है कि आपके जो नहीं कंट्रोल करने से भारी भारी खतरे आपके सर पर घूम रहे हैं, हार्ट अटैक, लकवा, किडनी की परेशानी, आँख की रोशनी की कमी, इन खतरों से आपकी रक्षा हो सके। नंबर टू, बीपी की दवाई खाना ही आपका काम नहीं है, एक और काम है आपकी जिम्मेदारी होती है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब होता है फ्रीक्वेंट जांच। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो ऐसे तो नियम कहता है कि डेली अपना जांच कराएं। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट अपना है तो डेली जांच करें, नहीं इंस्ट्रूमेंट है तो कम से कम वीक में एक बार जिस दिन छुट्टी हो आपको बीपी की जाँच अपना कराएं। और बीपी की जांच आप कराते समय ये बात देखें कि आपके आपकी पोस्चर क्या है। कुर्सी पर बैठ के आराम से 5 मिनट जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो, ऐसा नहीं कहीं धूप से चल के आए और बीपी नाप करा लिया, जब आप बिल्कुल शारीरिक रूप से मेंटली रूप से रिलैक्स हो कुर्सी पर बैठ करके अपना जांच कराएं। और ओल्ड एज में जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनको अगर कोई तरह का चक्कर उकर या कमजोरी होती हो तो 2 पोजीशन में बीपी को जांच कराएं, एक बैठ करके और 3 मिनट खड़ा होने के बाद। अगर 3 मिनट खड़ा होने के बाद बीपी ड्रॉप हो जाता है, घट जाता है, इसका मतलब है ऑर्थो स्टैटिक हाइपोटेंशन है, उनको बीपी की दवाओं का डोज हम लोगों को अपन घटाना पड़ेगा।
1: डॉक्टर साहब, नमक एक सवाल है।
2: हाँ,
1: नमक के इस्तेमाल को लेकर कई बार सलाह दी जाती है कि ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए?
2: नमक के बारे में देखिए रिकमेंडेशन है कि 2500 मिलीग्राम पर डे आप खा सकते हैं। 2500 मिलीग्राम का मतलब होता है चाय वाली चम्मच से आधा चम्मच पर डे सुबह से रात तक। लेकिन दिक्कत के क्या है कि नमक को हम लोग नाप तोल के अपने खाने में नहीं डालते हैं
1: स्वाद के मुताबिक।
2: और भारतीय व्यंजन, भारतीय लोग, हम लोग ज़्यादा नमकीन खाने के आदत हैं। आपने देखा होगा गांव में घरों में कि जब लोग खाना खाते हैं तो अपने से बोलते हैं कि थोड़ा अचार खाने को दे दो यार। और भोजन में अगर आप
1: तो नमक का इस्तेमाल
2: चटनी नहीं हो तो उनको बहुत तकलीफ होती है।
1: डॉक्टर साहब,
2: भोज भात में जाएं तो चाट पर लोग सबसे ज़्यादा छोड़, हम लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, इस जो हमारा नेचर है उसको घटाना होगा। कुछ भारतीय लोगों में एक अच्छी बात मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक परंपरा है एतवार करने के लिए, एतवार के दिन सॉल्ट नहीं खाएंगे।
1: अच्छा।
2: मंगल के रोज नहीं खाएंगे, किसी खास दिन फेस्टिवल के दिन नमक नहीं खाएंगे। ये हमारे अपने
1: परंपरा से आई हुई
2: अब पूर्वज के दिमाग में था। हाँ। तो उनकी नमक की मात्रा को घटाने के लिए फेस्टिवल तो, में पर्वों में दिया गया कि नहीं खाएंगे।
1: तो आज की हेलो जिंदगी का जो समय है,
2: मैं एक चीज कहूंगा नमक के बारे में कि अगर आप रेस्टोरेंट का खाना, भोज भात का खाना, मार्केट का खाना, पैकेट का खाना, भुजिया उजिया, हाँ। अगर खाना अपना बंद कर दें इतना ही काफी है आपके नमक को कम करने।
1: सेंधा नमक के बारे में,
2: सेंधा नमक इज अ वंडरफुल चेंज, बहुत अच्छी बात है। हाँ। सेंधा नमक और कॉमन सॉल्ट में फर्क है, ये जो उजला वाला सॉल्ट है इसको इसमें सोडियम की मात्रा जाती है, वो हमारे बीपी के लिए खतरनाक है। लेकिन सेंधा नमक में सोडियम की जगह होता है पोटेशियम, और पोटासियम की मात्रा अधिक होने से बीपी कंट्रोल करता है, हमारे लिए फायदेमंद भी है और बीपी को घटाने में भी सेंधा नमक मदद करता है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी जगह अगर वो सेंधा नमक खाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है।
1: हेलो जिंदगी में आज का विषय था उच्च रक्तचाप, लक्षण और सावधानियां। बतौर विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, डॉक्टर ए के गुप्ता साहब, आपने अपना समय हमारे लिए निकाला।

हेलो जिंदगी, अभी आप हमारा ये फोन इन कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। लीजिए, अब प्रस्तुत है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम सखी बहिन। सूत्रधार है माला झा और प्रस्तुत करता है असद दाऊद।

0: सखी बही।
1: नमस्कार, कार्यक्रम सखी बहिनक संग हम छी माला झा। अपने समस्त गुटे के स्वागत अछि आधा घंटाक एहि सतरंगी कार्यक्रम में, जतय एकै ठाम किछ जानकारीक गप होयत, किछ स्वास्थ्य रक्षा आ सौंदर्य रक्षाक गप, मनोरंजन लेल फिल्म संगीत आ मैथिली गीत, एतबे नहि आजुक एकटा कन्याक सुनब किछ मनतब। जतय एतेक गप ओतय भानस भातक गप कोना छूटत, तऽ भनसा घर दिस सेहो जायब। ते अपने समस्त गोटे जुड़ल रही रेडियो सेट वा न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यमे। सखी बहिन, अपने लोकनि तऽ अहुना गप करे में बड बदनामे छी, जे दो गोटे बैसब तऽ एको बेर मुँह बंदे नहि होयत, ओहिसँ बेसी के गपे की। मुदा बुझल अछि सखी बहिन, किछु प्रख्यात समालोचक के मानव छनि जे चुप रहेसँ नीक किछु गप कऽ ली। कतेको गोटे के इहो मानव छनि जे जिनकर कोनो चर्चा नहि, समाज में बड़ सामान्य मानल जाइत छथि। जँ किछु गप नहि हुए, चर्चा नहि हुए, तऽ की भेल, तैं खूब करी गप, एहिसँ लाभ सेहो अछि। आइ गप करी के लाभ पर किछु चर्चा करब। सबसँ पहिने तऽ सूचना सभक ढेर लागि जाइत अछि, तरकारीक भावसँ लो साड़ीक सिल के सूचना तुरंत भेट जाइत अछि। बच्चा सब लेल ट्यूशन टीचर के काज हुए, सस्ता ड्राई क्लीनर तकवाक हुए, घर लेल सहायिका के काज हुए, विद्यालय में एडमिशन के काज हुए, नीक कपड़ा सिएबाक टेलर के काज हुए, गप करबाक क्रम में जानकारी सबटा भेट जाइत अछि। संबंध में कोनो तरहक वाद विवाद भऽ जाइत अछि सखी बहिन, तऽ ओसब मदद लेल तत्पर भऽ जाइत छथि। मुदा तखने जखन कि हमसब गप करब, एतय धरि कि बाट घाट में कतेक नव संबंध, माने बेटी लेल बर आ बेटा लेल वधु के ताक सेहो भऽ जाइत अछि। आ पहिने तऽ बेसी अहिना कथा भऽ जाइत छल, आबो गपक माध्यमसँ सभक धियापुता द ओकर पढ़ाई नौकरी द जानल जा सकैत अछि। एहि लेल आवश्यक अछि गप केनाइ। जँ गप नहि करब तऽ कोना बुझब, आ कतेक बेर कुटमैतीमे कोनो विशेष गप बुझि सकै छी जे ओना बुझनाइ कठिन भऽ सकैत अछि। कतेक बेर गपे गपमे किनको रुचि कौशल बुझि सकै छी कि के नीक गबै छथि आ के नीक सिलाई पेंटिंग करै छथि। तऽ आउ अपनो लोकनि सुनै छी ई गीत।

गीत सुन के अपनो लोकन गुनगुना सके छी, एक दूसरा से गुण के आदान प्रदान से हो को सके छी, अपन व्यक्तित्व में विकास को सके छी। नीक गुण आ नीक चीज के क्रोह से सीखल जा सकते छी। कखनो काल टोल परोसक बच्चों सने गप को ली, ओकरो मोनक गप बुझ सके छी, विशेष को किशोर वर्गक बच्चा सो। एतबे ने आपसी सद्भाव के बढ़ावा देते छी संग मिल गप के नए। किस समाजशास्त्री के कहब छन जे सामाजिक वातावरण की उचित रीति से बुझबाक लेल खुज के एक दूसरा से गप के नए स्वास्थ्य विकास लेल उत्तम होते छी। कोनो मोहल्ला हुए, सोसाइटी हुए, टोल परोस के स्वच्छता का ध्यान देख रेख, बच्चा सबक खेलक गप हेबा के चाहिए। आ कतेक बेर त मोहल्ला में संदिग्ध लोक के चिन्ह अपने लोकन सुरक्षित रह सके छी। एते एक गपक मध्य सखी बहिन सजनाय सवरनाय के गप सेहो कह सके छी। तब सुने छी एहने सन एकटा फिल्म संगीत।

0: पुरजाय लेल प्यारे वा साइकिल के प्रयोग करी। गैस पर किस चढ़ा के कतु बाहर नहीं चल जाए, जय घर में नहीं रही, पंखा बल्ब नहीं जरा भी। सौर्य ऊर्जा के प्रयोग से हो कैल जा सकत है। जतो ऊर्जा के बचत करी उते कोनो चीज के अनावश्यक संग्रह नहीं कौली, चलन में रह दी। रुपया हुए, सोन चानी हुए वा गैस सिलेंडर, सबक लेल सोची। फ्रिज एसी कूलर के साफ सफाई पर ध्यान राखी, ओकर रख रखाव से बिजली बचत भ सकत है। सखी बहन गप्पे गप में और कतेक गप, जेना आब गर्मी छुट्टी आब वाला है, बच्चा सभक लेल की सब योजना बन रहल है। सुने छी आजुक कन्या सो।
1: सब के प्रणाम, हम पूजा झा बेला दुला से बाज रहल छी। आई हम गर्मी छुट्टी में बच्चा सभक अपन समय केना उपयोग करता एहि विषय पर किछ विचार रखे चाहे छी। एकटा माता पिता के रूप में ई हमर जिम्मेदारी अछि जे हम अपन बच्चा के केवल पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन जीवाक सही तरीका सेहो सिखाबी। गर्मी छुट्टी बच्चा सबके लेल बहुत महत्वपूर्ण समय होइत अछि। ई समय केवल आराम करबाक लेल नहीं छै बल्कि अपन प्रतिभा ज्ञान आ संस्कार बढ़ेबाक अवसर होइत अछि। गर्मी छुट्टी सही पहचान, ज्ञान, संस्कार और मुस्कान। आई के समय में बहुत बच्चा छुट्टी में मोबाइल, टीवी और वीडियो गेम अधिक समय बिताबै छै। धीरे धीरे वो अपन समय के मोल बुझब छोड़ दे छै। एकटा माता के रूप में हम अपन बच्चा के प्रेम से समझाबी चाहे छी जे समय बहुत बहुत मूल्य बहुमूल्य अछि और एक बेर समय चल जाए तो फिर घूरि के नहीं आयत। तैं छुट्टीक प्रत्येक दिनक सही उपयोग आवश्यक अछि। समयक सदुपयोग करब, जीवन में आगा बढ़ब। हम अपन बच्चा के सबसे पहिने एकटा छोट दैनिक कार्यक्रम बनाबक लेल कहब। ओहि कार्यक्रम में पढ़ाई, खेलकूद, आराम और परिवार के संग समय बितेबाक समय निर्धारित सेहो होय। बहुत अधिक पढ़ाई सेहो ठीक नहीं और केवल खेलकूद सेहो उचित नहीं। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी छै। खेलू, कूदू, सीखू, पढ़ू, छुट्टी के सफल जरूर बनाबू। हम बच्चा के प्रतिदिन किस समय पढ़ाई दोहराबो के लेल प्रेरित करब। छुट्टी में पढ़ल बात फिर से पढ़ला से बच्चा सबके ज्ञान बहुत मजबूत होइत अछि। हम हुनका कहबनि जे किताब, प्रेरणादायक पुस्तक और सामान्य ज्ञानक पुस्तक पढ़वाक लेल किताब मनुष्यक सबसे नीक दोस्त होइत अछि। किताब पढ़ला से भाषा सोचबाक क्षमता और कल्पना शक्ति बढ़ैत अछि। मोबाइल छोड़ू, किताब से जोड़ू। सब बच्चा के इहे सिखबियौन जो मोबाइल के छोड़ कर किताब से जोड़ लिया अपना आप के। एहि संग हम बच्चा के रचनात्मक काज में भाग लेबाक लेल प्रेरित करब। चित्रकारी, संगीत, नृत्य, हस्तकला, कविता लिखनाए, बागवानी केनाए, खाना बनौनाए काज में बच्चा सबके नव प्रतिभा जगबैत अछि। प्रत्येक बच्चा में कोनो ने कोनो विशेष गुण जरूर होइत अछि। केवल ओकरा सही अवसर देबाक आवश्यकता होइत अछि। हर दिन किछु नव सीखू। हर बच्चा के सिखबियौन जे हर दिन किछु नव सीखू, अपन भविष्य उज्जवल बनाओ। गर्मी छुट्टी में खेल कूद सेहो बहुत जरूरी अछि। आइ काल्हि बच्चा सबके घरक भीतर अधिक समय बीते छै और एकटा माता के रूप में हम अपन बच्चा के बाहर खेलबाक लेल, दौड़बाक लेल, साइकिल चलाबऽ के लेल, योग व्यायाम करय के लेल, एहि सबसे बच्चा के शरीर स्वस्थ रहत, एहि स्वस्थ रहै छै और मनो बड़ प्रसन्न होइ छै। स्वस्थ शरीर, प्रसन्न मन छुट्टी बनाबै जीवन धन। हम बच्चा के प्राकृतिक महत्व सेहो बुझेबै। हुनका गाछ लगेनाए, पौधा लगेनाए, फूलक देखभाल केनाए और प्राकृतिक संग बिताबे के लेल प्रेरित करब। प्रकृति मनुष्यक सबसे पैघ शिक्षक छै। बच्चा जखन प्राकृतिक नजदीक जायत छथि तखन हुनका में शांति, धैर्य और संवेदनशीलता विकसित होइ छनि। टीवी छोड़ू, प्रकृति से जोड़ू। सब बच्चा के सिखबियौन

0: पृथ्वीके छोड़ि कऽ प्रकृतिसँ अपना आपके जोड़ि लेबाक लेल। और अन्तमे हम बस ई कहब जे बच्चा कच्चा माटिक समान होइत अछि, माता पिता जे रूप देता बच्चा ओहने बनता। यदि हम अपन बच्चाके प्रेम, अनुशासन और सही मार्गदर्शन देब तऽ ओ भविष्यमे एकटा सफल और संस्कारी व्यक्ति बनत। घुमबो करब, सिखबो करब और जीवनके सुंदर जरूर बनायब।
1: आजुक कन्या के मान्यता सुनलाक बाद आब स्वास्थ्य रक्षा संबंधी किछु गप कऽ ली। सखी बहिन, आइ 17 मई के विश्व उच्च रक्तचाप दिवस सब ठाम मनाओल जा रहल अछि, जाहिसँ उच्च रक्तचापक प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाओल जा सके। साइलेंट किलर वा कही कि मौन हत्याराक संज्ञा एकरा देल गेल अछि। चिकित्सक के अनुसार सामान्य रक्तचाप के सामान्यतः 120/80 से नीचा परिभाषित कयल गेल अछि, जखन कि उच्च रक्तचाप के 130/80 वा ओहिसँ बेसी पर चिन्हित कयल गेल अछि। तैं नियमित अंतराल पर अपने लोकनि जाँच करबैत रही। आइ कतेक ठाम तऽ निःशुल्क चिकित्सा शिविर सेहो लगाओल गेल अछि। एकर संतुलन लेल आहार विहार पर ध्यान देने रही। आहार में नून के मात्रा कम से कम करी। नियमित रूप से किछ हल्लुक व्यायाम करित रही। तनाव कम हुए ए लेल किछ न किछ उपाय करी। अपना आप के व्यस्तता रखते छी अपने लोगन, कखनो काल कनी आराम से हो गली। सखी बहिन, हम सब तो सर्वप्रथम एकटा गृहिणी छी ना, ते भनसा घर में भोजन भात पर ध्यान राखल जा सकैत अछि कि कोन तरहक भोजन वा पौथ बनायब। फल आ तरकारी के उचित सेवन पर सेहो ध्यान दी। जीवनशैली में उचित परिवर्तन सँ उच्च रक्तचाप के नियंत्रित कयल जा सकैत अछि। जो नियमित जांच से रक्तचापक स्तर में बेसी परिवर्तन नहि हुए, माने उच्च रक्तचाप ओहिना रहे, तँ चिकित्सक के सलाह सँ दवाई के सेवन कयल जा सकैत अछि। अहाँ अपने मोने कोनो दवाई नहीं खाली। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनेबाक उद्देश्य यह है जे वैश्विक स्तर पर सब केओ जागरूक होइत आ अपन स्वास्थ्य के प्रति सचेत होइत। किछ सौंदर्य रक्षा के गप कऽ ली। सखी बहिन, काज बात में ततेक व्यस्त रहे छी जे साज सज्जा लेल बेर की निकालब। घरक बजट ततेक संतुलित राखऽ पड़ैत अछि जे साज सज्जा आ पार्लर जाय के गप की करब। मुदा एहि कार्यक्रममे अपने लोकनि घर बैसल बिना कोनो अतिरिक्त खर्च के सुनेर लगबाक किछु टिप्स लऽ सकैत छी। त्वचाक रक्षा लेल सबसँ पहिने मुख के धोके बर्फ वा ठंडा पानिसँ भिजा दी। आब ओहि पर पाकल अनरनेबा के मैस कऽ के चेहरा पर लगा ली, जेना कोनो फेस पैक लगबै छी। 20 मिनटक बाद धो ली। झाइसँ सेहो बचब, मौसरी दालि आ दही के पेस्ट बना ली। मुँह नीक से साफ कऽ के ई पैक लगा ली। 15 मिनटक बाद मुँह धो ली। गुलाब जल लगा के मुँहक त्वचा पर थपथपा दी। मुखक कांति देखैत बनत। सखी बहिन, केरा के मैस कऽ ली, पाकल केरा। किछ बादाम भिजा के पेस्ट बना के ओहि केरा में मिला दी आ ई पैक 30 मिनट धरि मुख पर राखी आ फेर धो ली। अहू से असमय झुर्री से बचब। सेबक रस में नेबो रस मिला के 20 मिनट धरि लागल रह दी, फिर मुँह साफ कऽ ली। मुखक कांति देखैत बनब। तैलीय त्वचा लेल ई बेसी कारगर होइत अछि। मुल्तानी माइट में दही आ लाल चानन मिला के 20 मिनट धरि मुँह पर लेप जकाँ लगा ली। ठंडा पानि से फिर साफ कऽ ली। सब त्वचा लेल ई कारगर होयत। दाग धब्बा सेहो ऐसे ठीक भ सकैत अछि। पुदीना पातक व्यवहार तो अपने लोकन करते छी। पुदीना के रस में दही मिला के लगा दी आ पैक सुखेलाक बाद ठंडा पानी से धो ली। गुलाब जल लगा के त्वचा पर थपकी मार के सुखा ली। सुहास, जेकर नाम खीरा सेहो अछि, ए बीच खूब भेट रहल अछि। सुहासक रस में चानन मिला के मुँह पर लगा दी। 20 मिनटक बाद ठंडा पानी से धो ली। झाई सब ठीक भ जायत। सखी बहिन, संतोलाक रस में जौ के आटा मिला के मुख आ गर्दन के त्वचा

0: भीड़ लागल रह दी। फिर ठंडा पानी से साफ कर ली। मोटा मोटी इतने मान ली सची बहन जे अपन सबक भंसा घर में एक एक चीज बोसते ओकर फेस पैक बना के मुँह पर लगा ली आ 10-15 मिनटक बाद धो ली। मुखक कांति बनल रहत। भंसा घर में भोजन बनबे काल सेहो किछ प्रयोग सोचि सकै छी आ अमल में सेहो आनि सकै छी। आखिर सुनेर देखनाइ सबक सामना होते अछि। आ जँ बिना खर्चक इलाज भऽ जाय तऽ कोन हर्ज। भंसा घरक गप आयल तऽ भानस भातक गप कहली जाहिमे आइ हम बनायब ओलक गोभी। एहि मध्य जतऽ जतऽ ओल रोपल गेल हैत ओतऽ ओलक गोभी निकल रहल हैत। आब ओकर तरकारी बनायब। सामग्री ओलक किछु गोभी कतेक भेट जाय। पिठार हरेद नून गरू तेल गुड़ टमाटर पचफोरन पिठार मिरचाई हींग जीर आ धनी बुकनी मिरचाई बुकनी अन्य बुकनी। सबसे पहले ओलक गोभी के धोते बिरिया जैसा बना के अलग अलग रख ली। पिठार जब पिठार नहीं हुए तब बेसन में से हो कैल जा सकते हैं। तब बेसन में नून हरेज दो के उलक गोभी के लिपटा के कौरू तेल में तरुआ जका तैर के निकल ली। आब लोहिया में पचफोरन हिंगक फोरन दो के ओमे आवश्यकता अनुसार टमाटर के चार फाँक क के कनी भुज ली। हरेद धनी जीर मिर्चाई बुकनी कश्मीरी मिर्च दो के नीक जका भुज ली। आप गोट पीस के मिला दी। कनी भुजलाक बाद पानि दो के आमिलक संग नोन मिला के बरका दी। बरक गेलाक बाद तौरल उलक गोभी मिला के फिर दू बेर बरका दी। आब उतार ली आ नेबो नीक जका मिला दी। जमीरे नेबो भेट जाय तो अति उत्तम। गरम गरम भात सने खाब तो बड़ स्वदगर आ चहटगर लागत। भानस के गप भेल तो एकटा गप और मुन पड़ल। कखनो काल बर्तन साफ केलाक बाद हींग लहसुन आद व आन मसालाक गंध रहि जाइत अछि। जँ पानि मे कनि नून आ नेबो मिला के बर्तन साफ कयल जाय तऽ गंध दूर भागत। जखन डोसा वा तव पर कोनो नोनगर जेना उत्तपम चिल्ला बनबै छी अपने लोकनि तऽ तव पर सटि जाइत अछि। एकटा सलाह वा उपाय जे बुझी हमहूँ जाँच केने रही। नून मिलल ठंडा पानि सँ तब बीच बीच में धोली आ फिर आँच पर चढ़ा दी। डोसा वा चिल्ला फटाफट बनत आ सटबो नहि करत। सखी बहिन अपनो सब लग और बहुतो जानकारी हैत अवश्य सब श्रोता लोकनि धरि पहुँचाबी। अगला कार्यक्रम में अपनेक नाम आ पताक संग ओकर चर्चा कयल जायत। तैं अवश्य पत्र लिखी आ एहि लेल पता लिख लेल जाय कार्यक्रम सखी बहिन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा पिन कोड 8460004 व मेल करी akashwanidarbhanga@gmail.com पर अपने एक पत्रक बाट जोहित आब आज्ञा चाहे छी। नमस्कार।
1: सखी बहिन
2: सखी बहिन अभी आप हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। आइए अब सुनते हैं नाटक नवीना। लेखक हैं डॉक्टर कमल कुमार झा। इसे एक बार फिर से सुन लें। प्रस्तुत है डॉक्टर कमलकांत झा का लिखा मैथिली नाटक नवीना।

0: नवीना नवीना के बाप कत्ता गेल थुन? ककरो से महिषो दुहाली कथिन से नहीं एहन ताल नहीं देखल के बजट की होई छौ?
1: की
0: कहे छा गे महिष दुहल जतै कि नहीं? बाप कत्ता छथुन?
1: दलाने पर तो ताश खेलाई छथी।
0: हाँ ताशे खेलने गुजर चलता है। हमारा की अबैय बउआ तो कहे छे एकटा नौकर महिषे दुहल राख ले हिनका बुते कोनो काज नहीं हेतन।
2: की ठीक कहे ए बड अनघोल कहने छी
0: भोरे से हल्ला कर रहल छी आ एखन धरि महिषो ने दुहल गेले। एहि घरक रक्षा भगवान एक हाथ छन।
2: हाँ ओ चिंता बुझू जे अही के नहीं हमरो अछि। इदम लखना के तब भोरे ढल हेलबा कहि आयल हेतै है? ओ आबिते हैत।
0: बेटी से विवाह जोकर भेज जाइए मुदा अहाँ के तकर कोनो चिंता नहीं।
2: हाँ से तो सत्य एतेक दिन तक बुझू जे हम स्वयं ध्याने नहीं दै छलहुँ कारण नवीनाक पढ़ाई चौपट भ जतेक मुदा आब तो बुझू जे ओ मैट्रिक पास कइए गेल अछि।
0: कतौ कोनो बात ध्यान में आयल कि नहीं?
2: हो ध्यान में तो आयल अछि अवश्य। रामपुर में बुच्छ बाबू के एकैटा बेटा छ जमीन जथा सेहो बुझू जे 5-7 बीघा हेबे करते। बर एहि साल बीए में नाम लिखौलक अछि। आपत्ति एतबे छै कि जे ओ कनेक बचौने सन लगै छै।
0: नहीं गे दाई हम ई काज नहीं करब।
2: से किया किए?
0: अहाँ के तक खाली खर्चा के डर होइए मुदा काल भेने सब धूर छिया कर लागत तकर चिंता नहीं होइए।
2: से धैर्य यथार्थे कहे छी दोसक मुँह में झीक देव बुझू जे बड्ड कठिन होइ छै।

0: भौजी, ये भौजी।
1: हाँ हाँ, या एलो।
2: ओ नवीना दाय, आओ आओ ए पटिया पर बैसू। अच्छा कहू बउआ, गरीबक आंगन में पैर देवाक मन कोना भ गेल?
0: अहू बड़ गप दै छियै भौजी। अच्छा छोड़ू, अहाँ जे बहिना के दस्ताना बनेनाइ सिखा देलियनि से हमरो सिखा नहीं दिया?
2: अवश्य सिखा देब। अहाँ सबटा सामग्री लऽ कर एक दिन चैन से आओ, हम छैन देब आ किछु आगा बढ़ा देब।
0: अच्छा,
2: अपने सबटा भ जायत।
0: हाँ भौजी, ये
2: हाँ हाँ
0: एकटा बात पूछू।
2: की?
0: हम सब कॉलेज में नहीं पढ़ सकै छी की?
2: किएक नहीं पढ़ सकै छी? हमर तो भाई बहिन सब मधुबनी कॉलेज में पढ़े। ऐ धन सम्पत्ति कोनो चीज छै, जे बन जात से बन जात।
0: मधुबनी में तो अहाँ के नहिरा के डेरा अछि ने, तैं सुविधा अछि। हम सब कोना कतऽ डेरा दऽ सकबै? आ रिक्शा से यदि गामे से जाय आबी तब 15 टका रोज ओकर भाड़ा लागत। बाबूजी से कंजूस छै जे खर्चक नाम सुनकर आगा पढ़ेबाक नामे नहीं लै छथि।
2: ऐ दाय, अहाँ कनेको चिंता नहीं करी, हम अहाँक माँ से गप करी छी। जखन पढ़वाक इच्छा अछि तऽ बाबूजी किएक नहीं कॉलेज में नाम लिखा देता?
0: हाँ ये भौजी, कनी अही गप कऽ कऽ देखियौ।
2: हाँ हाँ,
3: गोर लगै छौ दीदी।
2: नीके रह बाब, कोना कोना एल? हाल समाचार नीक छै ने?
3: हाँ हाँ, हाल समाचार तो बड्ड बढ़िया।
2: माँ बाबूजी सब नीके छथुन कि नहीं?
3: हाँ, सब बड्ड प्रसन्न छथुन। दीदी,
2: हाँ
3: ई बालिका के छलथुन?
2: ई छली नवीना, ओहि टोलक उमेश बाबू के बेटी। मुदा से किएक? तोरा पसिन पड़ गेलखुन की?
3: ए तोरा तो तेसरे अर्थ लग जाइ छौ। तो कॉलेजक नाम लेलही ने, तैं हमरा उत्सुकता भेल।
2: हाँ रे बउआ, ओ बेचारी मैट्रिक में फर्स्ट भेली है, आगा पढ़वाक इच्छा छन मुदा बाप पढ़ावे नहीं चाहे छथिन।
3: मुदा उमेश बाबू तो सुनै छी बड़ धनीक लोग छथि,

0: बेटा मेडिकल में पढ़े छन तखन बेटी के पढ़वा में आंख क्या लगे छन।
1: वाह रे, दूर से अहिना सबके सब धनी के बुझ पड़े छे, मुदा जकरा बाहरी आमदनी नहीं छे तकर कोन हाल छे से त हम ही सब जनै छी। उमेशो बाबू लोकनिक आब ओ हाल नहीं ने छन।
0: ऐसे जे होइन मुदा ओहन बढ़िया बेटी के पढ़ावा में कंजूसी नहीं करवा चाहिए।
1: अच्छा छोड़ ई बात के, अपन पढ़ाई लिखाई हाल का। अरे कहिया धर एमए पास करवे? हे तोहर विवाह दुरागमन देखल मोहन लागल।
0: हाय रे मिथिलाक नारी समाज, केवल सौखे चहनता में लागल रहत, भविष्यक कोनो चिंता नहीं। आ ताई पर सब विध व्यवहार भेले ताके भने घर में किछ रहे कि नहीं रहे। दीदी हमर विवाह कखन कोन समय भेले के? अगला साल एमए के परीक्षा है, फिर 2-3 साल पीएचडी में लागत, तकर बाद नौकरी के जोगाड़, आ तकरे बाद विवाहक कोनो चर्चा हेबा चाहिए कि नहीं?
1: दाई गे दाई, ता धर तो बूढ़े भ जेबे रे, विवाहो दुरागमन समय पर निक लगे छे, मुदा आई कल ते दुनिया उल्टा भ गेल है, बुढ़वा बुढ़िया सबक विवाह होइ छे। पिछला मास कारी बाबू के धाकर सन बेटी के विवाह भेलन, असे जमाइयो तेहने भेलन, बड़का बड़का मोछ वाला। मुदा एहन कतौ विवाहो भेले है?
0: दीदी विवाह करब कोनो कठिन नहीं छे, कठिन छे ओकर प्रतिपाल करब। तैं जा धेर अपन पैर पर नहीं ठार भ जाए ता धेर विवाह नहीं करवाक चाही। हम ओहन लोक में से नहीं छी जे विवाह दुरागमन धिया पुता आ पढ़ाई लिखाई सब सासुर के भरोसे करते है। डार में दम में ने आ बाजार में धक्का।
1: दाय गे दाय, हमर भाई ससुर के किछ खर्च नहीं होबो देते, बात बात में सासुरे को पाट लेते। एहन कल जुगाड़ नहीं देखा।

0: की कहूँ भोला बाबू, हमरा बुझू जे अहाँ लोकनिक आशीर्वाद से तीन टा कन्या अछि। हम चाहे छी जे ओकरा लोकनिक विवाह में हमरा बुझू जे अधिक खर्च नहीं करा पड़े, मुदा बेटी सब कहुना सुखित घर घर में चलि जाए हो।
1: और जे किने से सब किछु ठीक भ जते उमेश बाबू, अपने चिंता नहीं कैल जाओ। पहिने जे किने से ई त कहल जाओ जे अपने के काज केहन कर चाहे छी।
0: देखू भोला बाबू, हम ई नहीं चाहे छी जे बर बहुत रास पढ़ल लिखल भेले ताके। हाँ बुझू जे पढ़ल कमो होइक तै नहीं हर्ज, मुदा जमीन जथा किछ अवश्य हेबाक चाहे, बुझलौ कि नहीं। वही दुआरे बुझू जे हम बेटी सबके बेसी पढ़बैयो नहीं चाहे छी।
1: जे किने से अपने कन्या सबके अधिक कियाक ने पढ़बो चाहे छी उमेश बाबू? ओ आब त जे किने से बर सब पहिने ही पूछ देत छै कि जे कन्या कतेक पढ़ल छै।
0: से नहीं बुझलौ घटक राज, हमरा लोकनि के आब तो ओ सामत रहल नहीं जे बुझू जे 70-80 हजार टका गैन कर बेटिक विवाह कर।
1: हाँ
0: जो बुझू जे अधिक पढ़ा देवे तो ओहने बड़ो न ताकत पड़त।
1: हाँ
0: रमेश बाबू अपन बेटी के एमए तक पढ़ौने छल, तै हुनका ओकरा जोगर बड़े ने भेटे छल ना।
1: बड़े ने भेटे छल नी, और तखन फिर कोना की भेलनि?
0: हेतनि की रमेश बाबू सोचे छला जे हमर बेटी ते एमए अछि तैं एकरा में टका लगबाक नहीं चाही, मुदा जखने कोनो सुयोग बरंग बाप लग जाय छला ना तो बुझू जे ओ अपन मुहे घुमा ले छला।
1: कहू
0: आ कहे कि छले ना,
1: हाँ
0: हमरा बेटा के एहि साल विवाह नहीं करबाक अछि।
1: तखन तो जे किने से रमेश बाबू के बड़ झंझट भेल हेतनि, ओ फिर कोना की भेलनि?
0: ओ जी हेतनि की झक मार का बेचारे के एक ता इंजीनियर बड़ा खेतु 1 लाख टका गणो पड़ले, आ घर में जतक जे छले ना
1: हाँ
0: से सबटा ओही में झोंका पड़ले।
1: जे किने से कोनो बात नहीं, आब बेटियो जे किने से हुनके न सु

0: करतनि, रमेश बाबूक जान बचतनि तो सबटा सधिए जेतनि।
1: ओ जी सजतनि की कपार यौ, आय आब तक दोसर बेटीक विवाह कोना हेतनि से बुझू जे तीनू लोक सुझै छनि हुनका। ओ जखने पहिल में ओतेक खर्च पड़ि गेलनि तऽ दोसर बेटी के तऽ बीए में रोकि लेलनि।
0: हाँ
1: आ तेसर के बुझू जे आईए में लटकौने छथि।
0: जे किने से सब बात बुझ गेलौं, अपने जे किने से निश्चिंत रह।
1: हाँ हाँ भोला बाबू, हमरा बुझू जे अहाँक बहुत भरोसा छ। हम चाहे छी जे तीन चार वर्ष में कहुना तीनू बेटी पार लाग जाए, बस हम गंगा स्नान क लेब। आ अहूक जे उचित पारिश्रमिक हैत से तऽ भेटबे करत।
0: हाँ हाँ ये सब तो जेकिन से हेबे करते, सबटा भगवती हाथ में छन। अच्छा तो नमस्कार।
1: मुदा ध्यान रखबे कने भोला बाबू। नमस्कार। तब बुझू जे अहा के अदला है लगई है।
2: असल में अहा बेटी के पढ़ा बेकार बुझे छी।
1: बेकारे नहीं बुझे छी, ओकरा हम घाटा के सौदा बुझे छी।
2: से नहीं है, हमर बेटी कॉलेज में पढ़वे करत।
1: हाँ हाँ जी मन में से करत रह।
3: ओकरे से पूछल जाए जे की बात छे।
4: की रह बात कोनो तेहन नहीं छे। हाँ तखन बहिनी गाम के यात्रा से हम अनुभव केलहुँ अछि शंकर, जे जहिना स्त्री शिक्षा दिस लोक अत्यधिक उत्साहित भेल छल, तहिना ओहि दिस सँ भयंकर वैवाहिक समस्या कारणे आब लोक हतोत्साह भ रहल अछि।
3: ई तो कोनो नव गप नहीं छैक। तखन बहिने के गाम में जाकर तोरा गौतम बुद्ध जका ज्ञान कोना भेंट गेलक।
4: हे ओहि गाम में उमेश बाबू एकटा सुखी संपन्न लोक छथि, किंतु ओ अपन बेटी के कॉलेज में पढ़ेबाक विरोधी एहि हेतु छथि जे तखन हुनका विवाह में अधिक खर्च पड़तनि।
5: ठीक कहै छ समान। हमरो गाम में लोग सब चर्चा करैत रहे जे जखन बेटी के अधिक पढ़ौला सँ आर अधिक फेरी में पड़ जाए तखन ओकरा पढ़ौला सँ लाभे कौन।
3: मुदा एक बात छैक समान, आब कतौ कतौ एडवांस नारी समाज विद्रोह सेहो करऽ लागल अछि।
5: ई तऽ नीक लक्षण जरूर अछि भाई, मुदा एहि हेतु छात्रा लोकनि के अधिक तेज बनौ पड़तै, तखने ओ नीक पद पर जा सकै।
4: तो ठीक कहले शंकर, समस्याक मुकाबला करबाक चाही आ ताहि लेल कठोर परिश्रमक आवश्यकता छै। जो गाम गाम में लड़की सब विवाह से पूर्वहि नीक नीक पद पर पहुँच जाए तब बेटा वाला के झक मार के नीचा उतरऽ पड़तै।
3: असल में लोके ततेक स्वार्थी बनि गेल अछि विनोद, जे समाजक प्रगति हैब कठिन छैक। आब देखी ने, एते व्यक्ति बेटी के बेर में आदर्श तकैत अछि किंतु बेटा के बेर में सब किछु बिसरि जाइत अछि।
4: हाँ रो दिनेश, आदर्शक दुहाय दिनहरो व्यक्ति अपन सुयोग बेटाक विवाह ततै करैत अछि जाहिठाम आशा से अधिक लाभ बिना मंगने भेट जाइत छै। पहिने साइकिल घड़ी औंठी ई तीनू प्रथम श्रेणीक विदाय होइत छलै। ओकरा बाद एलै रेडियो टेप रिकॉर्डर आर आब चाहिन बाबू सबके स्कूटर फ्रिज टेलीविजन।
3: हाँ से ठीक है।

0: ऐ दाय, अहाँ हमर भाईक बड़ प्रशंसा कऽ रहल छियै, कहीं पसीन तऽ न पड़ि गेलै? हे जोड़ी बड़ नीक रहत, कही तऽ हम बाबूजी के समाद पठा
1: दी। छोड़ू ई गप सब, अहाँ के तऽ बस एतबे खोद बेद रहैया। विनोद जी एकटा आदर्श युवक छथि, हुनका सँ जकर विवाह हेतै ओकर भाग्य कहबाक चाही।
0: है दाय, आब हम नीक जकाँ बुझि गेलहुँ जे अहाँ लोकनि कॉलेज मे की सब करै छी। भावजक रूप मे हमरो अहाँ खूब पसीन छी।
1: देखू भौजी, हम जाइ छी तऽ।
0: अरे रे, अहाँ कतऽ पढ़ेलहुँ? कनेक सुनि लिअ, हम आइए अपन नैहर समाज पठाबै छी।

0: हा, भोला बाबू आयल जाओ आयल जाओ, बैसल जाओ। बुझू जे अपने त नहीं छलो, मुदा अपने कृपा सँ काज त हमरा बड्ड जीतल भेल। विनोद बाबू सन सुयोग आ सुशील जमाय भेल, एहन काज में त आन ठाम बुझू जे 1 लाख टका लग जाए,
1: ठीके बात।
0: किंतु एहिठाम एकोटा पाई हमरा नहीं देबऽ पड़त। हाँ, आ बरियातिक संख्या सेहो मात्र 15 छल, एक से एक नीक लोक सब, सबटा काज सकुशल सम्पन्न भेल। हाँ, ई सब तऽ बुझू जे अपने सर घटक रास सँ संभव भेल। भोला बाबू,
1: उमेश बाबू, ओ ई मात्र भगवतीक कृपा कहबाक चाही जे विनोद बाबू सन जमाय आ दिवाकर बाबू सन समझ जे किने से भेट गेल।
0: हाँ, अवश्य किने,
1: हमरा तो जे किने से साधारण श्रम कर पड़ल, तखन आर हाल समाचार कहल जाओ।
0: आर समाचार तो बड्ड बढ़िया, तखन बुझू जे बउआ विवाह नहीं करे चाहे छन।
1: देखिए,
0: कोनो कथा पसीने नहीं पड़े छन हुनका, से एकटा एकटा चिंताक विषय अछि।
1: ओ
0: देखू ने, एहि साल MBBS के 3rd साल समाप्त भ गेलन, आ तखन बुझू जे आबो जो विवाह नहीं करता तो विवाह करता कि बुढ़ारी बयस में यो।
1: अपने ठीक कहै छी उमेश बाबू, जे किने से विवाह हो कि एकटा बयस होइ छै, इंजीनियर साहब वाला कथा से हो पसीन नहीं पड़लन की? ओ वो तो बड़ी नीक काज हुई।
0: आह, वो तो बुझू जे सब तरह नीक हो। इंजीनियर साहब 1.5 लाख टका नगद, आ बुझू जे ताई पर सो स्कूटर रंगीन टीवी इटाइल सब किछ विदाई देबाक हेतु तैयार छ। ओ जी कहे छी भाग गए से ना ओहन घर बुझू जे ककरो हाथ लगे छ।
1: अवश्य कि नहीं,
0: केवल कन्याक रंग कने दब छन आ किछ बोल लगे छन। बुझू जे ई त कोनो तेहन बात नहीं भेले।
1: नहीं नहीं,
0: कतौ तो ओकर विवाह हेबे न करते यौ।
1: अवश्य कि नहीं यौ, हैं हे, एहन गुदगर कथा के हाथ से नहीं जा दिया उमेश बाबू।
0: की कहे छी,
1: ओ जेखिने से डॉक्टर साहब के एक कार्यक हेतु तैयार करब आवश्यक अछि।
0: हम त थाक गेलौं भोला बाबू, आप अपने प्रयास कैल जाओ।
1: अच्छा, कि यो डॉक्टर साहब, अब यकीन से अपने लोकन कनेक हमरो लोकन गप दिस ध्यान देल जा कि अब कनेक इमहर आओ ने या एलो। ओ हमरा कहवा तो अच्छी जे इंजीनियर साहब वाला कथा अपने के किया कने पसंद पड़े तो अच्छी। हे, हुनक कन्या जकिन से दरभंगा में MSc में पढ़ित छन, आब ऐसा नीक कथा आर की भ सकैत अछि।
2: अपने लोकन जाहि विषय के उत्तम बुझै छियै से वस्तु त उत्तम नहीं छै।
1: जकिन से तखन उत्तम छै कोनो वस्तु?
2: उत्तम छै मनुखक व्यक्तित्व, ओकर प्रतिष्ठा। कोनो धनवान व्यक्ति के हम बड़ पैघ नहीं बुझै छियै। धन तो 2 नंबर काज क के क्यों जमा कर सकते।
0: ओ जी भोला बाबू, पहिने हिनका लोग इनके पूछियो जे बिना टका पैसा आई कल को नो काज होय छे
1: नहीं।
0: सब ठम तो टके चाहि ना, आ तखन फिर आयल लक्ष्मी सो जे घृणा करब, ई कोन बुद्धिमानी भेल।
2: नहीं नहीं बाबूजी, हमरा लोकन लक्ष्मी से घृणा नहीं करैत छी, बेटी के बेटाक बराबरी में आना चाहैत छी। तैने नवीनाक विवाह में एको

0: एकटा पाई अहाँ के खर्च नहीं करे पड़त। कल्पना करू आज जो कन्यादान में 1 लाख टका खर्च करे पड़ित तखन केहन लगत।
1: ऐसे जे किने से जानिए किने डॉक्टर साहब, तखन बुद्धिमान व्यक्ति वह कहब जे अपन नफगर काज कहुना सुतार लेत।
0: जी नहीं, हमरा लोकन ओहन बुद्धिमान लोक नहीं छी। अही लोकन सन बुद्धिमान लोक सबक कारण आज समाज चौपट भेल जा रहल अछि। की ओझा जी, हम ठीक कह रहल छियनि कि नहीं?
2: अवश्य डॉक्टर साहब, अपने एकदम ठीक कह रहल छियनि। केवल अपन चिंता तो कुकुर बिलाड़ि सेहो कऽ लैत अछि। मानवताक रक्षा तखने संभव अछि जखन समाज एवं देश के ध्यान में राखि कोनो काज कयल जाय।
0: बिल्कुल।
2: आ विवाह में काटर प्रथा व तिलक दहेज भ्रष्टाचार के बढ़वैत अछि।
1: तिलक दहेज से भ्रष्टाचार बढ़ित छै कि उससे कोना हो जादी?
2: देखल जाओ मिसर जी, जकरा लग में 2 नंबरक पाई छै से कन्यादान में खूब फूट देत अछि। परिणाम स्वरूप समाज में आनो लोक सब के ओकर देखौंस लागल लगैत छै। एक प्रकार से परिपाटी बन जाते अछि। आज तखन जकरा 2 गोटा बेटी रहै छै से भ्रष्टो आचरण द्वारा टाका जमा करबाक हेतु विवश भ जाइत।
0: ओझा जी एकदम ठीक कह रहल छथि।
3: हे ई आहे माहे सब छोड़े जाय जाओ वहां से।
4: हाँ हाँ, अहाँ लोकन के आम खेबाक अछि कि गाछ गनबाक अछि? ओ जी इंजीनियर साहब वाला कथा नहीं पसंद अछि तो दरभंगा डॉक्टर साहब बा पटनाक वकील साहब वाला कथा पसंद करू। 1 लाख टका तो ओह लोकन देबाक हेतु तैयार छथि। यो बोला बाबू
5: ठीक है कि नहीं?
4: अहाँ लोकन सौंसे दुनिया के चिंता एखने किया कह रहल छी?
2: बाबू जी त्यागक उदाहरण लोक के असल में स्वयं से प्रस्तुत करे पड़ित छै। भरि दिन झूठ बजिहार व्यक्ति ककरो सत बजबाक उद्देश्य कोना दो सकै छै? तैं डॉक्टर साहबक विवाह दरभंगाक प्रोफेसर साहबक कन्या से हेतनि से हमरा लोक निर्णय कयलहुँ अछि।
1: डॉक्टर साहबक विवाह प्रोफेसर साहबक ओहिठाम हेतनि? ओ की दोषक छिन हिनका?
3: बुझियो
1: की डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहबक परिवार से संपर्क बनौने छलहुँ। ओ उमेश बाबू
3: की कहै छी भोला बाबू?
1: ओ आब माथा हाथ दिला से काज नहीं चलत। बुझल हे, युगक अनुकूल हमरो लोकन के चलै पड़त।
3: अवश्य।

0: नवीना, अभी आप डॉक्टर कमलाकांत झा का लिखा ये मैथिली नाटक सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा,
2: बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: मैथिली नाटक नवीना में भाग लेने वाले कलाकार थे धीरेंद्र कुमार, सपन मजूमदार, हेमचंद्र मिश्र, सतीश कुमार सिंह, भोला झा, अनूप कुमार, कल्याणी चौधरी, मीरा झा और लक्ष्मी देवी। ये नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे सीताराम।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजने को हैं। अब कुछ ही क्षणों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
1: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात

6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमरीका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप मोहम्मद रफ़ी और साथी की आवाज़ों में ये देशभक्ति गीत सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का हमारा कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

जी हाँ, आपके अनुरोध पर मैं ये गीत सुनाता हूँ, और ये गीत है फिल्म गीत गाता चल से, आवाज़ जसपाल सिंह की है, गीत रचना और संगीत रचना रविंद्र जैन की। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं कुशेश्वर स्थान सलमगढ़ से मोहम्मद ईशा, सवीना नाज, मोहम्मद इरफान आज़ाद, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद आफताब, नवासी सना आफरीन, नवासी सादिया नूर, नवासा वारिस बाबू, शमा परवीन, शाहिन परवीन, नेमत परवीन, रौनक परवीन, सुमैया, फातिमा तथा खुशी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा बीमा भैरवी, विनोद विभूति, अंशु बबली, प्रियांशु साहू। दौलत बाग मुरादाबाद से आप हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी। तो लीजिए, आप लोग सुनिए अपनी पसंद का ये गीत फिल्म गीत गाता चल से।

0: गीत गाथा चल फिल्म किस गीत को आप पसंद करने वाले श्रोता सुन रहे थे जसपाल सिंह की आवाज में।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम आपके अनुरोध पर अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। अगला पत्र हमारे हाथ में है लाल पोखर दरभंगा से, मोहम्मद कलीम दीवाना, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद अमन, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद अमाज, शानी बेगम, खुशबू प्रवीण, शाह संता प्रवीण, शमा प्रवीण, डॉली प्रवीण और मेहरा प्रवीण। नहर मंटो से आप हैं भाई कादिर अली, जाकिर अली, हामिज अली, हामिद अली, जाविर अली, मोहम्मद अरमान और मोहम्मद सलमान। जतुका किशनपुर से आलमदीर कश, शवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शवाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हीना कैशर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज परवीन। आप लोगों ने सुनना चाहा है फिल्म आन मिलो सजना का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आपके अनुरोध पर आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे हैं। अगला पत्र छत्तीसगढ़ भाटापारा तरंगनी से, इसे फिर से सुनिए। दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा,

ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा, बेला गार्डन वार्ड नंबर 3 से दरभंगा से आप हैं विनय रंजन, नेहा रंजन और परिवार के लोग। ताजपुर मुब्बा से भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंज राज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा और ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी। लीजिए आप लोगों को हम सुनवाते हैं आपके पसंद का गीत, फिल्म सरगम से आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की है।

0: कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आपके अनुरोध कार्यक्रम में ये पत्र आया है जिला खंडवा ग्राम लोहारी से। सुनने वाले हमारे श्रोता हैं राजेश कुमार धनंजय, राहुल कुमार धनंजय, विशाल कुमार धनंजय, शिला धनंजय, गायत्री धनंजय, खुर्दीरू मानपुर से, विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद, आदर्श नगर मंटोल से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरभ शर्मा। इनामत टोल भगवतीपुर बिहार से सुना चाहते हैं नूतन सहनी, रासो देवी, कंचन सहनी, रिंकू देवी, बबीता सहनी, रुचि कुमारी, कोमल सहनी, निशु कुमारी, निव्या सहनी, सुधा सहनी, एस के सहनी, विवाह सहनी, ज्योति सहनी, पार्वती सहनी, त्रिपुरारी सहनी और संतोष कुमार सहनी। आप लोगों ने इसे सुनना चाहा है लता मंगेशकर और साथी की आवाज़ों में फिल्म राम तेरी गंगा मेली का ये गीत। गीत रचना हसा जयपुरी की है और धुन रविंद्र जैन की। तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत फिल्म राम तेरी गंगा मेली से।

आवाज़ थी लता मंगेशकर की फिल्म सारे गम में, इसे फिर से सुनिए। अभी आप अपने पसंद का गीत फिल्म राम तेरी गंगा मेरी से सुन रहे थे। आवाज़ थी लता मंगेशकर और साथी की। अब कार्यक्रम में अगला खत है गोविंदपुर धनबाद से। सुनने वाले हमारे श्रोता हैं शराफत हुसैन अंसारी, बेगम रेहाना, परवेज अशरफ, हसन इमाम। टावर चौक आशापुर से आप हैं प्यारेलाल मनोहर, अमरलाल मनोहर, दुलारे लाल मनोहर, सुंदरलाल मनोहर, प्रेम लाल मनोहर। रहमानिया मोहल्ला से ग्राम महसौल सीतामढ़ी जिला से, इसे फिर से सुन ली। रहमानिया मोहल्ला महसौल सीतामढ़ी से तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत नाज, नुजहत जहानाज, रिफत जहानाज, वसीम अकरम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, अमन अकबर। छत्रपति शिवाजी नगर से आप हैं राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। आप लोगों ने सुनना चाहा है मुकेश की आवाज़ में फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत, जिसे लिखा है इंदिवर ने और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का हमारा कार्यक्रम आपके अनुरोध पर अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है।

इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का हमारा कार्यक्रम आपके अनुरोध पर अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि TRE4 भर्ती परीक्षा के लिए जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। श्री तिवारी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया की तैयारी तेज कर दी गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने परीक्षा आयोजन को लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली है। प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के तहत मकानों की गिनती और उनके सूचीकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। गणना कार्य को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन ने नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। इसके माध्यम से लोगों की शिकायतों और आपत्तियों का निष्पादन भी किया जा रहा है। हमारे अररिया संवाददाता ने बताया है कि जिलाधिकारी सह प्रधान जनगणना अधिकारी विनोद दुहन ने लोगों से जनगणना कार्य में बढ़ चढ़ कर भागीदारी की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। ये सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या माई गव ओपन फोरम के माध्यम से भी दिए जा सकते हैं। आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक से भी सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेज सकते हैं। सुझाव 29 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। देश का प्रमुख औद्योगिक संस्थान अडानी समूह ने सारण जिले के मस्तीचक में आज अखंड ज्योति आंख अस्पताल के निर्माण की नींव रखी है। इस अवसर पर आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में समूह के प्रमुख गौतम अडानी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। श्री अडानी ने कहा कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों को अंधापन और दृष्टि दोष से मुक्त करने के लिए उनका समूह संकल्प के साथ कार्य कर रहा है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नालंदा जिले के राजगीर में मलमास मेले का शुभारंभ किया। यह मेला 15 जून तक चलेगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री चौधरी ने कहा कि सनातन धर्म के 33 करोड़ देवी देवता एक माह के लिए राजगीर में प्रवास करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को मलमास मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। राजगीर तीर्थ रक्षार्थ पंडा समिति के सचिव विकास उपाध्याय ने बताया कि इस वर्ष करीब 8 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इधर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए 950 दंडाधिकारी की निगरानी में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश भागों में उमस के साथ तेज गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अपने

0: पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज किए जाने की संभावना है। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर मौसम विभाग ने सुपौल, अररिया, किशनगंज समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान भी जताया है। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 149 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। रोहतास जिले में कल से 25 मई तक लगने वाले जनजातीय गरिमा उत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने तैयारियों की समीक्षा की। वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार ने आज पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया प्रखंड अंतर्गत सिकरहना नदी पर बन रहे पुल निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण एजेंसी के अधिकारियों से निर्माण की तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी ली। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं रोजगार सूचना। सीआरपीएफ में कांस्टेबल के लिए 9175 पदों पर युवाओं की भर्ती के लिए निकाली गई है वैकेंसी। आयु सीमा है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष, अन्य सभी न्यूनतम 18 वर्ष और 23 वर्ष है। सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र में छूट दी जा सकती है। आवेदन शुल्क इंटरव्यू ओबीसी के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क है। महिला और एक्स सर्विसमैन के लिए ये निःशुल्क है। एसएससी ने स्टेनोग्राफर के 731 पदों पर निकाली गई भर्ती फीस 100 रुपये है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 731 पदों पर भर्ती निकाली है।

0: उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा करने की आखिरी तिथि 16 मई 2026 है। आवेदन में करेक्शन के लिए 20 से 21 मई 2026 तक करेक्शन विंडो खुली रहेगी। अभी आप रोजगार सूचना सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
3: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूँ, जहाँ लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
2: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों

0: को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोड मैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत के स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब युटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80 रुपए 9 पैसे, गाजियाबाद और नोएडा में 88 रुपए 70 पैसे और गुरुग्राम में 85 रुपए 12 पैसे हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप

0: को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30

0: से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

यह आवाज़ थी किशोर कुमार की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म बैराग का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

यावजे थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की फिल्म बैराग में। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म रामपुर का लक्ष्मण का ये गीत।

ये आवाज़ थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की फिल्म रामपुर का लक्ष्मण में। आइए आप सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म हीर रांझा में। इस गीत को लिखा है कैफी आजमी ने और धुन बनाई है मदन मोहन ने।

ये आवाज़ थी लता मंगेशकर की फिल्म हीर रांझा में। और अब चलते चलते कार्यक्रम में सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म मेरे हमसफर का ये गीत।

मेरे हम सफ़र फिल्म के इस गीत को भी आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। ये पहला

मेरे हम सफ़र फिल्म के इस गीत को भी आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। यह पहला विद्यापति गीत काशीनाथ झा किरण के स्वर में।

यह स्वर था काशीनाथ झा किरण का। आइए आप सुनते हैं गौतम मिश्र के स्वर में विद्यापति की ये रचना।

इस वक्त था शारदा सिन्हा का कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं विनय कुमार झा के स्वर में विद्यापति की ये रचना।

विद्यापति गीतों का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। इसमें हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:20 हो चुके हैं। आज की पहली सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5 बजे हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में इसे गाया परवीन सुल्ताना ने। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा यह नगमा था फिल्म कुदरत से। इस गीत को पसंद किया था छत्तीसगढ़ करगी रोड से शैलेश सिंह, नीलेश सिंह, संध्या सिंह और शैलू ठाकुर ने, और इसी गीत की फरमाइश की थी सौभाग्यवती मीरा प्रकाश ने। और इन्होंने सब कुछ तो लिखा है श्रोताओ, लेकिन अपनी जगह का नाम नहीं लिखा कि इन्होंने कहाँ से पत्र लिखा है। आप सुन रहे हैं मनचाहे गीत।

आप सुन रहे थे धरती, फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इस गीत को सुनना चाहा राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी और पूजा खटक, और जिला अमरावती प्रवीण नगर से। इस गीत की फरमाइश की चंदू हातोले, सीमा हातोले, स्नेहल ने। और इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम, अनन्या गौतम, ऐश्वर्या गौतम, श्रेय गौतम, कुश गौतम, रिंकू, टिंकू और रीना। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश। श्रोताओ, आपने इतने प्यार से हमें पत्र लिखे और आपके प्यारे प्यारे नगमे हमने शामिल किए आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में। इसी तरह अगली मुलाकात के लिए बस और थोड़ा इंतजार करना होगा। भेजिए अपने फरमाइशी पत्र इस कार्यक्रम के लिए मन चाहे

0: ये है विविध भारती। नाट्य तरंग,
1: आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: शकुंतला
1: आप कहीं कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ?
0: नहीं शकुंतला, ये सत्य है, ये सत्य है कि मेरी दशा भी तुम्हारी दशा से भिन्न नहीं है। तुम्हें तो कामदेव केवल संताप ही देता है, किंतु मुझे मुझे तो उसने झुलसा ही डाला है। तुम्हारा ये गीत तो तेरी ही अनुभूतियों का अनुवाद है शकुंतला।
1: ओह, अब मैं क्या करूं? इनके आने तक तो मन इतना उतावला हो रहा था, किंतु अब कुछ सोचता ही नहीं।
0: तुम्हारे शरीर का संताप अब कैसा है शकुंतला?
2: जी, अब आप आ गए हैं तो शांत हो ही जाएगा।
3: अनुकूल औषधि पाकर संताप कहाँ रह सकता है?
0: आप?
2: हम लोग आपके दर्शनों के लिए उत्सुक थे आर्य,
3: किंतु आप इतनी जल्दी यहाँ मिल जाएंगे इसकी आशा नहीं थी।
0: अच्छा, तब तो मेरा यहाँ आना उचित ही रहा।
2: हाँ आर्य, शकुंतला के संताप का कारण आप ही हैं।
3: आपका सानिध्य ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकता है आर्य।
0: मेरे प्राण भी इनसे दूर रहकर बचे नहीं रह सकते भद्रे।
1: अनुसुईया, रनिवास की रानियों के विरह में व्याकुल राजर्षि को क्यों इस संकट में डाल रही हो?
0: नहीं शकुंतला, मेरे हृदय की व्याकुलता का कारण तुम हो, केवल तुम। तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का ध्यान भी नहीं है इस मन को। इस पर भी यदि तुम्हें विश्वास ना आए तो मैं।
3: महाराज, शकुंतला का संदेह निराधार नहीं है। रनिवास की इतनी रानियों के रहते
0: रनिवास की इतनी रानियों के रहते हुए भी आप निश्चिंत रहें कि मेरे कुल में समुद्र से घिरी इस पृथ्वी के अतिरिक्त आपकी सखी शकुंतला का ही स्थान रहेगा।
3: हम निश्चिंत हुई आर्य।
2: अनसुईया, देख तो वो मृगछौना माँ को ढूंढता हुआ इधर उधर भाग रहा है।
3: हाँ चलो, इसे इसकी माँ के पास पहुँचाएं।
1: अरे अरे, मुझे अकेली छोड़कर कहाँ जा रही हो? रुको ना,
2: अब हमारी क्या आवश्यकता है शकुंतला?
3: सारी पृथ्वी का स्वामी तो तेरे पास ही है।
1: रुको ना, प्रेमवदा, अनसुईया, चली गई।
0: चली गई तो क्या हुआ? तुम्हारा सेवक यहाँ उपस्थित है
1: जी।
0: कहो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम्हारी थकान को दूर करने के लिए ठंडे कमलिनी के पत्तों से पंखा छलूं या?
1: नहीं नहीं, मेरे सर पाप क्यों मर रहे हैं यार?
0: पाप?
1: पूज्य लोगों से सेवा करवाना पाप से कम है क्या?
0: प्रेम में पूज्य कोई नहीं होता शकुंतला, केवल प्रिय होते हैं। और मैं अपनी प्रिय शकुंतला को इस दशा में देखकर चुपचाप कैसे बैठा रहूं?
1: अब जाने भी दीजिए मुझे।
0: क्यों जाने दूं तुम्हें?
1: पूर्ववंशी राजा को कुछ तो शील का ध्यान रखना ही चाहिए ना।
0: शील और संकोच की दीवार हमारे बीच और कब तक रहेगी शकुंतला?
1: मैं आपकी तरह स्वतंत्र नहीं हूं आर्य। प्रेम में आपसे अधिक व्याकुल होने पर भी मैं अपने मन से कुछ नहीं कर सकती।
0: इतना भय उचित नहीं शकुंतला।
1: नहीं आर्य, मेरे मन की उलझन को आप नहीं समझ सकते।
0: क्या उलझन है तुम्हारी, बताओ तो।
1: अब

0: कैसे बताऊं आर्य? पिता कर्ण को यदि हमारे आकर्षण का पता चल गया तो?
1: गुरुजनों से डरने की कोई बात नहीं है शकुंतला। पूज्य कुलपति धर्म को भली भांति जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बारे में सब कुछ जानकर भी वो पूरा नहीं मानेंगे। और ऋषि कन्याओं के गंधर्व विवाह तो पहले भी हुए हैं और उनके पिताओं की सहमति से हुए हैं।
0: आपकी बात सही होते हुए भी मेरी दुविधा दूर नहीं हो पा रही है आर्य।
1: तुम चाहो तो अपनी सखियों से पूछ लो।
0: हाँ ठीक है, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। किंतु आप मेरा हाथ तो छोड़ो।
1: नहीं, अभी नहीं छोड़ूंगा।
0: तो फिर कहो।
1: मुझ प्यासे भंवरे को तुम्हारे आधर पुष्प का रस मिल जाए तब।
0: ये क्या कर रहे हैं आप?
2: अरे चकली, आप अपने प्रिय से विदा ले, रात आ पहुंची है।
0: ओह, लगता है मुझे देखने के लिए आर्या गौतम इधर ही आ रहे हैं। आर्या, आप इस वृक्ष के ओट में छिप जाइए।
1: ठीक है।
2: शकुंतला, अब कैसी हो बेटी? शरीर का ताप कुछ कम हुआ?
0: हाँ माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताप भी कुछ कम हो गया है।
2: लो, इस कुशा के जल से बिल्कुल भी नहीं रहेगा, पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगी।
0: अच्छा,
2: चलो बेटी, दिन ढल गया, आओ कुटिया में चलें।
0: हाँ चलो माँ। चलना ही होगा, अब पछताने से रोने कलपने से क्या होता है। मन, जब वो तुम्हारे साथ थे तब तो तुम भयभीत बने रहे, अब तो अतृप्ति की इस पीड़ा को झेलना ही होगा तुम्हें। हे संताप हरने वाली लता कुंज, विहार के लिए बहुत शीघ्र मैं फिर उपस्थित होंगी और तब तुम अतृप्त नहीं रहोगे।
1: मन की साध हर बार अधूरी ही रह जाती है। सुंदर पलकों वाली शकुंतला के उस मनोहर मुख को चूमने का अवसर पाकर भी चूम नहीं सका। अब उस लता कुंज में उस स्पर्श की स्मृतियों में खोए रहने के अतिरिक्त और क्या उपाय है? उसके शरीर से मसला हुआ ये फूलों का बिछावन, उसके हाथों से सूख कर भिड़े हुए कमलनाल के ये आभूषण, कमलिनी के पत्तों पर नखों से लिखा हुआ ये प्रेम पत्र।
3: बचाइए, बचाइए राजन, बचाइए। यहाँ वेदी के चारों ओर काले काले राक्षस फिर मुड़ने लगे हैं। तपोवन की पवित्रता की रक्षा कीजिए राजन।
1: वो इन राक्षसों ने फिर से उठा लिया। मैं अभी जाता हूँ।

0: बहुत अच्छा हुआ प्रियंवदा कि शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया, किंतु एक चिंता भी है सखी।
1: चिंता? अब क्या चिंता है अनुसुया?
0: यही कि आज यज्ञ हो चुकने के बाद ऋषियों से विदा लेकर जब ये राजन अपने रनिवास में पहुंच जाएंगे तब इन्हें यहाँ की सुध भी रह जाएगी या नहीं।
1: ये चिंता व्यर्थ है अनुसुया, ऐसे विराट व्यक्तित्व वाले लोग कपटी नहीं हुआ करते। हाँ, पिता कर्ण को लेकर मैं अवश्य कुछ आशंकित हूँ।
0: उनकी ओर से मुझे कोई आशंका नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो इस विवाह का विरोध नहीं करेंगे।
1: वो क्यों?
0: क्योंकि शकुंतला के विवाह का संकल्प तो वो पहले ही कर चुके थे। उनकी तो कामना ही थी कि कोई योग्य वर मिल जाए, और सहयोग से ये कामना भी बिना परिश्रम के पूर्ण हो गई, नहीं?
1: तेरा कहना सही है अनुसुया, पिता कर्ण भी कम प्रसन्न नहीं होंगे।
2: अरे कोई है? कुटिया में कोई है?
0: अरे ये तो किसी अतिथि का स्वर जान पड़ता है।
1: शकुंतला तो कुटिया में ही है।
0: है तो, किंतु आज वो कुछ अनमनी सी है।
1: अच्छा देख तो, पूजा के लिए इतने फूल पर्याप्त होंगे ना?
0: कैसे होंगे, अभी शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा भी तो करनी है।
1: ओह मैं तो भूल ही गई थी, चलो चलो कुछ और फूल चुन ले।
0: चलो।

0: हरियो दुष्टा, अतिथि का अपमान करने वाली संसद, मैं तुझे शाप देता हूँ कि जिसके ध्यान में तू मुझ जैसी तपस्वी की सुध नहीं ले रही है, वो भी तुझे बहुत स्मरण दिलाने पर भी पहचान नहीं पाएगा। वो तुझे भूल जाएगा, वो तुझे भूल जाएगा, वो तुझे भूल जाएगा।
1: अनर्थ हो गया, लगता है अपने बेसुतपन में शकुंतला ने किसी महात्मा का अपमान कर दिया है। अरे ये तो कोप की साक्षात मूर्ति ऋषि दुर्वासा है।
2: जा प्रियंवदा, उनके पैरों पड़कर उनको लौटाना, तब तक मैं अर्घ्य का जल लेकर आती हूँ। जाओ जल्दी जा। हे भगवान, इस फूल की टोकरी को भी अभी गिरना था।
1: अनसुया
2: आ गई। प्रियंवदा, ऋषि कहाँ है?
1: ऋषि दुर्वासा कब किसकी सुनते हैं?
2: क्या ऋषि का कोप शांत नहीं हुआ?
1: कोप तो शांत नहीं हुआ अनसुया, किंतु फिर भी मेरी अनुनय से वे कुछ कृपालु अवश्य हो गए।
2: अच्छा।
1: हाँ, जब वे किसी प्रकार लौटने के लिए तैयार नहीं हुए
2: तो
1: तब मैंने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, शकुंतला का ये पहला ही अपराध है और वो भी अनजाने में हुआ है।
2: फिर
1: इस पर उन्होंने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, किंतु इतना अवश्य हो सकता है कि यदि यह कन्या अपने प्रेमी को अपनी पहचान का कोई आभूषण दिखा दे तो मेरे शाप से मुक्त हो सकती है।
2: चलो इतना ही पर्याप्त है। उस राजर्षि के नाम वाली अंगूठी शकुंतला को शाप से मुक्त कराने में काम आएगी।
1: आओ अनुसुया, अब देव पूजन का काम पूरा कर ले।
2: प्रियंवदा, ये शाप वाली बात हम तक ही रहनी चाहिए। बहुत कोमल स्वभाव की है बेचारी शकुंतला।
1: हाँ अनुसुया, उसकी रक्षा तो करनी ही होगी।

0: अरे ये तो दिन निकल आया, कितना मनोहर दृश्य है। एक ओर औषधिपति चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहे हैं तो दूसरी ओर अरुण रूपी सारथी को आगे किए हुए सूर्य का रथ चला आ रहा है। एक के अस्त होने के साथ ही दूसरे का उदय, जैसे दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख। चलो हवन का समय हो रहा है, गुरुजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
1: अनुसुया, ये अनुसुया उठना।
2: क्या हुआ प्रियंवदा?
1: अरे होना क्या है, भोर हो गई, आज उठना नहीं है क्या?
2: मैं सोई कहाँ हूँ प्रियंवदा।
1: अच्छा, आश्रम में कोई राजर्षि आए हैं क्या?
2: परिहास न कर प्रियंवदा, मेरा मन वैसे ही कुछ ठीक नहीं।
1: क्यों, ऐसा क्या हो गया?
2: कुछ नहीं सखी, बस रह रहकर ऋषि दुर्वासा का शाप सता रहा है। मुझसे अब शकुंतला की दशा देखी नहीं जाती प्रियंवदा।
1: किंतु शकुंतला तो पूरी तरह ठीक है अनुसुया।
2: हाँ ठीक है, किंतु कब तक? उस राजर्षि को गए इतने दिन बीत गए, किंतु शाप के वशीभूत उसने अब तक शकुंतला की सुध नहीं ली, और कब तक प्रतीक्षा करती रहेगी बेचारी?
1: चिंता क्यों करती है अनुसुया, शकुंतला को शाप से मुक्त कराने के लिए राजर्षि की दी हुई अंगूठी तो है अपने पास।
2: है तो सही प्रियंवदा, किंतु उस अंगूठी को दिखाने वहां जाएगा कौन?
1: कौन जाएगा? शकुंतला जाएगी।
2: उस बेचारी को तो इस दुर्भाग्य का भान ही कहां, और उस पर एक अनर्थ और हो गया है, वो मां बनने वाली है।
1: तू भी तो एक बावली है, इतनी अच्छी बात को अनर्थ कह रही है।
2: तू नहीं समझ रही प्रियंवदा, पिता कण्व को जब इन बातों का पता चलेगा तो।
1: पिता कण्व को इन सब बातों का पता चल भी गया और वे अप्रसन्न भी नहीं हुए।
2: सच?
1: हाँ।
2: तू सच कह रही है प्रियंवदा?
1: हाँ अनुसुया, मैं भी शकुंतला के पास से ही आ रही हूँ। पिता कण्व वहाँ उसे आशीर्वाद दे रहे थे।
2: आशीर्वाद दे रहे थे?
1: हाँ, और कह रहे थे कि योग्य शिष्य को विद्या देने के समान ही योग्य पति को कन्या सौंपने में भी अपार संतोष मिलता है।
2: हे भगवान।
1: और ये भी कह रहे थे कि मैं आज ही ऋषियों के साथ तुझे तेरे पति के पास भेज दूंगा।
2: ओह, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। किंतु प्रियंवदा,

0: बबीता कण्वों को इस घटना का पता कैसे चला?
1: आकाशवाणी से।
0: आकाशवाणी से?
1: हाँ, यात्रा से लौटकर पिता कण्व जैसे ही यज्ञशाला में पहुँचे आकाशवाणी हुई।
2: जैसे शमी वृक्ष के भीतर होता है पावक का वास, वैसे ब्राह्मण शकुंतला में जगहित पौरव तेज निवास।
0: हे भगवान, तुमने शकुंतला ही नहीं हम सबकी लाज रख ली। तुम सचमुच बहुत कृपालु हो भगवान।
1: किंतु अनुसुया, इस कृपा में बहुत गहरा अवसाद भी छिपा हुआ है।
0: हाँ प्रियंवदा, शकुंतला अब चली जाएगी, आज ही चली जाएगी।
1: हमारे इस अवसाद से शकुंतला का सुख बहुत बड़ा है अनुसुया, उसे अपने प्रियतम के पास जाना ही चाहिए।
3: गौतमी, शरद्वत आदि से कहो शकुंतला को पहुंचाने के लिए तैयार हो जाए।
1: चलो अनुसुया, हस्तिनापुर जाने वाले ऋषियों की बुलाहट हो रही है।
0: हाँ चलो प्रियंवदा।

0: देखता अनसुया, मंगल कामनाओं की मधुर वर्षा में भीगी हुई शकुंतला का सौंदर्य कितना निखर उठा है ना?
1: हाँ प्रियंवदा, ऐसे स्वाभाविक सौंदर्य को अब बाहरी आभूषणों की क्या आवश्यकता?
0: सखी, पगली ऐसे शुभ अवसर पर भी रो रही है?
2: नहीं शकुंतला, नहीं, इस तरह तो तू हमें भी।
3: अरे ये क्या हो रहा है? तुम लोग शकुंतला को सजाने आई हो या रुलाने? बस बस अब चुप करो, अब चुप करो। पता है शकुंतला को सजाने के लिए लताओं और वृक्षों ने भी फूलों पत्तों के स्थान पर आभूषण दिए हैं। देखो ये देखो,
2: कितने सुंदर,
0: कितने अलौकिक है ये शुभ्र वस्त्र,
2: ये सलोनी महावर,
0: ये आकर्षक आभूषण।
3: जानती हो इन लक्षणों का क्या अर्थ है?
0: क्या अर्थ है आर्या?
3: ये लक्षण बता रहे हैं कि शकुंतला अपने पति के घर राज लक्ष्मी बनकर रहेगी।
2: माँ
3: माँ प्रियंपदा, अनुसुईया, अब और देर न करो, चलो जल्दी से इसे ये आभूषण पहना दो।
2: अच्छा।

0: आज शकुंतला चली जाएगी, सोचते ही मेरा जी बैठा जा रहा है। आंसुओं को रोकने से गला इतना रुंध गया है कि मुंह से शब्द निकल ही नहीं पा रहे। चिंता में आंखों की ज्योति भी धुंधली पड़ती जा रही है। जब मुझ जैसे वनवासी की ये दशा है तो बेचारे गृहस्थों का क्या हाल होता होगा।
1: बेटी शकुंतला, देखो तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तात कर्म इधर ही आ रहे हैं। प्रणाम करो बेटी।
2: प्रणाम पिताजी।
0: बेटी, मेरा आशीर्वाद है शर्मिष्ठा की तरह तुझे भी अपने पति से आदर और पुरु जैसा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
1: आपका तो आशीर्वाद भी वरदान है भगवान।
0: आओ बेटी, अग्नि में अभी आहुति पड़ी है, चलो उसकी प्रदक्षिणा कर लो।

आज तुम्हारे प्रिय शकुंतला जा रही है, स्वयं प्यासी रहकर भी जो पहले तुम्हारी प्यास बुझाया करती थी। आभूषणों का आकर्षण और श्रृंगार की इच्छा होने पर भी तुम्हारे स्नेह के कारण जिसने कभी तुम्हारे कोमल पत्तों को हाथ तक नहीं लगाया, वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। उसे विदा दो वनदेवताओं, उसे विदा दो।

शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो। इसके मार्ग में नीली कमलनियों से भरे हुए ताल हो। धूप से बचाने के लिए घनी छांव वाले वृक्ष हो। इसके पथ की धूल में कमल के पराग की कोमलता हो। और इसके मन को शांति देने के लिए यात्रा पर्यंत मंद मंद पवन बहता चले। शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो।

0: मेरे पांव, मेरे पांव आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं।
1: तपोवन से बिछड़ने का दुख केवल तुम्हें ही नहीं है शकुंतला, ये तपोवन भी कम उदास नहीं है। देखो और उन्हें नाचना छोड़ दिया है, कैसे चुपचाप खड़े हैं। हिरणिया भी अनमनी होकर चबाई हुई कुशा को बार बार उगल रही हैं। आंसुओं के रूप में लताओं से पीले पीले पत्ते झड़ रहे हैं।
0: बाबा बाबा बाबा, मैं एक क्षण वन ज्योत्सना से मिल लूं बाबा।
2: हाँ बेटी, मैं जानता हूं उस लता से तुम्हारा सगी बहन जैसा प्रेम है। मिल लो बेटी।
0: चलती हूँ वन ज्योत्सना, चलती हूँ। देखो आम के वृक्ष के अनुराग ने अपनी बहन को भूलना नहीं। पता नहीं अब तुमसे मिलना होगा भी या अनुसुया मेरी सखी, तुम इसका ध्यान रखना।
2: बेटी तुम निश्चिंत रहो, अपने पुण्य प्रभाव से इसने भी तो आम के वृक्ष के रूप में अनुरूप पर पा लिया है। मुझे भी तुम दोनों की चिंताओं से एक साथ ही मुक्ति मिल गई है।
0: अरे ये मेरा आंचल कौन खींच रहा है?
3: ये तेरा लाडला हरे शावक है बेटी।
0: मेरे लाडले, अब तो मुझे जाना ही होगा। देख देख मेरी जगह अब तेरी देखभाल बाबा करेंगे।
4: सरोवर का तट आ गया है भगवान।
2: हाँ शारंग्राव, पूर्वजों ने कहा है कि प्रियजनों को विदा करते समय जलाशय तक पहुंचाकर ही लौट आना चाहिए।
5: माननीय राजा दुष्यंत के लिए कोई संदेश हो तो आदेश प्रदान करें भगवान।
2: हाँ वत्स, शकुंतला को राजा दुष्यंत के हाथों में सौंपते हुए मेरी ओर से कहना, राजन

0: हम तो सीधे साधे संयमी तपस्वी लोग हैं। आपके ऊंचे राजघराने के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। फिर भी आपने आश्रम की इस कन्या को अपनाया है, ये हमारा सौभाग्य ही है। शकुंतला को आपकी दूसरी रानियों के समान प्रेम और आदर मिले, बस इतनी ही विनती है हमारी, और इससे अधिक क्या कह सकते हैं हम लोग।
1: बाबा, बाबा।
0: बेटी, पति के घर पहुंचकर घर के सब बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अपनी सौतों को भी अपनी सखियों जैसा प्रेम करना बेटी, और देख पति ही स्त्री का परमेश्वर होता है, उसे कभी अप्रसन्न नहीं करना। दास दासियों से भी स्वजनों का सव्यवहार रखना
1: बाबा,
0: और अपने सौभाग्य पर कभी इतराना मत बेटी।
1: इन सब बातों को अच्छी तरह गांठ में बांध लो शकुंतला। कुलवधुओं के लिए इससे अच्छा और क्या उपदेश होगा। प्रियमता, आओ शकुंतला, हमसे गले तो मिलो।
2: सखी,
1: तो क्या तुम लोग भी यहीं से लौट जाओगे?
0: हाँ बेटी, अब इन दोनों को भी तो उपयुक्त वरों को सौंपना है ना, इसलिए इनका यहां रहना ही ठीक है। फिर आर्या गौतमी तो तुम्हारे साथ ही जा रही है।
1: अनुसुईया, शकुंतला, तुम लोगों से अलग रहकर मैं कैसे जी पाऊंगी? बोलो।
0: इतनी अधीर न हो बेटी, पति के घर पहुंचकर वहां की व्यस्तता में बिछड़ने का सारा दुख भूल जाएगी, पटरानी बनकर राज करेगी, सूर्य के समान तेजस्वी और पवित्र पुत्र की मां बनेगी।
1: शकुंतला, ये राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी है, इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना,
2: और यदि इतने दिनों बाद वे तुझे पहचानने में भूल करें तो उन्हें ये अंगूठी दिखा देना, समझी?
1: ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? डरने की कोई बात नहीं शकुंतला,
2: हम तो यूं ही तुझे हर परिस्थिति के लिए सचेत कर रहे हैं।
1: किंतु मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
3: दिन बहुत चढ़ाया है भगवान, अब हमें चलना चाहिए।
0: हाँ शरण करो, अब तुम लोगों को जाना ही चाहिए। जाओ बेटी शकुंतला, चिरकाल तक इस समूची पृथ्वी की सौत बनकर राज करो, और उसके बाद अपने अद्वितीय वीर पुत्र को राज्यभार सौंपकर अपने पति के साथ इस आश्रम में आओ। यहां के शांत वातावरण में सुख से विश्राम करो। जाओ बेटी, ईश्वर तुम्हारा पथ प्रशस्त करे, तुम्हारा मार्ग मंगलमय।

0: कन्या सचमुच परायधन होती है। शकुंतला को आज उसके पति गृह भेजकर मन पूरी तरह निश्चिंत हो गया। किसी की धरोहर को सकुशल लौटा देने में कितना संतोष है।
1: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।

ये थे भूपिंदर सिंह। इसके ठीक पहले आप सुन रहे थे गुलाम अली को। लीजिए पेशे मिताली सिंह की आवाज में ये गजल।

अभी आप सुन रही थी सोनाली को। ये चंद गजलें आकाशवाणी दरभंगा से पेश किए जा रहे हैं। अब सुनिए अलका याज्ञिक और हरिहरन की आवाजों में ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे चंद गजलें, हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। कुछ और गजलें फिल्मों से।

अभी आप सुन रही थी भूपिंदर सिंह को फिल्म आहिस्ता आहिस्ता में। लीजिए पेश है मासूम फिल्म की ये गजल भूपिंदर सिंह और सुरेश वाडेकर की आवाजों में।

अभी आप सुन रही थी अलका याग्निक को और जगजीत सिंह को फिल्म तरकीब में। प्रोग्राम के आखिर में पेश है नरगिस फिल्म की यह गजल जगजीत सिंह और लता मंगेशकर की आवाजों में।

0: अभी आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी गजलें। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजा चाहते हैं, अब हिंदी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गोथेनबर्ग रवाना होने से पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन स्वयं एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी। नीदरलैंड्स की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउटाइक बांध का भी

दौरा किया। ये यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि NID जैसे संस्थान युवाओं को नवाचार और कौशल विकास के लिए सही मंच प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के

0: मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब एक नजर डालें आज और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। पहले आज के शेष मुख्य कार्यक्रम।

अब से कुछ ही देर बाद यानी संध्या 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। मैथिली संवाद प्रसारित किए जाएंगे संध्या 6:25 पर। ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम गामा घर सुनेंगे संध्या 6:30 पर। इसके अंतर्गत आज शामिल है प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल। किसान भाई खेती गृहस्थी सुनेंगे संध्या 7:00। कुछ फिल्मी गाने आप सुन सकेंगे संध्या 7:52 पर। खेल गतिविधि पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम क्रीड़ा जगत का प्रसारण किया जाएगा 8:15 पर। रात 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10:00 रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे। ये थे आज के शेष मुख्य कार्यक्रम और अब कल के बारे में।

कल सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे नमस्कार मिथिला कार्यक्रम। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे कल दिन में 9:10 पर। कुछ विद्यापीठ गीत सुनिएगा दिन में 10:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कलाकार हैं पंडित जसराज कल दिन में 11:00। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे दिन में 11:30 पर। महिलाएं अपना कार्यक्रम नाड़ी संसार सुनेंगी दोपहर 12:30 पर। रोजगार सूचना आप सुनेंगे दोपहर 2:10 पर।

लोक गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे अपराह्न 3 बजे। कल हमारी सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी संध्या 5 बजे युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम से। कुछ विद्यापति गीत सुनिएगा संध्या 6:10 पर। मैथिली संवाद का प्रसारण किया जाएगा संध्या 6:25 पर। कामघर कार्यक्रम शाम 6:30 पर। किसान भाई अपना कार्यक्रम खेती गृहस्थी सुनेंगे संध्या 7 बजे। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार आप सुनेंगे रात 8:15 पर। रात 9:30 पर समय होगा पब्लिक के स्पीक का। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे। रात 10 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। अभी आप हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विद्यापति गीतों का कार्यक्रम।

अब आप सुन रही थी समवेत स्वर में विद्यापति की ये रचना। लीजिए प्रस्तुत है काशीनाथ झा किरण के स्वर में विद्यापति की ये रचना।

अभी आप सुन रहे थे गौतम मिश्र को। विद्यापति गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है।

0: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। शाम के 6:25 होने वाले हैं। अब मैथिली संवाद प्रसारित किए जाएंगे, प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी कल्पना झा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहलनि जे TRE4 भर्ती परीक्षाक लेल शीघ्रहि अधिसूचना जारी कयल जायत। श्री तिवारी जनौलनि जे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देशक अनुसार भर्ती प्रक्रियाक तैयारी कयल जा रहल अछि। प्रदेश में जनगणनाक पहिल चरणक अंतर्गत मकान सभक गिनती आ ओकर सूचीकरणक काज सुचारू रूपे चलि रहल अछि। सूची तैयार करबाक लेल घरक समान, उपलब्ध सुविधा आ परिसंपत्ति सभक विवरण जुटाओल जा रहल अछि। ओतहि हमर अररिया संवाददाता जनौलनि जे जिलाधिकारी सह प्रधान जनगणना अधिकारी विनोद दुहन लोक सभ सँ जनगणनाक काज मे बढ़ि चढ़ि कऽ भागी दारीक अपील कयलनि अछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एहि मासक 31 कऽ आकाशवाणी सँ मन की बात कार्यक्रम मे अपन विचार साझा करताह। ई एहि मासिक रेडियो कार्यक्रमक 134 कड़ी होयत। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रमक लेल अपन विचार आ सुझाव पठा सकैत छथि। सुझाव 29 धरि स्वीकार कयल जायत। देशक प्रमुख औद्योगिक संस्थान अडानी समूह बिहारक संरचनात्मक विकासक क्षेत्र मे अगिला 3-4 मे 50,000 crore सँ बेसीक निवेश करत। समूहक प्रमुख गौतम अडानी आइ सारण जिलाक मस्तीचक मे एक कार्यक्रम के संबोधित कऽ रहल छलाह। श्री अडानी एतय अखंड ज्योति आँख अस्पताल के निर्माण काजक लेल भूमि पूजन मे सम्मिलित भेल छलाह। ओ जनौलनि जे बिहार आबि कऽ हुनका शांतिक अनुभव भेलनि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आइ नालंदा जिलाक राजगीर मे मलमास मेलाक शुभारंभ कयलनि। ई मेला 15 धरि चलत। प्रशासन सुरक्षाक व्यापक प्रबंध कयलक अछि। भीड़ प्रबंधनक लेल 950 दंडाधिकारीक निगरानी मे भारी संख्या मे पुलिस बलक तैनाती कयल गेल। राजगीर तीर्थ रक्षार्थ पंडा समितिक सचिव विकास उपाध्याय जनौलनि जे एहि वर्ष करीब 8 श्रद्धालु सभक एवाक संभावना अछि। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी कहलनि जे नीट UG पेपर लीक मामला में केंद्र सरकार लगातार सक्रिय अछि। पटना में संवाददाता सभ सँ गपशप करैत श्री सरावगी कहलनि जे लोक सभ जे केओ बच्चा सभक भविष्य सँ खेल करबाक प्रयास कयलनि अछि हुनका बक्सल नहि जायत। केंद्रीय पंचायती राज, पशु आ मत्स्य संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह कहलनि जे केंद्र सरकार पशु सभक नस्ल सुधारक लेल व्यापक स्तर पर काज कऽ रहल अछि। मुंगेर दौरा पर संवाददाता सभ सँ गपशप करैत ओ कहलनि जे पूर्णियाक बाद लखीसराय मे सेहो सेक्स सॉल्टेड सीमेंट प्लांट के स्थापना कयल गेल अछि। एहि सँ पशु सभक विकास आ दूध उत्पादन मे बेस लाभ होयत। श्री सिंह अपन संसदीय क्षेत्र मुंगेरक विभिन्न भागक भ्रमण कयलनि।

0: आ क्षेत्र में चलाओल जा रहल विकास योजनाक समीक्षा कयलनि। मधुबनी जिला भाजपा इकाईक दिस सँ 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियानक अंतर्गत शिविरक आयोजन कयल गेल। जिला भाजपा अध्यक्ष प्रभांशु झा एकर उद्घाटन कयलनि। ओतहि जिलाक टाउन हॉल मे जिला शिक्षक संघक दिस सँ नवनियुक्त प्रधानाध्यापक लोकनिक सम्मान मे समारोहक आयोजन कयल गेल। विधान पार्षद मदन मोहन झा सहित आन गणमान्य लोकनि शिक्षक लोकनिक सम्मान कयलनि। पछवा हवाक प्रभाव सँ प्रदेशक अधिकांश भाग मे उमस के संग तेज गर्मीक स्थिति बनल अछि। मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान मे जनौलक जे अगिला 2 सँ 3 दिनक दरमियान अधिकतम स्थान पर तापमान मे वृद्धि दर्ज कयल जयबाक संभावना अछि। विभाग अगिला 24 घंटाक दरमियान बक्सर, पूर्वी चंपारण आ शेखपुरा जिला मे लू चलबा के लऽ कऽ येलो अलर्ट जारी कयलक अछि। एम्हर मौसम विभाग एहि अवधि मे सुपौल, अररिया, किशनगंज सहित राज्यक उत्तरी पूर्वी भाग मे तेज हवाक संग वर्षाक पूर्वानुमान जनौलक अछि। वाल्मीकिनगर के सांसद सुनील कुमार आइ पश्चिम चंपारण जिलाक लौरिया प्रखंड अंतर्गत सिकरहना नदी पर बनि रहल पुल निर्माण काजक निरीक्षण कयलनि। अररिया जिलाक पलासी थाना क्षेत्र मे पुलिस वाहन जांचक दरमियान 149 बोतल नेपाली शराबक संग 2 तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए कामघर कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम गाम घर सुनिहार सब श्रोता लोकनिक मीर कुमार झा के नमस्कार संगे गोपी भाई अहू के नमस्कार
1: नमस्कार मीर भाई संगे संग गाम घर के श्रोता लोकनिक नमस्कार मीर भाई आजुक दिन रवि आ हम सब गुनगुनाइत मन कार्यक्रम आई सुन जे मनपसंद लोकगीत कार्यक्रम हो देखियो अपना सबके जे भारतीय संस्कृति है एहिमे गुरु के बड़ पैघ महिमा है। गुरु मतलब की भेल गु मतलब होइया अहाँके अज्ञानता का अन्हार रु मतलब भेल कि अज्ञानता का अन्हार के जे दूर करे अज्ञान के जे तमस है ओकरा दूर करे वह गुरु भेल तो गुरु जे छथि ओ अहाँके अपना सबके भारतीय संस्कृति में हुनक सबसे पैघ स्थान है। आ कबीरदास जी कहे छे तो अपन दोहा में गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपनु जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात उनकर कहने छन कि जखन गुरु और भगवान दुनू एक संग अगर जो ठाड़ छे तो असमंजस के स्थिति होइत अछि कि पहले केकर चरण स्पर्श कयल जाए एहन में अपन गुरु पर क्या गुरुए अहाँ के ईश्वर के बारे में बताबे ईश्वर तक कोना पहुँची ओकर ओ बाट के बारे में वह बताबे अल सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करवा के चाहिए ओकर बाद ईश्वर के।
0: ठीक है कहलिए गोपी भाई देखियो गुरु जे छथिन ओ प्रत्येक चीज के ज्ञान दे छथिन।
1: हाँ,
0: भगवान छथि कि की छथि ओ भगवान का चिन्ह अपना सब केना बुझबे गुरुए के कृपा से
1: गुरुए कृपा से बुझे छी। ठीक
0: है गुरु गोविंद दोनों खरे काको लागू पाए बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए कबीरदास की उक्ति जे छन से एकदम अक्षर से सत्य छन। देखते छे अपना सब जँ गुरु नहीं रहते तो अपना सबके शिक्षा नहीं भेटत तो गुरु के स्थान तो सर्वोपरि रहल जाय
1: एकदम सर्वोपरि है। देखो गुरु जे छथि वहाँ का आदर्श नागरिक के तैयार करे छे एक व्यक्ति के जे संपूर्ण व्यक्तित्व हेबाक चाही ओ गुरु के आशीर्वाद और हुनक दिल ज्ञान से भेटे व्यक्तित्व का निर्माण होइया छे।

0: एहि लेल हम कहि सकै छी कि गुरु जे छथि ओ आदर्श नागरिक के निर्माता छथि आ आदर्श व्यक्ति के निर्माता छथि।
1: देखियो गोपी भाई, आइ 17 मई अछि।
0: हाँ,
1: आजुक दिन अर्थात 17 मई के सब बरख दुनिया भरि मे विश्व रक्तचाप दिवस मनाओल जाइत अछि।
0: हाँ,
1: देखियो आजुक दिन दुनिया भर में विश्व रक्तचाप दिवस मनबे के मुख्य उद्देश्य छै सब मानव के हाई ब्लड प्रेशर हाइपर टेंशन जकरा कहै छै एक खतरा के बारे में जागरूक करब, एकर समय पर पता लगा कर एकर नियंत्रण के लेल ठोस कदम उठाब। हाँ, आजुक दिन के विशेष महत्व छै।
0: एकदम महत्व छै कि देखियो ई जे अहाँ के हाई ब्लड प्रेशर है छै, उच्च रक्तचाप, ई साइलेंट किलर है छै। हाँ, आदमी के पता नहीं चले छै, धीरे धीरे छै से ओ शरीर के अहाँ के खा जाए छै, मृत्यु के दिस लग गेल। तो एकर कारण कि कोन कारण हमरा ई भेल हँ, एकर लक्षण, बचाव के उपाय और एहिसँ होइ वाला जे गंभीर बीमारी अछि एहि के बारे में जागरूक केनाइ बड़ जरूरी।
1: देखियो गोपी भाई, ई जे अहाँ कहलिए ई साइलेंट किलर, ई सही गप छै।
0: हाँ, हाँ,
1: क्या तऽ एकर उच्च रक्तचाप के छै, एकर हाँ, लक्षण शुरुआत में नगण रहैत अछि, अपना सब बुझबे नहि करबै जे हाई ब्लड प्रेशर के शिकार बनि रहल अछि। तैं आजुक दिन के या खास छै जे सबके जे कोनो हाई ब्लड प्रेशर से जे परेशानी के लक्षण नहियो छै तैयो बीपी के जांच अवश्य करा,
0: नियमित रूप से ब्लड प्रेशर के, बीपी के जांच, रक्तचाप के जांच हेबा के चाहिए और डॉक्टर से परामर्श लेबा के चाहिए। आ एहि अभियान के शुरुआत सबसे पहिने विश्व उच्च रक्तचाप लीग द्वारा 2005 में कैल गेल छल। आ देखियो जो उच्च रक्तचाप है से बचाव के जो उपाय है मीर भाई, कि स्वस्थ जीवन शैली हेबा के चाहिए। सबसे पहिने तो राखू कि एकदम प्रसन्न चित्त रहबा के चाहिए, सकारात्मक चिंतन हेबा के चाहिए, बुद्धि हेबा के चाहिए, सकारात्मक काज हेबा के चाहिए, आहार विहार संतुलित हेबा के चाहिए, एक संगे संग आ नियमित व्यायाम कम से कम 30 मिनट निश्चित रूप से करी। आ तनाव के जते हुआ उत्ते हद तक टाली, तनाव मुक्त जीवन आ संतुलित आहार में भेल कि चीनी कम, नमक कम, नून जो हुआ नूनो कम खेबा के चाहिए। हाँ, क्या नून जो बेसी खेबे बहुत से अहाँ के उच्च रक्तचाप बढ़े छै, तो अपना के उच्च रक्तचाप को हम सब नियंत्रित कर सकै छी।
1: देखियो गोपी भाई, ई बीपी के जे जांच छै से घरों पर कुशल जे स्वास्थ्यकर्मी छथि हुनका से अहाँ करा सकै
0: छी,
1: नहि तऽ हॉस्पिटल या कोनो एहन स्वास्थ्य क्लिनिक छै ते पर जाकर नियमित रूप से करेबाक चाही।
0: एकदम अहाँ ठीक उचित गप कहलौ। आ देखियो छै से अल्पसंख्यक लोकन के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के जे 15 सूत्री कार्यक्रम अछि ओ अहाँ के बड़ ठोस आ कारगर कार्यक्रम अछि, किया तऽ एहि कार्यक्रम के द्वारा अल्पसंख्यक लोकन के, अल्पसंख्यक भाई जे छथि हुनक सर्वांगीण विकास होइत अछि। भारत सरकार द्वारा शुरू कयल गेल ई एकटा कल्याणकारी योजना अछि, एकर जे मुख्य उद्देश्य छै अच्छे मिहिर भाई कि देश का अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के सुनिश्चित केने अछि। एहि कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार के जे विभिन्न मंत्रालय अछि ओकरा एहि योजना से जोड़ि कऽ आ 15 सूत्री उद्देश्य निर्धारित कयल गेल अछि। पहिल अछि कि शिक्षा के अवसर बढ़ेनाइ, किया तऽ हुनका में शिक्षा बढ़े, तालीम बढ़े, ज्ञान बढ़े,
1: ई
0: बड़ आवश्यक है, किया तऽ बिना शिक्षा के तऽ जीवन अधूरा अछि।
1: देखियो गोपी भाई, स्कूली शिक्षा में सुधार के लेल सब शिक्षा अभियान के तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में स्कूल खोलब ई सबसे प्रथम कार्य अथी छै, ई प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत छै, जाहिमे मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण करब से बहुत जरूरी छै। जेना मदरसा में विज्ञान, गणित संग कंप्यूटरक शिक्षा देव सेहो बड़ आवश्यक छै।
0: आ देखियो एकीकृत बाल विकास सेवा अछि, अल्पसंख्यक बहुल जे क्षेत्र अछि ओहिमे आंगनबाड़ी के माध्यम से नेना भुटका के और माता लोकन के स्वास्थ्य आ पोषण सुनिश्चित केने अछि। आ स्कूली शिक्षा में सुधार में प्राथमिक आ उच्च शिक्षा स्तर पर स्कूल के पहुँच आ ओकर गुणवत्ता में सुधार एने, छात्रवृत्ति योजना सेहो अछि अल्पसंख्यक छात्र छात्रा लोकन के लिए, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट से साधन, छात्रवृत्ति का आवंटन है। तो ये सब जो गप के अहाँ के सही ढंग से एक लागू कल जाए, जन सहयोग, जन भागीदारी बड़ आवश्यक है, कोनो योजना तखने अहाँ का कारगर है जखन कि ओहिमे जन भागीदारी है।
1: अच्छा, ये ना सबक विकास, सबक संग जे छे, सब सबका साथ सबका विकास, इस परम आवश्यक छे।
0: आ ओना ही आवश्यक है गीत संगीत, क्या गीत संगीत जो वो अहाँ का तन मन का

0: एकदम आरोग्य करैया आ जीवन के विकास सुनिश्चित करैया।
1: आई जे गीत अपना सब श्रोता के पसिनक सुनै छै हुनकर पत्र पर आधारित गीत
0: गुनगुनाइत मने कार्यक्रम जे अछि। अच्छा अहाँ लग कोन चिट्ठी अछि?
1: हमरा लग जे चिट्ठी आयल यऽ इनामर टोला भगवतीपुर पंचायत से आयल अछि। लिखनहार छथि नूतन सहनी, कंचन सहनी, बबीता सहनी, कोमल सहनी, नव्या सहनी, सुधा सहनी, विभा सहनी, ज्योति सहनी, पार्वती सहनी, त्रिपुरारी सहनी, संतोष कुमार सहनी। अहाँ लग कोन चिट्ठी आयल?
0: हमरा लग चिट्ठी अछि अहाँके फुटानी चौक नारायण स्टेट से भाई फरफटिया जा उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या, ललन मिश्रा, मिसर मोहल्ला नरहन बाजार से बीके मिश्रा, गुंजन परासर, डब्बू मिश्रा, छोटू मिश्रा, नाहर मनटोला से अछि भाई कादिर अली, जाकिर अली, हामिद अली, जाबिर अली, मोहम्मद अरमान आ मोहम्मद सलमान। ई सब अहाँके पसिन्न केलनि हँ ई गीत, तो सुनल जाए।

0: ई सुंदर संगीत कुंज बिहारी मिश्र से अपना सब सुने छन देखियो गोपी
1: बड़ नीक देवी गीत छल
0: गोपी भाई भगवती के सबसे पसंद फूल छन अरहुल
1: हाँ,
0: अपना सब ठाम कोनो भी काज त्यौहार होइए हाँ, तो भगवती के पहिने आराधना कयल हाँ, जाय छै
1: क्या त शक्त भूमि
0: शक्ति बुझलौ
1: आ शक्ति उपासक हम सब छी त हुनक छै से आ हुनक हुनका अरहुल के फूल बड़ पसंद छन छै से आ देखियो आब हमरा सबके जे समय भ रहल अछि एकटा प्रायोजित कार्यक्रम अछि ममता का आंचल तो ई कार्यक्रम हम सब सुनी
0: सुनल जाए
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रद्धा आईवीएफ भिकना पहाड़ी पटना 4।
3: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से शनिवार का दिन है, लेकिन आज एक बात कह देना चाहते हैं कि एक आध दो सप्ताह तक आप शनिवार को ये कार्यक्रम सुनेंगे ममता का आंचल, लेकिन बहुत जल्दी हम इसे संडे को शिफ्ट करने जा रहे हैं। आपको समय बता दिया जाएगा कि किस वक्त आप ये कार्यक्रम सुन पाएंगे, रविवार के दिन। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। ममता का आंचल ये कार्यक्रम हम वैसे दंपत्तियों के लिए लेकर आते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए लेकिन अभी भी बच्चा नहीं है, और अब बच्चे का हो जाना उनके जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक बीमारी है, हाँ ये एक बीमारी है जो स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलने से इसे ठीक किया जा सकता है, और हमें ऐसा लगता है इस कार्यक्रम को सुनकर बहुतों को फायदा हुआ है और लोग हाँ मस्ती में हैं, लोग हंसी खुशी इस कार्यक्रम का लाभ भी उठा रहे हैं। बहरहाल डॉक्टर श्रद्धा चखैयार हमारे साथ होती हैं इस कार्यक्रम में, आईवीएफ विशेषज्ञ हैं, और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्रद्धा आईवीएफ एंड मेटर्निटी की तरफ से। जी हाँ, जो पटना के भिकना पहाड़ी मोड़ में है। आप चाहें तो नंबर लिख सकते हैं, बड़े बुजुर्ग आपके लिए भी विशेष रूप से एकदम अंडरलाइन करके कह रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी को समझिए, बच्चों को प्रेरित कीजिए। डॉक्टर श्रद्धा चखैयार हमारे साथ बैठी हैं, आज उनसे हम बातचीत करेंगे। पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने भी बताया कि समाज या परिवार सिर्फ औरतों को दोष देता है, लेकिन समस्याएं पुरुष में भी होती हैं। आज का सवाल है, बहुत लोगों के दिल में ये होता है पर जुबान पर नहीं आ पाता है ना, तो इसे जुबान पर लाना है। डॉक्टर साहिबा, अगर पुरुषों में शुक्राणु यानी स्पर्म की कमी हो जाए हाँ, और वो अच्छा खाना शुरू कर दें, गुटखा सिगरेट तंबाकू छोड़ दें, तो क्या इनके रिपोर्ट में जो आ रहा था नो स्पर्म सीन या कम, तो ये जो है ठीक हो सकता है क्या?
4: सबसे पहले तो नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार राजेश जी।
3: नमस्कार।
4: आज का सवाल बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा इसलिए भी है क्योंकि इसमें एक अच्छी बात है कि पुरुष को अपना रिपोर्ट देख के ये समझ में आ रहा है कि कमी है और लाइफस्टाइल ठीक करना चाहिए, और वो पुरुष ये भी इस चीज के लिए भी तैयार है कि वो गुटखा जो भी
3: नशीली
4: हाँ, चीज है, उसको बंद करना चाहते, जिसका बहुत बड़ा रोल है
3: जी
4: शुक्राणु की कमी को ठीक करने में
3: हाँ।
4: लेकिन सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है पुरुष में शुक्राणु की कमी हम लोग कब कहते हैं
3: हाँ।
4: WHO ने अपना मापदंड दिया है
3: जी,
4: जिसमें ये कहा जाता है कि पुरुष में शुक्राणु की कमी है, शुक्राणु की कमी भी हो सकती है, शुक्राणु निल भी हो सकता है
3: जी,
4: लेकिन कब ये अलार्मिंग है ये जानना जरूरी है। और ये मापदंड मैं सारे श्रोताओं को बताना चाहती हूँ
3: जी,
4: जो भी अपना जांच करा रहे हैं और एक अच्छे लैब में जांच करा

0: रहे हैं
1: हाँ।
0: तो शुक्राणु का जो टोटल संख्या होना चाहिए, काउंट होना चाहिए, कम से कम 16 मिलियन पर ml होना चाहिए।
1: ओके।
0: उसकी जो चाल होनी चाहिए वो 40% से ज्यादा होनी चाहिए।
1: शुक्राणु की चाल
0: बिल्कुल
1: हाँ।
0: और शुक्राणु जो का जो बनावट है वो कम से कम 4% बढ़िया शुक्राणु होना चाहिए, तभी उस पुरुष को अपने आप से बच्चा ठहर सकता है। अगर थोड़ी बहुत कमी है और आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करते हैं तो उनकी समस्या जरूर ठीक हो सकती है।
1: कार्यक्रम चल रहा है ममता का आंचल। अगला सवाल आपकी तरफ से एकदम तैयार है, हम डॉक्टर श्रद्धा से पूछेंगे, लेकिन आपको बता दें एक बार फिर से डॉक्टर श्रद्धा का नंबर, कहीं भी कोई भी हाँ सवाल होना, छोटा से छोटा सवाल भी तो आप पूछिए। 9162562266 9162562266 ये नंबर है डॉक्टर श्रद्धा का। श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी एक राष्ट्रीय स्तर का हाँ क्वालिटी IVF सेंटर है, जिसके तरफ से ये कार्यक्रम हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। आगे बढ़े इससे पहले एक बहुत विशेष सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल और भी है। बहुतों को पैसे की समस्या होती है, तब उसकी चिंता भी श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी ने दूर कर दी है। आप किस्तों में टुकड़ों में पैसा दे सकते हैं और ये टुकड़ा 24 महीने तक भी जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि हम आपके परिवार में खुशियां देखना चाहते हैं। पैसे के चलते अगर आप बच्चा या IVF नहीं करवा पा रहे हैं तो वो समस्याएं अब खत्म हो गई। आज ही बात कीजिए डॉक्टर श्रद्धा से, 9162562266 ये नंबर है। चलिए लौटते हैं कार्यक्रम में। बड़े बुजुर्गों आपके लिए भी कहा गया हाँ, इसलिए मैंने रुक के कहा है अलग से कि आप सुन लीजिए। डॉक्टर श्रद्धा आपने कहा कि लाइफ स्टाइल अगर ठीक हो जाए तो क्या शुक्राणु जो नील है या शुक्राणु जो कम हो गया है उसको वापस लाया जा सकता है क्या, और लाइफ स्टाइल ठीक करने का क्या मतलब है?
0: शुक्राणु अगर कम है तो लाइफ स्टाइल का रोल है
1: हाँ।
0: लेकिन शुक्राणु अगर नील है
1: हाँ।
0: तब जरूरी है आपको निसंतान रोग विशेषज्ञ से ही इलाज कराने का। शुक्राणु अगर कम है तो लाइफ स्टाइल का रोल है उसमें। अगर आपके लाइफस्टाइल में जो अभी हमने अभी तुरंत बात किया उन चीजों के बारे में कि तंबाकू गुटखा ये सब से दूर रहें
1: हाँ।
0: जो लोग को कुछ बीमारी है जैसे डायबिटीज थायराइड अगर ये सब है तो उसको कंट्रोल रखें। कभी कभी डायबिटीज भी एक कारण होता है जिससे शुक्राणु की संख्या घटती है। जो लोग जिम जाते हैं और स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेते हैं या कुछ सेक्स लेते हैं जिसमें स्टेरॉइड रहता है, उन चीजों से दूर रहें क्योंकि उससे भी शुक्राणु की संख्या घटती है। कुछ लोग मजबूरन या जिस कारण भी गर्म जगह पे काम करते हैं
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: ये भी अपने आप में एक कारण है जिससे शुक्राणु घटता है और मरता है। तो इन चीजों से दूर रहें, अच्छा खाना पीना खाएं, खुश रहें, रोज व्यायाम करें और इससे भी आपका जो शुक्राणु की संख्या बेहतर होती है। लेकिन साथ में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आपने ये सब कर लिया
1: जी।
0: तो उसके बाद और आपके अगर मतलब आपको पहले से पता था कि शुक्राणु की कमी है, आपने अपना लाइफस्टाइल ठीक किया, खाना पीना ठीक किया
1: जी।
0: तो आपको अपना दोबारा जो जांच कराना चाहिए शुक्राणु का वो 3 महीने बाद कराना चाहिए क्योंकि 72 डेज से 80 डेज जो होता है उसमें एक नया जो होता है नया शुक्राणु का बैच आता है।
1: अच्छा।
0: तो हमें तभी पता चलेगा कि ये लाइफस्टाइल कितना काम किया, कारगर रहा और आप अपने आप से अपना इलाज कर पाएंगे।
1: वैसे दंपत्ति जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए, अब घर में नहीं बैठना है, चुप्पी तोड़ना है। चुप्पी टूटेगा तभी रास्ता निकलेगा। आपको विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलना है। बच्चा नहीं होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अब विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, IVF पद्धति से आप बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। और आपके घर आंगन में ये जो कार्यक्रम राजेश लेकर आ रहा है वो श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी जी हाँ भिखना पहाड़ी मोड़ पटना में है, उनकी तरफ से एक अलग जगाने के लिए है ना। और हमारे समाज का हरेक व्यक्ति का ये कर्तव्य है, घर का तो है ही, समाज के हरेक व्यक्ति का कर्तव्य है कि ऐसे दंपत्ति को मोटिवेट करें कि डॉक्टर से मिलें, विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलें और सफल हो जाएं बच्चा प्राप्त करने में। बहरहाल एक सवाल पूछता है, एक सहज जिज्ञासा है, आपने ये करो ये ना करो कह दिया आपने, थाली कैसे सजनी चाहिए, वो कौन सा हैंडसम फूड है?

0: जिसको खा करके हम तंदुरुस्त हो सकते हैं।
1: बिल्कुल, खान पान का बहुत बड़ा रोल होता है, ना केवल निसंतानता में, हर चीज में, चाहे आप डायबिटीज बोलिए, शुगर बोलिए, थायराइड बोलिए, मोटापा बोलिए, हर चीज। लेकिन जो लोग निसंतानता से ग्रसित हैं, उनको ये बोला जाता है कि आपका जो थाली है उसमें हर रंग का खाना होना चाहिए। अगर सब्जी की ही बात करें, आप हर दिन हरी सब्जियां खाएं, जैसे लौकी, भिंडी, परवल, पालक साग, मेथी, गाजर, सहजन। प्रोटीन भी आपके डाइट में प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि हर रोज आपके प्लेट में दाल आप जरूर डाल लें, राजमा, चना, अंडा, पनीर। जो लोग चिकन मछली खाते हैं वो ये भी खा सकते हैं। नट्स का भी बहुत रोल है
0: जी।
1: आपको अगर आप सक्षम है तो हर दिन आपको बादाम, अखरोट, कद्दू के दाने, तिल, ये सब जरूर सेवन करें
0: जी।
1: और चावल, दाल, रोटी, सब्जी तो खानी ही चाहिए,
0: वो तो एकदम रेगुलर।
1: लेकिन
0: है।
1: हर जो चीज से दूर रहना चाहिए वो है मैदा से दूर रहे, एक्सेसिव बिस्किट, नूडल्स, पिज्जा, पास्ता, ये सब से दूर रहे।
0: हाँ।
1: फल का सेवन अवश्य करें, अमरूद, आंवला, संतरा, मौसमी, ये सब का सेवन जरूर करें। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिनका भी रोल है ये शुक्राणु बढ़ाने में, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, कोक्यू, जिंक, सिलीनियम। और अच्छी बात है कि अभी जो भी मैंने फल, सब्जी और ये नट्स, बादाम का बात किया, उसमें ये सब अवेलेबल है। इसलिए आप अपना खाना समझकर खाइए, घर का खाना खाइए और जंक फूड से दूर रहिए, ताकि आपके शरीर में जितनी भी जो दिक्कत हो रही है खान पान के कारण, वो ठीक हो सके और आपके शुक्राणु भी ठीक हो पाए।
0: शुक्राणु भी ठीक हो पाए, पुरुषों, इसमें कहीं से लज्जित होने की बात नहीं है। कमी किसी में भी हो सकती है जिसको ठीक किया जा सकता है। और विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाएं तो पति पत्नी दोनों जाएं, साथ में जाएं और एक दूसरे पर शंका की निगाह नहीं रखें, भरोसा रखें एक दूसरे पर, हेल्दी टाइम स्पेंड करें और डॉक्टर के पास जाके प्यार मोहब्बत से बात करें। जैसे डॉक्टर श्रद्धा चखियार के पास आप जा सकते हैं, नंबर एक बार बता रहे हैं 9162562266, 9162562266। पूरी नींद भी ले। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, वैसे दंपत्ति भी बहुत सारे हैं जो अपने डाइट को भी उन्होंने ठीक किया है और सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, लेकिन अब कुछ नहीं, तो उनका क्या?
1: देखिए, इसमें भी दो चीजें, अगर अभी आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहते हैं,
0: हाँ,
1: तो आप सबसे पहले तो अपना जांच करा लें।
0: हाँ।
1: अगर आपका शुक्राणु, पुरुष का शुक्राणु बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप डाइट और सप्लीमेंट लेते रहिए, जब आपको बच्चा चाहिए आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका शुक्राणु कम है और आप सिर्फ डाइट और सप्लीमेंट्स के चक्कर में हैं, तो आप अपना जरूरी जो समय है वो खो रहे हैं, क्योंकि उम्र के साथ भी शुक्राणु की गुणवत्ता घटती है
0: जी।
1: तो अब जरूरी है आप निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलें और अपना इलाज कराएं। देखिए, अभी तक तो हमने बात किया वैसे लोगों का जिनमें शुक्राणु की कमी है। एक मास ऑफ पीपल वो भी होता है जिन लोग में शुक्राणु निल होता है
0: जी, जी।
1: तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निसंतान रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, वो आपका इलाज वो आपका जांच करेंगे। कभी कभी ऐसा भी कंडीशन होता है कि शुक्राणु नहीं है लेकिन पोथी में शुक्राणु होता है, जिसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया कहते हैं। तो उनको भी टीसा, माइक्रो टीसा, इक्सी, ये सब जैसे टेक्निक है, IVF के ही एक मतलब हायर वो चीज है जिससे बच्चा हो सकता है
0: जी।
1: तो कहीं भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मेल जो पुरुष निसंतानता है, आज उसका बहुत सारा इलाज हो चुका है। जिस तरह से औरत में निसंतानता का बहुत सारा इलाज है, वैसे ही पुरुष निसंतानता का भी बहुत सारा इलाज है। लेकिन जरूरी है सही डॉक्टर से मिले, सही समय पे इलाज करें। अगर आप अपना सही समय, कीमती समय खो देते हैं, तो फिर आपको अपने से बच्चा ठहरना बहुत मुश्किल हो जाएगा,
0: बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट फिकर नॉट, हाँ, चिंता नहीं करनी है, डॉक्टर के पास जाना है, सारा समाधान हो जाएगा। ये एक छोटी सी बीमारी है, सही इलाज से आपकी पत्नी कंसीव कर लेंगी, बच्चा होगा घर के अंदर। डॉक्टर श्रद्धा, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है, लेकिन बैठे रहिए, दो बातें हम कर लें। पैसे का कोई प्रॉब्लम है तो उनको बता दें कि अब आप सभी श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी में इंस्टॉलमेंट पर, टुकड़ों में, हाँ,

0: सकते हैं, 24 बार में दे सकते हैं। आप बात करके तो देखिए, आप एक कदम बढ़ाइए, हम 4 कदम आपकी तरफ लेकर आएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वैसे दंपत्ति अब चुप्पी तोड़े। हाँ, किसी से हाँ शर्माने की बात नहीं है, शर्म की कोई बात ही नहीं है, एक बीमारी है जो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे। और डॉक्टर का नंबर हम आपको बता रहे हैं, 9162562266, 9162562266। राजेश निकलेगा आज के कार्यक्रम से ये बताते हुए कि हो सकता है अगले महीने से ये कार्यक्रम आप संडे को सुने। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, बुजुर्गों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानिए, अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए, बातचीत कीजिए, बैठा के मंत्रणा कीजिए। और ये जो नंबर है ना 9162562266, खुद से लगा के बात कर लीजिए ना, फिर उनको बता दीजिएगा। चलिए डॉक्टर श्रद्धा निकलते हैं आज के कार्यक्रम से, कहते हैं नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
2: हाँ मिहिर भाई, एखन हम सब एक गोट प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल सुने चलो हम। आ अही कार्यक्रम के संगे जैसे गाम घर का जो समय वो संपन्न हेबाक आ हम सब खेती पथारी के कार्यक्रम खेती गृहस्थी दिस चली, तो खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई लोकन का हार्दिक स्वागत है। हाँ तो मिहिर भाई, केना की खेती बाड़ी भ रहा है से कहो पहले।
3: खेती बाड़ी तो कहावत है, सब दिन किसान कुनू न कुनू खेती में लगले रहे। भारत से कृषि प्रधान
2: कृषि प्रधान देश
3: अपन सबके मुख्य जीविका जे कृषि आधारित
2: है। आ किसान भाई जे छे तो अहाँ का रोज किस से किस खेती में लगले रहे।
3: देखियो गोपी भाई, किसान भाई लोग खूब मेहनत से खेत पथार तैयार कर के खेत में समय पर नीक खाद बिया द खेती पथारी करे छथि, परंतु छोट छीन माटि में रह वाला कीड़ा सब जे छे ओ फसलक गाछ के नुकसान कर दैत अछि। एहि तरह खूब मेहनत लागत लगेला के बादो उपज कम होइत छै। तो देखियो गोपी भाई, किसान भाई लोकन के सूत्रकृमि पर नियंत्रण कोना करी, एहि विषय पर अपना सब अखन हुनका से गप।
2: देखियो खेती बाड़ी करे से पहिने अपने सब निश्चित रूप से सरकारों कहे छे, भारत सरकार के दिस से छे से अहाँ के पैघ योजना है कि माटिक जांच निश्चित रूप से करा, क्या तो माटि के जांच जे करा ले तो ई पता चलत कि माटि में कौन कमी या कौन बीमारी या आ ओहि के हिसाब से अहाँ उपचार करियो। तो सूत्रकृमि जे या इस एकदम छोट होइया सूक्ष्म होइया, जना अहाँ का धागा होइया उन्हें कीड़ा होइया जे गाछ के जड़ के नुकसान पहुँचाबी, एकर नियंत्रणक लेल मृदा सौरीकरण, फसल चक्र में गेंदा के फूल लगेनाय, नीम के खली के उपयोग केनाय सबसे असरदार तरीका है। आ जैविक आ प्राकृतिक उपाय सबसे पैघ, नीम के खली के उपयोग करूँ खेत के तैयारी के समय या गमला के माटि में नीम के खली नीक जना की करियो मिला दियो, क्या तो नीम के खली जे या वो कीड़ा के मारी, अइ में मौजूद जे तत्व सूत्र कृमि के पनपे से रोकैया। ओने बिल गेंदा के फूल, अपन फसिल के बीच बीच में गेंदा के गाछ लगा दियो, बुझलहुँ, गेंदा के पौधा। आ गेंदा के जड़ एकटा एहन रसायन छोड़ैत अछि जे सूत्र कृमि के संख्या के प्राकृतिक रूप से कम कऽ दैए। आ जैविक खाद और मित्र कीट जे या जेना माटि में ट्राइकोडर्मा या सीडोमोनस जेहन जे मित्र अछि ओ जीवाणु के उपयोग करे से हानिकारक जे कृमि या ओ नष्ट भ जाए।
3: हाँ देखियो गोपी भाई, सूत्रकृमि जे छे से माटि में रह वाला छोट आ एकदम सूक्ष्म कीड़ा होइ छे, जे फसलक गाछ के जड़ में गांठ बना के फसलक गाछ के रस के चूसैत रहित अछि। आ गाछे जखन रस ओकर चूस लै छै तऽ गाछ कमजोर भ जाइ छै,
2: कमजोर भ जाइ छै,
3: सुखा जाइ छै। एकर गोपी भाई, एकर प्रभावी नियंत्रण के लेल जैविक कृषि आ रासायनिक विधि के एकीकृत उपयोग करब सबसे नीक आ कारगर होइ छै। एकर सूत्रकृमि नियंत्रण के लेल सबसे बढ़िया उपाय छै गोपी भाई, जे गर्मी मास में जना अखन आप गर्मी
2: शुरू भ गेल,
3: एहि मास में खेत तो सुखजोत खेत करब बड जरूरी छै,
2: एकदम गहीर जोताई,
3: गहीर जोताई का खेत में पल चौकी नहीं दियो, इना सिरौर जे छै
2: अच्छा
3: ओहिना खेत के ठाड़ छै, तो जे सूर्य के किरण जे अंदर तक जाए छे, तो ओहि से सूत्रकृमि के जे अंडा या ओकर छोट छोट कीड़ा सब कुनु रहल ओ सूर्य के किरण के ताप से
2: तेज जे रोद पड़ल कारगर रोद
3: तो ओहि से ओ खत्म भ जाए छे। एकर नियंत्रण के लिए

0: अखन समयमे सुखा सुखजोत खेती बड़ कारगर होइ छै।
1: आ फसिल चक्र जे यऽ,
0: हाँ हाँ,
1: ओहिमे की करी कि एक ही खेतमे बेर बेर एके फसल नहि लगा
0: नहि लगेबाक चाही।
1: अब टमाटर भेल, भाटा भेल या मिरचाइके बाद किछु समयके लिए एहन फसिल लगाबी जाहि पर सूत्र कृमिके प्रभाव नहि हुए आ खेतके सफाई करैत रही। फसिल काटैके बाद जड़ि आओर अवशेषके नष्ट कऽ दी, किया तऽ ई सूत्र कृमि जड़िमे जीवित रही, बुझलहुँ। आ रासायनिक नियन्त्रणमे यऽ, जौ संक्रमण बड़ बेसी भऽ गेल तऽ कृषि विशेषज्ञके सलाहसँ रासायनिक उपयोग करी। अब जेना अछि कार्बोफ्यूरान, एकरा माटिमे जे हम दै छी ओहिसँ तुरंत राहत होइए। आ फोरेट, फोरेट 10 ग्राम या नीम आधारित कीटनाशक, एकर उपयोग खेतके तैयारीके समय कयल जाइत अछि। तऽ खेतके समतलीकरण आओर बाउंड्री जकर बनाबै छी ओहिसँ सूत्र कृमिसँ अहाँके एहिसँ बचि सकै छी ओकरा समतलीकरण कऽ कऽ।
0: देखियौ गोपी भाई, बड़ नीक गप कहलियै जे फसल चक्र अर्थात खेतमे लगातार एके रङ्गके फसल नहि करक चाही। जेना एहि बरख तीमन तरकारी ओहि खेतमे केलहुँ, जेना

0: अवशेष के नष्ट कर दी, क्या तो सूत्र कृमि जड़े में जीवित रहे, बुझलहुँ। आ रासायनिक नियंत्रण में या जौ संक्रमण बड बेसी भ गेल तो कृषि विशेषज्ञ के सलाह से रासायनिक उपयोग करी। अब जना कार्बोफ्यूरान एक माट में जो हम दी वैसे तुरंत राहत हो, फोरेट फोरेट 10 ग्राम या नीम आधारित कीटनाशक एकर उपयोग खेत के तैयारी के समय कैल जाए। तो खेत का समतलीकरण और बाउंड्री जो बनाबे छी ओसे सूत्र कृमि से अहाँ ऐसे बच सके छी ओकरा समतलीकरण को कऽ।
1: देखियो गोपी भाई बड़ नीक गप कहलिए जे फसल चक्र अर्थात खेत में लगातार एके रंग के फसल नहीं करक चाही। जेना ए बरक तीमन तरकारी ओहि खेत में खेलौं, जेना तीमन तरकारी में टमाटर बैगन मिर्चाई भिंडी ऐ सब तरह तीमन तरकारी केलौं तो पुनः दोसर साल जे छै दोसर बरक खेत में तेलहन करी, तीसी तीसी सरसो ऐ सब टाइप के जे तूर ऐ सब टाइप के फसल करी आ पुनः फिर अगला साल दलहन जेना मूंग मसूरी ऐ सब टाइप के जे फसल चक्र एकरे कहै छै जे ऐ साल एकटा खेती केलौं तो दोसर साल दोसर फसल के खेती ऐसे जे फसल चक्र से जे छै सूत्रकृमि के जे छै अंडा सब जे नष्ट भ जाय छै तो फसल चक्र सूत्र खेती के लेल बड महत्व छै जे सूत्र खेती में फसल चक्र के क्रम में ओकर कीड़ा अंडा सब जे छै से मर जाय छै।
0: आ जौ उपलब्ध हुआ तो गाछ के प्रतिरोधी या सहनशील किस्म के उपयोग करी। आ फसल के बीच में कहबे कलूँ गेंदा के किस्म भेल फूलदार जे गाछ हुआ ओकरा लगेला से सूत्र कृमि के संख्या कम भ जाइए। आ गोल कृमि के मारे के लेल कई सप्ताह तक खेत के प्लास्टिक के पलवार से ढक दी, बुझलौ कि नहीं। आ खेत के जोताई कहबे के लिए करी आ माटि के एकदम अहाँ के कड़गर रोद जो पड़त तो ऐसे जैसे कीड़ा मर जाए। इस सब जो गप के ध्यान में रखब तो माटि स्वस्थ रहत आरोग्य रहत आ तखन जे कोनो अहाँ के फसल के बौ करबे तो खूब उपजा हैत।
1: देखियो गोपी भाई खेत में जो पानि लागल रहत तो ओहि नमी से खेत में सूत्रकृमि के प्रकोप बेसी रहै छै, जे गहिरगर खेत में सूत्रकृमि के प्रकोप बेसी रहत तऽ एहि लेल जे छै से जखन खेतक पानि सुखा जाए तो खेत के जल्दी से सुखा जोत सुख जोत कए ली। आ सूत्रकृमि के नियंत्रण के लेल स्वस्थ बिया के संग संग उपचारित बिया के व्यवहार सेहो करक
0: चाही। आ बेसी प्रकोप भेला पर किछु महीना लेल खेत के जोताई कऽ कऽ ओकरा खाली छोड़ि ऐसे रोद पड़त ना तो मर जाए। तो आप देखियो एतेक जे जानकारी है एकर उपयोग जो किसान भाई करता तो माटि आरोग्य रहत आ जो माटि आरोग्य रहत तखने छै से फसिल निक जेना हैत उपजा ओकर निक हैत आ जो उपजा निक हैत तो गीत ना सुने के मन करत किया तो मन हर्षित रहत मन हर्षित तो गावे गीत तो एहिठमा गीत हम सब नहीं गायब गीत सुनब। हाँ तो किया नहीं एकटा गीत हम सब छै से सुनी
1: सुनल जाए।

0: हाँ बटोही रहिजा हमरे गाँव, ये अरविंद कुमार झा के स्वर में सुंदर सम देखियो मिथिला जे छे,
1: निक गीत छल छे छे
0: मिथिला जे छे सर्वोपरि एकर महत्व रहले
1: ई भगवती के भूमि अछि। हाँ आइठमा कोनो भेदभाव नहीं अछि, नहीं जात के नहीं धर्म के, एकदम समदर्शी भगवान जना समदर्शी होइ छै त एहिठाम समाज जइया ओ समदर्शी अछि। आ तखने न विकास होइ छै जेठाम कोनो भेदभाव नहीं होइ, आपस में प्रेम होइ, सहयोग होइ, शांति होइ।
0: एतौ जे छै न गोपी भाई मिथिला में अतिथि देवो भव, कुन कियो अनचिन्हार के ओ भगवान स्वरूप जना भगवान एलखिन ये तेना कतेक सुंदर में बटोही रहिजा हमरे गाँव।
1: आ देखियो हम सब छै से लोटा लक दौड़िए बुझलो कि ने, ओय बटोही के पैर ओकरा अथी धोलौ, धोबे ले देलौ पानि, आ संगे संग छै से तुरंत छै से नाश्ता भेल, चूड़ा दही भेल, किछु भेल। तो देखियो जकरा नहि जानै छलियै ओकरो छै से एते स्वागत, अगर ओ आराम करऽ चाहे थकैए तऽ हँ तऽ दरवाजा पर एक दू घंटा सुतियो गेल छै, कोनो बात नहि छै। तऽ मानवता तऽ इएह ने छै कि जाहिमे अहाँ ककरो देखियो कोनो प्रकार के जे परेशान, कोनो तकलीफ, कष्ट, हाँ तो ओकर दूर करे के उपाय निश्चित रूप से करबाक चाही। आ देखियो किसान भाई लोकन के जे मौसम पूर्वानुमान के जानकारी दऽ दियन तैसे किसान भाई के जे खेती बाड़ी करे के जे काज छन ओहिमे आसानी हैत। तो ई जे मौसम समाचार पूर्वानुमान अछि ग्रामीण कृषि मौसम सेवा पूसा समस्तीपुर, भारत मौसम विज्ञान विभाग।

0: दिससँ जारी 16 से 20 मई 2026 धरि मौसम पूर्वानुमानक अनुसार पूर्वानुमान अवधिक दौरान उत्तर बिहार के बहुत रास जिला में गरज वाला मेघ बने के संभावना है। अय के चलते कई स्थान पर हलुक वर्षा भ सकय आ तेज हवा के संग वर्षा के संभावना 16 से 17 के लगपास बेसी है आ कतौ कतौ बिजलिये गिरे के संभावना है आ अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के लगपास रह सकय आ जखन कि न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के लगपास रह सकय
1: आ देखियो गोपी भाई आ सापेक्ष आर्द्रता के गप करब तो भोर में 70 से 75% आ दुपहरिया में 20 से 25% रहे के सेहो अनुमान है आ प्रमाणित अवधि के दौरान 14 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूर्वा बसा चले के सेहो संभावना
0: है। तो ई सब जे अहाँ के गप है एकरा ध्यान में रख के खेती बाड़ी हमरा सब के करबा के चाही आ देखियो अहाँ के पहिने जे वर्षा भेल अहाँ के एक दू दिन पहिने तो खेत में तो नमी आबि गेल है कि तो किसान भाई धान के नर्सरी तैयार हेतु नर्सरी में जे सरल गोबर है ओकर खादक व्यवहार करी आ एकटा एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई हेतु 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बिया गिराबी नर्सरी में क्यारी के जे चौड़ाई हेबाक चाहिए ओ 1.25 से 1.5 मीटर आ लंबाई सुविधा अनुसार रख सकै छी आ खेतक व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करी आ देर से पाके वाला जे किस्म अछि ओकर नर्सरी में 25 मई से लगा सकै छी
1: आ देखियो गोपी भाई प्रमाणित अवधि में वर्षा के संभावना के देखैत किसान भाई सब के सलाह देल जाय छैन कि तीमन तरकारी के खेती में जे छै ओ खेत में जल निकासी के उचित व्यवस्था सेहो कयल लेबाक चाही आ देखियो कटाई कैल गेल फसल के सुरक्षित भंडारण के सेहो हुनका सबके ध्यान राखब चाहिए खेत के कार्य करे के दौरान ध्यान रखथिन जे जो मेघ में बादल मेघ में कारी मेघ रहै छै मेघ लागल रहल तो बिजली गिरे के संभावना ओहि समय में बेसी रहै छै तो बिजली गिरे के संभावना से देखैत अपन सावधानी रखबाक चाही जे ओहि समय में खेत में काज
0: नहीं करवा के चाहिए जगह पर सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है ना। अब खरीफ मकई के बौक लेल खेत के तैयार करी आ खेतक जोताई में 10 से 15 टन गोबरक सरल खाद प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करी आ खरीफ मकई के बौ जे 25 मई से करी आ हरियर खाद के लेल सनई और ढैचा के बौ सेहो करी
1: आ देखियो गोपी भाई आद जकरा अदरक कहै छियै
0: आदि
1: ठंडा में चाय में कतेक बढ़िया लगै छै जे आद दए के अपनो सब जाय छी तो भोर के कहै छै हे अदरक वाला चाय कनी बनाओ
0: शरीर के रोग प्रतिरक्षा जे तंत्र या ओकरा ओ अहाँ के मजबूत करी
1: ओ अदरक अथी करे के समय आब आबि गेल अछि ते दुआरे किसान भाई के अदरक बुआई के लेल 15 मई से शुरू कऽ लेबाक चाही आब समय बीत रहल अछि अगता खेती बड नीक होइ छै तऽ आब अदरक के रोपाई किसान भाई सब कऽ लेबाक चाही अदरक के जे छै से ओकरा रोपय के लेल उत्तर बिहार के लेल अनुमानित अनुशंसित ओ अछि आ खेत में जुताई में 25 से 30 टन गोबर जगह सरल खाद से दऽ देबाक चाही आ नेत्रजन जे छै 30 से 40 किलोग्राम स्फुर जे छै 50 किलोग्राम पोटास 80 से 100 किलोग्राम जिंक सल्फेट 20 से 25 किलोग्राम आ बोरेक्स 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार कऽ के अदरक के लेल बीज के जे छै से 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सेहो ई जे छै से उचित मानल जाइ छै। देखियो बीज प्रकंद के आकार जे छै अदरक के ओ 20 से 30 ग्राम जाहिमे 3 से 4 स्वस्थ कलिया आदमे रहबाक चाही रोपे काल में
0: अच्छा अच्छा
1: आ रोपे के दूरी जे छै 30 से 20 सेंटीमीटर से रखबाक चाही नीक उपज के लेल रिटोमिल दवा के जे छै से 0.2%
0: रिटोमिल दवा के
1: 0.2% घोल से उपचारित बिया के कह के तखने रोप
0: तखन बौ करबाक जँ ई सब गप के ध्यान में राखब हम सब तो नीक जो उपजा है आ नीक उपजा है तो कैचा नीक जना कमाए आ कैचा जे नीक जना कमाए तो गीत नाद सुने के मन करो
1: अच्छा
0: तो किया नहीं एकटा गीत सुनी
1: सुनल जाए

0: मेहर भाई एखन नंद शंकर झा से ये गीत सुने छल बड़ नीक गीत छल हम तो देखलो कि गीत पे एकदम अहाँ ध्यान मग्न रही
1: महादेव
0: वास्तव में महादेव जे छे तो ध्यानक प्रतीक छे हाँ तो देखियो से आब अहि गीतक संग आजो खेती गृहस्थी कार्यक्रम के समय सम्पन्न हेबाक अछि खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई से हम सब आज्ञा ली नमस्कार मिहिर भाई
1: नमस्कार गोपी भाई

अभी आप सुन रहे थे खेती गृहस्थी और गांव घर कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण पटना केंद्र से।

0: समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: खो गया इंतजाम।
4: किसका?
5: गुड्डी की फीस का।
4: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले, और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दिया भरोसा, TRE-4 भर्ती परीक्षा के लिए शीघ्र जारी की जाएगी अधिसूचना। केंद्रीय पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, केंद्र सरकार पशु विकास के लिए कर रही है गंभीर प्रयास। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजगीर में एक महीने तक चलने वाले मलमास मेले का शुभारंभ किया, 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू का येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि TRE-4 भर्ती परीक्षा के लिए जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। श्री तिवारी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग परीक्षा के आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: अभ्यर्थी अपनी तैयारी में जुटे रहे, बहुत जल्द अच्छे परिणाम आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है और शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुटा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी अधिसूचना जारी करें।
0: केंद्रीय पंचायती राज, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार पशुओं के नस्ल सुधार के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। मुंगेर दौरे पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्णिया के बाद लखीसराय में भी सेक्स सॉर्टेड सीमेन प्लांट की स्थापना की गई है। इससे पशुओं के विकास और दुग्ध उत्पादन में काफी लाभ होगा।
2: मदर डेयरी का भी काम बहुत तेजी से जमालपुर में शुरू होगा, डेयरी का, और इसके साथ साथ पशुओं के विकास के लिए और पशुओं के जो दूध देने की क्षमता है उसको आगे बढ़ाने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन का इस्तेमाल करने को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसके लिए भी एक पूर्णिया में बना है सेक्स सॉर्टेड सीमेन का प्लांट और एक लखीसराय में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड सेक्स सॉर्टेड सीमेन का प्लांट लगाएगा, फॉर्म लगाएगा, ताकि अच्छे क्वालिटी का सीमेन कृत्रिम गर्भाधान में उपयोग हो सके।
0: श्री सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र मुंगेर के विभिन्न भागों का दौरा किया और क्षेत्र में चलाई जा रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री के ईंधन बचाओ की अपील का स्वागत किया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को इसे जरूर अपनाना चाहिए।
3: नरेंद्र भाई मोदी जी, जो आज समस्या आ गई है हम लोगों के सामने, विश्व समस्या है, खास करके पश्चिम एशिया का, उसके चलते उन्होंने सावधान किया है कि एक संयम बरतने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई गलत बात नहीं कही है, एकदम ठीक बातें हुई है, उसको अपनाना चाहिए। इससे कोई ऐसा ना समझना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई चीज थोपा गया है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार लगातार सक्रिय है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते

0: हुए श्री सरावगी ने कहा कि जिन लोगों ने बच्चों के भविष्य से खेलने का प्रयास किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
1: केंद्र की सरकार लगातार सक्रिय है, जो भी इसमें मास्टरमाइंड से लेकर जो लोगों ने यह इतना बड़ा अपराध किया है, बच्चों के जीवन से खेला है, उसको किसी हालत में भी सरकार बकसने वाली नहीं है। लगातार कार्रवाई हो रही है, सीबीआई को जांच दी गई और उसके साथ साथ बड़ी मात्रा में कार्रवाई हो रही है।
0: पथ निर्माण मंत्री शैलेंद्र कुमार ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र भागलपुर के बिहपुर में एक खेल स्टेडियम स्थापित किए जाने की मांग रखी है। श्री शैलेंद्र ने युवाओं के कौशल विकास, रोजगार के अवसरों के विस्तार और श्रमिक हितों से जुड़े तमाम विषयों पर चर्चा भी की। केंद्रीय मंत्री श्री मांडविया ने उन्हें सकारात्मक पहल का भरोसा दिया है। देश का प्रमुख औद्योगिक संस्थान अडानी समूह बिहार के संरचनात्मक विकास के क्षेत्र में अगले 3-4 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगा। समूह के प्रमुख गौतम अडानी ने आज सारण जिले के मस्तीचक में 150 करोड़ रुपए की नेत्र चिकित्सा पहल की शुरुआत करते हुए ये घोषणा की है।
2: हमारा टारगेट है कि कम से कम 50,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट बिहार के अंदर नेक्स्ट 3-4 साल के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, और अखंड ज्योति के साथ में ये खाली मस्तिष्क तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां जहां जरूरत होगी मृत्युंजय तिवारी जी टीम बेसिकली जो पूरा देखेंगे।
0: अडानी समूह अखंड ज्योति आई अस्पताल के सहयोग से सारण में अत्याधुनिक नेत्र चिकित्सा केंद्र और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर रहा है। इसके तहत आज भूमि पूजन का आयोजन किया गया। समूह प्रमुख गौतम अडानी ने बिहार की भूमि को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान की भूमि बताते हुए कहा कि यहां आकर उन्हें शांति का अनुभव हुआ है।
3: यह भूमि सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। गायत्री सत्यपीठ में आकर मुझे एक शांति का अनुभव हुआ और समाज के लिए कुछ बेहतर करने के लिए एक नई प्रेरणा मिली।
0: प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के तहत मकानों की गिनती और उनके सूचीकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामान, उपलब्ध सुविधाएं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। गणना कार्य को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन ने नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। इसके माध्यम से लोगों की शिकायतें और आपत्तियों का निष्पादन भी किया जा रहा है। पूर्वी चंपारण जिले के भारत नेपाल सीमा के करीब रक्सौल बीरगंज मैत्री पुल पर एसएसपी जवानों ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। संदिग्ध व्यक्ति से प्राप्त पासपोर्ट के आधार पर उसकी पहचान चीनी नागरिक याओ सू जांग के रूप में की गई है। सुरक्षा एजेंसियां उसके भारत में प्रवेश के उद्देश्य, उसके संपर्क और गतिविधियों की जांच में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: इधर आइए, इधर
5: इधर।
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभवाणी,
6: आकाशवाणी।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। श्री शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार और पार्टी संगठन के बीच समन्वय भाजपा की असली ताकत है। श्री जायसवाल आज किशनगंज में पार्टी के 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान जिला प्रशिक्षण वर्ग 2026 के समापन सत्र में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
2: भारतीय जनता पार्टी का लगातार कार्यक्रम और प्रशिक्षण चलता रहता है। हम चुनाव के दूसरे दिन से ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग जो है, कार्यकर्ताओं को और सरकार के साथ कैसे समन्वय और भी संगठन कैसे मजबूत हो, इसके लिए ये प्रशिक्षण वर्ग लगाया है।
0: पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र भी प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हुए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन, विचारधारा और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नालंदा जिले के राजगीर में मलमास मेले का शुभारंभ किया। ये मेला 15 जून तक चलेगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री चौधरी ने कहा कि सनातन धर्म के 33 करोड़ देवी देवता एक माह के लिए राजगीर में प्रवास करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को मलमास मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को हर प्रकार की सुविधा दिए जाने के निर्देश दिए हैं। राजगीर तीर्थ रक्षार्थ पंडा समिति के सचिव विकास उपाध्याय ने बताया कि इस वर्ष करीब 8 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इधर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए 950 दंडाधिकारी की निगरानी में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश भागों में उमस के साथ तेज गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज किए जाने की संभावना है। विभाग ने इस दौरान बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
3: दिनांक 18 मई, राज्य के बक्सर, पूर्वी चंपारण एवं शेखपुरा जिलों में उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना।
4: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने संग्रहालय दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा कि संग्रहालय वर्तमान और अतीत तथा भविष्य के बीच सेतु का काम करते हैं। ये हमें विरासत से जोड़ते हैं और भविष्य के लिए प्रेरित करते हैं। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। इस अवसर पर कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के बिहार इकाई की ओर से पटना समेत कई जिलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 80 नए अग्निशमन वाहनों का लोकार्पण और एआई आधारित अग्नि नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इससे राज्य अग्निशमन सेवा को अधिक सशक्त और आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे होगा। जहानाबाद

0: के अरवल मोड़ के समीप साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की ओर से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रचार प्रसार किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के प्रति जागरूक किया गया। भारत स्काउट एंड गाइड की टीम ने जहानाबाद के उर्दू कन्या विद्यालय में जागरूकता शिविर का आयोजन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दिया भरोसा, TRE4 भर्ती परीक्षा के लिए शीघ्र जारी की जाएगी अधिसूचना। केंद्रीय पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, केंद्र सरकार पशु विकास के लिए कर रही है गंभीर प्रयास। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजगीर में एक महीने तक चलने वाले मलमास मेले का शुभारंभ किया। 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी
1: फीस तो देखो
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल।
3: वो कहाँ है
4: मिठाई?
5: RBI कहता है
6: तरों से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री
8: तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना,
9: दिमाग चार्ज कर अपना।
10: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
9: देखा
8: पापा, रुको मैं पे करता हूँ, नो सिग्नल।
10: अब क्या करोगे?
8: फ्री वाईफाई है ना?
9: बुद्धू सुधर जा।
10: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
8: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
10: RBI कहता है
6: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
11: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
12: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, प्रस्तुत है गया जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मवीर भारती।
13: बीते दिनों राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गया जिले के दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जिले में यह उनका पहला दौरा था। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर NDA कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। एयरपोर्ट से लेकर विष्णु पद मंदिर, महाबोधि मंदिर और शंकराचार्य मठ तक पूरे मार्ग पर राजनीतिक उत्साह, धार्मिक आस्था और शक्ति प्रदर्शन का माहौल दिखा। जगह जगह बैंड बाजा और फूल मालाओं से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। श्री चौधरी सबसे पहले विष्णु पद मंदिर पहुँचे, जहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने प्रस्तावित विष्णु पद कॉरिडोर और घाटों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री बाद में बोध गया पहुँचे, जहाँ उन्होंने महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन किए और प्रस्तावित बोध गया कॉरिडोर की योजनाओं का जायजा लिया। दौरे के अंत में मुख्यमंत्री शंकराचार्य मठ पहुँचे और वहाँ आयोजित आम सभा को संबोधित किया। इधर प्रस्तावित विष्णु पद मंदिर कॉरिडोर को लेकर पंडा समाज के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। मंदिर के विश्राम गृह में सैकड़ों की संख्या में पंडा समुदाय के लोग जुटे और विष्णु पद क्षेत्रीय जन जागरण मंच नामक संस्था का गठन कर कॉरिडोर निर्माण के विरोध में बैठक की। बैठक में विष्णु पद प्रबंधन कारिणी समिति के अध्यक्ष शंभू लाल विट्ठल ने कहा कि शुरुआत में उन्होंने कॉरिडोर निर्माण का समर्थन किया था, लेकिन वर्तमान नक्शा में गयापाल पंडों के सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को नुकसान पहुंचाने की आशंका है। ऐसे में वर्तमान स्वरूप में कॉरिडोर निर्माण स्वीकार नहीं होगा। पिछले दिनों वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के गया आगमन पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर

0: प्रेम कुमार ने गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से वियतनाम के राष्ट्रपति सड़क मार्ग से बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए। इसके बाद वे वियतनामी मठ भी गए। दिन भर के कार्यक्रम के बाद वे देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वैश्विक ईंधन संकट के बीच तेल विपणन कंपनियों ने देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर 3.14 रुपए, जबकि डीजल की कीमतों में 3.11 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कहा कि खाड़ी देशों में जारी युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, जिसका प्रभाव पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 7 महत्वपूर्ण अपील की है और संकट के इस घड़ी में सभी को देश के साथ खड़ा होना चाहिए।
1: खाड़ी देशों में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई जाकर के लगातार युद्ध हो रहे हैं, उसका असर दुनिया पर हो रहा है, उसका असर डीजल पर हो रहा है, पेट्रोल पर हो रहा है। इसलिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है होम टू वर्क, सोना न लोग खरीदे जाकर, और कम से कम डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल करें, खेतों में खादों का प्रयोग कम करें, जैविक खेती को बढ़ावा दें। संकट की घड़ी में हम सबको मिल करके देश के माननीय प्रधानमंत्री खड़ा होना जाकर।
0: जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। प्रगणक घर घर जाकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इधर जिले में किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए किसान पंजीकरण अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन की ओर से जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिले के नादरागंज ब्राह्मणी घाट निवासी छात्र शुभम कुमार ने जेईई मेन परीक्षा में एक बार फिर इतिहास रच दिया है। उन्होंने जेईई मेन 2026 के सेशन 2 में 100% अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। खास बात यह है कि इससे पहले भी वह सेशन 1 में 100% अंक हासिल कर चुके हैं। लगातार 2 बार यह उपलब्धि हासिल कर शुभम ने पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। इधर अग्निवीर भर्ती वर्ष 2026 के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की परीक्षा 1 जून से 15 जून तक आयोजित की जाएगी। गया स्थित भारतीय सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण बिहार के 11 जिलों कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय और जमुई से कुल 38,040 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। भर्ती कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जल्द ही भारतीय सेना के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
2: अभी आप सुन रहे थे गया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता धर्मवीर भारती।
3: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रही थी अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज को फिल्म मिस्टर बॉन्ड में। गीतकार थे समीर, संगीतकार आनंद मिलिंद। अखियों की झरोखे से यह फिल्म का नाम, आवाज हेमलता की, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

अभी आप सुन रही थी आंटी नंबर वन फिल्म का गीत, आवाज आरजू बानो की थी, गीतकार थे समीर, संगीतकार आनंद मिलिंद। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं।

0: कार्यक्रम क्रीड़ा जगत में आप सभी खेल प्रेमियों का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं दीपक कुमार झा।
1: श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में भी हमने आपके लिए बहुत कुछ लाया है। हम सुनेंगे ज्ञान की बातें खेल जगत से, हम चहल पहल की ओर ले चलेंगे और सुनेंगे एक भेंट वार्ता, साथ ही खेलों की साप्ताहिक गतिविधि की ओर भी हम चलेंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत इस भेंट वार्ता से करते हैं, जिसके अंतर्गत हमने दरभंगा जिला के खेल पदाधिकारी श्री परिमल से बातचीत किया है। बातचीत का विषय है दरभंगा जिले में खेल से संबंधित गतिविधियां और खेल से संबंधित हमारी उपलब्धियां। श्रोताओं नमस्कार। दरभंगा जिले के जो खेल की गतिविधियां हैं वो विगत दिनों किस तरह का रहा, कौन कौन सी उपलब्धियां हमारी रही खेल के मायने में, और विभिन्न वर्गों में जो छात्र छात्रा हैं यहाँ के, जो यहाँ के खिलाड़ी हैं, वो अलग अलग खेलों में जो प्रदर्शन रहा वो या तो जिला स्तरीय हो या राज्य स्तरीय हो या फिर उससे ऊपर, इन सभी बातों को लेकर के हम आज बातचीत कर रहे हैं अपने इस दरभंगा जिले के जिला खेल पदाधिकारी श्री परिमल जी से। आकाशवाणी की ओर से हम आपका सबसे पहले स्वागत करते हैं। और इस क्रम में हम सबसे पहला सवाल ये कि दरभंगा जिले की जो खेल की जो विगत दिनों जो गतिविधियां रही हैं, इन सभी बातों पर हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे।
2: बिहार सरकार खेल विभाग की ओर से खेल और खिलाड़ी दोनों के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। बिहार सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि कि उनकी यह सोच है कि आने वाला 2032 और 2036 में जो ओलंपिक हो, उस ओलंपिक में हमारे बिहार के खिलाड़ी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस लक्ष्य को लेकर बिहार सरकार चली गांव की ओर। गांव की ओर चलने का उद्देश्य है कि अभी प्रत्येक पंचायत में एक एक खेल मैदान का निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है, और उद्देश्य है कि वह गांव में जो छुपी हुई प्रतिभा है वहां जाकर प्रतिभा खोज करके, टैलेंट सर्च अभियान चल रही है, उस प्रतिभा खोज के तहत जो बेहतर खिलाड़ी हैं उनको बिहार सरकार अपने खर्च पे भारतवर्ष के जो सबसे बेहतर प्रशिक्षण संस्थान है उन संस्थान में उनको प्रशिक्षण दिलवाया जाए, ताकि हम 32 और 36 के ओलंपिक का लक्ष्य प्राप्त कर सके। इसके लिए खिलाड़ियों के चयन के लिए एक मसाल कार्यक्रम व्यापक स्तर पर चलाया गया, जो प्रत्येक विद्यालय में संपन्न करा ली गई। ठीक उसके ऊपर बीआरसी स्तर पर प्रतियोगिता हुई और उसको संपन्न कराया गया है। प्रखंड स्तर प्रतियोगिता को संपन्न करा ली गई है। जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता बाकी है, जो इस महीने के अंतिम सप्ताह में करा ली जाएगी, और उस प्रतियोगिता में जो अव्वल प्रतिभागी होंगे उनका चयन करके और उन सभी प्रतिभाओं में उन्हें अपने अपने प्रशिक्षण संस्थान में भेजा जाएगा और बेहतर प्रशिक्षण करवाया जाएगा। साथ ही साथ जिले में बहुत सारी कार्यक्रम चलाई जा रही है, जैसे प्रत्येक प्रखंड में एक एक आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें प्रशिक्षकों की भी बहाली की जाएगी और सुबह शाम जो निरंतर गांव के बच्चे अभ्यास करते हैं उनको गुणवत्तापूर्ण अभ्यास करने का अवसर प्रदान होगा। जिला मुख्यालय में आउटडोर और इंडोर खेल मैदान की व्यवस्था है। इंडोर में प्रत्येक जिले में एक एक खेल भवन का निर्माण कराया गया है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे जिम की इक्विपमेंट्स लगाई गई है। वहीं फर्स्ट फ्लोर पे जो इंडोर हॉल है उसमें मार्शल आर्ट की सभी सुविधाएं, जैसे बुशु है, कराटे है, थांगटा है, तलवारबाजी है, कबड्डी है, इंडोर

0: और जो भी गेम होता है उसके लिए मैट, सिंथेटिक मैट उपलब्ध करा दी गई है, प्रशिक्षकों की भी व्यवस्था करा दी गई है, सुरक्षा और सफाई की भी व्यवस्था सरकार की ओर से बेहतर कर दिया गया है। तीसरा मंजिल व तीन फ्लोर का जो खेल भवन का स्ट्रक्चर है उसमें तीसरे फ्लोर पर योगा का और कुश्ती का मैट लगा हुआ है, साथ ही साथ खेल के विकास के लिए कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार के लिए एक हॉल बनाया गया है, कॉन्फ्रेंस हॉल, और उसी के ठीक बगल में जिला खेल पदाधिकारी का एक कार्यालय बनाया गया है। तो मैं देख रहा हूं कि गांव के स्तर से लेके, प्रखंड स्तर से लेके, जिला स्तर से लेके प्रमंडल स्तर पर सभी 9 प्रमंडल में बिहार के 20-20 एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया है और खेल गांव बनाने का उद्देश्य है, जिसके लिए दरभंगा जिला के भी हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत पटोरी के खेल मैदान को चिन्हित किया गया है और आने वाले दिन में दरभंगा प्रमंडल स्तरीय जो खेल गांव का निर्माण होगा वो हम दरभंगा वासियों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। और जो बिहार का संकल्प है, बिहार सरकार खेल विभाग का जो संकल्प है कि हम आने वाले दिन में 32 और 36 में जो ओलंपिक में हमारा बिहार का प्रतिनिधित्व करे, ये सपना तभी साकार होगा। धन्यवाद।
1: एक प्रश्न था कि विगत दिनों जो हमारे जिले में, दरभंगा जिले में पिछले कुछ महीनों में जो अन्य अन्य खेलों की जो गतिविधियां हुई है जिला स्तरीय, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे।
0: दरभंगा जिला में विगत दिनों में कबड्डी की सभी आयु वर्ग अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 तीनों आयु वर्ग की बालिकाओं की प्रतियोगिता राज्य स्तरीय पर करवाया गया। वहीं तीनों आयु वर्ग अंडर 14, 17, 19 के बालिका वर्ग का हैंडबॉल का प्रतियोगिता करवाया गया, साथ ही साथ अंडर 14 बालक के खो खो प्रतियोगिता राज्य स्तरीय दरभंगा में संपन्न कराई गई, और मशाल प्रतियोगिता जो ब्लॉक स्तर पर अभी संपन्न कराई गई है उसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, साइकिल रेस की विधाएं संपन्न कराई गई है।
1: अच्छा, हम ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ के कुछ ऐसे बच्चे, कुछ ऐसे प्रतिभागी जिन्होंने राज्य स्तर हो या देश स्तर हो, तो उन्होंने विभिन्न खेलों में अपनी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हो, तो इसके बारे में भी कुछ जानकारी दे दें, ताकि जो हमारे और युवा हैं, जो नए नए खिलाड़ी हैं, वो भी उत्साहित हों।
0: खास तौर पर जैसा सब लोग आज बेटियों पर गुमान कर रहे हैं, दरभंगा में कई ऐसी प्रतिभावान बेटी है जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया है, जैसे स्वाति मिश्रा है जो खो खो प्रतियोगिता में दरभंगा जिला में अपने आप में एक मिसाल है, और वहीं कई ऐसी बच्चियां हैं जो जैसे प्रतिभा का एथलेटिक्स में 200 मीटर हो या 400 मीटर का हो, राज्य स्तर में कई बार गोल्ड मेडल ले चुकी है, साथ ही साथ दो तीन और उभरता हुआ हमारा एक पूरी टीम वॉलीबॉल की जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अभी हमारे खेल कार्यालय में ही उसका ये लगा हुआ है मेडल, जीतकर बिहार स्तर पर गोल्ड मेडल लेकर पूरी टीम बालिका का वॉलीबॉल में दो आयु वर्ग में अंडर 19 और अंडर 17 दोनों आयु वर्ग में मिहिर झा एक प्रशिक्षक हैं जिनके देखरेख में एक वॉलीबॉल का क्लब चलता है, और उनकी परिश्रम, मेहनत, लगन के चलते दरभंगा जिला में खेल में वॉलीबॉल की बेटियां बहुत आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छा प्रदर्शन की है पूरी टीम।
1: ब्लॉक लेवल पर भी कोई ऑफिस है कि वो लोग जाकर के खेल के लिए संपर्क करें?
0: ब्लॉक स्तर पर खेल का कोई कार्यालय नहीं है, ब्लॉक स्तर पर आउटडोर स्टेडियम है जिसमें चेंजिंग रूम है, कार्यालय के लिए भवन बना हुआ है, और वहीं सभी संघ के लोग, सभी प्रशिक्षक आकर बैठेंगे और वहां शेष खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे निरंतर।
1: तो ये तो जो हमारी जिले के जो खिलाड़ी हैं उनकी उपलब्धियां आपने गिनाई हैं, बिहार सरकार या केंद्र सरकार की ओर से खेल

0: के कोटे से भी नौकरियां मिल रही हैं, तो इस बारे में कुछ बताएं।
1: खेल कोटे से बहाली क्लर्कियल जॉब के लिए दरभंगा में खास तौर पर कम से कम 5 ऐसे हैं खेल कोटे से बहाल जो अपना कहीं न कहीं योगदान दे रहे हैं। जैसे खेल कार्यालय में भी संजीव कुमार थे, बूसू के खेल से आपके अनुमंडल में हैं, वहीं कई ब्लॉक में और जिला में कई खेल विधा साइकिलिंग से है, स्विमिंग से है। जिला में सामान्य शाखा में श्याम कुमार झा जो खेल कोटा से ही स्क्वाश खेल से है, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनकी नौकरी हुई है।
0: अंत में आपकी ओर से जिले वासियों को और खास करके जो खेल से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, जो युवा हैं, उनके लिए आपकी ओर से क्या संदेश क्या होगा?
1: मैं तो खेल के विकास के लिए ही यहाँ मौजूद हूँ और हम चाहेंगे कि जितने भी खेल संघ के लोग हैं वो जहाँ हैं वहीं जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वर्तमान समय में है उसी के देखते हुए और शुरू कर दें कठिन परिश्रम मेहनत, और बच्चों को प्रेरित करें कि आने वाला बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में उन बच्चों को उनके अभिभावकों को बताएं ताकि वो प्रेरित हों और आप खेल में अपना समय दे सकें और अपना भविष्य बना सकें ताकि हम दरभंगा का नाम रोशन हो बिहार में पूरे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के।
2: और अब चलते हैं चहल पहल की ओर। टेस्ट क्रिकेट में गेंद बदलने की क्या प्रावधान है, आज हम चहल पहल के अंतर्गत इस पर चर्चा करेंगे। भारत के इंग्लैंड दौरे पर बार बार एम्पायर्स का बॉल चेंज चर्चा में रहा। लॉर्ड्स टेस्ट में भी बार बार गेंद बदलना पड़ा क्योंकि पुरानी गेंदें जल्दी खराब हो रही थी। लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में तो भारतीय टीम द्वारा 80 ओवर के बाद ली गई नई गेंद 10 ओवर बाद ही खराब हो गई थी। वहीं इसके बदले दी गई दूसरी गेंद को भी 10 ओवर बाद दोबारा बदलना पड़ा। इंग्लैंड की 112.3 ओवर की पारी में कुल 5 बार गेंदें बदली गई थीं। भारतीय कप्तान शुभमन गिल, उप कप्तान ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी रिप्लेसमेंट बॉल से नाराज दिखे। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में बॉल बदलने के नियम क्या हैं? टेस्ट में बॉल किन किन परिस्थितियों में बदली जा सकती है और बॉल को कैसे जांचते हैं? बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में 4 परिस्थितियों में मुख्यतः गेंद को बदला जा सकता है। पहला, अगर किसी शॉट से बॉल गुम हो जाए, बॉल स्टेडियम से बाहर चली जाती है। दूसरा, जब खराब हो जाए। खराब होने पर गेंद को बदला जा सकता है, जैसे गेंद की सीम कट जाए, सिलाई खुल जाए या फिर लेदर जाए। तीसरा है, शेप बदल जाए और यदि बॉल का डी शेप हो गई है तो इसे बदला जा सकता है। फिर चाहे बॉल का साइज बड़ा हो या फिर छोटा। वहीं अगर बॉल टेम्परिंग की स्थिति या कहें कि अगर फील्ड अंपायर को लगता है कि गेंद के साथ छेड़छाड़ की गई है तो अंपायर बॉल को बदल सकता है। यहां यह भी जानना आवश्यक है कि अंपायर बॉल की क्वालिटी कैसे जांचते हैं। फील्ड अंपायर मैच के दौरान बॉल को बार बार चेक करते रहते हैं। वे ओवर पूरा होने, विकेट गिरने और बॉल बाउंड्री के बाहर जाने के बाद गेंद को चेक करते हैं। बैटिंग या बॉलिंग टीम के अनुरोध या फिर अंपायर खुद से बॉल को जांच सकते हैं। गेंद के आकार यानी शेप का पता लगाने के लिए गेज टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में गेंद को रिंग से गुजारा जाता है। गेज में 2 रिंग होती हैं। दोनों के साइज आईसीसी के मापदंड के अनुसार होते हैं। एक का साइज बड़ा और दूसरे का थोड़ा छोटा होता है। अगर गेंद एक रिंग से गुजरती है लेकिन दूसरी से नहीं तो वह गेज टेस्ट में पास मानी जाती है। वहीं इसके उलट गेंद दोनों रिंग से गुजर जाती है तो इसे गेज टेस्ट में फेल माना जाता है। टेस्ट क्रिकेट में पारी की शुरुआत नई गेंद से होती है। 80 ओवर का खेल होने के बाद गेंदबाजी टीम का कप्तान नई बॉल की मांग कर सकता है। हर पारी के बाद नई गेंद यूज होगी। रिप्लेसमेंट बॉल बॉल लाइब्रेरी से लाई जाती है जो फोर्थ अंपायर के पास रहती है। इसमें फोर्थ अंपायर पुरानी बॉल को रखती है जो पिछले टेस्ट मैचों में उपयोग में लाई जा चुकी है। साथ ही होस्ट एसोसिएशन भी पुरानी बॉल देते हैं। बॉल की कमी होने पर फोर्थ एम्पायर दोनों टीमों से प्रैक्टिस बॉल भी मांग सकते हैं। बॉल को लाइब्रेरी में शामिल करने से पहले चौथा एम्पायर हर गेंद को एक विशेष उपकरण यानी गोलाई नापने वाले

रिंग से जांचता है। लाइब्रेरी में कितनी बॉल रखी जानी है या चौथा अंपायर जरूरत के हिसाब से तय करता है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड दौरे पर बॉल ज्यादा खराब हो रही है तो वहां लाइब्रेरी पर रखी गई बॉल की संख्या ज्यादा होगी। एक अहम सवाल है कि क्या पहले जैसी रिप्लेसमेंट गेंद मिलना मुमकिन है? जवाब है बिल्कुल नहीं। एकदम वैसी की वैसी गेंद मिलना संभव नहीं होता है। अक्सर अंपायर कोशिश करते हैं कि जो गेंद बदली जा रही है उसे उसी जैसी रिप्लेसमेंट गेंद मिल जाए। यह ज्यादा पुरानी भी हो सकती है और कुछ नई भी। एक 60 ओवर पुरानी गेंद किसी सूखी पिच पर पुरानी गेंद का विकल्प बन सकती है। लॉर्ड्स टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम के साथ यही हुआ था, जब टीम इंडिया ने इंग्लिश पारी के कुछ ही ओवर के बाद गेंद बदलने की मांग की थी। नई बॉल गेज टेस्ट में फेल हो गई और भारत को पुरानी बॉल मिल गई। कप्तान गिल और सिराज इसी बात से नाखुश थे। जैसे लॉर्ड्स टेस्ट के दूसरे दिन सुबह गेंद डी शेप हो गई थी लेकिन स्विंग कर रही थी। अगर भारत खुद बदलाव की मांग न करता तो गेंद नहीं बदलती। अभी आप सुन रहे थे चहल पहल और इसके अंतर्गत आज हम बात कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट में गेंद बदलने का क्या प्रावधान है इस विषय पर। और अब करते हैं ज्ञान की बातें खेल जगत से। श्रोताओं, आज हम बास्केटबॉल खेल के बारे में जानेंगे। बास्केटबॉल एक टीम खेल है जिसमें 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ एक 10 फुट ऊंचे घेरे में संगठित नियमों के तहत एक गेंद डालकर अंक अर्जित करने की कोशिश करती है। बास्केटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से देखे जाने वाले खेलों में से एक है। गेंद को ऊपर से टोकरी के आर पार फेंककर यानी शूटिंग अंक बनाए जाते हैं। खेल के अंत में अधिक अंकों वाली टीम जीत जाती है। गेंद को कोर्ट में उछालते हुए यानी ड्रिबलिंग करते हुए या साथियों के बीच आदान प्रदान करके आगे बढ़ाया जाता है। बाधित शारीरिक संपर्क यानी फाउल को दंडित किया जाता है और गेंद को कैसे संभाला जाए इस पर पाबंदियां हैं। समय के साथ बास्केटबॉल ने विकास करते हुए शूटिंग, पासिंग और ड्रिबलिंग की आम तकनीकों के साथ साथ खिलाड़ियों की स्थिति और आक्रामक साथ ही रक्षात्मक संरचनाओं को भी शामिल किया। आमतौर पर टीम के सबसे लंबे सदस्य सेंटर या 2 फॉरवर्ड पोजीशनों में से एक पर खेलते हैं, जबकि छोटे खिलाड़ी या वे जो गेंद को संभालने में सबसे दक्ष और तेज हैं गार्ड पोजीशन पर खेलते हैं, जहां प्रतिस्पर्धी बास्केटबॉल को सावधानी से विनियमित किया गया है। यदाकदा खेलने के लिए बास्केटबॉल के कई परिवर्तित रूपों को विकसित किया गया है। कुछ देशों में बास्केटबॉल एक लोकप्रिय दर्शक खेल भी है। खेल का नाम ही है बास्केट और बॉल, यानी बास्केट में डालने का जो एक लक्ष्य होता है उसे बॉल के माध्यम से हम पूरा करते हैं और इसी लक्ष्य को पाने का जो एक नियम है वही खेल के माध्यम से हम बास्केटबॉल खेल के बहाने खेलते हैं। बता दें कि जहां प्रतिस्पर्धी बास्केटबॉल मुख्य रूप से एक इंडोर खेल है जिसे बास्केटबॉल कोर्ट पर खेला जाता है, वहीं आउटडोर खेले जाने वाले कम विनियमित भिन्न रूप शहरों और ग्रामीण समूहों दोनों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गए हैं। बास्केटबॉल खेल में एकमात्र आवश्यक उपकरण बास्केटबॉल और कोर्ट है, एक सपाट आयताकार सतह जिसके विपरीत छोर पर टोकरी हो, या 3-on-3 स्ट्रीट बास्केटबॉल के मामले में एक टोकरी के साथ एक आधा कोर्ट कह सकते हैं। प्रतिस्पर्धी स्तर पर और अधिक उपकरणों के उपयोग की आवश्यकता होती है, जैसे घड़ियां, अंक तालिका, स्कोर बोर्ड, अल्टरनेटिंग पोजीशन, एरो और सीटी चालित स्टॉप क्लॉक सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में एक निर्धारित बास्केटबॉल कोर्ट 28/15 मीटर होता है। ज्ञान की बातें खेल जगत से के अंतर्गत अभी हम बास्केटबॉल खेल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे और अब चलते हैं खेलों की साप्ताहिक गतिविधियों की ओर। दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नासिर एशियाई चैंपियंस लीग 2 का फाइनल हार गई। जापान के क्लब गाम्बा ओसाका ने उसे 1-0 से हराया। मैच में ज्यादा समय गेंद पर पोजीशन और कई मौके मिलने के बावजूद रोनाल्डो और उनके साथ ही एक भी गोल नहीं कर सके। दिसंबर 2022 में अल नासिर से जुड़े रोनाल्डो के पास हाफ टाइम से पहले बराबरी का सुनहरा मौका था, लेकिन जोआओ फेलिक्स के क्रॉस पर उनका क्लोज रेंज हेडर गोल पोस्ट के बाहर चला गया। मैच का इकलौता गोल फर्स्ट हाफ में गाम्बा ओसाका के तुर्की फॉरवर्ड डेनिस हैमेट ने किया।
उन्होंने 30वें मिनट में डी एरिया के अंदर से लो शॉट मारकर गेंद नेट के निचले कोने में पहुंचाई। लंबी वीएआर के जांच के बाद गोल को सही माना गया। हाफ टाइम पर चोटिल होकर

बाहर हुए मैच विनर हैमट ने कहा कि मैं गोल करके टीम की मदद करने से बेहद खुश हूं। दूसरी छमाही में बेंच पर बैठकर मैच देखना काफी तनावपूर्ण था, लेकिन मुझे अपने साथियों पर गर्व है जिन्होंने शानदार डिफेंस किया। अब यश मनाने का समय है। बता दें कि चेल्सी से पिछले साल जुलाई में अल नासिर से जुड़े जोआओ फेलिक्स ने मैच खत्म होने से 13 मिनट पहले बॉक्स के बाहर से दमदार लो शॉट किया, लेकिन गेंद गोल पोस्ट से टकराकर लौटाई। यहां अल नासिर की किस्मत ने साथ नहीं दिया। यह हफ्ता अल नासिर के फैंस के लिए निराशाजनक रहा है। 5 दिन पहले टीम 2019 के बाद पहली बार सऊदी प्रो लीग जीतने के करीब थी, लेकिन इंजरी टाइम में गोल खाने से खिताब का फैसला आखिरी मैच डे तक पहुंच गया। हालांकि अल नासिर के पास अभी भी सऊदी प्रो लीग जीतने का मौका है। टीम अंक तालिका में अल हिलाल से 2 अंक आगे है। पिछले गुरुवार को दमाग के खिलाफ आखिरी मुकाबला जीतकर वह ट्रॉफी अपने नाम कर सकती है। बैंकॉक में खेले जा रहे थाईलैंड ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी फाइनल में पहुंच गए हैं। दुनिया के चौथे नंबर की भारतीय जोड़ी ने शनिवार को सेमीफाइनल में मलेशिया के गो जे फी और नूर इजुद्दीन को 19-21, 22-20, 21-16 से हराया। यह मुकाबला 82 मिनट तक चला। फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना इंडोनेशिया के लियो रोली कर्नाडो और डेनियल मार्टिन से होना है। सात्विक और चिराग ने दबाव में शानदार खेल दिखाया। भारतीय जोड़ी ने दूसरा गेम बेहद करीबी मुकाबले में बचाया और फिर निर्णायक गेम में बढ़त बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। यह इस सीजन में उनकी पहली फाइनल एंट्री है। इससे पहले वे थाईलैंड का 2019 और 2024 टूर्नामेंट का खिताब जीत चुके हैं। मुकाबले की शुरुआत में मलेशियाई जोड़ी ने फ्रंट कोर्ट पर दबदबा बनाया और 3-1 की बढ़त ले ली। हालांकि सात्विक और चिराग ने तेजी से वापसी करते हुए स्कोर 5-5 कर दिया। पहले गेम में दोनों टीमों के बीच तेज रैलियां और लगातार आक्रामक स्मैश देखने को मिले। ब्रेक तक मलेशियाई जोड़ी 11-8 से आगे थी। चिराग और इजुद्दीन ने कई तेज स्मैश लगाए, जबकि गोह ने नेट के पास शानदार ड्रॉप शॉट खेले। चिराग की कुछ गलतियों की वजह से भारतीय जोड़ी 9-15 से पीछे हो गई। भारतीय खिलाड़ियों ने स्कोर 12-16 तक पहुंचाया, लेकिन इजुद्दीन के मजबूत स्मैश और डिफेंस की मदद से मलेशियाई जोड़ी ने 18-12 की बढ़त बना ली। इसके बाद गोह की 2 गलतियों और एक लंबी शॉट से भारतीय टीम ने अंतर कम किया, लेकिन अंत में सात्विक नेट पर शॉट मार बैठे और पहला गेम गंवा दिया। भारतीय स्टार बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 2026 में शानदार फॉर्म दिखाई है। दोनों खिलाड़ी का जनवरी में मलेशिया ओपन सुपर 1000 में सफर क्वार्टर फाइनल तक रहा, जबकि मार्च में स्विस ओपन सुपर 300 के क्वार्टर में उन्होंने वॉक ओवर दे दिया था। वहीं सात्विक के कंधे की चोट के कारण भारतीय जोड़ी को बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप से नाम वापस लेना पड़ा था। वहीं अगर थाईलैंड ओपन की बात करें तो थाईलैंड ओपन 2026 में पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में जापान की अकाने यामागुची और लक्ष्य सेन थाईलैंड के कुनलावट विटी दर्शन से हारकर बाहर हुए। किदांबी श्रीकांत भी प्री क्वार्टर फाइनल में सूली यांग से हार गए। वीमेंस डबल्स में मालविका बंसो दूसरे राउंड में चीन की चेन यूफी और देविका सिहाक थाईलैंड की पिचा मोन अपतिनिपुत से हार गईं। वहीं आई शेट्टी, तरुण मन्नेपल्ली, उन्नति हुड्डा, अनमोल खराब, तन्वी शर्मा और ईशा रानी बड़ुआ पहले ही राउंड में बाहर हो गए थे। बैडमिंटन सुपर 500 टूर्नामेंट वर्ल्ड टूर का चौथा सबसे बड़ा स्तर का टूर्नामेंट है। यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रोफेशनल इंटरनेशनल सर्किट का अहम हिस्सा माना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बैडमिंटन सुपर 500 टूर्नामेंट की। सुपर 500 जीतने पर खिलाड़ियों को 9200 रैंकिंग प्वाइंट्स मिलते हैं, जबकि टूर्नामेंट की न्यूनतम प्राइज मनी 4.2 लाख डॉलर होती है, यानी करीब 3.5 करोड़ रूपये। एक सीजन में कुल 9 सुपर 500 टूर्नामेंट खेले जाते हैं। इनमें इंडोनेशिया मास्टर्स, थाईलैंड ओपन, कोरिया ओपन, जापान ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन जैसे बड़े इवेंट शामिल हैं। मुख्य ड्रॉ में 32 खिलाड़ी या जोड़ियां हिस्सा लेती हैं, जिनमें 4 एंट्री क्वालिफायर राउंड से मिलती है। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर को कुल 5 स्तरों में बांटा गया है। वर्ल्ड टूर फाइनल्स, सुपर 1000, सुपर 750, सुपर 500 और सुपर 300 या 100। सुपर 500 टूर्नामेंट में दुनिया के टॉप खिलाड़ी खेलते हैं, जिससे उनके वर्ल्ड टूर फाइनल्स के लिए रैंकिंग पॉइंट्स बेहतर होते हैं। सेमेनियो के इस हैरतगंज गोल ने शनिवार को मैनचेस्टर सिटी को एफए कप का नया चैंपियन बना दिया। बताते चलें कि 72वां मिनट एर्लिंग हालांड का सटीक क्रॉस, एंटोनी सेमेनियो ने तेजी से दौड़ते हुए गेंद को एडी से फ्लिक कर दिया। चेल्सी के गोल कीपर रॉबर्ट सांचेज ने चीते जैसी फूर्ती दिखाते हुए हवा में छलांग लगाई, लेकिन गोल नहीं कर सके। वेम्बली स्टेडियम में सिटी ने चेल्सी को 1-0 से हराया। टीम के पास इस सीजन में डोमेस्टिक ट्रेवल का मौका है। पहला हाफ गोल रहने के बाद दोनों टीमें लगातार गोल की कोशिश कर रही थी, लेकिन गोल के मौके नहीं बन पा रहे थे। तभी 72वें मिनट में घाना के फॉरवर्ड सेमेनियो की बूट से गोल आया। यह उनका 10वां गोल है। वे टीम को 2 ट्रॉफियां जिताने में

मदद कर चुके हैं। और अब कुछ आईपीएल की बात कर लेते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 के 60वें मैच में गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। ईडन गार्डन्स स्टेडियम में कोलकाता ने 247 रन बनाए। 248 रन का पीछा कर रही गुजरात 218 रन 4 विकेट के स्कोर पर बनाया। यह इस सीजन में 52वीं बार रहा जब किसी टीम ने 200 प्लस टोटल बनाया। मैच में कोलकाता की ओर से कुल 22 छक्के लगे। वहीं गुजरात के साई सुदर्शन सबसे तेज 3000 T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। आईपीएल 2026 में अब तक 52 बार टीमों ने 200 प्लस टोटल बनाए हैं। यह आईपीएल इतिहास में किसी एक सीजन में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा है। इससे पहले पिछले सीजन भी 52 बार 200 प्लस स्कोर बने थे। गुजरात के बल्लेबाज साई सुदर्शन सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले बैटर बन गए। साई सुदर्शन आईपीएल 2026 में 7 बार 50 प्लस स्कोर बना चुके हैं। उन्होंने शुभमन गिल और अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल लगातार दूसरे आईपीएल सीजन में 500 प्लस रन बनाने वाले कप्तान बन गए हैं। और अब चलते चलते बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले महीने होने वाले विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित की है। टीम आयरलैंड में होने वाली ट्राई सीरीज में भी हिस्सा लेगी। ऑलराउंडर फातिमा सना को लगातार दूसरे एडिशन के लिए इस टीम का कप्तान बनाया गया है। टीम में निरंतरता के साथ कई नए चेहरों को भी जगह मिली है। अभी आप सुन रहे थे खेलों की साप्ताहिक गतिविधि। अब इस कार्यक्रम से दीपक कुमार झा को आज्ञा दें। इस कार्यक्रम के लिए संकलन निर्माण और वाचन दीपक कुमार झा का था और प्रस्तुतकर्ता थे मितेश कुमार मिश्रा। नमस्कार।

अभी आप सुन रही थी खेल गतिविधि पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, अब से थोड़ी देर बाद यानी रात 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात 9 बजे News@9 और दो खबरें रात 9:15 पर। रात 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। रात 11 बजे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार। ये सभी प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे।

0: 30.5 मीटर पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ एक पल में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की 2 दिन की यात्रा के बाद 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। ये भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
1: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का

0: उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
1: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
2: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
3: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल

इंडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबूधाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबूधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

वाले नव तामीर शुदा प्लांट का भी इफ्तिताह किया। अहमदाबाद में उन्होंने मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्लोबल कैपेबिलिटी मर्कज कैंपस का भी इफ्तिताह किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को साल 2026 के लिए पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दाखिला ने कहा है कि सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद होने वाली पहली शहरी एजाज से मुतअल्लिक तकरीब के दौरान पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्ड्स अता करेंगी। इस साल भारत सरकार ने मजमूई तौर पर 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। रेलवे की वजारत ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के दो डिब्बों में आग लगने के वाक़े की आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दिया है। आज सुबह तकरीबन 5:15 बजे कोटा डिवीज़न के नागता जंक्शन के करीब त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के दो डिब्बों में आग लग गई। इन डिब्बों में एक गार्ड कोच और एक AC 3 टियर कोच शामिल था। वजारत के मुताबिक कोच में नस्ब हिफाजती निज़ाम फौरी तौर पर मुतहरिक हो गया और ट्रेन खुद बखुद रुक गई। ट्रेन के अमले ने फौरन आग से मुतासिर दोनों डब्बों को अलग किया, जिसकी वजह से किसी भी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान एक नई एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल वसीले से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन से कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान रेल कनेक्टिविटी में इजाफा हुआ है। जनाब वैष्णव ने इस मौके पर कहा कि जुनूबी और मशरकी कर्नाटक के लोगों का एक देरीना मुतालबा पूरा किया जा रहा है। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि उम्मीद है कि बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही शुरू हो जाएगी। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने आज दिल्ली सरकार की जानिब से हवाई जहाज़ों के ईंधन ATF पर वैल्यू एडेड टैक्स को 25% से कम करके 7% करने के फैसले की तारीफ की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब हवाबाजी का शोबा आलमी सतह पर ऑपरेशनल और माली दबाव का सामना कर रहा है, रियासती हुकूमतों के इस किस्म के सरगर्म इकदामात एयरलाइंस को ज़रूरी सहारा फराहम करते हैं और मुसाफिरों के लिए फ़जाई सफ़र को सस्ता रखने में मदद फराहम करते हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि महाराष्ट्र के विदर्भ जिले में किसानों की खुदकुशी की एक बड़ी वजह पानी की किल्लत है। उन्होंने ये भी कहा कि पानी की बचत इस बुहरान का मुअस्सर तरीन हल है। नागपुर में कौमी कॉन्फ्रेंस नागपुर जल संवाद से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि पानी के तहफ्फुज़ से मुतअल्लिक कोशिशों की कामयाबी के लिए लोगों का इनमें हिस्सा लेना लाजमी है। उन्होंने ग्राम पंचायतों से कानून साज अरकान तक तालमेल के साथ उठाए गए इकदाम पर जोर दिया ताकि गांवों और किसानों की खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। नशीली अशिया पर काबू पाने वाले ब्यूरो NCB ने मुल्कों के माबैन नशीली अशिया की नाजायज तिजारत के उन नेटवर्क्स के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है जो भारत म्यांमार सरहद पर अपनी कार्रवाइयाँ अंजाम देते हैं। ब्यूरो ने म्यांमार में मुकीम सरगना थांगकिंग तुआंग को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। NCB ने एक बयान में कहा है कि यह गिरफ्तारी वसी तौर पर निगरानी, खुफिया मालूमात में इजाफे, तालमेल के साथ किए जाने वाले बैन रियासती तालमेल और लगातार पीछा करने की कार्रवाइयों की बदौलत की गई है। थांगकिंग तुआंग कई तरह की मनशियात और नशीले मादों के कानून के तहत मतलूब था। ये केस NCB और मनशियात से मुतअल्लिक कानून नाफिज करने वाली कई एजेंसियों ने दर्ज की थी, जिसमें से NCB ने 2 केस दर्ज किए थे। नई और काबिले तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने एक ही दिन में 256.4 GW की बिजली की मांग को पूरा करने में, जो अब तक की सबसे बड़ी मांग है, कामयाबी हासिल की है। एक प्राइवेट अंग्रेजी रोजनामे के साथ बातचीत में जनाब जोशी ने कहा कि बिजली की 33% मांग काबिले तजदीद तवानाई के वसायल से पूरी की गई है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस बड़ी तब्दीली से तवानाई की सलाहियत में बड़ी तेजी से इजाफे, ग्रिड को मुस्तहकम बनाने और मुल्क की तरक्की के सफर को तकवीत देने में माहौल के लिए साजगार तवानाई के बढ़ते हुए हिस्से का अंदाजा होता है। रूस में मास्को और आसपास के इलाकों पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में 4 अफराद की मौत हो गई है, जिनमें एक भारत

0: मजदूर भी शामिल है। मास्को के मेयर सरगई सुबियानिन ने बताया कि रात भर हुए इन ड्रोन हमलों में कम से कम 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं। रूस के हुक्काम के मुताबिक मास्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को तबाह भी किया गया है। यूक्रेन के सदर विलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों की तस्दीक करते हुए इन्हें दुरुस्त कार्रवाई करार दिया। इस दौरान रूस में भारतीय सफारतखाने ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में बताया कि मास्को को मुख्तलिफ इलाकों में हुए ड्रोन हमलों में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। सफारतखाने ने मजीद बताया कि सफारतखाने के अहदेदारों ने हादसे की जगह का दौरा किया और अस्पताल में जेर इलाज जख्मी मजदूरों की कैफियत दरियाफ्त की। भारत के महकमे मौसमियात का कहना है कि जनूब मगरबी मानसून इस माह की 26 तारीख को केरलम में दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि मॉडल एरर की बुनियाद पर इसमें 4 रोज आगे या पीछे होने की भी गुंजाइश है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि जनूब मगरबी मानसून के जनूब मशरकी बहिरे अरब के कुछ मजीद हिस्सों जनूब मगरबी और जनूब मशरकी खलीज बंगाल अंडमान जजायर और बहिरे अंडमान के बाकी हिस्सों और मशरकी वस्ती खलीज बंगाल के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 रोज के दौरान हालात मुआफिक रहेंगे। महकमे मौसमियात ने कल मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी की पेशगोई की है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ मध्य प्रदेश पंजाब राजस्थान तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह की सूरत हाल का इम्कान जाहिर किया गया है। बैडमिंटन में आज चीन में बाओजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में भारत की श्रियांशी वाली शेट्टी ने चांदी का तमगा जीता है। उन्होंने बाओजी सिटी जिम्नेशियम में सुपर 100 के फाइनल में चीन की एन क्यू युआन को सीधे सेटों में 14-21 6-21 से शिकस्त खाई, लिहाजा उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जरिए दिए गए 223 रन के निशाने को हासिल करते हुए पंजाब किंग्स मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 199 रन ही बना सकी। इससे कबल बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दिन के एक और मैच में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 194 रन का निशाना रखा है। इससे कबल दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से वफ्त की सतह की बातचीत कर रहे हैं जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने 2 रोजा दौरे में इस मुल्क के अपने हम मनसब के साथ 2 तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दिगर बुनियादी शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने से मुतल्लिक 17 मुआहदों पर दस्तखत किए। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से 2 तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। कांग्रेस रहनुमा वीडी सतेसन को कल केरलम के नए वजीर आला का हलफ दिलाया जाएगा। मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर समेत 4 अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वाली शेट्टी ने बाओजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। इससे कबल बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा नाटक कूपे।
2: ये है मेरा कूपे। जूडिथ का प्रोग्राम अचानक बदल गया। मैं उसका टिकट वापस करने जा रहा था। आपको आपत्ति न हो तो?
3: मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके साथ तो 10 दिन तक साधना केंद्र में रही हूँ। एक अजनबी आदमी के साथ सफर करना मुझे बुरा नहीं लगता।

0: सकता है।
1: कूपे में भी?
0: क्यों, कूपे में क्या है, दो बर्थ है, उन पर कोई भी दो यात्री सफर कर सकते हैं, दो स्त्री दो पुरुष या एक स्त्री एक पुरुष।
1: जी हाँ, एक स्त्री और एक पुरुष दो ही होंगे इस कूपे में, अच्छा सफर कटेगा।
0: हाँ, नींद अच्छी आएगी या शायद बिल्कुल नहीं आएगी।
1: आप में जीवट है, लेकिन 10 दिनों तक तो आप
0: वहाँ सबको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए था जैसा मैंने किया, साधना करने आए थे हम लोग।
2: अच्छा, मैम साहब आ गए, आप तो कह रहे थे।
1: सुनो कलेक्टर, दो कप कॉफी मिलेगी? लेकिन रुको शांतना जी, अब तो डाइनिंग कार में चलने का वक्त हो गया।
0: मैं नहीं जाऊंगी, रात को मैं नहीं खाती। कंडक्टर, मेरे लिए केवल एक कॉफी।
2: जी हाँ मैम साहब, कॉफी आ जाएगी।
1: मैं तो डाइनिंग कार में जाऊंगा, 10 दिन तक मन और तन दोनों ही भूखे रहे। ना ना, अब और मन को नहीं मार सकता।
0: तुमने मारा ही कहा है, मारने का ढोंग किया। अच्छा जाओ, मैं ध्यान करने के बाद कुछ देर काम करूंगी।
1: ओके, लौट कर बातें होंगी।
0: ओके।
2: मैम साहब, ये रही कॉफी, कुछ और चाहिए?
0: नहीं शुक्रिया। अब जरा एकांत मिला, सोने से पहले अपनी डायरी लिख लूं। गुरुजी दूसरे महात्माओं से कितने भिन्न हैं, वो न प्रभाव डालने के हथकंडे जानते हैं न दूसरों पर छा जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने एक सहज सत्य का आविष्कार कर लिया है क्योंकि उनमें एक मोहिनी शक्ति पैदा हो गई है, वही शक्ति देश विदेश के नाना प्रकार से त्रस्त व्यक्तियों को अपने पास खींच लेती है। अज्ञात शांति की खोज में भटकते ये व्यक्ति कैसे सहज विश्वास से अपने जीवन की कहानी खोल कर रख देते हैं इनके सामने। वो जूडिथ जिसकी नीली आंखों में गहरे आकाश की झलक है, जिस सहज भाव से खिलखिलाती है, उसी सहज भाव से अपने मन की सारी परतें खोल कर रख देती है। उस दिन वो अपनी प्यारी प्यारी सी बच्ची के लिए मेरे पास से गुजरी तो मैंने मुस्कुराकर कहा, हेलो जूडी, कितनी प्यारी है तुम्हारी बच्ची, कल बहुत देर तक मुझसे बातें करती रही।
3: ये जिसके पास जाती है उसी की हो जाती है, मेरी तरह। अब गुरुजी के पास सोने की जिद कर रही
0: है। अच्छा,
3: मानती ही नहीं, इसीलिए इसके पिता के पास ले जा रही हूँ।
0: क्या तुम्हारे पति भी यहाँ आए हुए हैं?
3: मेरी शादी नहीं हुई है।
0: क्या?
3: लेकिन इसके पिता बहुत सुंदर हैं, ऊपर की मंजिल में ही तो ठहरे हैं, उनसे ही इस लंबी यात्रा में मैंने ये सुंदर बच्ची प्राप्त की है।
0: आप कितने दिन से घूम रही हैं?
3: कई वर्ष हो गए।
0: आपके बहुत मित्र हैं?
3: स्वाभाविक है, अनेक देशों के अनेक युवकों के संपर्क में आई हूँ, उनको समझा परखा है, प्यार दिया है, पाया है।
0: बुरा तो नहीं मानोगी, तुम ग्रास डोप चरस एलएसडी आदि का सेवन करती हो?
3: करती हूँ, उनसे मुझे आनंद मिलता है, उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकती, वो अनुभव करने की वस्तु है, जैसे जैसे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, प्रतिभा मुक्त हो जाती है।
0: तो फिर वो क्या है जो तुम्हें खाए जा रहा है, क्या है जो तुम्हारे जैसे युवक युवतियों को दर दर भटकने के लिए विवश करता है? साधुओं महात्माओं योगियों के पास तुम क्या पाना चाहते हो?
3: बहुत दिनों तक ये सब करते करते मैंने अनुभव किया है कि नशे में जो आनंद मिलता है वो जैसे मैकेनिकल, जैसे उधार का आनंद है। एक महात्मा है जो दैहिक सेक्स के द्वारा समाधि की ओर ले जाने का दावा करते हैं, लेकिन मैं बिना किसी की सहायता से अपने ही अंतर में से स्वर्ग जाने का मार्ग खोल लेना चाहती हूँ। सुना था भारत के योगी इस मार्ग को जानते हैं, इसलिए भटकती हूँ।
0: जितने लोगों से मैंने बात की है वो सभी इन अनुभवों से गुजर चुके थे, सेक्स नशा सब कुछ उनके लिए सहज है, फिर भी वो भटक रहे हैं। कितनी सच्ची है उनकी ये भटकन। कुछ हैं जो परिवार के शासन से परेशान हैं, कुछ को आज के शोषण की राजनीति त्रस्त करती है, वो उद्योगीकरण से प्राप्त ऐश्वर्य और विलास

0: चुके हैं। ये यांत्रिक और कृत्रिम जीवन उनको खोखला कर रहा है और वो उस आनंद की तलाश में है जो उन्हें शांति के स्वर्ग द्वार के भीतर पहुंच जाने की शक्ति दे। आती हूँ।
1: बाहर भी वर्षा होकर चुकी है। मौसम कितना सुहावना, कितना प्यारा है। अरे आप एक लिखे जा रही हैं? कैंप के अपने अनुभव लिख रही हैं शायद। देख सकता हूँ?
0: ये मेरी डायरी है।
1: तब नहीं देखूंगा। डायरी चोरी करके पढ़ने की चीज है।
0: बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं।
1: समझदारी की बातें तो अब आरंभ होंगी। खिड़की खोल दूं। वर्षा से भीगी हवा आने दो। मैं आपके पास बैठ सकता हूँ?
0: सब काम पूछ कर ही करते हैं आप।
1: थैंक यू। मेरे पास स्कॉच है, 10 दिन से इसे छुआ ही नहीं। आप पीती हैं?
0: पीती तो नहीं, पर प्रतिज्ञा भी नहीं की।
1: तो मेरा साथ दीजिए, थकान भी तो उतारनी है।
0: मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ।
1: प्लीज साथ देने के लिए एक पैक।
0: जी नहीं, आप ऊपर जाकर पीजिए।
1: और अगर मैं यहीं बैठकर पीऊं तो?
0: पीजिए।
1: बुरा मान गई। प्लीज, बात यह है कि मैं साथी के बिना रह ही नहीं सकता। बहुत घूमा हूँ हिप्पियों के साथ, जिप्सियों के साथ। कितनी मुक्त और सहज हैं ये विदेशी युवतियाँ। बड़े मजे के साथ कह सकती हैं लॉट्स ऑफ बॉयफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ सेक्स। मैं भी कह सकता हूँ लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ।
0: मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ।
1: नहीं है तो हो जाएंगी। मुझे किसी के साथ एकाकार होते देर नहीं होती। दुई का भाव मुझे सुहाता ही नहीं। एक ओंकार, एक सत्ता, एक चेतना।
0: काफी गहरे उतर चुके हैं आप।
1: गणित विज्ञान और आध्यात्म की तरह नशे, सेक्स और योग की मंजिल एक ही है, ब्रह्मानंद सरोवर में डुबकी लगाना। प्लीज, मैंने कहा ना अकेले पीते अच्छा नहीं लगता। छोटा पैक लीजिए मेरे लिए, इस सुहावने मौसम के लिए।
0: मिस्टर सिंह, आप ऊपर नहीं जाना चाहते तो मैं जाती हूँ।
1: आप ऊपर कैसे जाएंगे?
0: जी हाँ, वो अधिकार तो जैसे आपका ही है। आप पुरुष है ना? मैं कहती हूँ ऊपर जाइए।
1: नाराज ना होइए। अच्छा, मैं अब और नहीं पीऊंगा, आपके साथ बातें करूंगा। आप डाइनिंग कार में नहीं गई, वहां डिक था, वही जूडिथ के बच्चे का बाप। आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, आना चाह रहा था, लेकिन जब उसे पता लगा कि हम कूपे में हैं तो मुस्कुरा कर लौट गया। अरे अब फिर नाराज हो रही है? प्लीज।
0: मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, जरा थोड़ा पीछे हटिए ना, मैं लेटना चाहती हूँ, फिर अपना भाषण जारी रख सकते हैं आप। आप तो जूडिथ के साथ बहुत रहे हैं।
1: बहुत से देशों में साथ साथ घूमा हूँ। We have made love many times, लेकिन वहां गुरुजी का आदेश था 10 दिन तक कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण मौन। फिर दिख भी तो यही था, लेकिन उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई। जूडिथ को पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी के साथ रहे।
0: इसलिए शायद वो तुम्हारे साथ आकर भी लौट गई।
1: उसके लौट जाने से मुझे दुख हुआ था, लेकिन तुम मिल गई तो मुझसे भी आकर्षक हो, सबसे आकर्षक। तुम्हारी मांसल देह, तुम्हारी चमकती आंखें, तुम्हारे लंबे सुनहरी बाल।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बज चुके हैं।
1: प्लीज अभी कुछ देर और बैठूंगा।
0: बैठे रहो।
1: तुम्हारी डायरी पढ़ सकता हूँ?
0: नहीं।
1: तुम्हें छू सकता हूँ?
0: नहीं।
1: मेरी प्रेम कहानियां सुनोगे?
0: नहीं।
1: क्यों?
0: क्योंकि सब एक जैसी होती हैं। वैसे ही जैसे तुम सब पुरुषों का व्यक्तित्व एक जैसा होता है। और स्वप्न देखो।
1: मेरा मन तो तुमसे बातें करने को करता है।
0: बातें मुंह से की जाती हैं, हाथों से नहीं।
1: सांत्वना, सांत्वना, मैं तुमसे प्रेम

0: करता हूँ सांत्वना।
1: मुझसे प्रेम करने वालों में एक और का इजाफा हुआ। लेकिन सरजीत, तुम सचमुच प्रेम करते होते तो जतलाते नहीं, प्रेम निर्लज नहीं होता।
0: यानी नैतिक होता है। शरीर को बचाने के मुंह में तुम अच्छे तर्क कर लेती हो।
1: शरीर को बचाने का मुंह मुझे कभी नहीं रहा, परंतु वो मन से जुड़ा हुआ है। प्रेम का अर्थ केवल तन का मिलन नहीं है। जिन जूडिथ, मार्था और लिजा के लिए तन का मिलन सहज रहा है, वो भी मन के मिलने के लिए भटकती फिर रही हैं। न जाने कितनी गांठें पड़ी हैं उनके मन में। माँ बाप से विद्रोह, समाज से विद्रोह, अपने से विद्रोह। व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो ड्रग का सेवन करती हैं। स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने
0: वही वही वही तो आनंद का मार्ग है। तुमने कभी अनुभव किया है उसे? उस आनंद को मेरे पास है, पियोगी?
1: सरजीत, तुम सीमा को लांघते जा रहे हो, अब चले जाओ।
0: और न जाऊं तो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज सांत्वना, प्लीज।
1: नहीं नहीं, पीछे हटो, हटो पीछे।
0: मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा। किसी स्त्री ने मुझे आज तक पीछे नहीं हटाया।
1: लेकिन मैं हटा दूंगी। मर्द है तो उसे औरत चाहिए।
0: प्लीज,
1: मर्द तेज पुंज है, औरत उसके तेज को छेड़ने वाली है।
0: देखो,
1: ये दलीलें अब बासी हो
0: चुकी हैं।
1: तुम्हारे लिए नारी केवल एक वेश्या है।
0: मैं नहीं,
1: मैं कहती हूँ इसे क्षण उठकर चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। जाते हो या नहीं?
2: सांत्वना,
1: कौन है? क्यों आए हैं इस समय?
3: क्षमा कीजिए, आप ठीक तो हैं?
1: बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही बीमार नजर आते हैं जो दूसरों के कंपार्टमेंट में झांकते फिरते हैं। कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो जाइए यहाँ से।
3: माफी चाहता हूँ, बराबर के कंपार्टमेंट में हूँ। लगा जैसे आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन यहाँ तो आपके पति का अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता।
1: तो फिर जाइए अपने कंपार्टमेंट में।
3: देखिए, मुझे नींद कम आती है, आप लोग शोर मचाएंगे तो विवश होकर मुझे।
1: क्या मतलब है आपका?
3: आप सब समझती हैं, इस डिब्बे में केवल आप दोनों ही नहीं, आप जैसे जोड़े बहुत देखे हैं। इस उम्र में इतना आवेश नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ मुझे फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडक्टर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आराम से सो सके।
4: सचमुच मैम साहब, मैं तो डर गया था। कभी कभी फालतू आदमी भी चढ़ाते हैं।
1: मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए। माफी चाहती हूँ।
3: ठीक है, मैं जाता हूँ। गुड नाइट।
4: दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, कोई बात हो तो मैं पास ही में हूँ।
0: मुझे बहुत दुख है दरअसल।
1: चुप रहो, ऊपर जाकर अपनी सीट पर बैठो।

0: सरजीत का इसमें कोई दोष नहीं है। उसका संबंध जूडिथ, मार्था और लिजा जैसी नारियों से रहा है, जिनके लिए देह है सब कुछ है। लेकिन फिर विद्रोहियों का बाना पहने इधर उधर क्यों भटक रही हैं? अंतर में कहीं ना कहीं खोज की वो चाह है जो इन्हें स्थूल आनंद से ऊपर उठाती है। मैंने मार्था से पूछा था, मार्था बुरा तो न मानोगी, एक बात पूछूं?
1: खुशी से पूछो।
0: तुम माँ बनने वाली हो ना?
1: हाँ।
0: इसके पिता कौन है?
1: मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है, मैं भी पुरुष की तरह प्यासी हूँ, मुझे भी तृप्ति चाहिए। पुरुष कोई भी हो, वो सर्वजीत भी हो सकता है, शायद वही है। लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो?
0: मैं जानना चाहती हूँ कि मुक्त साहचर्य और देह भोग के साथ सच्चे सुख की तलाश कैसे चल सकती है।
1: मुझे तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। शरीर के अस्वीकार की बात तुम लोगों में ही है, हम लोगों में समर्पण की प्यास है। समर्पित होकर हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। तुम्हारे लिए प्रेम एक बना बनाया सांचा है, विवाह किया और वो सांचा ओढ़ लिया।
0: नहीं, मैंने भी प्रेम विवाह किया था, उसी का परिणाम है मेरे दो बच्चे, उन्हीं के लिए मैं दूसरी बार विवाह नहीं कर रही।
1: लेकिन इससे क्या तुम्हारी देह की प्यास बुझ गई? इतने सारे वर्ष तुमने इस छद्म को पालने में लगा दिए। मैंने गुरुजी से बहुत बहस की है इस बारे में।
0: क्या उत्तर दिया उन्होंने?
1: देह की प्यास से उन्हें इनकार नहीं है, वो तो चाहती है कि साधना के इन 10 दिनों में परहेज किया जाए, उसके बाद जैसा अनुभव हो।
0: इसका अर्थ समझी?
1: समझी। वो कहना चाहते हैं जैसे जैसे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, देह भोग की प्यास वैसे वैसे

0: शांत होती जाती है। सांत्वना, मैं नहीं जानती क्या होगा, मुझे चिंता नहीं कि वो प्यास शांत होती है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा अवश्य लगता है कि सच्चे सुख के प्राप्त हो जाने पर वो प्यास असंगत हो रहेगी।
1: फिर भी तुम कहती हो कि शरीर के अस्वीकार की बात हम ही लोगों में है।
0: अस्वीकार करने और असंगत हो रहने में अंतर है, क्या नहीं है?
2: कभी सोचा भी न था कि मुक्त देह मिलन के उपासक ये लोग इतनी गहराई में उतर सकते हैं। अस्वीकार करने और असंगत हो रहने का अंतर ही हम भूल चुके हैं, इसलिए अत्यधिक निषेध से परेशान होकर देह मिलन के लिए पागल हुए जा रहे हैं। मैंने भी जब चाहा है देह की प्यास बुझाई।
1: देह की इस प्यास को क्या तुमने अब भी बुझाना नहीं चाहा था?
0: कौन हो तुम?
1: मैं कौन हूं ये पूछने का साहस है तुम्हें? अपने अंतर में झांक कर देखो, वहीं से बोल रही हूं। बार बार दूसरों के अंतर में झांकती हो पर अपने को नहीं खोजती। विधवा हो, संतान के प्यार के आदर्श में बंधी तुम देह की प्यास को छिपाए फिरती हो, लेकिन क्या सर्वजीव के साथ तुम्हारा मुक्त व्यवहार तुम्हारी देह की प्यास के ऊपर ही आधारित नहीं था?
0: अगर ऐसा था तो मुझे रोकने वाला कौन था?
1: तुम्हारा अपना अहम, जबरदस्ती शहीद बनने की लालसा।
0: शब्दों के मायाजाल में फंसने की चेष्टा मत करो। ये ठीक है, छोटी उम्र के अपने दोनों बच्चों को मैं किसी की दया पर छोड़ने को तैयार नहीं थी, पर देह के मिलन को मैं अस्वीकार नहीं करती। शर्त केवल एक ही है कि दूसरों की वासना का शिकार होना मैं नहीं चाहती, वो देह का अपमान है।
1: लेकिन तब तुम साधना केंद्र में क्यों गई थी? क्या वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम भी अशांत हो? तुम्हें देह को बचाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचाने को विवश भी हो। इसी द्वंद से तुम पीड़ित हो। तीव्र निषेध मन की चाह में से ही पैदा होता है। तुम्हें स्पष्ट कह देना चाहिए था कि सर्वजीत तुम्हारा पति नहीं है, ये मेरा छद्म है। इस छद्म को उतार फेंको।
0: छद्म है, छद्म। सुनो, कहां गई तुम? बोलो। कहीं कोई नहीं, ये मैं अपनी ही आवाज सुन रही हूं। सचमुच मुझे सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए था कि सर्वजीत मेरा पति नहीं है। मैं डर गई। कंडक्टर और सहयात्री मुझे व्यभिचारी नहीं समझते और शायद स्टेशन से उतर जाने को विवश करते, या फिर कैसी है ये भूल भुलैया, कैसे मुक्ति मिलेगी इससे? क्या इसी मुक्ति की खोज में मैं साधना केंद्र में नहीं आई? इतने सहज होकर भी ये लोग भटक रहे हैं, द्वंद में फंसी मैं भी भटक रही हूं। क्या इस भटकन का अंत देह की मिलन नहीं है? कहां है सत्य? कौन सा छद्म इन तर्कों को ठगे हुए है? कैसे मिलेगी इस द्वंद से मुक्ति?
1: छद्म, ये छद्म है, इस छद्म से मुक्ति पाओ। सहज होने में ही मुक्ति है। मुक्ति, मुक्ति।
3: बहुत देर हो गई तुम्हें लिखते हुए, अब सो जाओ। जो कुछ हुआ उसके लिए लज्जित हो?
0: नहीं सरजीत, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं।
3: तुम बहुत अच्छी हो।
0: सच?
3: मैंने प्रतिज्ञा की थी कि सच बोलूंगा, केवल सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ न बोलूंगा।
0: अच्छा, अब सो रही हूँ। गुड नाइट।
3: गुड नाइट।
4: बहुत देर से आई हो, कॉलेज तो कभी का बंद हो चुका था।
0: हाँ कमल।

0: अंकल के घर चली गई थी।
1: इतनी रात तक क्या वहाँ कोई उत्सव था? हमें क्यों नहीं ले गए?
0: कुछ ऐसी बात थी बेटे, गंभीर बातें करनी थी ना, हड़ताल होने वाली है।
1: बहुत देर हो गई थी इसलिए मुझे डर भी लगा। भैया ने वहाँ फोन भी किया था लेकिन हर बार अंगेज मिला, शायद खराब था।
0: हाँ शायद, असल में हम बहुत जरूरी बातें कर रहे थे, शायद तुम्हारे अंकल ने रिसीवर उतार कर रख दिया था।
1: हाँ यही जवाब हमें भी मिला था, हमने कंप्लेंट की थी। खाना खाओगे मामा?
0: मैं तो खाई बेटा, लगता है तुम लोगों ने अभी तक नहीं खाया। बड़े दुष्ट हो तुम, मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बुला अपने भैया को।
2: पढ़ने का नाटक कर रहा है लेकिन सुन रहा है हमारी बातें। इधर आओ बाबा।
0: माँ को जरा भी मुक्ति नहीं दोगे? मुक्ति तो मैं ही उन्हें नहीं दे पा रही, मैंने ही तो उन्हें अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बड़े हो गए हैं, सब कुछ समझते हैं। मुझे उनसे सब कुछ कह देना चाहिए, कहीं उनके किशोर मन में कांट ना पड़ जाए। स्वयं मैं भी तो नहीं झेल पाती इस सर्वग्रासी एकांत को। क्या मैंने ही जानबूझकर इसे अपने ऊपर नहीं लाद लिया है? क्या इसे मुक्ति पालूं? क्या वो मुक्ति होगी?
3: सांत्वना? सांत्वना, तुम सो गई?
0: तुम्हारा स्पर्श पाकर मुझे नींद आ ही जाती है।
3: सांत्वना, हमें लुका छिपी का खेल बंद कर देना चाहिए।
0: हाँ कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो फिर कोई और मार्ग नहीं रह जाएगा।
3: तुम शादी कर लो।
0: शादी नहीं कर सकती विनोद, जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती।
3: धोखा तुम आप दे रही हो।
0: मैं धोखा नहीं दे रही, अपनी इच्छा से जो चाहती हूँ करती हूँ।
3: इच्छा मेरी भी तो हो सकती है, जैसे तुम चाहती हो कि तुम किसी का शिकार न बनो, वैसे ही क्या मैं नहीं चाह सकता कि मैं तुम्हारा शिकार न बनूं?
0: शिकार? तुम क्या कह रहे हो विनोद? विनोद!
4: सांत्वना, क्या है सांत्वना, किसे पुकार रही हो?
0: कुछ नहीं, सपना देख रही थी।
4: या अपने प्रेमियों की याद कर रही थी? विनोद, कमल,
0: तुम्हें ईर्ष्या होती है?
4: स्वाभाविक है, सारी रात यहाँ ऊपर के बर्थ पर लेटा लेटा।
0: तुम सब पुरुष एक जैसे होते हो। उनके एक मित्र थे, एक बार उनके साथ भी इसी तरह कूपे में सफर किया था। सारा समय तुम्हारी तरह न जाने क्या क्या बकते रहे, अपनी प्रेम कहानियां सुनाते रहे। बेचारे परवर्टेड।
4: अगर मैं यूरोपियन होता तो इस समय तुमसे पूछता, क्या उस रात उसके साथ तुमने प्रेम किया था?
0: आप नहीं पूछोगे?
4: बेकार है, हिंदुस्तानी प्रेम करना ही नहीं जानता।
0: ताने मत दो, मैं न तब समर्पित हुई थी और न अब हो सकूंगी।
4: जी में आता है कि नीचे उतरकर तुम्हारे शरीर को झंझोर डालूं और
0: फिर रुक क्यों गए?
4: जागने की राह देखता रहा, अब नहीं मानूंगा।
0: तुमने और उस पुलिस इंस्पेक्टर में अंतर ही क्या है जिसने सवेरे सवेरे दूध लेने जाती हुई एक औरत के साथ बलात्कार किया?
4: तर्कों की ये ढाल तुम्हारी मदद नहीं कर सके।
0: जब दो शरीर सैकड़ों मीलों की मानसिक दूरी के साथ मिलते हैं तो उस अर्थहीन मिलन में न सौंदर्य होता है न सत्य, वो न तन को बांध पाता है न मन को। इसी को कहते हैं अपवित्र होना।
4: पवित्र अपवित्र की मुझे चिंता नहीं, चिंता तुम्हारी है। सारी रात तुम अपने से लड़ती रही हो, तुम्हारा यही छद मैं उतार फेंकना चाहता हूँ। सांत्वना प्लीज।
0: इसे हटा, मैं कहती हूँ एक कदम भी आगे न बढ़। कौन आया अब? कौन हो तुम? क्या चाहते हो?
5: मैं सरजीत से मिलना चाहता हूँ। हेलो सरजीत। तुम्हारा नाम देखा तो आश्चर्य हुआ, विलायत से कब आए, कैसे हो? और मार्था? ओह ये मार्था तो नहीं है?
0: मेरा नाम सांत्वना है।
5: ओ, देखता हूँ तुमने शादी कर ली है सरजीत, भाई बधाई।
4: निगम इनसे मिलो, यह है श्रीमती सांत्वना थापर। मैंने अभी तक शादी नहीं की है, तुम कहो कहाँ कहाँ रहे, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो।
5: हाँ, वो तो है, पर तुम हो भाग्यशाली, अभी तक तो विदेशी नारियों की चर्चा ही तुम्हारे पत्रों में रहती थी, अब भारतीय नारी भी आ गई। बधाई दूंगा, चुनाव एक्सीलेंट है, वाह। माफ कीजिएगा मिसेस थापर, हम बहुत

0: गहरे दोस्त हैं। यहाँ बैठ सकता हूँ ना सर जी?
1: ये कूपे है मिस्टर निगम, और अभी रात बीती नहीं है।
0: Oh, I'm sorry. मैं भूल गया था कि कूपे में तीसरे के लिए स्थान नहीं होता।
1: मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, तब आप आ सकते हैं। अब आप
0: जा रहा हूँ। खेद है मैंने आपके एकांत में खलल डाला। और सरजीत एक बात याद रखो, ये भारत है, यहाँ शोर नहीं मचाना चाहिए, वो बाहर वाले को भी खींच लेता है।
1: दरवाजा खुला रहने दो।
0: क्यों?
1: मेरी इच्छा।
2: कूपे में एक की इच्छा नहीं चलती।
1: तो आप में भी समझने की शक्ति है। स्टेशन आ रहा है, मैं यहीं उतरूंगी।
3: अभी तो अंधेरा है, बाहर बूंदाबांदी हो रही है, और ये स्टेशन भी बहुत छोटा सा है।
1: बड़ी सुंदर जगह है ये।
3: सुंदर तो तुम हो, जगह नहीं, ये तो क्रूर है, विछोह का स्थान।
1: तुम्हारा ऐसा सोचना भी क्या एक छद्म ही नहीं है? जो तुम्हारी दृष्टि में विछोह का स्थान है, वो किसी के लिए मिलन का भी हो सकता है। तुम्हारे साथ फिल्मी डायलॉग के आदान प्रदान से तो यहाँ उतरना हजार गुना अच्छा है। अच्छा, जा रही हूँ, बुरा ना मानना। प्यार का तुम्हारे लिए एक ही अर्थ है, औरत की देह का उपभोग। अच्छा, नमस्कार। क्या सोच रहे हो, जवाब भी नहीं दोगे?
3: नमस्कार। तुम भाग रही हो सांत्वना, कब तक भागती रहोगी?
1: कंडक्टर, मैं यही उतर रही हूँ, जरा बक्सा उतारने में मदद करो।
2: जी अभी आया, लाइए, मैं उतारे देता हूँ, आप उतरिए।
1: ये लीजिए।
0: गई, अब तो मैं आ सकता हूँ। खूब बातें करेंगे दोनों, सामान ले आओ।
3: क्या मेरी दशा उस मछुए जैसी नहीं है, जो एक तूफानी समुद्र में अपना जाल भी खोकर खाली हाथ लौट आया था? लेकिन इसी लेकिन के कारण तो मैं भी साधना केंद्रों की खाक छानता फिर रहा हूं।

कूपे। अभी आपने श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा यह नाटक सुना। निर्देशक थे श्री दीनानाथ। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र, मंजू मैनी, सरल नांगिया, शर्मिला मलखानी, हरि मेहता, अरुण माथुर, बीएल टंडन, दीपा पांडे और नरेश कुमार सूरी। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।

ये आकाशवाणी है। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज के सभा में प्रस्तुत हैं सुविख्यात बांसुरी वादक श्री विवेक सोनार का बांसुरी वादन। आप महाराष्ट्र के 40 गांव में जन्मे और पले बढ़े। आप अपने पिता श्री रामचंद्र सोनार से प्रेरित थे। आपके पिता वारकरी संप्रदाय के एक जाने माने गायक रहे। आपने बहुत कम उम्र से ही बांसुरी बजाना शुरू किया। आपने अपने पिता से शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद अपने पहले गुरु पंडित पुरुषोत्तम

0: अंतापुरकर से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1997 में मुंबई आए ताकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सानिध्य में पेशेवर प्रशिक्षण ले सके। इस तरह आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के मार्गदर्शन में अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिन्होंने आपको संगीत की खोज और अभिव्यक्ति की गहरी दुनिया से परिचित कराया। आप एक बेहतरीन बांसुरी वादक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं। आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं बल्कि एक संगीतकार भी हैं। आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं। आप तंत्रकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादन में अपनी बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है। आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फ्लूट सिम्फनी एक शानदार संगीत समारोह है जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं। आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायोलिन और कर्नाटक शैली के वाद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने कई जाने माने समारोह में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, मोगोबाई कुर्दिकर संगीत समारोह गोवा, हम्पी महोत्सव हम्पी, ऊर्जा संगीत समारोह दिल्ली, पंडित राम मराठे महोत्सव ठाणे, पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव गोवा, गुणीजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला अकादमी संगीत समारोह। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादन के लिए आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ठाणे रत्न पुरस्कार, पंडित संगमेश्वर गुरव पुरस्कार, पंडित राम मराठे पुरस्कार, सुर श्रृंगार संसद मुंबई से सुरमणि शीर्षक, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तथा आपको वृंदावन गुरुकुल छात्रवृत्ति इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में श्री विवेक सोनार राग चंद्र कंस प्रस्तुत करेंगे। आलाप जोड़ और मध्यलयगत रूपक ताल में निबद्ध हैं और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री ओजस अधिया।
1: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। Tonight we present a flute recital by renowned flautist Sri Vivek Sonar. Born and raised in Chalisgaon, Maharashtra, and inspired by his late father Sri Ramchandra Sonar, an eminent vocalist of the Warkari Sampradaya, Vivek started playing the flute at a tender age. After initial training from his father, Vivek moved to his first guru, Pandit Purushottam Antapurkar. In 1997, Vivek moved to Mumbai to be professionally trained under Pandit Hariprasad Chaurasia. Vivek thus began his new journey under the maestro who took him into deeper realms of exploration and expression. Flautist par excellence and torchbearer of the Hindustani tradition of classical music, himself a guru to countless disciples as also a composer, Vivek Sonar is one of the leading flautists of India, renowned for his strong command over Tantakari and Layakari style. Blessed with powerful blowing skill, a multi-talented person, Vivek Sonar is widely regarded by music lovers and critics for having honed unparalleled skills of instrumentation in flute playing. He is also known for his initiatives like his Sui Generis, the Grand Bansuri Utsav, and the Flute Symphony, a magnificent concert that has 111 flutes playing together. Vivek has performed solo as well as jugalbandi concerts with leading exponents of the santur, sitar, violin and also Carnatic instrumental music in many prestigious music festivals in India. Vivek has performed at many prestigious events like Savai Gandharva Bhimsen Mahotsav Pune, Mogubai Kurdikar Sangeet Samaroh Goa, Hampi Mahotsav in Hampi, Urja Music Festival Delhi, Pandit Ram Marathe Festival Thane, Pandit Jitendra Abhisheki Sangeet Mahotsav Goa, Gunjan Sangeet Mahotsav Indore, Goa Kala Academy Music Festival. Vivek has received many prestigious scholarships and awards.

कुल स्कॉलरशिप। टुनाइट श्री विवेक सोनार प्रेजेंट्स राग चंद्र कंस आलाप जोड़ एंड मध्यलयगत सेट टू रूपक ताल एंड द्रुतगत सेट टू तीन ताल। ही विल बी अकंपनीड ऑन तबला बाय श्री ओजस अधिया।

0: अभी आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्र कौंस, प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: यू आर लिस्निंग टू राग चंद्र कौंस बाय रिनाउंड फ्लॉटिस्ट श्री विवेक सोनार। He was accompanied on tabla by Shri Ojas Adhiya. With this tonight we conclude Ravi Vasariya Akhil Bhartiya Sangeet Sabha. This program was recorded in the studios of Akashwani Mumbai and this broadcast came to you from Akashwani Delhi.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार

0: उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को 2 दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. Meanwhile, Sweden conferred the Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, upon Prime Minister Modi. Sweden's Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, is the utmost recognition and honor that can be conferred upon a head of government. This is the 31st global honor for Prime Minister Modi. Mr. Modi reached Gothenburg this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands.